0: आकाशवाणी का यह श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समीन, हमारे स्टूडियोज की घड़ी में सुबह के 6:55 होने वाले हैं। थोड़ी देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से संस्कृत, हिंदी और अंग्रेजी में भारी भारी खबरें रिले करेंगे। खबरों का इंतजार फरमाइए।
1: इयम् आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। सुवेन्दु अधिकारी अद्य पश्चिम बंगाल राज्यस्य प्रथमस्य भाजपेति दलस्य मुख्यमंत्री रूपेण शपथ ग्रहणं करिष्यति। कोलकाता नगरस्य ब्रिगेड परेड ग्राउंड इत्यत्र शपथ ग्रहण समारोह आयोज्यते। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपाध्यक्ष नितिन नवीन, केन्द्रीय मंत्रिण, एनडीए शासितानां राज्यानां मुख्यमंत्रिणः च शपथ ग्रहण समारोहे भागं ग्रहीष्यन्ति इत्यपेक्षास्ति। पूर्वं ह्यः श्री अधिकारीवर्यः राज्य भाजपा विधायिका दलस्य नेता निर्वाचितः अभवत्। कोलकाता नगरे गृहमंत्रिणः अमित शाहस्य उपस्थितौ विधायक दलस्य सभा अभवत्। सभायाः अध्यक्षः श्री शाहः अवदत् यत् सर्वे प्रस्तावाः सुवेन्दु अधिकारिणः पक्षे एव प्राप्तानि। भाजपा विधायिका दलस्य नेतृत्वे निर्वाचनानन्तरं श्री अधिकारी पश्चिम बंगस्य राज्यपालेन आर एन रविना सह मिलित्वा राज्ये प्रथमं भाजपा नेतृत्वस्य सर्वकारस्य निर्माणाय प्रतिज्ञां प्रदत्तवान्। विधानसभा निर्वाचने भाजपेति दलं ऐतिहासिकं विजयं प्राप्नोत्। टीएमसीति दलस्य 15 वर्षाणां शासनं च समापितम्। पुदुचेरी राज्ये राष्ट्रिय जनतांत्रिक गठबंधनस्य मुख्यमंत्री पदस्य प्रत्याशी एन रंगासामी इत्येषः उपराज्यपालेन के कैलासनाथन वर्येण सह मिलित्वा अग्रिम सर्वकारस्य निर्माणाय प्रस्तावः प्रदत्तवान्। श्रीरंगासामी बहुसंख्यायां विधायकानां समर्थनपत्राणि उपराज्यपालाय समर्पितवान्। रक्षानुसंधान विकास संघटनेन डीआरडीओ इत्यनेन भारतीय वायुसेनया च गुरुवासरे ओडिशा तटस्य समीपे टैक्टिकल एडवांस्ड रेंज ऑगमेंटेशन तारेति शस्त्रस्य प्रथमोड्डयन परीक्षणं सफलतया संपादितम्।

0: इति भारतस्य प्रथमा स्वदेशीया ग्लाइड शस्त्रव्यवस्थास्ति या मार्गनिर्देशित युद्धोपकरणान् यथार्थनिर्देशित शस्त्रेषु परिवर्तयति। दुबई नगरे भारतस्य वाणिज्य दूतावासेन समुद्रे मृतस्य एकस्याः नौकायाः भारतीयस्य चालकदलस्य मृत्योः विषये शोकः प्रकटितः। एकस्मिन् सामाजिकान्तर्जालीये पटले सन्देशे कॉन्सुलेट जनरल इत्यनेन घटनैषा दुर्भाग्यपूर्णम् उक्तम्। सः पोतस्य स्वामिना सह निरन्तरं सम्पर्के अस्ति, अधिकविवरणानि च अन्वेष्टुं प्रयासरतः अस्ति। दूतावासेन आश्वासितं यत् अस्मिन् विषये सर्वविधसाहाय्यं प्राधान्येन प्रदीयन्ते। हॉर्मुज जलसन्ध्यां गतिरोधः तदा तीव्रः अभवत् यदा संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सुरक्षापरिषदि अमेरिकासमर्थितस्य प्रस्तावस्य प्रारूपम् ईरानदेशेन निराकृतम्। तद्दोषपूर्णं राजनीतिना प्रेरितं चास्तीति उक्तम्। तेहरानेन उक्तं यत् अयं प्रस्तावः विवादस्य समाधाने साहाय्यं न कृत्वा अवैधरूपेण कार्यं कर्तुं प्रेरयिष्यति। तेहरानेन संयुक्तराष्ट्रसङ्घस्य सदस्यराष्ट्रान् प्रस्तावितस्य प्रस्तावस्य समर्थनं न कर्तुं प्रार्थितम्। आईपीएल क्रिकेट क्रीडायां गतरात्रौ दिल्ल्याः अरुणजेटलीति क्रिकेट क्रीडाङ्गणे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन दिल्ली कैपिटल्स दलम् अष्टस्तोभैः पराजितम्। अद्य जयपुरस्य सवाई मानसिंह क्रीडाङ्गणे राजस्थान रॉयल्स दलं गुजरात टाइटन्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। क्रीडायाः आरम्भः सायं सार्धसप्तवादने भविष्यति। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतजगता सम्बद्धैः विभिन्नैः क्रियाकलापैः संवलितस्य संस्कृतसाप्ताहिकीति विशिष्टकार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः FM गोल्ड प्रवाहिकातः रविवासरे मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे श्रोतुं प्रभवन्ति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। भारतीय जनता पार्टी यहां पहली बार सरकार बनाने जा रही है। शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन सहित कई केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। विधायक दल के नेता चुने जाने के बाद श्री अधिकारी ने राज्यपाल RN रवि से भेंट की और सरकार बनाने का दावा पेश किया। वहीं तमिलनाडु में तमिल वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने टीवी को समर्थन देने की खबरों का खंडन किया है। ये भी खबरें आ रही हैं कि आज होने वाला शपथ ग्रहण समारोह स्थगित कर दिया गया है। इससे पहले कल टीवी के प्रमुख ने राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात कर सहयोगी दलों के समर्थन पत्र सौंपकर सरकार बनाने का दावा पेश किया था। उधर केरला में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। UDF की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सर्वोच्च न्यायालय ने पंजाब में बढ़ते मादक पदार्थों के खतरे पर चिंता व्यक्त की है। राज्य की नीति में मूलभूत बदलाव लाने और प्रमुख तस्करों को गिरफ्तार करने को कहा गया है। न्यायालय ने कहा है कि इससे होने वाली मानवीय क्षति चिंताजनक है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि ये प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। उन्होंने रूस यूक्रेन संघर्ष को द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा युद्ध बताते हुए कहा कि स्थायी रूप से शांति स्थापित करने के लिए बातचीत जारी है। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है, जो हर साल 9

0: मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। ये प्रस्ताव होर्मुज जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा में संबंधित था। ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। उधर अमरीका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को स्थिर करने का आरोप लगाया है। अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। अमेरिकी वित्त मंत्रालय ने कहा है कि ईरान की सैन्य क्षमता को रोकने के लिए आर्थिक कार्रवाई जारी रहेगी। साथ ही ईरान के साथ गैर कानूनी व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों और बैंकों पर भी कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये कदम विशेषकर होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान की समुद्री गतिविधियों को सीमित करने के लिए उठाया गया है। अमेरिका के विदेश विभाग ने बताया है कि इसराइल और लेबनान 14 और 15 मई को अमेरिका की मध्यस्थता में फिर से बातचीत शुरू करेंगे। विदेश विभाग के अनुसार दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल एक व्यापक शांति और सुरक्षा समझौते पर पहुंचने के लिए बैठक करेंगे। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली कैपिटल्स ने 8 विकेट खोकर 142 रन बनाए। जवाब में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 15वें ओवर में 147 रन बनाकर लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार चौथी जीत के साथ कोलकाता नाइट राइडर्स अंक तालिका में 7वें स्थान पर पहुंच गई है। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। मैच जयपुर में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। भारत की महिला फुटबॉल टीम एएफसी अंडर 17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय शगुन चोपड़ा। Suvendu Adhikari will take oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. The oath-taking ceremony will be held at the Brigade Parade Ground in Kolkata. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah, BJP President Nitin Naveen, Union Ministers and Chief Ministers of all NDA-ruled states are expected to attend the swearing-in ceremony. Earlier, Mr. Adhikari was elected the leader of the state BJP Legislature Party. The Legislature Party meeting was held in Kolkata in the presence of the Home Minister yesterday. In Tamil Nadu, the uncertainty over formation of government under TVK Chief C. Joseph Vijay continues. The new twist came as IUML has rejected the reports of its support to TVK to form the government. Reports are also coming that the swearing-in ceremony, which was to take place today, will not be held. Earlier, TVK had claimed that the actor-turned-politician once again met the governor yesterday and staked claim to form the government, saying that he has majority. Meanwhile, the IUML, headed by Professor Kadir Muhyiddin, has said that his party has not given a letter of support to TVK. In another surprising move, the meanwhile AMMK party leader TTV Dinakaran approached the governor and submitted a letter of support from S. Kamaraj, the lone MLA elected from Mannarkudi, to make AIADMK General Secretary E. Palanisamy as the new chief minister. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar met Guyanese Health Minister and discussed the progress of India-Guyana health ties. Dr. Jaishankar, who is on a three-nation visit to the Caribbean, met Health Minister Dr. Frank Anthony on a stopover at Georgetown in Guyana. Dr. Jaishankar was in Jamaica on the first leg of his tour, then went to Suriname and will be in Trinidad and Tobago for the final leg of his visit. US President Donald Trump has announced a three-day ceasefire between Russia and Ukraine, noting that the temporary truce coincides with Russia's Victory Day celebrations commemorating the then Soviet Union's role in World War II. In a post on Truth Social, Mr. Trump said the ceasefire would take place from 9th to 11th of May and would include a suspension of all kinetic activity between

0: By the Directorate of Information and Public Relations, Government of Jammu and Kashmir.
1: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
2: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
1: नहीं माँ, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आवर है माँ। अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
2: पर बेटा, हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
1: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
2: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
1: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
2: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
1: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
2: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
1: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं।
3: इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।

0: गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। पयाम सुबह में आप सबका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी। मेरे साथ हैं मेरे साथी जावेद अंद्राबी।
1: मेरा भी खलूस भरा सलाम कबूल फरमाएं। सुनाइए रशीद, कैसे हैं आप? आप जो अभी अभी घर से आए हैं, बड़े हशाश बशाश लग रहे हैं आप।
0: जावेद, अल्लाह के फजल व करम से ठीक हैं। और बिल्कुल घर से यहाँ अगर अपने सामईन के साथ रूबरू होने का जो मौका मिलता है ना, ये वाकई अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और इसीलिए आपको मैं हशाश बशाश लग रहा हूँ।
1: बिल्कुल, सामईन का प्यार हमें हर सुबह अपनी तरफ खींच लेता है।
0: जी हाँ जावेद, ये सुबह भी अपनी आगोश में कई सवालात लिए तुलू हुई है कि हम अपने काम, अपने रवैयों और अपने माशरे के साथ कितने मुखलिस हैं।
1: रशीद, यम चि तिम ची तिम लम्हात यम सोचस वजनावान ते एहसास बेदार करान छि यति न सिर्फ कत अमापुज फिक्र जायन लबान छि तो अश छि अत फिक्र सईत बोजन वालन हम सफर बनान।
0: असल कति कुन फिरो तो जोन जावेद, फिक्री छि इंसानस मंजिलस तां वातनावान। आज यानी बटवार दो छि अस आम लोकन हिंदन मसलन नस्बत कत करान सईती दुह के हवाले ते पनन बोजन वालन जानकारी दिवान।
1: बिल्कुल, आज सब दिक्कत आम लोकन दरपेश मसलन हिंस, खास कर सैनिस समाजस अंदर पलन वाजन बुराइयन नस्बत जि तिम कथ सपदन खत्म, बे सब दिक्कत वर्क कल्चर तो बदअनवानी मुतलिक तम तिम ज पहलू यम अगर सही सपदन माशरच बुनियाद सपद मजबूत।
0: बिल्कुल जावेद, असल कथ न सोई जि अस वजनावन पन बेहतर सोच तो एहसास करोन बेदार।

0: हुबल वदनी का नगमा आपने सुना, ये सिर्फ सुना नहीं जाता बल्कि महसूस भी किया जाता है, और शायद यही एहसास हमें अपनी असल की तरफ लौटने का रास्ता दिखाता है, जहां सादगी हो, खुलूस हो और अपने काम से मोहब्बत हो।
1: बिल्कुल, जब काम इबादत बन जाए और जिम्मेदारी एहसास में ढल जाए तो फिर ना सिर्फ फर्द निखरता है बल्कि पूरा मुआशरा संवरने लगता है। हमें यही सोच अपनानी होगी और हमारा हर अमल हमारी पहचान है।
0: फिलहाल जावेद, हम अपने सुनने वालों को ये बता दें कि आप इस वक्त प्रोग्राम समाप्त कर रहे हैं पयाम सुबह। आज के थीम के अलावा कई खास बातें हैं जो हमें अपने सामईन के साथ शेयर करनी है, दिन के हवाले से और आकाशवाणी के हवाले से।
1: जी बिल्कुल, अपने तमाम सुनने वालों को ये बता दें कि आकाशवाणी भारत में अपने 90 साल मुकम्मल कर रहा है। हमने मुल्क के एक नामवर ब्रॉडकास्टर से बात की है, इस हवाले से आप तक जरूर पहुंचाएंगे मगर इस नगमे के फौरन बाद।

0: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल, पुरानी यादें नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है। आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल।
1: जी हाँ, आकाशवाणी श्रीनगर से आप समाप्त कर रहे हैं पयाम सुबह। मीडियम वेव 268.81 मीटर यानी 1116 किलोहर्ट्ज़ और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। इसके अलावा आप हमारी नशरियात समाप्त कर रहे हैं DTH पर और ऑल इंडिया रेडियो की लाइव मोबाइल ऐप पर। मैं हूं आपका मेजबान, आपका होस्ट, आपका दोस्त रशीद निजामी, और मेरे साथ हैं मेरे साथी जावेद अंद्राबी।
2: नगमे से पहले हम बात कर रहे थे कि आकाशवाणी मुल्क में अपने 90 साल मुकम्मल कर रहा है। मेरे साथी रशीद निजामी ने मुल्क के मारूफ ब्रॉडकास्टर विविध भारती के सीनियर ब्रॉडकास्टर कमल शर्मा से इस हवाले से एक मुख्तसर गुफ्तगू की है, आइए सुने।
3: कमल जी, वेलकम टू आवर मॉर्निंग शो।
4: शुक्रिया
3: कमल जी। चूंकि आकाशवाणी या रेडियो अपने सफर के 90 साल पूरे कर रहा है, तो कैसे देखते हैं आप इन 90 सालों को, क्योंकि आपने एक लंबा सफर किया है आकाशवाणी में, आपका एक नाम है पूरे मुल्क में।
4: मैं तो ये कहूंगा कि एक बड़ी ही खूबसूरत जर्नी है ये आकाशवाणी की। आज तो जगह जगह जो है मनोरंजन के इतने साधन आ गए हैं, सोशल मीडिया के जरिए इतनी जानकारियां हमको मिल रही हैं, हमारा मनोरंजन भी होता है। लेकिन एक समय था जब लोगों के लिए, आम लोगों के लिए जानकारी का सबसे बड़ा स्रोत जो था वो रेडियो था। शहरों में रहने वाले लोगों के लिए तो फिर भी बहुत सारी सुविधाओं तक पहुंच थी, लेकिन वो लोग जो देश के दूरस्थ इलाकों में रहते थे उन तक जानकारी को पहुंचाना सबसे बड़ी एक जिम्मेदारी भी थी और एक चुनौती भी थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हिस्से भी थे, बारिश के समय वो देश के मुख्य भाग से कट जाते थे, और कई बहुत दुर्गम इलाके थे जहां पर सड़क नहीं थी।

0: और ऐसी जगहों पर रेडियो तरंगे पहुंचते थे तो उन तक सरकार की महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं उनकी जानकारी, देश दुनिया में उनके आसपास क्या हो रहा है उसकी जानकारी, कौन से विज्ञान में नए शोध हो रहे हैं और स्वास्थ्य की, कृषि की जो नई नई जानकारियां थी उन तक पहुंचाने के लिए रेडियो एक बहुत बड़ी उसकी भूमिका थी। और मैं तो कहूंगा कि भारत में अगर हरित क्रांति की बात करें तो रेडियो की महत्वपूर्ण भूमिका है, सामाजिक बुराइयों को दूर करने की बात हो, जन जागरण की बात हो, तो उसमें रेडियो की एक बहुत बड़ी भूमिका है।
1: बिल्कुल सही। और देखिए कहीं पर अगर कहीं पानी, कहीं पे राशन का कोई प्रॉब्लम रहा तो आकाशवाणी ने वहां भी लोगों की मदद की।
0: बिल्कुल सही है। कहीं देखिए साहब ऐसा है कि कई कई हिस्से बाढ़ से ग्रस्त हो जाते थे तो उनको देश से जोड़ना, खासतौर से डिजास्टर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो ऐसे भूकंप आ गया, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं और कुछ कोई दुर्घटना हो गई, प्राकृतिक कोई आपदा आ गई, तब रेडियो की बहुत बड़ी भूमिका होती थी। और मैं अगर अपने बचपन और जवानी की बात करूं तो साहब उस समय तो हमारे ये रेडियो मतलब एक बहुत मूल्यवान चीज हुआ करती थी, एक लग्जरी जो कहें या स्टेटस सिंबल हुआ करता था। और हम लोग हॉकी की कमेंट्री और दूसरे क्रिकेट की कमेंट्री उसी पर सुना करते थे। इसके अलावा जो है, क्योंकि मेरा बचपन ऐसी जगह बीता जो बहुत ही दुर्गम इलाका था तो साहब वहाँ सिनेमा हॉल नहीं थे, तो हमारे लिए उस समय उर्दू सर्विस से और विविध भारती से एक प्रोग्राम आता था फिल्म साउंड ट्रैक का, तो उसमें तो उसमें वो संपादित अंश सुनाया करते थे, तो वो संडे को आता था तो हम लोग उसका बड़ा बेसब्री से इंतजार करते थे।
1: बिल्कुल सही है बात आपने, आपने भाड़ की बात कही। 2014 में जब यहाँ पर सैलाब आया कश्मीर, तो उस वक्त एक ही साधन था रेडियो जो लोगों को आपस में जो जोड़ता था, बाकी साधन तो खैर डूब गए, लेकिन आपकी बात ये बिल्कुल सही है और लोगों के बिल्कुल करीब रहा रेडियो। इसकी एक खास वजह ये है कमल जी कि लोग अपना काम भी करते हैं, रोजी रोटी कमाते हैं, साथ में रेडियो सुनते हैं।
0: बिल्कुल सही कहा, रेडियो उनको डिस्टर्ब नहीं करता साहब, वो कहता है आप अपना काम करो, मैं तो आपका ऐसा दोस्त हूँ, आप मुझे सुनते हुए अपने बाकी काम भी कर सकते हैं। टेलीविजन में यह है कि आपको नजरें गड़ानी पड़ेंगी अपने सारे काम छोड़ करके। और दूसरी चीज एक और जो मैं हमेशा कहता हूँ कि टेलीविजन में आप वही देखते हैं जो वो टेलीविजन आपको दिखाता है, लेकिन रेडियो में मान लो कि एक गाना आ रहा है तो कई बार उस गाने में आप खुद हो जाते हैं, अपनी कल्पना में उसके नायक आप होते हैं। तो आप आंख बंद करिए, जितने लोग, मान लीजिए एक नाटक हो रहा है, जितने लोग आंख बंद करके उस नाटक को सुन रहे हैं उन नाटकों के जितने कलाकारों की छवियां हैं सबके जहन में अलग अलग बनेंगी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। कमल जी जब हम बात करते हैं अपनी ब्रॉडकास्टिंग की तो कुछ चैलेंजेस सामने आते हैं। अभी आप समझते हैं कि आज का जो दौर है सोशल मीडिया का दौर है, जब 70 की दहाई में या 60 की दहाई में लोग रेडियो सुनते थे तो रेडियो के बगैर कोई साधन नहीं था एंटरटेनमेंट का। आज आपके पास सोशल मीडिया है, मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल है, उसके बावजूद भी अगर हमारी आवाज कोई सुनता है, हमें कोई ईमेल करता है, कोई खत लिखता है, कोई फोन करता है फोन प्रोग्राम में, तो एक कामयाबी मानी जाएगी आकाशवाणी की।
0: बहुत बड़ी। देखिए एक चीज और है कि आकाशवाणी मतलब सिर्फ ये बोलना नहीं है, बोलने की एक संस्कृति है और सबसे बड़ी बात है कि एक ऐसी संस्कृति जिसके आप सदस्य हैं परिवार की तरह। बाकी आप देखिए ना कि हमारे आसपास बहुत सारी आवाजें गूंज रही हैं, कहीं बहुत सस्तापन भी है, भाषा जो है वो ऐसी है जो सड़क की जबान है जिसको आप सिर्फ मनोरंजन तक उसको महदूद कर सकते हैं, उससे आगे आप उसको नहीं कर सकते, लेकिन रेडियो पर आपने विश्व साहित्य की बेहतरीन कृतियों का नाट्य रूपांतर सुना है, उनको उन कहानियों को सुना है, आपने दुनिया का बेहतरीन शास्त्रीय संगीत सुना है, लोक संगीत की जो स्थाती है, जो विरासत है, उससे आपका परिचय हुआ है। हमारे देश के जितने भी जाने माने हैं, लेखक हैं, युवा हों, चाहे वो बुजुर्ग हों और वो गृहणियां हों, उसमें जेंडर की बातें आती है, सबको बराबर मौका दिया, बराबर मंच दिए हैं उनकी अपनी दरबार।
1: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। थैंक यू वेरी मच कमल जी, आपने हमारे साथ बात की, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया।
0: मेरी खुशनसीबी है मुझे ये मौका मिला और मैं तहे दिल से शुक्रिया आपका अदा करता हूँ और तमाम सुनने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ और अपनी शुभकामनाएं पेश करता हूँ।
2: ये थी मारूफ ब्रॉडकास्टर कमल शर्मा जो आकाशवाणी के 90 साल के सफर के बारे में अपनी राय दे रहे थे।
3: जावेद, जब हम आकाशवाणी की बात करते हैं ये तो तिथि आकाशवाणी या रेडियो कामयाबी मेहनत से जुड़ित न कि सिर्फ महारत सत काम करने का अंदाज तो वक्त एहतराम यह रूद समाज अंदर रेडियो की किरदार अकसी करान।
2: बिल्कुल, यह सो पहलू इस अकिस इंसान से निजी जिंदगी ते छु बेहतर बनावान। अगर इस पन्ने काम हिज जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाओ नतीजे नेरन बेहतर, बल्कि सपद अतमाद पद तो यह अतमाद अक मजबूत माशरच बुनियाद बनान।
3: वो जावेद, अगर निजामस अंदर बदअनवानी शामिल आसे

0: इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं वाइल्ड लाइफ वार्ड एंड वेटलैंड्स कश्मीर जनाब अल्ताफ अहमद साहब। अल्ताफ साहब, वेलकम टू आवर मॉर्निंग शो।
1: बहुत बहुत शुक्रिया निजामी साहब।
0: अल्ताफ साहब, चूंकि आप जानते हैं आज वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे मनाया जा रहा है, क्या है इस दिन की इफादियत, क्यों मनाया जाता है ये दिन?
1: बहुत ही यूनिक सा एक दिन है जो पूरी दुनिया में मनाया जाता है और इस दिन की इफादियत जो है बहुत ही मुख्तलिफ है बाकी दिनों से। मैं आपको ये बता दूं कि बेसिकली हमारे इस खूबसूरत जमीन पे बहुत सारी वाटर बॉडीज है, बहुत सारे वेटलैंड्स है और ये वेटलैंड्स जो है अलग अलग जगहों पे है, लेकिन वेटलैंड्स जो दुनिया भर में फैले हुए हैं इनको कोई एक क्रिएशन जो है कनेक्ट करती है, दैट्स द बर्ड्स। तो ये बर्ड्स जो है आपको पता है माइग्रेट करते रहते हैं दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों से, जैसे हमारे यहाँ भी रशिया से आते हैं, चाइना से आते हैं, यूरोप से आते हैं बर्ड्स, और इन बर्ड्स की माइग्रेशन जो है इन वेटलैंड्स को कनेक्ट करती है। सो अगर हम समरी में देखें व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर डे, वन ये हमारे वेटलैंड्स के इंडिकेटर्स है, देयरफॉर ये दिन हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ये बर्ड्स जो है एक्चुअली हमारी वेटलैंड्स की हेल्थ को भी जो है रिप्रेजेंट करते हैं। अगर हमारे वेटलैंड्स बहुत अच्छा करें, दैट मींस ये बर्ड जो है हमारी वेटलैंड्स को जो है एक फिजिबल हैबिटेट की तरह एक्सेप्ट करेंगे। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो है, जो भी रब ने इस कायनात में जो है डिफरेंट क्रिएशन बनाई है, उस क्रिएशन में हमारी ये जो फ्लाइंग क्रिएशन है जिनको हम बर्ड्स के नाम से जानते हैं या एविफॉनल बायोडाइवर्सिटी के नाम से जानते हैं, तो ये इस डायवर्सिटी को सेलिब्रेट करना, इनको याद रखना, इनकी तहफ्फुज़ की बात करना, और इनको अगर हम चाहते हैं प्रिजर्व करें, कंजर्व करें, तो हमें वेटलैंड्स को भी प्रिजर्व और कंजर्व करना होगा। तो ये जो दिन है ये इन सभी बेसिकली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स की याद दहानी करता है। तो इस दिन की जो है बहुत ज्यादा अहमियत है, इफादियत है हमारे माहौलियत के हिसाब से भी और इस खूबसूरत बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से भी।
0: यानी एक तो हमें बर्ड्स को महफूज रखने के लिए इकदाम करने चाहिए, दूसरा हमारे जो वेटलैंड्स हैं वो महफूज रहने चाहिए, तब जाकर के ये बर्ड्स यहाँ आ सकते हैं। अब रिसर्च क्या कहती है, अब तहकीक क्या कहती है, क्या आज से 20 साल पहले या आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले जो बर्ड्स यहाँ आते थे, अब हमारे वेटलैंड्स पानी से भरे रहते थे
1: जी,
0: अब पानी बहुत कम हो गया है
1: जी,
0: तो क्या बर्ड्स की तादाद वही है या घट गई है?
1: देखिए, अगर मैं जो बेसिकली एक तो डॉक्यूमेंट्री रिसर्च होता है और दूसरा होता है

0: रिकॉर्डेड रिसर्च होता है जिसको बेसिकली हम प्रॉपरली डॉक्यूमेंट नहीं करते। अगर हम रिकॉर्डेड रिसर्च की बात करें जहां पे उन बर्ड वॉचर्स का बर्ड एंथुजियास्ट का बर्ड अकाउंट में लेते हैं जो बर्ड्स के तैना एक बहुत ही खास शौक रखते हैं और बर्ड्स को डॉक्यूमेंट करते हैं, बर्ड्स की स्पीशीज को डॉक्यूमेंट करते हैं, तो कुछ टाइम से कुछ ऐसी स्पीशीज यहाँ पे रिकॉर्ड की गई है जिनके बारे में ये कहा जाता है कि कुछ दहाइयों के बाद जो है यहाँ पे देखी गई है। तो बिल्कुल, तो जैसे वुलर की अगर हम बात करें या होकर सर की बात करें या इवन वो बर्ड जो बीच बीच में यहाँ पे आती थी, अब जो है उनका पैटर्न या उनकी रेगुलरिटी जो है हमारे वेटलैंड्स में बढ़ गई है। ये सही बात है आपकी कि वेटलैंड्स में जो साल साल कहीं दहाइयों से ऐसी चेंजेस आई जिनकी वजह से वेटलैंड्स की जो बेसिकली हेल्थ है वो थोड़ी सी बिगड़ गई, तो उस पर आपको पता है कि गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और पर्टिकुलरली डिपार्टमेंट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है बहुत ही ज्यादा एंथुसियाज्म के साथ काम कर रहे हैं, वेटलैंड्स को रिस्टोर होने की कोशिश कर रहे हैं, हम उनको जो डेट्रीमेंटल चेंजेस वेटलैंड्स में आए हैं उनको हम मिटिगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो धीरे धीरे से जो है हमारी वेटलैंड्स की हालत जो है बेटर हो रही है। इसकी मैं दो इमीडिएट इंडिकेटर्स आपको दे दूं। हम एक एक्सरसाइज करते हैं जिसको हम एशियन वाटर बर्ड सेंसस के नाम से जानते हैं, हर साल ये एक्सरसाइज दोहराई जाती है जहां पे हम बर्ड्स की तादाद और बर्ड्स की स्पीशीज को जो है काउंट करने की कोशिश करते हैं। तो पिछले दो साल से लगातार हम 12 लाख से ज्यादा बर्ड्स को रिकॉर्ड कर रहे हैं, पर्टिकुलरली इन द माइग्रेटरी बर्ड सीजन, विच इज बेसिकली अ वेरी पॉजिटिव साइन। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं हुआ कि हमारे वेटलैंड्स में जितनी भी डेट्रीमेंटल चेंजेस आई थी वो सारी जो है हमने ठीक कर दी। इसका मतलब ये है कि हम जो कोशिश कर रहे थे वो कोशिश जो है अच्छे रिजल्ट दिखा रही है और इन कोशिश को जो है और आगे बढ़ाने की जरूरत है, बिकॉज हमें वेटलैंड्स में अभी बहुत सारा काम करने की जरूरत है, बट द वर्क दैट हैज बीन डन इन द वेटलैंड्स इज शोइंग सम गुड रिजल्ट्स।
1: बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी खुशहाल कदम है, ये सरकार को भी अपना रोल निभाना है और आम लोगों को भी अपना रोल निभाना है।
0: आप बिल्कुल पेशेंट,
1: अब जो दाएं बाएं वेटलैंड्स के दाएं बाएं जो लोग रहते हैं एनक्रोचमेंट से जरा परहेज करें, बाकी चीजों से परहेज करें, ये चीजें हैं जो वेटलैंड्स को सही हालत में रख सकती हैं।
0: मैं हमेशा जो है निजामी साहब दो चीजों के बारे में हमेशा मैं कहता हूँ कि जहाँ पे कोई एक डिपार्टमेंट या कोई एक ग्रुप या कोई एक कम्युनिटी जो है इन चीजों को बचा नहीं सकती, इन दो चीजों में एक फॉरेस्टर्स की बार बार बात करता हूँ और अपनी वाटर बॉडीज की बात करता हूँ, चाहे वो वेटलैंड्स हो दरिया हो, ये ऐसी एंटिटीज है, ऐसे जखीरे हैं, ऐसे नायाब तोहफे हैं जिनको एक डिपार्टमेंट एक पर्टिकुलर ग्रुप जो है नहीं बचा सकता। इसमें एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट चाहिए होगा, मीडिया का अपना रोल है, लोकल कम्युनिटीज का अपना रोल है, जो आसपास रहने वाली हैबिटेशन है उनका अपना रोल है, और जब तक हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इंटीग्रेट नहीं करेंगे तब तक शायद मुमकिन ना हो जो हमारे असासे हैं, कुदरती असासे हैं, कुदरती खजाने हैं, इनको हम कम्प्लीटली बचा सके। देयरफॉर यू आर एब्सोल्युटली राइट, जो आसपास के लोग हैं उन पे भी उतनी ही जिम्मेदारी बनती है कि वो चीजें ना करें जिनसे एक डेट्रीमेंटल इफेक्ट हमारे वेटलैंड्स पे क्रिएट होगा।
1: थैंक्स, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आम लोगों को ये एहसास दिल में पैदा होगा कि इन माइग्रेटरी बर्ड का वैल्यू क्या है और वेटलैंड्स का वैल्यू क्या है। थैंक यू,
0: आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी बात रखने के लिए।
2: ये थे वाइल्ड लाइफ वार्डन वेटलैंड्स कश्मीर अल्ताफ अहमद।
3: जावेद, हर साल 9 मई महाजिर परिंदों के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। ये दिन मनाने का मकसद लोगों में महाजिर परिंदों का तहफ्फुज और हमारी जमीन के लिए उनकी अहमियत को उजागर करना है। परिंदों की सालाना हिजरत बिलअमूम शुमालन जनूमन होती है। ये परिंदे सर्द ममालिक से गर्म ममालिक की तरफ उस वक्त हिजरत करते हैं जब वहां मौसम बहुत सर्द होता है, और यही वजह है कि हमने सोचा कि आज हम वार्डन वेटलैंड जो कश्मीर के हैं उनसे बात करें।
2: जी रशीद, परिंदों की इस हिजरत की तीन बुनियादी वजूहत हैं जिनमें खुराक का हुसूल, मौजून मौसम की तलाश और अफजाइश नस्ल। इसके अलावा परिंदे जंगलात के फैलाव में बुनियादी किरदार अदा करते हैं।
3: बिल्कुल बिल्कुल,
2: ये दरख्तों के बीज खाद लेते हैं जो उनके साथ दूर दराज इलाकों तक पहुंच जाते हैं, और ये जिन इलाकों में जाते हैं वहां कीड़ों मकोड़ों की आबादी में तवाज़ुन का सबब बनते हैं।
3: वाह वाह वाह वाह, क्या है ये, अल्लाह का बड़ा एक निज़ाम है। एक अंदाजे के मुताबिक जावेद, दुनिया भर के परिंदों की 10,000 अकसाम में से 1800 अकसाम बहुत तवील फासले तक एक मकाम से दूसरे मकाम तक हिजरत करती हैं। दुनिया के तमाम परिंदों में से तकरीबन 4000 अकसाम मुस्तकिल तौर हिजरत करती रहती हैं। ये तादाद कुल परिंदों का 40% बनती हैं।
2: रशीद, सदियों से जारी इस सिलसिले में कभी ऐसा नहीं होता कि परिंदे अपना रास्ता भूल जाएं। अल्लाह ताला ने परिंदों को समत के यकीन का हैरत अंगेज निज़ाम दिया हुआ है।
3: वाह वाह वाह,
2: महक़्क़िन के मुताबिक परिंदों के नथनों के ऊपर ज़मीन की मकनातीसी फील्ड को महसूस करने वाले उजलात होते हैं।

0: साल रिकॉर्ड प्रॉफिट्स हुआ है इन स्पाइट ऑफ इतना सारा डिफिकल्टीज रहा है जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में।
1: शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज सोवरी सबजरात थेरानोस्टिक्स इन न्यूक्लियर मेडिसिन ए वे फॉरवर्ड किस मौजूस पे दोन दोहन सी एम ई शुरू मेडिकल एजुकेशन किस अत प्रोग्रामस मज वतलावन माहिर मुख्तलिफ मर्जन हज तशखीस तो इलाजस मज न्यूक्लियर मेडिसन अहमियत अत बारस मज वोन शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज मज न्यूक्लियर मेडिसन शोबिक सरबरा प्रोफेसर डॉक्टर तनवीर अहमद रथरन आकाशवाणी न्यूजस सत कत करान।
2: इसका मकसद ये है कि जो हम इस वक्त कुछ टेस्ट या कुछ इन्वेस्टिगेशन या कुछ थेरेपीज जो हम इस वक्त नहीं कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में करने का इरादा है, अपने आप को हम एड्रेस कर लें कि इसका फायदा क्या है और उसके टेक्निक्स क्या है। इसलिए हमने मुल्क के बेहतर और बड़े लीडिंग इंस्टीट्यूट से लाइक एम्स, पीजीआई, जसलोक हॉस्पिटल, आरएमएस

0: या कुछ इन्वेस्टिगेशन या कुछ थेरेपीज जो हम इस वक्त नहीं कर रहे हैं लेकिन फ्यूचर में करने का इरादा है, अपने आप को हम अब्रेस्ट कर लें कि इसका फायदा क्या है, उसके टेक्निक्स क्या है। इसलिए हमने मुल्क के बेहतर और बड़े लीडिंग इंस्टीट्यूट से लाइक एम्स, पीजीआई, जसलोक हॉस्पिटल, आरएमसी से एक्सपर्ट्स को लाया जो इनको अब ये एक्सपीरियंस थी कि ये ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और ये स्कैनिंग कैसे करते हैं। क्योंकि हमारा इरादा है आगे जाके हम भी ये कर लेंगे, तो हमने चाहा कि इस पे एक सीएमई किया जाए ताकि अपने आप को एड्रेस किया जाए।
1: इजाजत है, नबरों बोझू खास खास खबरन हूँ सरखी बे एक फिर सुवेंदु अधिकारी आसन मगरबी बंगालिक बीजेपी गुडनिक वजीर आला तिम तुलन आज कोलकाता मज अहदुक राजदारी हुंद हल्फ। टीवी के सरबरा सी विजय जोसफ ते तुलन आज तमिलनाडु किस वजीर आला सिंद रंग हल्फ तिमन चे कांग्रेस वी सी के बाकी पार्टियन हज हमायत मीजमच। सुप्रीम कोर्टन चु पंजाबस मज बढ़वन नशखोरी पे तशवीश बावान अथ नस्बत रियाती पॉलिसी हिज तब्दीली पे जोर दुत। तो भारत सिंगापुरन चु दहशत पसंदी हुन मुकाबल करने बापत मालूमात शेयर करने सित इतफाक कोरमुत। अथ सित वोत खबरन हुन दी बुलेटिन अंद कशरन खबरन हुन ब्याखा बुलेटिन सब्दे आकाशवाणी श्रीनगर पे 9 बजे तो 1 मिनटन पे नशर। अशी दी इजाजत, खुदा हाफिज।
2: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है। जमीन लाइव मॉर्निंग शो पैम सुम जारी है, क्यों ना हम आपको आज दिन भर हमारे यहाँ से नश होने वाले प्रोग्रामों की तरतीब से आगाह करें।

अब्दुलरशीद डार और साथी छकरी और रो पेश करेंगे 11:30 पर और फिर 2:30। इनसे आप बितरतीब कलाम भावखार और कलाम शमस फ़कीर सुनेंगे। फिल्म संगीत आप सुनेंगे 12:10 पर, 1:10 पर, 2:15 पर और फिर 3:00 फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम में। ख्वातीन के लिए प्रोग्राम बज़्म निस्वा नश्र होगा 12:40 पर। इसमें बतौर मेहमान आज शिरकत फरमाएंगी क़य्यूमा असलम। पहाड़ी प्रोग्राम का वक्त नशरिया है 4:00। इसमें गीत और गलबात पेश होगी, मेज़बान हैं शबीर अहमद। हफ्तवार शीना प्रोग्राम समाप्त कीजिएगा 4:30 पर। शहनवाज सामू

गोजरी प्रोग्राम नशरों का हसब मामूल 5 बजे, कॉम्पियर हैं शौकत बोकड़ा। देहाती भाई अपना प्रोग्राम गर्मी बाई नींद खतर सुनेंगे शाम 6:05 पर। इसमें मामूल की नसीहत के अलावा डॉक्टर इमरान नज़ीर के साथ गुफ्तगु होगी। मौजू है तेर नीरस तावनस दौरान एहतियात। आला तहजर पर अपनी प्रोग्राम शहरबीन नशरों का अपने मखसूस वक्त पर शाम 7 बजे। रात 8 बजे प्रोग्राम वादी की आवाज़ नशर होगा और ज़िला नामा नशर होगा रात 8:30 पर। इस बार ज़िला नामा में गांदरबल ज़िले से मुतलिक बात होगी। यह समीन आज दिन भर आपके बाद नशर होने वाले चंद प्रोग्राम।

0: ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.1 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। समय ठीक 8 बजे आप समाचार प्रभात सुनेंगे आकाशवाणी दिल्ली से। रिले का इंतजार फरमाइए।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणि भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। अब समाचार विस्तार से। शुभेंदु अधिकारी आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शपथ ग्रहण समारोह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होगा।
2: राज्य के राजनीतिक इतिहास में पहली बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार औपचारिक रूप से पदभार ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे शुरू होने वाला है और इसमें लाखों पार्टी समर्थकों, राजनीतिक नेताओं और देशभर से आए गणमान्य व्यक्तियों के शामिल होने का उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित कई केंद्रीय मंत्री और भाजपा शासित राज्य का मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल आरएन रवि मुख्यमंत्री और नए मंत्रिमंडल के सदस्यों को पद और गोपनीयता का शपथ दिलाएंगे। नवनिर्वाचित संसदीय दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने घोषणा की है कि एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्षता में आयोग राज्य में संस्थानगत भ्रष्टाचार की जांच करेगा। संदीप दास गुप्ता, आकाशवाणी न्यूज, कोलकाता।
1: इससे पहले कल श्री शुभेंदु अधिकारी को राज्य भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया। विधायक दल की बैठक कोलकाता में गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार देश की सीमाओं को सुरक्षित करेगी और राष्ट्रीय सुरक्षा की सबसे बड़ी कमी को दूर करेगी। कोलकाता में कल नव निर्वाचित भाजपा विधायकों को संबोधित करते हुए श्री अमित शाह ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संगठन के विस्तार या विचारधारा की पुष्टि के लिए नहीं है, बल्कि देश सुरक्षा को मजबूत करने के लिए है।
3: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
1: गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि लंबे समय से ठप पड़ी विकास योजनाओं को भाजपा सरकार फिर से शुरू करके पश्चिम बंगाल की जनता की सभी आकांक्षाओं को पूरा करने का काम करेगी।
3: आधुनिक खेती बंगाल तक पहुंची ही नहीं है, इंडस्ट्रीज बंगाल से भाग गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने का विजन ही नहीं है और महिला सुरक्षा और नागरिक सुरक्षा पाताल तक नीचे पहुंच गई। ये सारे मुद्दे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र के अंदर लिए हैं और मुझे विश्वास है कि भाजपा सरकार मोदी जी के नेतृत्व में ये डबल इंजन की सरकार बनकर दिन दूनी

0: चौगुनी बंगाल को प्रगति की दिशा में ले जाएंगे।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों का खंडन किया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रोफेसर खादर मोहिदीन के नेतृत्व वाली इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिलगा वेत्री कड़गम को समर्थन पत्र नहीं दिया है। एएमएम के पार्टी के नेता टीटीवी दिनाकरन ने राज्यपाल से संपर्क किया और मुन्नारुकई से निर्वाचित एकमात्र विधायक एस कामराज का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया। इसमें एआईएडीएमके के महासचिव एडप्पाडी पलनीसामी को मुख्यमंत्री बनाने की मांग की गई थी। उधर केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस रविवार तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमण्य को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पदभार ग्रहण करने की तिथि से वे सैन्य मामलों के विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्य वर्तमान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में सैन्य सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इससे पहले वे सेना के उप प्रमुख और केंद्रीय कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्य कर चुके हैं। सरकार ने वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमांड के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें भारतीय नौसेना में लगभग 4 दशकों की विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे जो 31 मई को सेवानिवृत्त हो रही हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने नई दिल्ली में एलवीएमएच मोइट हेनेसी लुई विटो एसीई के अंतर्राष्ट्रीय संबंध निदेशक विसेंट स्टॉक से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य विषय निर्यात बढ़ाने के लिए भारत में विनिर्माण को मजबूत करना, स्थानीय प्रतिभाओं में निवेश करना, भविष्य के सहयोगों के माध्यम से भारतीय संस्कृति को बढ़ावा देना और संतुलित तथा पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार साझेदारी को आगे बढ़ाना था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने 16वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन के परिणामों की सराहना करते हुए इसे रणनीतिक साझेदारी के लिए एक निर्णायक मोड़ बताया है। वित्त मंत्री कल नई दिल्ली में यूरोप दिवस समारोह को संबोधित कर रही थी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि शिखर सम्मेलन के परिणाम दोनों देशों के संबंधों में परिवर्तनकारी चरण का संकेत देते हैं। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
3: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
2: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच 3 दिन के युद्ध विराम की घोषणा की है। युद्ध विराम आज से 11 मई तक रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि यह प्रस्ताव उन्होंने स्वयं रखा था और इसमें दोनों पक्षों के 1,000 कैदियों का आदान प्रदान भी शामिल होगा। ये युद्ध विराम रूस के विजय दिवस के मौके पर हो रहा है जो हर साल 9 मई को मनाया जाता है। ये दिन द्वितीय विश्व युद्ध में नाजी जर्मनी पर सोवियत संघ की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अमेरिका द्वारा समर्थित मसौदा प्रस्ताव को त्रुटिपूर्ण और राजनीतिक रूप से प्रेरित बताते हुए खंडन कर दिया है। यह प्रस्ताव होर्मुज़ जलडमरू मध्य में जहाजों की सुरक्षा से संबंधित था। एक रिपोर्ट।
4: ईरान ने इसे अपने आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप और अमरीकी हितों को साधने वाला कदम करार दिया है। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्य देशों से प्रस्तावित प्रस्ताव का समर्थन न करने की अपील की है। अमरीका, बहरीन, सऊदी अरब, यूएई, कुवैत और कतर द्वारा समर्थित इस मसौदा प्रस्ताव का उद्देश्य होर्मुज़ जलडमरू मध्य से

0: आवागमन सुगम बनाना है। अमेरिका ने ईरान पर वाणिज्यिक जलमार्ग को रोकने और समुद्री यातायात को अस्थिर करने का आरोप लगाया है। इस बीच ईरान की सेना ने कहा है कि अमेरिकी रक्षा बलों ने यूएई के फुजरा बंदरगाह के पास एक ईरानी तेल टैंकर और एक अन्य जहाज को निशाना बनाया। पश्चिमी तेहरान के ऊपर ईरानी वायु रक्षा प्रणालियां भी सक्रिय थीं। वहीं अमरीकी सेना ने कहा कि होर्मुज जलडमरू मध्य में उसकी नौसेना को ईरानी बलों द्वारा मिसाइल, ड्रोन और तेज नावों से हमलों का सामना करना पड़ रहा है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: अमेरिका ने 10 व्यक्तियों और कंपनियों पर प्रतिबंध लगाए हैं, जिनमें चीन और हांगकांग की कंपनियां भी शामिल हैं। अमेरिका का आरोप है कि ये लोग और कंपनियां ईरान को हथियार बनाने और ड्रोन तथा बैलिस्टिक मिसाइल के लिए आवश्यक सामान जुटाने में मदद कर रही थीं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है, जो मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिवसीय इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ अमृत पर्व के पावन अवसर पर कल से पाठात्मक अतिरुद्र का विधिवत प्रारंभ किया गया, जिसमें अगले 5 दिनों तक निरंतर रुद्र पाठ किया जाएगा। मंदिर में आज से 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का भी आयोजन होगा, जिसमें लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जाएगी। इस महायज्ञ का मूल उद्देश्य वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति की स्थापना और मानव कल्याण सुनिश्चित करना है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म के अंतर्गत अगली कड़ी में हम भारत में रेडियो प्रसारण के क्षेत्र में अग्रणी रहे डॉक्टर राममूर्ति श्रीधर से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
3: In 1991 to 1993, exactly 35 years back, which I conceived and designed and did it, called Manav Ka Vikas or Human Evolution, which was 144 episodes broadcast from 200 radio stations. Today, following that model example, 550 radio stations are functioning in this country. Content writers, script writers, creative people, AI is going to help you.
1: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी गोल्ड पर प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देशभर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन करेगा। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। इस बीच बिहार में बिजली गिरने और तूफान से संबंधित अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई। खेलों में भारत की महिला फुटबॉल टीम AFC Under-17 एशिया कप के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है। भारत ने 2005 के बाद इस टूर्नामेंट में अपनी पहली जीत दर्ज की। वहीं IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने कल रात दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। ये मैच जयपुर में शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मुकेश कुमार बल।
4: धन्यवाद फरहत। सभी समाचार पत्रों ने आज पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी के भाजपा के विधायक दल का नेता चुने जाने की खबर प्रकाशित की है। दैनिक जागरण लिखता है, बंगाल में सत्ता के शुभेंदु अधिकारी, नए अध्याय की शुरुआत, भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में आज लेंगे शपथ। लोकसत्य ने तमिलनाडु में सत्ता का संग्राम नहीं थमने पर खबर प्रकाशित की है। विजय के शपथ ग्रहण पर फिर लगा ग्रहण, राज्य में सरकार पर फिर सस्पेंस, सियासत बदली। कांग्रेस के शीर्ष कमान पर अब केरलम के अगले मुख्यमंत्री को चुनने की जिम्मेदारी, राज्य में सरकार गठन को लेकर तैयारियां तेज, पर्यवेक्षक ने खड़गे को सौंपी रिपोर्ट, दिल्ली में होगा फैसला, देशबंधु की सुर्खी है। गर्म होते हिमालय में ऊंचाई पर आवास बना रहे जानवर, हिंदुस्तान की खबर है। पत्र लिखता है, जलवायु परिवर्तन की वजह से निचले इलाकों में रहने वाला हिमालयन बीजल पहली बार 3,500 मीटर की ऊंचाई पर नजर आया। अमर

0: ने अपने संपादकीय पन्ने पर एआई समय शीर्षक से लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, चैटबॉट है नई पीढ़ी के असली दोस्त। बेशक एआई चैटबॉट्स ने युवाओं की अभिव्यक्तियों का नया मंच दिया है, लेकिन इसके कुछ गंभीर खतरे सामने आने लगे हैं। जान जमा पूंजी छीन रहा गेमिंग ऐप का जुनून। ऑनलाइन गेमिंग में 2025 में लोगों ने 20,000 करोड़ रुपए गंवाए, हिंदुस्तान की खबर है। नवभारत टाइम्स सहित सभी समाचार पत्रों ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान होने का समाचार भी प्रकाशित किया है। नमामि गंगे की डॉल्फिन एम्बुलेंस ने 4 महीने में 8 डॉल्फिन को बचाया, जनसत्ता ने अभियान शीर्षक से एक खबर प्रकाशित की है।
1: धन्यवाद मुकेश। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी आज सुबह पश्चिम बंगाल के पहले भाजपा मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। तमिलनाडु में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बरकरार। लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी भारत के नए प्रमुख रक्षा अध्यक्ष नियुक्त। अगले 2 दिन में केरलम, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश का पूर्वानुमान। और फुटबॉल में भारत ने एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप के क्वार्टर फाइनल में पहली बार प्रवेश कर इतिहास रचा। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम वेव 268.81 मीटर यानी 1116 किलो हर्ट्ज और FM2 103.5 MHz पर प्रोग्राम है पयाम सुबह। मैं हूं आपका मेजबान रशीद निजामी और मेरे साथ हैं जावेद अंद्राबी।
3: रशीद, आज मई की 9 तारीख है, लाजमी है कि आज के दिन के बारे में बात हो।
2: जावेद, मैं समझ गया, जरूर आपका इशारा है कि आज के दिन को तवारीख के आईने में देखा जाए।
3: तो आइए देखते हैं कि इस दिन कौन कौन से खास वाकयात रोनुमा हुए, किन शख्सियात का इंतकाल हुआ और कौन इस दिन जन्मे।
2: दुनिया के कदीम मुहैदात में से एक पुर्तगाल और इंग्लैंड के दरमियान विंडसोर मुहैदा हुआ, जो मई की 9 तारीख को ही हुआ था 1386 ईस्वी में।
3: सन 1576 ईस्वी है ये। मैं इसी तारीख को महाराणा प्रताप और अकबर के दरमियान हल्दीघाटी की जंग शुरू हुई।
2: 1588 ईस्वी में इसी रोज हेनरी ड्यूक ऑफ गीज की फौज ने पेरिस पर कब्जा किया।
3: तारीखी ताजमहल की बुनियादी तामीर अगरचे 1648 ईस्वी में मुकम्मल हुई थी, ताहम मुकम्मल तौर ताजमहल सन 1653 ईस्वी को आज ही के दिन 22 साल की मुसलसल मेहनत के बाद पाए तकमील तक पहुंचा।
2: जावेद, यही वो दिन था जब 1812 ईस्वी में अमेरिका और बर्तानिया के दरमियान जंग का आगाज हुआ।
3: सन 1815 में 9 मई को ही वाटरलू में बर्तानिया से हारने के बाद नेपोलियन से फ्रांस का इख्तदार छीना गया।
2: बंबई में पहली बार घोड़े से खींचे जाने वाली ट्राम कार आज ही के दिन शुरू हुई थी 1874 ईस्वी में।
3: सन 1946 ईस्वी में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की कयादत में गवा में पुर्तगाल की हुकूमत के खिलाफ पहली सत्याग्रह तहरीक शुरू हुई थी।
2: 1947 ईस्वी में आलमी बैंक ने अपना पहला कर्ज फ्रांस को दिया।
3: मगरबी जर्मनी नेटो का हिस्सा बना था मई की इसी तारीख को सन 1955 ईस्वी में।
2: 1963 ईस्वी में अमेरिका ने निवादा तजर्बागाह पर न्यूक्लियाई तजर्बा किया।
3: सन 1970 में यही वो तारीख थी जब तकरीबन 1 लाख लोगों ने वियतनाम जंग के खिलाफ मुजाहरा किया।
2: बरतानवी यूरोपियन एयरवेज 1972 ईस्वी में इसी रोज खुले मैदान में गिरा, जिसमें 118 अफराद हलाक हो गए।
3: 1975 ईस्वी में इसी तारीख को बिजली से चलने वाली पहली टाइपराइटिंग मशीन बनाई गई।
2: 1979 ईस्वी में यही वो तारीख थी जब अमेरिका और साबिक सोवियत यूनियन ने न्यूक्लियाई हथियारों का महदूद इस्तेमाल करने वाले एक माहदे पर दस्तखत किए।
3: सन 1993 ईस्वी में इसी दिन जनूब अमरीकी मुल्क एक्वाडोर के नामरा इलाके में जबरदस्त लैंडस्लाइडिंग से 300 लोगों की मौत वाकई हुई।
2: साल 2000 में इसी रोज जाफना जजीरा नुमा के एलिफेंट दर्रे पर कब्जे के लिए LTTE के साथ हुए तसादुम में श्रीलंका के 358 फौजी मारे गए।
3: सन 2012 ईस्वी में इसी तारीख को रूस का एक तैयारा लापता हुआ जिसमें 45 मुसाफिर सवार थे।
2: 2012 में 9 मई को ही अमेरिका के सदर बराक ओबामा ने हमजिंस परस्तों की शादी को अपनी हिमायत दी।

0: आकाशवाणी श्रीनगर आप समाप्त कर रहे हैं। यह है प्रोग्राम पयाम सुबह, जो आप सुबह 7:10 से 11:30 तक सुनते हैं। आज आपसे मुखातिब होने का मौका मुझे मिला है, यानी मैं हूं रशीद निजामी और मेरे साथ हैं मेरे साथी जावेद अंद्राबी। जावेद साहब, मैं भी आपका नाम बोलता, आपको बोलने की जरूरत ही नहीं थी। बहरहाल
1: रशीद, जब हम तवारीख में आज के दिन के हवाले से बात कर रहे थे तो हिंदी सिनेमा के मशहूर गुलकार तलत महमूद का जिक्र भी हुआ था, क्योंकि आज उनकी 28वीं बरसी है। क्यों ना उनकी जिंदगी और फन के बारे में सामिन को कुछ मुख्तसर बता दें।
0: नेकी और पूछ पूछ, तो आइए सुनते हैं।

0: तलत महमूद हिंदी फिल्मों के मशहूर गुलकार और अदाकार थे। वो 24 फरवरी सन 1924 को लखनऊ में पैदा हुई और 9 मई सन 1998 को वफात पा गई।
1: तलत महमूद का असल नाम मोहम्मद तलत महमूद था और उनके वालिद भी गुलकार थे। बचपन से गुलकारी का शौक रखने वाले तलत ने 16 साल की उम्र में लखनऊ रेडियो स्टेशन से अपना करियर शुरू किया। 1941 ईस्वी में HMV के लिए एक गीत गाया जो उनकी पहली कमर्शियल रिकॉर्डिंग थी।
0: सन 1944 का एक गैर फिल्मी गीत नहायत ही मकबूल हुआ और उन्हें हिंदुस्तान भर में शोहरत दिला दी। शोहरत के बाद खैरख्वाहों के मशवरे पर बम्बई गए, जहां HMV टीम और सिबल दास गुप्ता ने उन्हें कोलकाता ले जाकर न्यू थिएटर से जोड़ा। फिल्म समिति में छोटा किरदार मिला। यहां उनकी मुलाकात KL सहगल से हुई। सन 1951 ईस्वी में फिल्म आरजू में अनिल बिस्वास ने उनसे एक गाना गवाया जो रातों रात उन्हें फिल्मी गुलकार बना के गया।
2: वो जब मेरे पास आया था, प्रख्यात होकर आया था और आके ये कहने लगा कि मुझे हीरो बनना है, मैंने कहा फिलहाल तो मुझे गाना सुना। तो गाना उसने सुनाया और मैं मोहित हो गया। उसका कारण ये है कि उसके गाने में कुछ एक ऐसी खासियत मैंने देखा जो कोई उस वक्त के मौजूदा कोई प्लेबैक सिंगर्स में नहीं था। मैंने सोचा कि अच्छा होगा कि ऐसी एक खूबसूरत मीठी आवाज़ इन आवाज़ों के सामने पेश किया जाए तो शायद ये ऊपर आए। और उसके बाद उसको कुछ, जब तक मैं था तब तक उसको पीछे मुड़ के देखने की

0: जावेद तलत महमूद को मखमली आवाज का लकब मिला, खासतौर पर गमगीन और रूमानवी गीतों में। उन्होंने देवदास, आरजू, दाग, बाबुल और संगदिल के लिए लाजवाब गीत गाए।
1: तलत एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत थी, दाने से ज्यादा गुदाग उनकी तबीयत में था, और मेरे ख्याल से जिस तरह की गजलें और नगमे उन्होंने गाए हैं वो अपने दौर में एक इनफरादियत रखते थे। उस आवाज़ में एक किस्म का गुदाज था, एक अनोखी किस्म की एक खासियत थी जो लोगों को बहुत मकबूल थी, और हम खुद जब गाते थे उनका गाना तो वो इन्जॉय करते गाते।
2: ये थे दिलीप कुमार के तासरात तलत महमूद के बारे में। समीन, तलत महमूद 14 से ज़ायद फिल्मों में अदाकार भी रहे, जैसे राज लक्ष्मी, आराम, दिले नादान, डाक बाबू, वारिस और सोने की चिड़िया वगैरह, मगर गुलोकारी में ही उन्हें शोहरत मिली।
0: तलत महमूद को दीगर अवार्ड्स के अलावा पद्म भूषण का अवार्ड भी हासिल हुआ है।
2: सन 1998 में मई की ही 9 तारीख थी जब उनके वफात की खबर पूरी दुनिया में फैल गई। तलत महमूद को उनके बाकमाल फन के लिए हमेशा याद किया जाएगा।

0: रंग और नई लय के साथ
1: बल बल जाऊं मैं तोरे रंग बजवा।
2: जिंदगी से जुड़े हर एक शोबे की मुफीद जानकारी।
3: सब्र रोशित सुलम।
2: सुनते रहिए हमारी नशरियात
0: दुनिया के किसी भी कोने में। मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और वेव्स OTT के जरिए।
4: जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। जी हाँ, ये आकाशवाणी की आवाज़ है और ये है श्रीनगर का स्टेशन। मैं हूँ रशीद निज़ामी और मेरे साथ हैं जावेद अंद्राबी। जावेद, टेक्नोलॉजी का ज़माना है।
5: बिल्कुल,
4: आज दुनिया के किसी भी कोने में इंसान हो तो वो अपना मनपसंद प्रोग्राम रेडियो के जरिए सुन ही सकता है।
5: सही सही,
4: कि जहाँ कहीं भी हो, हम ग्लोब पे हैं, हमारा जो ऐप है ऑल इंडिया रेडियो का, ये मोबाइल्स में अवेलेबल हैं, तो आप कहीं भी हैं तो आप हमें ज़रूर सुन सकते हैं।
5: रशीद, इस वक्त 8:30 होने वाले ही, ये खबरों का वक्त है
4: जी।
5: आइए आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू में खबरें सुनते हैं।
4: खबरों के लिए जरा सा इंतजार।

0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सुवेंदु अधिकारी आज सुबह मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और वजीर दाखिला अमित शाह हलफ बरदारी की तकरीब में शिरकत करेंगे। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल जारी है। लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणि को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकर्रर किया गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने केरलम, जनूबी अंदरूनी कर्नाटक, तमिलनाडु और पुडुचेरी में अगले दो दिन तक मूसलाधार बारिश की पेशगोई की है। और फुटबॉल में भारत ने 17 साल तक की उम्र की खवातीन के एशिया कप के क्वार्टर फाइनल्स में पहली बार जगह बनाकर तारीख रकम की है। अब खबरें तफसील से। सुवेंदु अधिकारी आज मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। हलफ बरदारी की तकरीब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: रियासत नई सरकार की हलफ बरदारी की तारीखी घड़ी का मुशाहदा करने के लिए तैयार है। ये तकरीब कोलकाता के आइकॉनिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनाकिद की जाएगी। हालिया इख्तिताम पजीर असेंबली इंतखाबात में फैसला कुन वोट हासिल करने के बाद रियासत की सियासी तारीख में पहली मरतबा भारतीय जनता पार्टी की क्यादत वाली सरकार बाकायदा तौर पर ओहदा संभालेगी। हलफ बरदारी की तकरीब में मुल्क भर से पार्टी की हिमायत करने वाले लाखों अफराद, सियासी लीडरों और मुअज्जज मेहमानों की आमद का इम्कान है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह, वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और बीजेपी की बरसर इक़्तदार रियासतों के वज़ीर आला इस तकरीब में शिरकत करेंगे। गवर्नर RN रवि वज़ीर आला और नई काबीना के मेम्बरों को ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाएंगे। पार्लिमानी पार्टी के नौमंतखब लीडर सुवेंदु अधिकारी ने ऐलान किया है कि रियासत में इदारा जाती बदरवानी की छानबीन के लिए एक रिटायर्ड जज की सरबराही में कमीशन कायम किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि आरजी खर अस्पताल और संदेश खाली जैसे वाकयात के सिलसिले में भी तहकीकात शुरू की जाएगी। अधिकारी ने इस जीत को बीजेपी कारकुनों की इज्तिमाही कोशिशों को मौसूम करते हुए पार्टी के मंशूर में शामिल सभी वादों को वक्त पर पूरा करने का अहद किया। ये तकरीर 25वें बैशाखी के मौके पर मुनक़िद की जा रही है, जो रवींद्रनाथ टैगोर का यौम पैदाइश है। इससे तकरीब की सकाफती और अलामती अहमियत बढ़ जाएगी। पूरे वस्ती कोलकाता में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रोग्राम को खुशसूबी के साथ मुनक़िद कराने को यकीनी बनाने के लिए हज़ारों पुलिस अहलकारों को तैनात किया गया है। कोलकाता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी हुकूमत भारत की सरहदों को महफूज बनाएगी और कौमी सलामती के लिए सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करेगी। कल कोलकाता में मगरबी बंगाल के 9 मुंतखबा बीजेपी अरकान असेंबली से खिताब करते हुए जनाब शाह ने कहा कि बीजेपी की जीत का मकसद अपनी तंजीम को तौसी देने या इसके नजरियात को जवाब फराहम करने का नहीं है, बल्कि इस जीत का

0: मुल्क की कौमी सलामती की सबसे बड़ी कमजोरी को दूर करना है। उन्होंने कहा कि आसाम, त्रिपुरा और अब मगरबी बंगाल में बीजेपी की हुकूमतें सरहद को नाकाबिले तस्खीर किले में तब्दील कर देंगी।
1: घुसपैठिया मुक्त बंगाल, सुरक्षित महिला और सुरक्षित जनता, ये हमारा वादा है। हमने बंगाल के आर्ष दृष्टाओं ने जो सोनार बांग्ला का संकल्प और स्वप्न देखा है, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम सोनार बांग्ला को जमीन पर उतारने के लिए अपना सबसे अच्छा परफॉर्मेंस बंगाल की जनता को दें।
0: जनाब शाह ने जोर देकर कहा कि बीजेपी हुकूमत में दरअंदाजी और गायों की स्मगलिंग नामुमकिन हो जाएगी। तमिलनाडु में टीवीके के सरबराह सी जोसेफ विजय के तहत सरकार की तश्कील के सिलसिले में अब भी गैर यकीनी सूरत हाल है। नया मोड़ ये आया है कि आईयूएमएल ने हुकूमत की तश्कील के लिए टीवीके को अपनी हिमायत की खबरों से इनकार कर दिया। एक और वाकये में ये खबरें भी आ रही हैं कि हलफ बर्दारी की तकरीब जो आज मुनाकिद होनी है मुनाकिद नहीं होगी। प्रोफेसर कादिर महीउद्दीन की सरबराही वाली आईयूएमएल ने कहा है कि उनकी पार्टी ने तमिजागा वेत्री करगम को हिमायतनामा नहीं दिया है। एक और हैरानकुन वाकया यह है कि एएमएमके पार्टी के लीडर टीटीवी दिनाकरन ने गवर्नर से रुजू किया है और इस कामराज की तरफ से हिमायतनामा पेश किया है, जो मन्नार दुई से मुंतखबा वाहिद एमएलए हैं। उन्होंने यह हिदायतनामा एआईएडीएमके के जनरल सेक्रेटरी एडापड्डी पलानीस्वामी को वजीर आला बनाने के हक में पेश किया है। एक रिपोर्ट।
2: तमिलनाडु में जहां 85% से ज्यादा वोट डाले गए हैं, अभी तक नई हुकूमत और वजीर आला के तकरूर का इंतजार है। नई हुकूमत की तश्कील में इसलिए ताखीर हो गई है कि वाहिद सबसे बड़ी पार्टी टीवीके भरपूर अक्सरियत 118 की तादाद तक अभी तक नहीं पहुंच सकी है। अलबत्ता वीसीके की तरफ से महज एक और हिमायतनामा मौसूल हुआ है, जिसे एक हतमी कदम माना जा सकता है, क्योंकि पार्टी के पास दो अरकान असम्बली आ गए हैं, जिसके बाद ये तादाद 118 हो जाएगी। तब तक किसी फैसले का इंतजार रहेगा। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सब्रमणी को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस मुकर्रर किया है। वजारत दिफा का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी ओहदा संभालने की तारीख से अगले अहकामात तक फौजी उमूर के महकमे के सेक्रेटरी के तौर पर भी खिदमात अंजाम देंगे। वो जनरल अनिल चौहान की मुलाजमत की मुद्दत 30 मई को मुकम्मल होने के बाद अपना ओहदा संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमणी एक इंतहाई मुअज्जज़ अफसर हैं, जिनकी 4 दहाइयों से ज़्यादा की शानदार खिदमात हैं। वो सितंबर 2025 से नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट में मिलिट्री एडवाइज़र के तौर पर भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले वो वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ सेंट्रल कमांड के तौर पर खिदमात अंजाम दे चुके हैं। इसके अलावा उन्होंने मगरबी और शिमाली महाजों पर अहम ऑपरेशनल फॉर्मेशंस की कमांड भी की है। हुकूमत ने वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को बहरिया का अगला सरबराह मुकर्रर किया है। वजारत दिफा ने कहा है कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन इस वक्त मगरबी बहरिया की कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के तौर पर खिदमात अंजाम दे रहे हैं। एडमिरल तकरीबन 4 दहाइयों की शानदार खिदमात हैं। भारतीय बहरिया में मुख्तलिफ ओहदों पर रहते हुए उनका ऑपरेशनल, स्ट्रेटजिक और जवानों से मुतालिक बंदोबस्त का काफ़ी तजुर्बा है। वो एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे, जो 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। सोमनाथ अमृत पर्व 2026 का कल बाकायदा तौर पर आगाज हो गया है। ये तकरीबात मंदिर की तामीर नौ के 75 साल पूरे होने के मौके पर मनाई जा रही हैं। इन तकरीबात में मुल्क भर के अकीदतमंद शिरकत कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
3: सोमनाथ के मंदिर में सोमनाथ अमृत पर्व पठात्मक अति रुद्र के साथ शुरू हो गया है। आज 3 रोज यज्ञ का भी आगाज होगा, जिसके दौरान सामग्री के तौर पर तकरीबन 125,000 अशिया मुकद्दस आग की नज़र की जाएंगी और मौजूदा बैन अल-अक़वामी तनाज़ात के दौरान आलमी अमन और इंसानियत की भलाई के लिए दुआ की जाएगी। ये तकरीबात 11 मई को इख्तिताम पजीर हो जाएंगी, जब मंदिर में अजीम शान तरीके से कुंभाभिषेक का इनेकाद किया जाएगा, जिसमें 11 मंदिरों का पानी नज़र किया जाएगा। अहमदाबाद से अपर्णा खून की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मुजीब अख्तर।
0: अक़वामे मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में ईरान की तरफ से अमेरिका की हिमायत वाली करारदाद के एक मुसवदे को मुस्तरद किए जाने के बाद आबनाए हुरमुज़ पर तातुल में शिद्दत आ गई है। ईरान ने कहा है कि इस करारदाद में खामियां हैं और इसके पीछे

0: समीन, आप जगजीत सिंह को सुन रहे थे।
1: जावेद, अपने तमाम सुनने वालों को ये बता दें कि आपने ट्यून किया है आकाशवाणी श्रीनगर और प्रोग्राम है पयाम सुबह। मैं हूं आपका मेज़बान रशीद निज़ामी और मेरे साथ हैं मेरे साथी जावेद अंद्राबी। और अपने तमाम सुनने वालों को ये भी बता दें, आज जो हमारा थीम है, शनिचर को थीम रहता है जो आम लोगों की मुश्किलात होती हैं, आम लोगों के मसाइल होते हैं, यानी इश्यूज रिलेटेड टू पब्लिक, ये रहता है आज का हमारा थीम। इस थीम पे आज हम दिन भर 11:30 बजे तक बात करते हैं। तो जावेद साहब, ये वन पन्न तमाम बोझन वाले से 10:30 बजे ये सन रूहानी स्कॉलर समझी स्कॉलर से तिम गए कानून को सब शौकत सैन कानून को
0: खुर्शीद
1: अहमद कानून को तीम इन आज ऐसी प्रोग्राम में तिमन से शब्द कथा बात है।
0: बिल्कुल रशीद, पकड़ा प्रोग्राम ब्रो, बोझो ये प्रोमो।
2: नमस्कार, ये आकाशवाणी है। 9 दशक यानी 90 साल जब टीवी का पर्दा कोरा था और इंटरनेट एक सपना, तब धुन की इस लहर ने भारत के हर घर में अपनी जगह बनाई। क्रिकेट के रोमांचक आंखों देखे हाल से लेकर मन की बात के संवाद तक,
3: आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीर कर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है।
2: आकाशवाणी सिर्फ एक रेडियो स्टेशन नहीं, हर भारतीय के संघर्ष और सफलता का साक्षी है। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का सबसे भरोसेमंद साथी, आज भी पहाड़ों की चोटी से लेकर सुदूर गांव तक हमारी आवाज ही आपकी पहचान है।

0: हमारा इरादा है आगे जाके हम भी ये कर लेंगे, तो हमने कहा कि इस पे एक CME किया जाए ताकि अपने आप को एड्रेस किया जाए।
1: अब रेल सर्विस से मुतलिक ये खबर। सयाहों के बढ़ते रश के पेश नज़र रेलवे डिवीजन जम्मू ने श्रीनगर रेलवे स्टेशन पर खसूसी टूरिस्ट वेलकम एंड फैसिलिटेशन सेंटर्स कायम किए हैं। रेलवे डिवीजन जम्मू के सीनियर डिवीजनल कमर्शियल मैनेजर उचित सिंगल ने कहा है कि इन मराकज़ के जरिए से रेल से सफ़र करने वाले सयाहों का वालेहाना खैर मकदम करने के साथ साथ उन्हें लाजमी जानकारी भी फराहम की जाएगी। अब दर्ज हरारत। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्ज हरारत 12.5 डिग्री जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्ज हरारत 22.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन दिन में 12:30 पर उर्दू में नशर होगा। खुदा हाफिज।
2: आकाशवाणी का ये श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर।
3: रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर की पेशकश रेडियो न्यूज हफ्ते रफ्ता की खास और अहम खबरों के खुलासे पर मबनी प्रोग्राम रेडियो न्यूज रील।
4: न्यूज रील का ताजा शुमारा लेकर मैं बसारत गुल। हमारे आज के शुमारे में श्रीनगर और जम्मू के दरमियान बराह रास्त रेल खिदमत का वसी पैमाने पर किया जा रहा है खैर मकदम। नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर की कयादत में पद यात्राओं का इनेकाद जारी। श्रीनगर और बडगाम के बाद आज अनंतनाग में पद यात्रा का अहतमाम। जम्मू कश्मीर सरकार बेरोजगारी पर काबू पाने के लिए मुख्तलिफ स्कीमों के तहत नौजवानों को खुद रोजगारी की तरफ कर रही है रागिब। वजीर आला और 6 माह के वक्फे के बाद सिविल सेक्रेटेरिएट श्रीनगर में खुला दफातर का दरबार। अब इन और दीगर मौजूदात की तफसील। श्रीनगर और जम्मू के बीच एक तारीखी इकदाम के तहत वंदे भारत एक्सप्रेस ने 2 मई से अपनी सर्विस का बाकायदा आगाज कर दिया। ट्रेन सुबह 6:20 पर जम्मू से रवाना हुई जो खित्ते में रेल रास्ते को बेहतर बनाने की जानिब एक अहम कदम है। इस रेल में 940 मुसाफिर सवार थे जबकि दूसरी रेल में 995 मुसाफिरों ने जम्मू से श्रीनगर का सफर किया। पहली सर्विस में सफर करने वाले मुसाफिरों ने अपनी खुशी का इजहार करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया।
5: मेरा नाम अर्चना कौशल है। ये लोगों को बहुत ही फायदा होगा कटरा के लिए, कश्मीर के लिए, अमरनाथ और वैष्णो देवी यात्रा जाने के लिए जितने भी यात्री उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा खुशी का विषय रहेगा।
6: राकेश कौर मेरा नाम है। आज एक ऐतिहासिक पल है खासकर भारतीय रेल के लिए। पहले तो सड़क का यूज होता था या हवाई, सड़क में टाइम लगता था, रेल के माध्यम से बड़ा अच्छा रहेगा। ट्रेन को डिजाइन किया गया है उस तरीके से, इसको कश्मीर का भी टेम्परेचर में ध्यान रखा गया और जम्मू को भी ध्यान रखा गया है।
4: वाजिर है कि इस सर्विस का इफ्तिताह 30 अप्रैल को रेलवे वजीर अश्वनी वैष्णव ने किया था। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मनुष्यात के खिलाफ लड़ाई में नौजवानों, सिविल सोसाइटी और मकामी रहनुमाओं की इज्तिमाई और सरगर्म शिरकत पर जोर दिया है। 3 मई को TRC ग्राउंड श्रीनगर से नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत एक पद यात्रा की कयादत करते हुए मनोज सिन्हा ने कहा कि मनुष्यात का कारोबार करने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई गई है, तहम इस वबा का शिकार हुए अफराद की बाजाबादकारी के लिए ठोस इकदाम किए जा रहे हैं।
7: समाप्त करने की कसम, ये सिर्फ सरकारी ताकत की घोषणा नहीं है बल्कि जम्मू कश्मीर वासियों की अधिक इच्छा शक्ति से उत्पन्न हुई है, जिन्होंने अब ऐलान कर दिया है कि अब बहुत हो चुका, अब नहीं होगा। और आज मैं श्रीनगर की इस मिट्टी से कश्मीर संभाग के लिए भी यही कहने आया हूँ कि हम इसे किसी कीमत पर वापस ले करके रहेंगे।
4: जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरख्शा अंद्राबी ने भी इस पद यात्रा में शिरकत की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए समाज के हर तबके को अपना रोल अदा करना होगा।
8: एडमिनिस्ट्रेशन ने जो नकेल इसमें कसी है, हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह रहमान यहाँ से ये बिदत बहुत जल्द खत्म किया जाएगा और जो दुश्मन देश हमारे पे, हमारे नौजवानों पे, हमारे फ्यूचर पे बुरी नजर रख रहा है, उनकी जो ये नार्को टेररिज्म यहाँ पे फैलाया गया है, इसको जल्द अज जल्द खत्म किया जाएगा।
4: पदयात्रा में शिरकत करने

0: को गर्व है, जिसके लिए मैं अपने सभी कस्टमर्स, शेयर होल्डर्स, रेगुलेटर्स, प्रोमोटर्स और बैंक के एम्प्लॉइज को दिल से बधाई देता हूँ। 2363 करोड़ का ये प्रॉफिट सिर्फ एक फिगर ही नहीं है, बल्कि आपके भरोसे, शानदार टीम वर्क और बेहतर स्ट्रेटेजीज का नतीजा है।
1: सरकार से तस्लीमशुदा शहलत फाउंडेशन और मौलमूज फाउंडेशन के एहतमाम से 3 मई को आकाशवाणी श्रीनगर के ऑडिटोरियम में एक तकरीब मुनाकिद हुई, जिस दौरान इन तंजीमों ने मुश्तरका तौर मुनशियात मुखालिफ बुजुर्गों और ख्वातीन के हुकूक और माहौलियात को आलूदगी से बचाने से मुतलिक मुहिमात का आगाज किया। तकरीब की सदारत साबिक गवर्नर के मुशीर खुर्शीद अहमद गनाई ने की। न्यूज़रील के साथ बात करते हुए खुर्शीद अहमद गनाई ने कहा,
2: इस बिदत ने हमको पकड़ लिया है, जकड़ लिया है, तो इसको दूर करने के लिए हर एक जो समाज का तबका है, सियासत है, समाजी कारकुन है, गवर्नमेंट है, रजाकार तंजीमें हैं, सबको मिलके काम।
1: इस मौके पर मुकर्ररीन ने जम्मू कश्मीर को मुनशियात की लानत से पाक बनाने के लिए इज्तिमाई कोशिशों की जरूरत पर जोर दिया। प्रोग्राम के दौरान रफीक ताहिर की उर्दू और कश्मीरी में लिखी शहलत फाउंडेशन की जानिब से जारी की गई मुनशियात मुखालिफ नज़में पेश की गयी।

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तेहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सूफी सदा ये प्रोग्राम चु प्रत दोह आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ साढ़े 10 बजन ताम नश शब्दान वली बोजो प्रोग्राम सूफी सदा।

شاد زر زر چھوچھوین مبتلا ہر جائے تابا چھوک زر زر چھوچھوین

Sul!

0: रेडियो एक ऐसी आवाज जो हर घर हर गली हर कूचे तक पहुंचे। अपने कारोबार को दीजिए एक नई पहचान, अपनी तरक्की को दीजिए एक नई उड़ान। रेडियो से इश्तिहार देकर बढ़ाएं अपने बिजनेस की शान। रेडियो तशहीर का सबसे आसान और सस्ता जरिया। राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर।
1: सभी तो ऐसे प्रोग्राम बोजान सूफी सदा। ये प्रोग्राम छु प्रत दो आकाशवाणी श्रीनगर पेठ सुबह 10 बजे पेठ 10:30 बजे ताम नशर सब्दान।
2: समय मुहतरम तो इस सूफी तो ऋषि वचारण पेठ मबनी प्रोग्राम बोजान सूफी सदा। तारे रो पेशकश गुलाम रसूल आखून। तो इसके प्रोग्राम को मौजू उस नामवर सूफी शेर अब्दुल करीम सबस मुतालिक। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। मीडियम भी 268.6 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। पयाम सुब प्रोग्राम जारी है। अगली सेगमेंट की ओर बढ़ते हैं रशीद निजामी साहब के साथ।
3: शुक्रिया सुहेला तुहन सरस्ट। पयाम सुब प्रोग्राम छू जारी। तो पन्न बोजन वाले वन सेगमेंटस मज यानी 10:30 बजे पे 10:30 बजे तमाम सैन मेहमान आसान सत्य मुख्तलिफ मौजूद पे प्रे कहान तो सुहेला चूंकि आज इस बटवार बटवार दोह कहान पब्लिक इशूजन मुतलिक अवमी मसाइल आसान तथ मुतलिक तो अवन आज मौका गनीमत अन दावत दिथ ना दिथ साल अन मरूफ समाजी रूहानी तो मजहबी रहनुमा मौलाना खुर्शीद अहमद कानूनगा सब مولانا خورشید احمد قانونگو صاحب ونکس میں برہ کن خیر مقدم تہد
4: علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: قانونگو صاحب تھی ٹھیک پہ
4: الحمد للہ رب العالمین
3: چونکہ مختلف موضوعات پہ کت کر تو اس بٹوار آسان حضرت پریت دہ الگ الگ تھیم آسان اس مختلف پہ اس نو سٹائل کور اخ پروگرام مز انٹروڈیوس پائم صوب یہ لائیو نشریات آسان صبح 10 منٹ پہ ستہ پہ 10:30 بجے تین 10:30 بجے آسان گیسٹ تو اس زن آج تھیم آسان یہ آسان عوامی مسلن ہز آج اس موضوع چورمت سہ سماجس من

0: अब तक दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक, खुदीराम टूडू सहित कई मंत्रियों ने शपथ ले ली है। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज पोचिशे वैशाख गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। भाजपा ने शपथ ग्रहण समारोह के लिए ये शुभ दिन चुना है। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि गुरुदेव ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को मजबूत किया और भारत की सांस्कृतिक विरासत को दुनिया के सामने प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि गुरुदेव टैगोर ने साहित्य, संगीत और दर्शन के माध्यम से स्वतंत्रता की भावना को नई दिशा दी। लेफ्टिनेंट जनरल एसएन राजा सुब्रमणी को अगला प्रमुख रक्षा अध्यक्ष सीडीएस नियुक्त किया गया है। वे जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे। उनका कार्यकाल 30 मई को समाप्त हो रहा है। इस बीच वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के पद पर कार्यरत हैं। उन्हें 4 दशक के लिए विशिष्ट सेवा का अनुभव है। वे 31 मई को सेवानिवृत्त हो रहे एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को, किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। हिंद महासागर संवाद 10 कल नई दिल्ली में संपन्न हो गया। 2 दिन के इस आयोजन का विषय था परिवर्तनशील विश्व में हिंद महासागर क्षेत्र। विदेश मंत्रालय ने कहा कि संवाद में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारियों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और विशेषज्ञों ने हिंद महासागर क्षेत्र में महत्वपूर्ण क्षेत्रीय घटनाक्रमों और उभरती चुनौतियों पर विचार विमर्श किया। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्राधिकरण के सदस्य सचिव संजीव पांडे ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। सोमनाथ अमृत पर्व का आधिकारिक रूप से कल से शुभारंभ हो गया है। ये मंदिर के पुनर्निर्माण की 75वीं वर्षगांठ का प्रतीक है। 5 दिन के इस उत्सव ने मंदिर परिसर को वैदिक मंत्रों और दिव्य ऊर्जा के केंद्र में बदल दिया है, जो देश भर से श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रहा है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अंक तालिका में राजस्थान 4थे और गुजरात 5वें नंबर पर है। कल कोलकाता नाइट राइडर्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हराया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरला, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तटीय आंध्र प्रदेश और कुछ स्थानों पर बिजली गिर सकती है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Mr. Suvendu Adhikari was sworn in as the first BJP Chief Minister of West Bengal today at a ceremony at Brigade Parade Ground in Kolkata. 5 cabinet ministers also took oath along with the Chief Minister. The Governor, R. N. Ravi, administered the oath of office and secrecy to the ministers. The cabinet ministers are Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nishit Pramanik and Kshudiram Tudu.
2: Ami Shubhendu Adhikari, Ishwarer name shapath korite chhi je, bidhi dara sthapito,

अपनी सुनने वालों को बताते चले, फिल्मी नगमे आप इस वक्त आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। अब आइए आखिर पे विनोद राठौड़ और अलका याग्निक को सुनते हैं, यह फिल्म दीवाना।

आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमई आकाशवाणी श्रीनगर की आवाज मीडियम वे 268.8 मीटर और FM 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। 12:30 हो रहे हैं। समाप्त कीजिए खबरें पहले और दौर के फौरन बाद कश्मीरी में।

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 12:30 हुए हैं। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तारिक अहमद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग जिले को मुनशियात से पाक करने के लिए समाज के सभी तबकों का ताउन तलब किया है। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसदुक रशीद ने खबर दी है कि एलजी ने आज अनंतनाग में बॉयज डिग्री कॉलेज से मुनशियात मुखालिफ पद यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें काफी तादाद में तलबा, ताजरों और समाज के मुख्तलिफ तबके हाई फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। मनोज सिन्हा ने खिताब करते हुए कहा कि मुनशियात का नासूर समाज को दीमक की तरह चाट रहा है और इसका कलाकामा करना वक्त की अहम जरूरत है। वाजिया रहे कि उन्होंने 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान की 11 अप्रैल को जम्मू से शुरुआत की, जब से लेकर आज तक अभियान के तहत मुनशियात मुखालिफ कार्य

0: वाया शदोमत से जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने जम्मू कश्मीर में मुनशियात से मुतासरीन की बाजाबादकारी के लिए एक तवील मुदती मनसूबा मुरतब करने की जरूरत पर जोर दिया है। श्रीनगर में कल मुतलिका इंतजामी सेक्रेटरीज के साथ एक मीटिंग के दौरान मुनशियात में मुलवस अफराद के लिए बाजाबादकारी इकदाम का जायजा लेते हुए उन्होंने कहा कि मौसर बाजाबादकारी मनसूबा तैयार करने के वक्त तमाम मुतलिका महकमों को एतमाद में लिया जाना चाहिए। नशा मुक्त अभियान के तहत जम्मू कश्मीर के सभी अजला में बेदारी प्रोग्रामों का इनेकाद जारी है और लोगों को मुनशियात के मुजिर असरात से रोशनास कराया जा रहा है। पुलिस, इंतजामिया और दीगर महकमे इस्लानत में मुलवस लोगों के खिलाफ कार्रवाइयां करने में कोई भी दकीका फरोगजाश्त नहीं कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जन्म जयंती पर खराज अकीदत अदा किया है। एक पैगाम में एलजी ने उन्हें एक अजीम दानिश्वर, शायर और मुफक्किर करार दिया। एलजी ने कहा कि गुरुदेव की आफाकी तालीमात एक लंबे अरसे तक हमें तरगीब देती रहेंगी। वजीर आला उमर अब्दुल्ला की सदारत में कल श्रीनगर में काबीना की एक मीटिंग मुनक्कद हुई जिसमें कई अहम इंतजामी मंसूबों के साथ साथ जम्मू कश्मीर में हुक्मरानी के अमल को मुस्तकम करने, नीज शमूलियाती और देरपा तरक्की को दवाम बख्शने से मुतलिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ट्रांसपोर्ट के वजीर सतीश शर्मा ने कल श्रीनगर में कश्मीर सूबे की ट्रांसपोर्ट अंजुमनों और यूनियंस के नुमाइंदों के साथ एक मीटिंग के दौरान ट्रांसपोर्ट सेक्टर को दरपेश मसाइल पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर ट्रांसपोर्ट से जुड़े नुमाइंदों ने अपने अपने मसाइल को उजागर किया। वजीर मौसूब ने सीओ श्रीनगर स्मार्ट सिटी कारपोरेशन लिमिटेड के सरबराही में एक कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी ताकि ट्रांसपोर्टरों के मसाइल का हल निकाला जा सके। श्रीनगर पार्लिमानी हलके के मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्ला महदी ने कल बड़गाम के समरबुग और शालीना इलाकों का तफसीली दौरा करके वहां हाल ही में सैलाब की वजह से दरियाई जहलम के बांधों को पहुंचे नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने लोगों को यकीन दिलाया कि सैलाब से बचाव के तमाम इकदाम उठाए जाएंगे। गांधरबल के जिला तरक्याती कमिश्नर जतिन किशोर ने एक मीटिंग के दौरान जिले में अमलाई जा रही HADP, JK CIP और दीगर फ्लैगशिप प्रोग्रामों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने मुतलिका अफसरों को हिदायत दी कि वो इन स्कीमों की मौसर अमर आवरी को यकीनी बनाए ताकि जिले के किसान मुस्तफीद होकर फसलों की पैदावार बढ़ाने के साथ साथ अपनी आमदन में इजाफा कर सकें। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की तरफ से आज मुल्क भर में 2026 की दूसरी कौमी लोक अदालत का इनेकाद किया जा रहा है। नलसा के मेंबर सेक्रेटरी संजीव पांडे ने आकाशवाणी न्यूज के साथ बात करते हुए कहा कि इस पहल का मकसद मामलात को इफाम व तफहीम के साथ हल करना है ताकि अदालतों पर बोझ को कम किया जा सके। उन्होंने मजीद कहा कि साल 2023 से 2025 तक 12 लोक अदालतें मुनक्कद हुई जिनमें 26 करोड़ मामलात को निपटाया गया। सुविंदु अधिकारी मगरबी बंगाल के पहले BJP वजीर आला की हैसियत से आज हलफ ले रहे हैं। हलफबरदारी की तकरीब कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में मुनक्कद होगी। वजीर अजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, BJP सदर नितिन नाबीन, मरकजी वजरा और NDA हुकूमत वाली तमाम रियासतों के वजराए आला हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत कर रहे हैं। हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमणी को नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ मुकरर किया। वो ये ओहदा जनरल अनिल चौहान की इस ओहदे की मुदत पूरी होने के बाद 30 मई को संभालेंगे। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
2: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर खबरन हूं बुलेटिन हूँ बो मंजूर अहमद। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अनंत नाग जिले नश नश पाक कर बापत समाज के प्रथ वर्ग अथवास तलब कर्मुत सन अनंत नाग नुमाइंद तसदुक रशीदन खबर दिसमें जे LGN कर अनंत नाग बॉयज हायर सेकेंडरी कॉलेज पे नशस मुखलिफ पदयात्रा झंड हवित रवाना यथ मार तदाद मलब इलमो तजरो तो समाज कन मुख्तलिफ तबकन सलुक थवन वालों लोगों शिरकत कर LGN वन खताब करान जे नशुक नौसूर समाजस सोत सोत जजुर जानान तो यह कापि रटन वक्त अहम जरूरत तुह पवो سطحس ہتن دہن پہ مشتمل نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان سپد کہم اپریل جم پہ شروع تت پہ ونیک تام ابھیانس تحت نشس خلاف کاروائی وچھ سان جاری

0: एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो। यहाँ सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
1: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इश्यूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस, गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
2: प्रोग्राम बज़्म निस्वा का ताज़ा शुमारा लेकर हम आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। हमारी तरफ से प्यार भरा सलाम कबूल फरमाइए। उम्मीद है समी किराम आप सब खैर आफियत से होंगे। समी किराम, आज के दौर में हमारे बच्चे खेल कूद में बहुत कम हिस्सा लेते हैं, बहुत कम दिलचस्पी दिखाते हैं। वो ज़्यादातर गेम्स खेलते हैं लेकिन मोबाइल पे, जिससे काफ़ी सारे हेल्थ इश्यूज़ हम आए दिन अपने घरों में देखते हैं। जैसे अब तो काफ़ी आम हो गया है कि हर एक इंसान के चेहरे पर ऐनक लगी होती है। पहले पहले क्या होता था कि जब हम क्लास में किसी बच्चे को देखते थे ऐनक पहनते हुए तो कहते थे ये बड़ा ही ज़हीन बच्चा होगा, क्योंकि बहुत पढ़ाकू होगा, बुकवर्म उसको कहते थे। लेकिन आज के दौर में ऐसा नहीं है। हालांकि घर में अगर 5 अफराद है, 4 अफराद खाना को तो ऐनक लगी हुई है, लेकिन नॉट बिकॉज ऑफ बुक्स, इट्स बिकॉज ऑफ फ़ोन। इतना ही नहीं, बाकी भी जिस्मानी बहुत से ऐसे अमराज हैं जिसके हम शिकार हो रहे हैं। आज हम बात करेंगे इस प्रोग्राम में कि हम अपने बच्चों को खेल कूद की तरफ कैसे रागिब करें, और इसके लिए हमने अपने स्टूडियो में मदद किया है हमारी प्यारी सी कोईमा असलम को। कोईमा, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: कैसी हैं आप?
3: अल्हम्दुलिल्लाह,
2: खैर मकदम है प्रोग्राम में आपका।
3: शुक्रिया।
2: तो बताएं कोईमा, जैसे कि आप खुद भी एक स्टूडेंट हैं
3: जी,
2: आप स्टूडेंट लाइफ तो देख ही रही हैं
3: जी।
2: जैसे कोविड से ये ज़्यादा ही शुरू हो गया, कोविड में मतलब ऑनलाइन क्लासेस आती थी वगैरह वगैरह, जिससे हम अपने बच्चों को, पहले तो हमारे पास ये एक अच्छा खासा एक ये रहता था कि स्क्रीन टाइम हम ज़्यादा नहीं देंगे बच्चों को, लेकिन फिर हम मजबूर हो गए उस वक्त स्मार्टफोन्स लाने के लिए बच्चों के लिए, ताकि वो अपनी क्लासेस ले सके। लेकिन उसके बाद वर्चुअल से तो हम फिजिकल मोड पे आ गए, लेकिन बच्चे उस मोड से बाहर नहीं निकल रहे हैं। क्लासेस तो नहीं ले रहे लेकिन हाँ गेम्स वगैरह बहुत खेल रहे हैं।
3: जी बिल्कुल जी, मैं तो आपकी इस बात से बहुत एग्री करती हूँ कि आजकल हम अपनी वर्चुअल दुनिया में ही रह रहे हैं, स्पेशली जो हम यंगस्टर्स हैं। अगर मैं हमारी बात करूँ तो हमें ये पता नहीं रहता कि हमारी फैमिली में कोई मतलब क्या चल रहा है हमारी फैमिली में, मगर हमें कोई हमारा दोस्त जो दूसरी कंट्री में है वो क्या पहन रहा है, वो क्या खा रहा है, इसमें हमें ज़्यादा इंटरेस्ट लगता है। तो आपकी बात से मैं एग्री करती हूँ कि हम वर्चुअलिटी में ज़्यादा, एज कम्पेयर टू रियलिटी, हम वर्चुअलिटी में ज़्यादा
2: कर रहे हैं।
3: तो यहाँ बात आपने स्पोर्ट्स की एथलेटिक्स की, तो मैं आपको कहूँगी कि वो जो हम बुक्स में कभी पढ़ते थे कि ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक्स जैक ए डल बॉय, हम वही बन गए हैं। लेकिन आजकल हम वर्क भी नहीं कर रहे हैं, जो मतलब आपने ऑनलाइन गेमिंग का कहा, अगर हम उसी की बात लें, पहले इसमें कितने ही बुरे असरात हैं उस गेमिंग के, जैसे कि आपने कहा कि एडिक्शन, फ़ोन एडिक्शन हो जाती है बच्चों को, उसके बाद इलीगल गैम्बलिंग की जाती है आजकल, कितने ही स्कैम्स पकड़े गए, कितने ही ऑनलाइन ऐसे गेमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे लोगों को स्कैम किया गया। तो हाँ, मैं ये कहूँगी कि किसी हद तक सही है अपने मोबाइल का इस्तेमाल करना या जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनका इस्तेमाल करना, लेकिन मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि जो भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हमें लाइक है उनके साथ इन टच रहना है, बिकॉज डिजिटाइजेशन की तरफ हम चल रहे हैं, लेकिन जो हमारे पास एक फिजिकल इनएक्टिविटी जो इस वजह से हो रही है हमारी, वो उस पर भी हमें तवज्जा देनी है। जैसे
2: मुझे लगता है खास तौर पे हमें उसी पे तवज्जा देनी है, क्योंकि अगर हमारे पास सेहतमंद जिस्म है
3: जी,
2: सेहतमंद दिमाग है, तभी हम अच्छी कारकर्दगी कर सकते हैं, अपनी लाइफ में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, चाहे वो कोई भी शोभा क्यों ना हो।
3: जी बिल्कुल। और अगर हम जैसे स्पोर्ट्स की बात करेंगे, ये एक वे आउट है हमारी बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स का। जैसे कि मैं आपको कहूँ, इस वक्त हमारी वादी कश्मीर की अगर हम बात करें, यहाँ पर ड्रग एडिक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है
2: जी।
3: तो वहाँ अगर हम देखें कि जो

0: पॉजिटिव एनर्जी की तरफ हमारा जो नौजवान है वो नेगेटिव एनर्जी की तरफ जा रहा है, उससे बेहतर है कि वो फुटबॉल ग्राउंड्स पे, क्रिकेट पिचेस पे अपनी वो जो एनर्जी है उसको
1: सर्व करे,
0: जी यूटिलाइज करे। उससे क्या होगा कि उसकी ज़िंदगी में एक, जब हम आउटडोर गेम्स की बात करते हैं तो वहाँ टीम वर्क, एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है टीम वर्क की, आप में वो कम्युनिकेशन स्किल्स आ जाते हैं, इवन आप में कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स भी आते हैं, आप अंडरस्टैंड करते हैं अपने टीममेट्स को, तो उससे क्या हो जाता है जो आपका जो कंपैशन है वो बढ़ जाता है, और आपकी जो एंजाइटी लेवल है, आप ऐसे भी नॉर्मली देख लीजिए, आप कभी पार्क में एक वॉक ही करें सुबह, तो आप देखिए आपका दिन जो होता है ना बहुत बहुत काम रहता है। इंस्टेड ऑफ हम क्या करते हैं, सुबह जैसे बिस्तर से उठ गए, डेटा ऑन किया, बस देख लिया कि कहाँ क्या न्यूज़ चल रही है। आई एम नॉट सेइंग कि हमें अपडेटेड नहीं रहना है, लेकिन पहले हमें ये देखना है कि व्हाट आर बॉडी नीड्स, व्हाट आर माइंड नीड्स। तो वहाँ पे मैं ये चीज़ कहूँगी कि स्पोर्ट्स इज़ अ मस्ट। जैसे मैंने आपसे अभी ड्रग एडिक्शन की बात की, बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स भी है, जैसे हम स्पोर्ट्स की तरफ देखते हैं तो हम सिर्फ, हमें खुद में वो एक कम्पिटेटिवनेस लानी है, हम ये कहेंगे कि हर कोई इंसान जो है उसको सचिन तेंदुलकर ही बनना है या मेसी ही बनना है। मैं ऐसा नहीं कह रही, स्पोर्ट्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है आप किसी प्लेटफॉर्म पर जाके जो है परफॉर्म करें या मेडल ले आए अपनी स्टेट के लिए या अपनी कंट्री के लिए। स्पोर्ट्स का मतलब है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में जो है कुछ ऐसी फिजिकल एक्टिविटीज रखें जिससे आपका जो है वो एक माइंडसेट जो है एक काम माइंडसेट बन जाए, आपका जो है आप जो भी हेल्थ इश्यूज है उनको टेकल कर पाए, और साथ ही साथ जो भी, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि जो भी सोशल डिसऑर्डर्स है, जिसमें ओबिसिटी एक डिसऑर्डर है, ईटिंग डिसऑर्डर्स जैसे कि हम आजकल अपने बच्चों में देख रहे हैं, तो उन चीज़ों को टेकल करने के लिए एक थोड़ा बहुत जो है हमें खेलकूद की तरफ जो है रागिब करना चाहिए अपने बच्चों को।
1: आपने सही बात कही कि हमने अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ रागिब तो करना ज़रूर है, लेकिन कैसे कैसे इकदाम हम उठाएँ, कौन कौन से तरीके हम अपनाएं ताकि वो जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारी जवान नस्ल है, स्पोर्ट्स की तरफ रागिब हो जाए। इसके साथ साथ ये भी हमें बताइए कि जो हमारी ख्वातीन है खसूसन, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ हमारे बच्चे एडिक्ट हो रहे हैं या हमारे मर्द हजरात एडिक्ट हो गए फ़ोन की तरफ, हमारी ख्वातीन भी काफ़ी एडिक्ट हो गई है, वो कसरत नहीं करती हैं, ज़्यादातर वक्त फ़ोन पे ही गुजारती, तो ऐसे ऐसे हमें बताइए कौन से तरीके हम अपनाएं ताकि हम अच्छा लाइफस्टाइल अपने लिए अपना सके जिसमें स्पोर्ट्स का ज़्यादा पोर्शन हो।
0: जी, जैसे कि अगर मैं पहले गवर्नमेंट इनिशिएटिव से स्टार्ट करूं तो हमारी कंट्री में ऐसे इनिशिएटिव्स है जैसे कि खेलो इंडिया या फिट इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स है, जिन्होंने एक ऐसा नेशनल फ्रेमवर्क हमें दिया है जहाँ पे स्पोर्ट्स जो है उनको ग्रास रूट लेवल जो है वहाँ पर एज एन एम्पावरमेंट टूल की तरह ट्रीट किया जा रहा है। अगर मैं अपनी जम्मू कश्मीर की बात करूं तो जो ये खेलो इंडिया का जो विजन है इसका असर जो है वो वाजे तौर पर नज़र आ रहा है। अगर इस साल की बात हम करें तो अराउंड 5,000 ऐसे बच्चे हैं जो रोज़ाना ट्रेनिंग लेते हैं अंडर दिस इनिशिएटिव।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात।
0: जी, अगर मैं बात करूँ 2021-22 की तो अराउंड 3,000 ऐसे एथलीट्स हैं जिन्होंने नेशनल मेडल्स एक्वायर किए और अराउंड 84 इंटरनेशनल मेडल्स हासिल किए। ये सिर्फ एक, जब हम ऐसे स्टैटिक्स डिफाइन करते तो ये सिर्फ स्टैटिक्स नहीं रहते, ये एक नैरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन का आइडिया हमें देते हैं। ये बताते हैं कि जो हमारा यूथ है ये सिर्फ एक वो कॉन्फ्लिक्ट जोन का एक सब्जेक्ट नहीं है, चैम्पियन है, एक कंटेंडर भी है। हम अगर बात करें, मैं आपको यहाँ बताऊं, अगर आपने रिसेंटली देखा होगा हमारे जो ऑनरेबल एलजी है उन्होंने रिसेंटली केयू में एक ऐसा इनिशिएटिव, एक ऐसी फ्लैगशिप स्टार्ट की हुई है जहाँ पर अराउंड द कंट्री जो एथलीट्स है, स्पेशली वुशो के जो एथलीट्स है वो आ रहे हैं, और उससे क्या होता है कि उससे जो यहाँ की स्पेशली फीमेल्स, उसमें आई एम वेरी प्राउड टू से दैट कि वहाँ पर ज़्यादातर लड़कियों का जो है पार्टिसिपेशन हो रहा है।
1: ये तो बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशाइंद बात है।
0: जी, और जैसा कि आपने कहा कि लड़कियां भी एडिक्ट हो रही है, जी बिल्कुल मैं ये समझती हूँ, लेकिन जहाँ तक पर्सनली मैं अभी देख रही हूँ कि लड़कियों का ज़्यादा इंक्लिनेशन हो रहा है स्पोर्ट्स की।

0: तरफ एज कम्पेयर टू बॉयज, लड़कियां ज्यादा जा रही हैं इसकी तरफ, एंड दैट्स अ गुड थिंग। ये तो बात हो गई गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की। अब अगर हम अपनी फैमिली लेवल पे बात करें तो वहाँ पे हम कैसे चेंज ला सकते हैं? सबसे पहले हम कहेंगे कि जो भी हमारे घर में ख्वातीन हैं उनको अपना माइंडसेट जो है वो थोड़ा चेंज करना है कि लाइक हम क्या करते हैं। इवन आजकल हमारी मदर्स भी जो होती हैं, जैसे ही वो अपना जो भी उनका हाउस होल्ड जो भी काम होता है वो ख़त्म करके लाइक वो आ जाती हैं एंड दे जस्ट टेक देयर फोन एंड जस्ट स्टार्ट स्क्रोलिंग। अगर वो ऐसा करेंगी कि वो अपना फ़ोन साइड में रख के जो भी उनका सामने पार्क हो, किचन गार्डन हो, उसमें जाके, क्योंकि एक बच्चा होता है वो आपके ही एक्शंस को मिरर करता है, जो आप करेंगे वो वही सीखेगा।
1: जाहिर सी बात है, माँ बाप रोल मॉडल्स होते हैं।
0: रोल मॉडल्स होते हैं जी, बिल्कुल। तो आप क्या कर सकते हैं, आप वहाँ अपने बच्चों के साथ इवनिंग वॉक या मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं। इससे आपको एक कनेक्शन भी मिल जाएगा, आप
1: रन कर सकते हैं।
0: जी, रन कर सकते हैं, बैडमिंटन उनके साथ खेल सकते हैं, आप क्रिकेट खेल सकते हैं उनके साथ। ऐसा तो जरूरी नहीं आपको एक स्टेडियम चाहिए क्रिकेट खेलने के लिए, आप अपने छोटे से आंगन में भी क्रिकेट खेल सकते हैं।
1: बहुत सारे गेम्स खेल सकते हैं, इंडोर गेम्स खेल सकते हैं,
0: इंडोर गेम्स खेल सकते हैं,
1: आउटडोर गेम्स हैं
0: जी, बिल्कुल।
1: अगर मौसम अच्छा है तो आउटडोर में जाना अच्छा लगता है
0: जी, बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देखेंगे कि हमारी वादी कश्मीर का मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, हर जगह बर्डिंग्स है, फ्लावर्स है,
1: बहुत ही खूबसूरती है, लेकिन साथ में लेकिन गर्मी भी
0: जी,
1: तपिश काफी है
0: जी, बिल्कुल। तो हाँ, एक अच्छा मौका मिलता है इससे कि एक तो अपनी भी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है और वो एक अपना फैमिली के साथ कनेक्शन भी बन जाता है
1: एक अच्छा, ना मेरे ख्याल से वो बॉन्ड बड़ा स्ट्रांग बनता है।
0: जी, बिल्कुल।
1: कई माँ जैसे जिस्म के लिए वर्जिश, इसी तरह रूह के लिए मौसिकी। तो जिस तरह हमने अपने जिस्म को स्ट्रांग बनाना है, अपने मेंटल हेल्थ हमने कायम रखनी, इसी तरह हमने अपने रूह को भी तरोताज़ा रखना है। तो हम इस प्रोग्राम में अपने समीन कराम को जानकारी के साथ साथ एंटरटेन भी करते हैं। तो आइए आज हम इस प्रोग्राम में एक अच्छी सी गज़ल सुनते हैं, ताकि हमारी जो माएँ बहनें हैं, हमारे जो सामिन किराम हैं, वर्जिश के साथ साथ, स्पोर्ट्स के साथ साथ मौसिकी भी सुन लें।

0: कईमा गजल सुनी आपने
1: जी बिल्कुल
0: पसंद आई आपको
1: जी बहुत
0: उम्मीद है हमारे सामिन को भी पसंद आई होगी। कईमा आप स्टूडियो में आई स्पोर्ट्स के हवाले से आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि हमारे लिए स्पोर्ट्स कितना मुफीद है
1: जी।
0: और आपने ऐसे कुछ तरीक़ाकार भी बोले जो हम अपना सकते हैं ताकि हम जो हमारी अपनी जवान नस्ल है हमारे जो बच्चे हैं उनको एथलेटिक्स की तरफ रागिब करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आने के लिए
1: जी शुक्रिया।
0: सबन के नाम इसके साथ ही आज के इस प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर होता है। इंशाल्लाह रहमान अगले प्रोग्राम में आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे एक नया मौजू लेके एक नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान एक नई पहचान।
3: बस एक बार, सिर्फ एक बार, और हर बार लगता है क्या ही तो हो जाएगा, सेफ है यार। लेकिन ड्रग सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता, धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
4: पर क्या कर सकते हैं?
3: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 1441 पर कॉल करो, यहां सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
5: आओ चलें और एक नया रास्ता चुनें, जिंदगी की असली पहचान बचाएं और बनाएं नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भाजपा की सरकार बनी है। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल एनएन रवि ने श्री शुभेंदु को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
7: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे विधि द्वारा स्थापित भारत संविधान प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा और अनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व ओ अखंडता रक्षा करिब।
6: मुख्यमंत्री के साथ पांच कैबिनेट मंत्रियों ने भी शपथ ली। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशित प्रमाणिक और खुदीराम टूडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय मंत्री और एनडीए शासित सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल रहे। इससे पहले

प्रधानमंत्री ने ब्रिगेड परेड ग्राउंड पहुंचने से पहले एक रोड शो भी किया। भाजपा ने विधानसभा चुनावों में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत किया है। आज 25 बैशाख के अवसर पर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है, इसलिए शपथ ग्रहण समारोह के लिए यह शुभ दिन चुना गया। कार्यक्रम की शुरुआत गुरुदेव को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ हुई। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुदेव की 165वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि गुरुदेव टैगोर का योगदान साहित्य के क्षेत्र से कहीं अधिक व्यापक था और आने वाली पीढ़ियों पर उनका अमिट प्रभाव रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि गुरुदेव असाधारण प्रतिभा के धनी लेखक, विचारक और कवि थे। उधर तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय के नेतृत्व में सरकार गठन को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। आईयूएमएल ने टीवीके को सरकार बनाने में समर्थन देने वाली खबरों को खारिज कर दिया है। खबरों के अनुसार आज शपथ ग्रहण समारोह नहीं होगा। इससे पहले टीवीके ने दावा किया था कि विजय सरकार बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना ने 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं का उद्देश्य सभी को, विशेष रूप से समाज के वंचित और कमजोर वर्गों को किफायती वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत 27 करोड़ से अधिक नामांकन, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में 58 करोड़ और अटल पेंशन योजना में 9 करोड़ नामांकन हो चुके हैं। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन से जुड़े मामले में हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड और उसके प्रमोटर संजीव अरोड़ा के दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की। ये कार्यवाही धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई। ये मामला 100 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद और उसके बाद दुबई से भारत में अवैध रूप से धन के आदान प्रदान से संबंधित है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने भारत तथा ट्रिनिडाड और टोबैगो के बीच पारंपरिक संबंधों की सराहना की है। ट्रिनिडाड और टोबैगो के विदेश मंत्री कैरिकॉम मामलों के मंत्रालय के समारोह में डॉ जयशंकर ने दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों और ऐतिहासिक जुड़ाव का उल्लेख किया। डॉ जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर से मुलाकात में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के बारे में चर्चा की। होर्मुज जलडमरू मध्य के पास कल एक नौका में आग लगने से एक भारतीय नागरिक की मौत हो गई और 4 अन्य झुलस गए। सरकारी सूत्रों ने बताया कि एक जहाज के चालक दल ने नौका में सवार लोगों को बचा लिया। घायलों का दुबई में इलाज चल रहा है और वे सुरक्षित हैं। आग लगने के कारण का पता लगाया जा रहा है। भारतीय वाणिज्य दूतावास के अधिकारियों ने बचाए गए भारतीय नागरिकों से मुलाकात की। वाणिज्य दूतावास नौका के मालिक के संपर्क में है और हर संभव सहायता प्रदान कर रहा है। राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण आज देश भर में इस वर्ष की दूसरी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य सहभागी और जन केंद्रित तंत्रों के माध्यम से विवादों का सौहार्दपूर्ण निपटारा करना और अदालतों पर बोझ कम करना है। आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। अंक तालिका में राजस्थान चौथे और गुजरात 5वें नंबर पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

जय हिंद फौजी भाइयों। फौजी भाइयों फिल्मी नगमों का प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर है। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के गाए इस नगमे से, जिसे हमने लिया है फिल्म राजा से।

आपको बताते चले, फिल्मी नगमे आप इस वक्त आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं आपके अपने प्रोग्राम में, यानी फौजी भाइयों के प्रोग्राम में। अब आइए अभिजीत और कविता कृष्णमूर्ति को सुनते हैं, यह फिल्म माशूक।

0: जी दोस्तों, फिल्मी नगमे जारी हैं। पहले ये वक्फा।
1: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
0: जी दोस्तों, प्रोग्राम में आपका फिर से खैर मकदम है।

0: जी दोस्तों, अनुराधा पौडवाल और विपिन सचदेव के गाय इस नगमे के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी मुकम्मल हुआ जाता है। इजाजत दीजिए, जय हिंद। ये आकाशवाणी श्रीनगर है। 1:50 हो रहे हैं। अब से थोड़ी देर बाद आकाशवाणी दिल्ली से उर्दू और अंग्रेजी खबरों का बुलेटिन नष्ट होगा। खबरों का जरा सा इंतजार।
1: आदाब, ये आकाशवाणी है खबरों के साथ, मैं मोहम्मद अम्मार। सुविंदु अधिकारी मगरी बंगाल के बीजेपी के पहले वजीर आला बन गए हैं। उन्होंने 5 काबिनी वज़रा के साथ हलफ लिया। तमिलनाडु में सरकार बनाने पर सियासी तातुल बरकरार है। टीवी के पार्टी को अक्सरियत मिलना बाकी है। कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटी तनाजात के बासानी हल के लिए पूरे मुल्क में लोक अदालत का इनेकाद कर रही है। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने बाहमी तआवुन को मजबूत करने की गरज से त्रिनिदाद और टोबैगो की वजीर आजम से मुलाकात की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम जयपुर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। अब खबरें तफसील से। कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में सुविंदु अधिकारी को मगरबी बंगाल के बीजेपी के पहले वजीर आला के तौर पर हलफ दिलाया गया। उनके साथ 5 दूसरे काबीना वजीरों ने भी हलफ लिया। इन वजीरों के नाम है दिलीप

0: घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तानिया, निशित प्रमाणिक और सुधीराम टूडू।
1: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वरेर नामे शपथ करितेछि जे विधि द्वारा स्थापित भारतेर संविधानेर प्रति आमी अकृत्रिम निष्ठा ओ आनुगत्य पोषण करिब। आमी भारतेर सार्वभौमत्व ओ अखंडता रक्षा करिब।
0: वजीर आजम ने मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, वजीर दिफा राजनाथ सिंह, कई मरकजी वजीरों और बीजेपी की सरकार वाली रियासतों के वज़राए आला ने हलफबरदारी की तकरीब में शिरकत की। ब्रिगेड ग्राउंड पहुंचने से पहले वजीर आजम ने एक रोड शो भी किया। तमिलनाडु में सरकार की तश्कील के लिए दरकार अक्सरियत की हिमायत में कमी की वजह से नई सरकार बनाने में ताखिर हो रही है। सीपीआईएम के कौमी जनरल सेक्रेटरी बेबी ने कहा है कि ये गवर्नर का फर्ज है कि वाहिद सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए मदऊ करे। चेन्नई में नामनिगारों से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने गवर्नर पर इल्ज़ाम लगाया कि वो दिल्ली के इशारों पर ताखीर के हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जमहूरी अमल में ताखीर करके बीजेपी रियासत में एआईएडीएमके सरकार बनाने की कोशिश कर रही है। इसी दौरान एएमएमके सरबराह टीटीवी दीनाकरन ने मांग की है कि उनकी पार्टी के एमएलए की तरफ से हिमायत का फर्जी खत टीवीके को दिए जाने के मामले पर गवर्नर को कार्रवाई करनी चाहिए। दूसरी तरफ एआईएडीएमके के अरकान असेंबली पुदुचेरी से चेन्नई पहुंच गए हैं, जो पार्टी जनरल सेक्रेटरी ई पलानीसामी से गुफ्तगू करेंगे। वजीर आजम ने मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। दिन में लगभग 11 बजे वजीर आजम बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग के 45 साल पूरे होने की तकरीब में शामिल होंगे और आर्ट ऑफ लिविंग बैन अक्वामी मरकज में नए तामीर किए गए ध्यान मंदिर का इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम प्रोग्राम के दौरान वहां मौजूद लोगों से खिताब भी करेंगे। इसके बाद वजीर आजम ने मोदी हैदराबाद रवाना हो जाएंगे और तकरीबन 3 बजे हैदराबाद में कई तरक्याती प्रोजेक्टों की बुनियाद रखेंगे और उनका इफ्तिताह करेंगे, जिनकी मालियत 9,400 करोड़ रुपये बताई जाती है। सोमनाथ मंदिर की असर नौ तामीर के 75 साल पूरे होने के मौके पर सोमनाथ अमृत पर्व 2026 मनाया जा रहा है। इस 5 रोज़ा तकरीब के दौरान मंदिर की तारीखी अहमियत को उजागर किया जाएगा। इस तकरीब को यादगार बनाने के लिए वजीर आजम नरेंद्र मोदी पीर को सोमनाथ मंदिर के दर्शन करने जाएंगे। कानूनी खिदमात की कौमी अथॉरिटी NLSA आज पूरे मुल्क में दूसरी कौमी लोक अदालत 2026 का इनेकाद कर रही है। आकाशवाणी न्यूज़ से बात करते हुए NLSA के मेंबर सेक्रेटरी संजीव पांडे ने बताया कि शमूलियत और आवाम पर मरकूज तरीकों के जरिए तनाजात के बआसानी निपटारे और अदालतों पर बोझ को कम करना इस इकदाम का मकसद है। उन्होंने बताया कि मुसालहत के काबिल फौजदारी मामलात, बैंकों के चेक वापस होने के मामलात और बैंक की रकम वसूल करने के तनाजात समेत इस लोक अदालत में बड़े पैमाने पर तनाजात निपटाए जा रहे हैं। उन्होंने मजीद बताया कि 2023 और 2025 के दरमियान 12 कौमी लोक अदालतों का इनेकाद किया गया, जिसमें 26 करोड़ मामलात का निपटारा किया गया।
2: आज राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन पूरे देश में एक ही समय पे किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि न्यायालय में लंबित मामलों का बोझ कम किया जाए तथा जो मामले, जो विवाद न्यायालय में और प्री लिटिगेशन स्टेज पे लंबित हैं, उनको समझौते के आधार पर निस्तारित किया जाए।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। वजीर खारजा डॉक्टर जयशंकर ने आज भारत और त्रिनिदाद टोबैगो के दरमियान रिवायती रिश्तों की तारीफ की। अपने दौरे के दौरान डॉक्टर जयशंकर ने खारजी मामलात और त्रिनिदाद एंड टोबैगो के कैरिकॉम मामलात की वजारत में परचम कुशाई के मौके पर खिताब किया। वजीर मौसूफ ने दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे सकाफती रवाबित और तारीखी रिश्तों का जिक्र किया। डॉक्टर जयशंकर ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों मुल्कों के दरमियान कपड़ों, खेलों और रिवायतों में यकसानियत पाई जाती है। डॉक्टर जयशंकर ने त्रिनिदाद और टोबैगो की वजीर आजम कमला प्रसाद बिसेसा से मुलाकात की और बाहमी ताउन को मजीद मजबूत करने के इकदाम के बारे में तबादले ख्याल किया। हुकूमत ने लेफ्टिनेंट जनरल NS राजा सुब्रमानी को अगला चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS मुकर्र किया है। वजारत दिफा का कहना है कि लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमानी ओहदा संभालने की तारीख से अगले अहकाम तक फौजी उमूर के महकमे के सिक्रेटरी के तौर पर भी खिदमत अंजाम देंगे। हुकूमत ने वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को

ध्वनि नगमे आप आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं। अब आइए आखिर पे रोजा फिल्म से नगमा सुनते हैं, एसपी बालासुब्रमण्यम और चित्रक की आवाजों में।

आप समाप्त कर रहे थे फिल्मी नगमे। यह आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। हमारा अगला ऐलान सुनिए।

ईशा आकाशवाणी श्रीनगर जबरजत त्रमणर शब्द ओल समय छकर्त रोपोजो सदा कर्च अब्दुल रशीद डार तीन सथी ये मनीष बोजो इस कलाम शमस फकीर

Sabahın muhtaramda ise çakırtı ruhbozan, sadakarız, obdurashi darte insati, imanj buzutay kalami şamas fakir. यह आवाज है आकाशवाणी श्रीनगर की मीडियम वेव 268.6 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज़ पर सफर के 3 बज चुके हैं। पेश खिदमत है फौजी भाइयों के लिए फिल्म संगीत का प्रोग्राम।

फौज भाई फिल्म संगीत का प्रोग्राम लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आइए प्रोग्राम का आगाज करते हैं लता मंगेशकर और अनूप जलोटा की आवाजों से। इसे हमने लिया है फिल्म एक दूजे के लिए। गीतकार हैं आनंद बख्शी और मौसीकार रविंद्र जैन।

जी दोस्तों, प्रोग्राम के आगाज में आपने लता मंगेशकर और अनूप जलोटा को सुना। अब आइए अनुराधा पौडवाल और मोहम्मद अजीज को सुनते हैं। यह है फिल्म दूध का कर्ज। अनु मलिक की मौसिकी है और आनंद बख्शी का लिखा नगमा।

जी दोस्तों, आपको बताते चले, फिल्मी नगमे आप इस वक्त आकाशवाणी के श्रीनगर स्टेशन से समाप्त कर रहे हैं आपके अपने प्रोग्राम में, यानी फौजी भाइयों के प्रोग्राम में।

0: चाहते हैं कि आपकी सोच आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए, तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
2: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना, पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
1: नहीं माँ अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आ रहे माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
2: पर बेटा हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे।
1: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
2: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
1: माँ अब 7 रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
2: सच में, फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
1: हाँ माँ आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी है।
2: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
1: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
3: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
4: जी दोस्तों, प्रोग्राम में आपका फिर से खैर मकदम है।

दोस्तों ने अभी अपने रेडियो सेट्स ऑन किए हैं, उनको बताते चलिए आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन। इसके अलावा आप हमें डीटीएच या एआर लाइव मोबाइल ऐप पर भी सुन सकते हैं।

जी दोस्तों, अब आइए रविंद्र जैन की मौसिकी में। रविंद्र जैन का ही लिखा ये नगमा, फिल्म का नाम है फकीरा, आवाज़ लता मंगेशकर की।

0: जी दोस्तों, लता मंगेशकर के गायक नगमे के साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी मुकम्मल हुआ चाहता है। इजाजत दीजिए, जय हिंद। ये आकाशवाणी श्रीनगर है, 3:50 हुए हैं। अब आइए उर्दू खबरों का बुलेटिन समाप्त करते हैं।
1: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। सपहर के 3:50 हुए हैं। खबरनामा लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। अनंतनाग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्यादत में मनुष्यात मुखालिफ पद यात्रा का इनेकाद। जम्मू कश्मीर के सभी अजला में नशा मुक्त अभियान के तहत इंतजामिया और पुलिस की कार्रवाइयां जारी। सुवेंदो अधिकारी ने मगरबी बंगाल में बीजेपी सरकार के पहले वजीर आला की हैसियत से लिया हल्फ। और आईपीएल क्रिकेट में आज होगा गुजरात टाइटंस का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से। अब पेश है खबरों की तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग जिले को मनुष्यात से पाक करने के लिए समाज के सभी तबकों का ताउन तलब किया है। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसदुक रशीद ने खबर दी है कि एलजी ने आज अनंतनाग में बॉयज डिग्री कॉलेज से मनुष्यात मुखालिफ पद यात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें काफी तादाद में तलबा, ताजरों और समाज के मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। मनोज सिन्हा ने खिताब करते हुए कहा कि मनुष्यात का नासूर समाज को खोखला कर रहा है और इसका कला कमा करना वक्त की अहम जरूरत है। जम्मू कश्मीर को मनुष्यात की बिद्दत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदमत से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इकदाम के बारे में एक कलमकार और फिल्म साज अली इमरान ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा।
3: मेरा तो सिंपल सा पैगाम है कि मंशियात हमारी जड़ों को खोखला कर देती है। पूरे जम्मू कश्मीर का यूथ इससे खत्म हो जाएगा, हमारा फ्यूचर बिल्कुल अंधेरे में चला जाएगा। इसलिए मेरी मौतमाना अपील है सारे यूथ से कि वो ड्रग से दूर रहे। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं चाहता हूँ

0: कि वो और इस पर तेजी लाए ताकि ये बिद्दत हमारे जम्मू कश्मीर से पूरी तरह खत्म हो जाए।
1: मनुष्यात के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने जम्मू सूबे के उधमपुर जिला में मजालटा के मकाम पर एक तलाशी कार्रवाई के दौरान बोहरी कदल श्रीनगर के रहने वाले मोहम्मद मोहसिन और राजौरी कदल श्रीनगर के रहने वाले मोहम्मद राकिब को नशीली अशिया समेत गिरफ्तार किया है। रियासी पुलिस ने अजय सिंह और जमात अली नामी दो ड्रग स्मगलरों की गिरफ्तारी अमल में लाई। कठुआ में मस्कीन नामी मनशियात फरोश को हिरासत में लिया गया। इस दौरान डोडा, उधमपुर और दीगर अजला में पुलिस के एहतमाम से मनशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद हुए। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार यूटी के पॉलिटेक्निक कॉलेजों और आईटीआई इदारों में ऐसे कोर्सेज मुतारिफ करने के लिए काम कर रही है जिससे नौजवान रोजगार हासिल कर सकेंगे। मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए उन्होंने इल्जाम आयद किया कि साबिक सरकार ने नौजवानों को मुश्किलात में मुबतला किया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार लोगों खासकर नौजवानों की राहत रसानी के लिए काम कर रही है।
2: 11-12 साल सुनील शर्मा साहब आपकी और पीडीपी की हुकूमत रही और उसमें आपकी जो सरकार भी रही, तो आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को बेरोजगारी उनके हाथ में थमा के दे दी है। उन बेरोजगारों पे आपको बात नहीं करते आप। जम्मू कश्मीर के लोगों के जो बेसिक जरूरतें हैं हॉस्पिटल के अंदर, सिर्फ उनको एक ही मकसद है कि सरकार गिरानी है, सरकार गिरानी है। हमें लोगों ने चुन के भेजा है। कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब की, हमारे जो पॉलिटेक्निक्स और आईटीआईज हैं इनमें अच्छे सब्जेक्ट लाए जाएं, अच्छे कोर्सेज लाए जाएं जिससे बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो और ये बच्चे अपना रोजगार ढूंढ सकें।
1: सुवेंदो अधिकारी ने आज मगरबी बंगाल के वजीराला की हैसियत से हलफ लिया। वो रियासत में बीजेपी की कयादत वाली सरकार के पहले सरबरा होंगे। मगरबी बंगाल के गवर्नर आरएन रवि ने उन्हें ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। उनके साथ 5 काबिनी वुजरा ने भी हलफ लिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी सदर नितिन नबीन, कई मरकजी वुजरा और एनडीए हुकूमत वाली तमाम रियासतों के वुजराए आला हलफ बरदारी की तकरीब में शरीक हुए। जम्मू रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भीम सेन तोती ने पुलिस अफसरों की एक मीटिंग में खित्ते की मजमूई सलामती सूरत हाल का जायजा लिया। आईजीपी ने अमन अमान को बरकरार रखने और सरहदी इलाकों में चौकसी बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों और फोर्सेज के माबैन करीबी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो रियासत में 15 अरब 35 करोड़ रुपए मालियत के कलीदी रेलवे प्रोजेक्टों का इफ्ताह करके उन्हें कौम के नाम वक्फ करेंगे। गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर के एहतमाम से आज बड़गाम जिला के बदरन मागाम में समनबल नामी 3 रोजा अदबी मेले का आगाज हुआ। इस मेले के इनकाद में मरकजी सरकार की कल्चरल की वजारत ने माली तावुन दिया है। इस मेले की इब्तदाई रस्म की सदारत नामवरदी प्रोफेसर गुलशन मजीद ने की, जबकि जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शां आंद्राबी मेहमान खसूसी और जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर रफीक मसूदी मेहमान एजाजी की हैसियत से इस मौके पर मौजूद थे। फोरम से वाबस्ता गुलशन बद्रनी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, जबकि मारूफ कलमकार और ब्रॉडकास्टर डॉक्टर सतीश विमल ने कलीदी खुतबा पेश किया। तकरीब में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के डायरेक्टर और सरबरा तारिक राथिर भी मौजूद थे। डॉक्टर सैयद दरख्शां आंद्राबी ने इस बारे में तारिक राथिर के साथ बात करते हुए कहा,
3: ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोग्राम है, उनके टाउन से ये मुलाकात किया जा रहा है और ये प्रोग्राम अशद जरूरत है अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए। आलमी सतह तक ये कश्मीरी जुबान बोली जाती है और हमें उम्मीद है जो यहाँ से वाबस्ता जो अदीब है, स्कॉलर्स है, क्रिटिक्स जो है यहाँ पर, ये आलमी सतह तक पहुंचे हैं और यहाँ सारे पद्मश्री वगैरह ये कश्मीरी जुबान ने दिए हैं। और गुलशन कल्चरल फोरम एक ऐसा इदारा है जिससे यूथ से लेकर बुजुर्ग तक लोग वाबस्ता है।
1: प्रोग्राम के आगराज मकासिद के बारे में फोरम के जनरल सेक्रेटरी गुलशन बद्रनी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
4: इस प्लेटफॉर्म पे फनून लतीफा से वाबस्ता मुख्तलिफ लोग, जिसमें मुसव्विर भी, संतराज भी, मौसीकार और खुसूसी तौर कलमकार शोरा अदबा इस प्लेटफॉर्म पे जमा हुए। और जमा करने का मकसद ये है कि इसमें नवनिहाल शोरा भी शामिल हो जाएंगे और बुजुर्ग शोरा भी, जिनसे हम सीखते हैं और सिखाने वाले भी और सीखने वाले भी एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा होके अपने मामलात, अपने तखलीकात को शेयर करते हैं और देखते हैं कि मौजूदा ट्रेंड क्या है। इससे तहरीक भी मिल जाती है, उनको सीखने का मौका भी मिल जाता है सबों को, और एक वलवला, एक तहरीक, एक जोश पैदा हो जाता है।

0: इस तरह ये जो फनून लतीफा से वाबस्ता लोग उनकी रेस्पिरेशन बढ़ जाती है और वो आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह ये सकाफती और तमद्दुनी और अदबी मीरास जो हमारी है ये आगे बढ़ जाती है और ये जिंदा जावेद हो जाती है। ये है इसका मकसद, इसको आगे ले जाने के लिए जो हमारी कोशिश मकसद ही होता है इसके पीछे।
1: तकरीब के दौरान कलमकार जी आर हसरत गढ़ा को साल 2024 और मास्टर गुलाम मोहम्मद डार को साल 2025 के लिए गुलशन कल्चरल फोरम अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर फोरम का फरियाद नामी रिसाला भी जारी किया गया। फोरम के सदर सैयद बशीर कौसर ने शुक्रिया की तहरीक पेश की। बारामूला के सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल में आज यौम महजूर की मुनासिबत से एक तकरीब मुनक्द हुई।

आकाशवाणी केंद्र श्रीनगर थी आज दा पहाड़ी प्रोग्राम सुनने वालियां को जहांगीर अहमद खान दा सलाम कबूल होवे। सामीन उम्मीद करदा कि तुसे सारे बखरवाफियत हो सो और हमेशा नालो अज भी अपना पसंदीदा पहाड़ी प्रोग्राम बड़े शौक न सुन रहे हो सो। सामीन, कामयाबी एक अजी चीज़ है जिस वास्ते सिर्फ काबिलियत काफ़ी नहीं। दुनिया के मशहूर लोग असा को यह सबक दें दिन कि मेहनती असल राह है। काबिलियत इंसान को राह दसती है, मगर मंजिल तोनी पहुँचने वास्ते मेहनत मुझ जरूरी है। सामीन, मेहनत नाल ना सिर्फ इंसान अपने मकसद विच कामयाब होंदा है, बल्कि अपनी सलाहितां को भी बेहतर बनेंदा है। जेड़े लोग सिर्फ काबिलियत दा भरोसा रखते हैं और मेहनत नहीं करते, वह अक्सर नाकाम रह गए। जबकि जेड़े लोग मेहनत करते हैं और सबर दा दामन नहीं छोड़ते, हर मुश्किल को आसान बना केंदे और अपनी मंजिल हासिल कर केंदे। सामीन, दुनिया की तारीख अजे लोगों नाल भरी दी है जिन्हें सुन मेहनत और लगन नाल कामयाबी हासिल की थी। सामीन, कामयाबी दे सफर विच काबिलियत एक हथियार है, जबकि मेहनत ही वो ताकत है जिड़ी इंसान को मंजिल तोनी पहुंचाती है। जिंदगी दे हर मैदान विच कामयाबी हासिल करने वास्ते मेहनत, सबर और मुस्तकिल मिजाजी मुझ जरूरी है। कामयाबी दा राज मेहनत विच है, ना कि सिर्फ काबिलियत विच। जड़े लोग मेहनत कर दिन, सबर कर दिन और कदे भी हार नहीं मनते, उही लोग असली मानियां विच कामयाब होंदे। मेहनत इंसान को मजबूत बनाती है और जिंदगी दे हर मुश्किल को आसान कर छोड़ती है। तसामीन, गला का और भी करसा, प्रोग्राम दे शुरू विच पेश है तुसां वास्ते खूबसूरत गीत, ता खूबसूरत आवाज़ है यूनस लोलाबी दी।

0: ਚਾਂਦ ਰਾਵਿਸ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰਕ ਰਾਥਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਖਿਆ।
1: ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोग्राम है, उनके टाउन से ये मुलाकात किया जा रहा है और ये प्रोग्राम अशद जरूरत है अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए। आलमी सतह तक ये कश्मीरी जुबान बोली जाती है और हमें उम्मीद है जो यहाँ से वाबस्ता जो अदीब है, स्कॉलर्स है, क्रिटिक्स जो हैं यहाँ पर, ये आलमी सतह तक पहुंचे हैं और यहाँ सारे पद्मश्री वगैरह ये कश्मीरी जुबान ने दिए हैं। और गुलशन कल्चरल फोरम एक ऐसा इदारा है जिससे यूथ से लेकर बुजुर्ग तक लोग वाबस्ता है।
0: प्रोग्राम दे अगराज और मकासद दे बारे विच फोरम दे जनरल सेक्रेटरी गुलशन बद्रनी सुन आकाशवाणी न्यूज नाल गल्लां करदे होए इस तरह आख्या।
2: इस प्लेटफॉर्म पे फनोमेनल लतीफा से वाबस्ता मुख्तलिफ लोग, जिसमें मुसव्विर भी, संतराज भी, मौसीकार और खुसूसी तौर कलमकार शोरा अदबा इस प्लेटफॉर्म पे जमा हुए। और जमा करने का मकसद ये है कि इसमें नवनिहाल शोरा भी शामिल हो जाएंगे और बुजुर्ग शोरा भी, जिनसे हम सीखते हैं और सिखाने वाले भी और सीखने वाले भी एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा होके अपने मामलात, अपने तखलीकात को शेयर करते हैं और देखते हैं कि मौजूदा ट्रेंड क्या है। इससे तहरीक भी मिल जाती है, उनको सीखने का मौका भी मिल जाता है सबों को, और एक वलवला, एक तहरीक, एक जोश पैदा हो जाता है उनमें। इस तरह ये जो फनून लतीफा से वाबस्ता लोग, उनकी इंस्पिरेशन बढ़ जाती है।
3: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं, मीडियम वेव 268.8 मीटर और एफएम 103.5 मेगाहर्ट्ज पर। समय 4:30 हुए हैं, आइए सुनते हैं आज का शेना प्रोग्राम।

0: ठुंडे फोटो ऊंटे भी है
1: सही
0: ना
1: सही
0: एक मुला एक जग पशे मतलब सुनो ख्याल न छरी ना चुनू मतलब चलो कुछ चीज हूँ मतलब फंडामेंटल राइट गो राइट टू प्राइवेसी
1: सही
0: चलो कुछ चीज वसो असर ख्याल छनू के लाने मु तो इंसान इंसान नहीं हूँ हर इंसान ही हुकूक आसना चाहिए
1: बेशक
0: मतलब उससे सु मतलब मबुल कि मोस गोराई मतलब मतलब वायरल थम थे या चीज थे मोस यू प्रेसो ख्याल न चरम चलो चीज प्रेसो ख्याल चुन हर इंसान ही परमिशन गड़ी फोटो या वीडियो होनी चुन अगर हुन चुन हो तो वो बोल एक इथिकल पे मतलब
1: सही
0: पॉइंट ऑफ व्यू सस पौधो दोमुख चीज अदा थो कि तुम कल्चर एक सही तरीके से प्रेजेंट थी कोई का टेबस वैसे कोई का मतलब अक्सर मोस्ट ऑफ मोस्ट की बस तुमो चीज कम प्रमोट थो नस
1: सही
0: बस मुद कल्चर बस धरी ने कल्चर इन्फ्लुएंस बिल्स मिसाल के तौर पर मोस्ट रसम की मतलब हता की रुजी असा को बशी रजिन गोराई गए अक्सर मतलब मोस्ट ऑफ मोस्ट बिल्कुल कम है गए तो गोरा जिस रही है
1: बिल्कुल
0: नहीं
1: बिल्कुल
0: जब बस थोड़ा सुनते गिलगित के बल्तिस्तान गए उनटे
1: प्रमोट
0: प्रमोट
1: होना
0: थोड़ा सा अगला
1: बिल्कुल
0: चल तो में चीजें प्रमोट किया
1: सही
0: और रन नो असू कल्चर सो असू कल्चर निश मोस अच्छा
1: सही
0: कैसे क्योंकि बेक अलग कम्युनिटी है बस सोम कल्चर सोई साइज प्रमोट नहीं थोड़ा सस पा तो मोर हम बाकी चीजें जोकर से ना गोराई से कटेल मकान से चौपदार
1: बिल्कुल
0: से चीज
1: बिल्कुल
0: या जरापाई बुन कोई गोराई बस
1: हैंडीक्राफ्ट को
0: हैंडीक्राफ्ट को
1: ऐसे
0: इंडस्ट्री को मोशन परिणाम से प्रमोट थी तो उजर तरीका है कि कोई तरीका बस मतलब कोई रियल चीज़ या से असुट पशाइन हो ना कि मतलब अंधाधुन बस जोकर जिन रेसेट मुत कल्चरी अटेरा नो असो कल्चर नो पतो कोई टूरिस्ट साथ ऐसे पता ऐसे सोरज ला नदा तुम्हें इतना चका सी ना एक चीज
1: सही
0: असुट रियल पिक्चर पशाइन प्रेसु खयास ख्याल छरे मने हो जो
1: मोहतरम तारिक साहब, क्योंकि बे शकून अक्सर बेशर कोत असी कोई यंग जनरेशन ही मतलब सस कोशिश थी ना कि मतलब टूरिज्म इंडस्ट्री कोई से सन ला जुड़ा जुनी तो बे शकून बस तुम टूरिस्ट भी दरीन को अलगट से मुख्तलिफ तरीका जब उनसे अकूड माइल थी तो कोई एक नौजवान आस कोई टूरिज्म इंडस्ट्री से या डायरेक्टली हूँ या इनडायरेक्टली जुड़ा जी हूँ तो सर टूरिस्टों से कोई तरीके पजे मतलब हन बुन बुन ताकि कोशिश बस मतलब सो कोई टूरिस्टों सेट बोझ दिलाज बार बार गुराई ऊनू बोझ हमेशा तड़प तलब धरू
0: चूंकि मोस आर आजम की लद्दाख टूरिस्ट बस के बोझना या जे को मतलब बस अक्सर चकून कोई वेस्टर्न कंट्री है साथ अक्सर टूरिस्ट ठीक ठाक बोझना के चीटिंग निश
1: अच्छा
0: चलो कि चीज असल थे वो टूरिस्ट से नल पेश हुई
1: ठीक
0: धोखा निश दिन
1: सही
0: अगर मिसाल के तौर पर चीज हाँ हर दिशा अदा हो कि टूरिस्ट साल सोस असल रेट दे यूं
1: बिल्कुल
0: तो या मतलब ये एक यूनिक चीज आसना कोई बस लोकल नफर से ना रहो उसे टूरिस्ट से हारो
1: सही
0: सीज
1: हो
0: यूं एक
1: सही
0: असल रेट है मिसाल
1: सही
0: खाया वहीं गोराई
1: बिल्कुल
0: चश्म बुलबुल जरा पाया
1: राजमा
0: राजमा
1: वो
0: हाँ
1: बिल्कुल सर
0: रहो दिए तो प्योर जी
1: सही दे
0: रोनिश हाइवर तेल दे से किड़ी बनाऊ दरानिया ने
1: बिल्कुल
0: गोराई हो सो
1: यानी
0: यूज से
1: फ्राड थी
0: फ्रॉड नि
1: निश
0: चीटिंग नि चीन जन सस पतो जरा पे अगर रफल नि यूज सो एरी दिमारो से एरी हो
1: बराबर बराबर
0: बेचारा अगर जोली दिमारो तो सेट वाकई जोली दा रवा
1: सही
0: दिमारो से
1: सही
0: सदा दा या सो से मु तो से को छुलू सो बस पाजो टकू ना
1: पटुई
0: पटुई को या से दिया ओरिजिनल दे जोग जात ओरिजिनल दे धोखा न जा जिंग जिंग हो रेट के सही हिसाब ही हरा कि वाकई की कोशिश से नपशी चला नो मो एक्सप्लॉइट थे ने निश्चित
1: बिल्कुल
0: दुमुख चीजो बाकी अगर मिसाल कैंपिंग थे ना या गोल्ड होम स्टेज ना
1: जरूरी
0: सही जगह अदाय रटे जा कि कोस मतलब कोई तकरीबन तकरीबन सेम ही आसन अदा ने चा कि मतलब चीट ने चुन मिसाल
1: बिल्कुल
0: अंदर पशी असला ने उन नफर थफा फसा जुलो निसर गिना 5,000 रुपए का घंटा या 2,500 रुपए का घंटा के अनुसार को तो मौका लो निसर जो
1: सही
0: एक इथिकल व्यू पॉइंट के छनु सस पतो टूरिस्ट हो अट्रैक्ट बोल कि नेवा नि जक असल ना निस
1: बिल्कुल
0: असु ख्याल छना बे ना आलस निस खाली रुपए पतो डिनिस नि असु का ख्याल छना
1: बिल्कुल
0: से एम्पैथी बोज छन नफर
1: सही
0: मतलब मुती करे हमदर्दी
1: बिल्कुल
0: से
1: बिल्कुल
0: असु छनु हो अकी टूरिस्ट ही
1: बेशक बिल्कुल सही मुश्त मुफरे तारिक साहब खेण बोलो सामिन नदी एक गाय परजुन या भी बुढ़े शोभ एक सुनिया गाय परजुन सस पतुमोस सोशल फिराक मुश्किल थम।

आकाशवाणी श्रीनगर ते आज को गोजरी प्रोग्राम सुनना सामीन ना थारा मेजबान शौकत अमन बोकड़ा का तारते तम सारा ना प्यार खलूस ते ताजीम नाल अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। इस उम्मीद के नाल कि तम खैर सुख नाल होएगा ते अपना मन पसंद गोजरी प्रोग्राम सुन रहा होएगा। समीन इकराम तमना दस्तो चलूं कि आज का इस प्रोग्राम में मारे नाल एक मेजमान भी शरीक गुफ्तगू है। आज का मारा जो मेहमान है इन्होंने आमने अपना स्टूडियो में इस मौजू ने लेकर दावत दी है कि मारा आज का नौजवान जितना भी है उन्होंने अपना खुद रोजगार कहने को माणो है और गवर्नमेंट का तरते एक बेरोजगार वास्ते किड़ी किड़ी स्कीम रखी हुई इनके नाल भी इस मौजू ने लेकर तफसीलन गल करांगा। तय प्रोग्राम ना आगे बताता सुन लिया अब्दुल रशीद कुरैशी की आवाज में योगी।

0: जिया सामीन, अब्दुल रशीद कुरैशी की आवाज़ माँ हम गीत सुन रहा था। मारा आज का इस प्रोग्राम माँ मारे नाल एक मेजमान तुफैर अहमद कसाणा साहब श्री की गुफ्तगु है। आज का इस प्रोग्राम माँ इनके नाल इस मौजू के ऊपर गल करा का कि एक बेरोजगार नौजवान जुड़ो है वो किस तरीका करना अपनो खुद रोजगार कमा सके और गवर्नमेंट का तरफ से एक बेरोजगार वास्ते किड़ी किड़ी स्कीम जुड़ी है वे रखी हुई है और इन स्कीम से एक बेरोजगार कहनू फायदा चाह सके। तो फैर अहमद कसाणा साहब थारो इस्तकबाल इस प्रोग्राम में।
1: जी साबर साहब, सब से पहला थारो बहुत बहुत शुक्रिया कि मैंने अपना प्रोग्राम दावत दी और इस काबिल समझो। उसके बाद सारा सामीन ने मेरा तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: वालेकुम सलाम। तो फैल साहब अपना मौजू पर चलन से पहला तम अपना सामीन कहना अपना तारुफ करावे का कि थारो ताल्लुक किड़ा ग्रां के नाल है, थारी तालीम जी कितू हुई, उसके बाद इस वक्त तम के करने लगा।
1: जनाब, मेरी इब्तदाई जी तालीम है वो हमारा इतने सरकारी स्कूल से हुई है।
0: जी
1: बेसिकली हूँ सुंबल बाला, तहसील गुंड, डिस्ट्रिक्ट गांधरबल से बिलोंग करूँ।
0: जी
1: इब्तदाई तालीम मेरी गवर्नमेंट मिडिल स्कूल टंग पथरी से हुई, उसके बाद मैं हायर सेकेंडरी स्कूल गुंड से 12th की,
0: जी
1: फिर मैं बीए गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कंगन से की, उसके बाद मैं एमए पॉलिटिकल साइंस की,
0: जी
1: तो फिर आईटी वास्ते बैंगलोर गया हूँ।
0: जी
1: तो 2.5 साल बैंगलोर रहे, मैं आईटी बहुत पूरी सीखी,
0: जी
1: उसके बाद मैं वापस आके पहला अपना सीएससी सेंटर स्टार्ट किया,
0: जी
1: ऑनलाइन सर्विसेज जितनी भी हैं वो प्रोवाइड करूँ। उसके बाद हमारी तहसील में एक ही नैलेट को कंप्यूटर सेंटर था, तो उसमें कुछ वैकेंसी खाली थी, मैं अप्लाई किया, इंटरव्यू वगैरह देते, तो उसमें मेरी सिलेक्शन हो गई कंट्रेक्चुअल बेस पर।
0: जी
1: आज वो जातका ना कंप्यूटर सिखाऊँ, उसके अलावा वापस आके अपना सीएससी को भी कम करूँ, गवर्नमेंट की स्कीम का बारे में लोगों ने दसूँ, अप्लाई कराऊँ,
0: जी
1: मतलब ऑनलाइन सर्विसेज सारी प्रोवाइड करूँ।
0: जी तो वैसे साहब हम देखा ना कि जिस तरह तमने ऑनलाइन सर्विस तम के कि हम प्रोवाइड कराँ और गवर्नमेंट का तरफ से हम देखा कि बहुत सारी स्कीम जी
1: जी जी
0: वे एक बेरोजगार वास्ते रखी हुई है। हर एक ने इन स्कीमों के बारे नहीं पता होता है कि किड़ी स्कीम मेरे वास्ते फायदा मंद है, किड़ी स्कीम ते हूँ किस तरीका ना फायदा चाह सकूँ। तम इस बारे हमने दसेगा कि किड़ी किड़ी स्कीम जी वे गवर्नमेंट का तरफ से एक बेरोजगार वास्ते रखी गई है।
1: जी शोकर साहब, स्कीम पर आने से पहले तमना एक दो गल दसूं कि सबसे पहले मैंने जितना भी मतलब बच्चा एजुकेशन हासिल करने लगा हुआ, चाहे वो एकेडमी करें,
0: जी
1: उन्होंने मेरी बस एक ही नसीहत है कि आप एजुकेशन का नाम ना, क्योंकि हमने भी एकेडमी की हो मगर टेक्निकल हमने कख ना किया।
0: जी
1: इवन कि मैं एमए करने के बाद टेक्निकल नॉलेज हासिल की,
0: जी
1: क्योंकि आज क्राफ्ट बेस्ड नॉलेज चला लगी हुई, जिसका कोई क्राफ्ट है तो वो तालीम हासिल करने के बाद अपनी सोसाइटी पर बोझ नहीं बन सकता।
0: जी
1: जितना भी बच्चा है उन्होंने एक ही मेरा तरफ से एडवाइस है कि तुम एकेडमी

0: भी नॉलेज हासिल करो मगर अपनी लाइफ में कोई क्राफ्ट भी सीखो।
1: जी
0: तो दूसरी गल जो बेरोजगार नौजवान जितना भी है ग्रेजुएशन करें मास्टर्स करें उसके बाद वो ये सोचें कि हम गवर्नमेंट नौकरी करें।
1: जी
0: तो गवर्नमेंट नौकरी को तो हमें पता ही है जनाब, एक अनार सौ
1: सौ
0: बीमार।
1: बीमार
0: तो एक पोस्ट निकले उत तो लखा की तादाद में लोगों ने फार्म भरे हुआ, हाई कंपटीशन है, जिड़ा पढ़े इसने क्वालिफाई भी करेंगे कोई इशू नहीं, उन्हें नाम नहीं कहता कि नहीं पढ़ो,
1: जी।
0: लेकिन इसी पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए।
1: जी
0: गवर्नमेंट वक्त का ना ना मुझ सारी स्कीम दे, आना उन्होंने फायदों लेने चाहिए,
1: जी
0: तो हमने अपना कारोबार खुद भी शुरू करना चाहिए।
1: जी जी बिल्कुल। अगर हम स्कीमा की गल करें तो आज का इस वक्त के बीच
0: जी जी
1: मिशन युवा स्कीम जड़ी है, इसके जरिए किस तरीका ना हमने फायदा उठाना है या के स्कीम है, इसके बारे में हम थोड़ा बहुत दसें कामना।
0: जनाब स्कीमा की गल करा तो शुरुआत करूँ कोई ऐसी स्कीमा ना जिसमें सबसे लो अमाउंट हुआ
1: जी
0: सबसे घट अमाउंट हुआ उतु हम शुरू करा आगा, फिर हम
1: जी
0: बड़ी बड़ी स्कीमा की तरफ आवागा।
1: जी
0: सबसे पहली स्कीम तो मैं दसूँ कि गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया बेरोजगारों वास्ते, स्कीम को ना है जनाब मुद्रा स्कीम।
1: जी
0: मुद्रा स्कीम एक ऐसी स्कीम है जिसमें इस मुद्रा ना गवर्नमेंट ने त्रो हिस्सों में तकसीम किया हुआ।
1: जी
0: सबसे पहला जनाब इस हिस्सा को ना हुआ शिशु,
1: जी
0: जो शिशु हुआ शिशु में 50,000 तक गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करा
1: ठीक
0: ताकि ये अपनो छोटो मोटो कारोबार जो भी है वो स्टार्ट कर सकें। उसके बाद जनाब अगर वो कारोबार मतलब ठीक ठाक चलो अगर उसना आगा बढ़ाने की कोशिश करें तो फिर दूजी इसी की दूजो पार्ट हुआ किशोर,
1: जी
0: जिसमें 50,000 से लेके 5 लाख तक गवर्नमेंट लोन प्रोवाइड करा।
1: जी
0: उसके बाद अगर यो बंदो अपनी बिजनेस ना आगा बढ़ाने की कोशिश करा तो फिर 5 लाख से लेके 10 लाख तक उसमें
1: जी
0: लोन छोड़े। पहला पार्ट है जनाब इसको जो पहला हिस्सा है उसने कहें शिशु
1: जी
0: 50,000 तक जिसमें लोन दे,
1: ठीक
0: दूजो जो हिस्सा है उसने कहें किशोर
1: जी
0: जिसमें 50,000 से लेके 5 लाख तक लोन दे,
1: ठीक
0: तीजो हिस्सा जनाब उसने कहें तरुण जिसमें 5 लाख से लेके 10 लाख तक लोन दे।
1: यो लोन हासिल करने वास्ते सबसे पहले क्या करना है।
0: जनाब सबसे पहला वो एक गल और भी दसूं कि हमारा नौजवान लोन लेने से पहला ये सोचें कि हमने गारंटर नहीं था से
1: जी
0: जड़ा भी मेरा को है उनके मेन कंसर्न हुआ गारंटर है सब्सिडी है ये मेन चीज़ है, तो इसे ना
1: जी
0: कवर करा कि सबसे पहला इसमें गारंटर कोई है ही नहीं
1: ठीक
0: जिस वजह से इसमें सब्सिडी नहीं था थी।
1: जी
0: इसका असर तो मैं दसूँ कि कोई भी बंदो हमारा किसी मतलब जो आज का दराल हो हमारा दरालों को चलने की जरूरत नहीं,
1: जी
0: तो हम ऑनलाइन जाके पोर्टल है इनको जन सम्राट,
1: ठीक
0: जन सम्राट जो है एक बार सर्च करेंगे इस पोर्टल को। सबसे बड़ा फायदा यो है कि इसमें जाके तुम पहले अपनी एलिजिबिलिटी चेक करें कि
1: जी
0: मतलब हम इस लोन का काबिल हाँ या कि नहीं है,
1: नहीं
0: एलिजिबिलिटी चेक करो फिर उसके बाद हम लोन अप्लाई कर सकें।
1: जी
0: तो मेन कंसर्न हुआ कि डॉक्यूमेंट के लगे,
1: ठीक
0: डॉक्यूमेंट इसमें जनाब सबसे पहला थारा को आधार होना चाहिए
1: जी
0: जो मैंडेटरी कर छोड़ेगा क्योंकि आधार का ना ये सारा डेटा आज गवर्नमेंट ने लिंक किया हुआ है।
1: ठीक
0: उसके बाद वोटर आईडी होनी चाहिए ताकि इसको पूरे
1: प्रूफ पत्र चल
0: सुकूनत
1: जाएगा।
0: को
1: जी
0: पता
1: जी
0: चला, सुकूनत को पता चलने के बाद पैन कार्ड होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होनी चाहिए क्योंकि
1: जी
0: इसमें एक फायदा एसटी का जात का ना यह है कि इंटरेस्ट जुड़ी लगा कि
1: जी
0: वो एसटी का बच्चा ना मौज
1: कार्ड
0: खाता
1: लगा
0: देखे,
1: के
0: तो
1: जी
0: कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अच्छा उद्यम रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक हुआ वो उस टाइम बना जिस टाइम को यूनिट स्टार्ट हुए
1: जी
0: ताकि उस यूनिट की रजिस्ट्रेशन एमएसएमई का पोर्टल पर हो जाए,
1: जी
0: तो पिछले 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट लगे,
1: स्टेटमेंट जी
0: 7 से लेकर 10 दिन इसमें टोटल लगे ये जो लोन है ये बैंक में आ जाए।
1: इस वास्ते एजुकेशन की कोई लिमिट मतलब कि ना कोई भी इस वास्ते कर सके
0: ना जी
1: के
0: इसमें
1: एलिजिबिलिटी है
0: इसमें
1: इसमें
0: एलिजिबिलिटी है कि इसमें कोई भी कर सके, 8th पास होना जरूरी
1: जरूरी
0: है।
1: है।
0: तो इसमें एज बार जुड़ी है वो 18 से लेकर 60 साल तक, तो रहेगी इसमें इंटरेस्ट की जुड़ी है शरा फीस 8 से लेकर 12% का बीच हुआ
1: 8 से 12 तक
0: बारह
1: लोगों
0: तो।
1: की
0: लेकिन एसटी का जो बच्चा है उन्होंने इस इंटरेस्ट में भी रियायत दी जाए।
1: रियायत दी जाएगी।
0: जी हाँ
1: जी
0: और गल करें इसमें किड़ा किड़ा यूनिट हम स्टार्ट कर सकें।
1: जी
0: जी इसमें हम स्टार्ट कर सका मोबाइल रिपेयरिंग शॉप भी कर सका, फोटो स्टूडियो भी कर सका, किराना शॉप भी कर सका, अच्छो
1: जी
0: स्टेशनरी शॉप है, डायरी यूनिट है जनाब,
1: जी
0: ऐसा ऐसा बहुत सारा बाकी हम यूनिट लोग का जो है उन्होंने स्टार्ट करके एक्सपेंड कर सकते।
1: जी जी तो फैज साहब मुद्रा लोन की तमने गल की, मिशन युवा स्कीम
0: जी
1: ये
0: जी
1: इसके बारे में दसेंगे।
0: जी जी ये बड़ी ही ज़बरदस्त स्कीम है क्योंकि इसका मैं काफ़ी ज़्यादा फॉर्म वगैरह भी अप्लाई किया है और इसका बारे में हमने काफ़ी इंफॉर्मेशन जो रखूँ कि क्योंकि ये मैं ग्राउंड लेवल पर देखे हैं
1: जी
0: इसमें के चीज़ आए लगी हुई मतलब के डिफ़िकल्टी आए लगी हुई,
1: जी
0: तो ये मैं ग्राउंड लेवल पर देखी है। यो जो मिशन यू है जनाब इसने डिपार्ट

0: ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स फाइनेंस करा,
1: जी
0: तो जम्मू कश्मीर जी बैंक है यो इसको फाइनेंशियल पार्टनर है।
1: अच्छा,
0: यानी कि जम्मू कश्मीर बैंक के अलावा
1: दूजे का भी बैंक के जरिए नहीं था तो आयो।
0: जी, इसके अलावा हूँ इन्होंने ऐड किया जम्मू कश्मीर ग्रामीण बैंक इसमें
1: जी,
0: यानी कि तुम या तो ग्रामीण बैंक ते ले सकें या
1: तो
0: जम्मू कश्मीर बैंक ते ले सकें। बाकी रहेगी इसमें इंटरेस्ट, इंटरेस्ट की हमारा एक सबसे बड़ी दिक्कत हुआ कि इंटरेस्ट रेट के है इसमें नॉर्मल लिखी हुई हुआ, कोई भी सर्च करा को इसमें लिखी हुई हुआ 9%। दरअसल ये 9% नहीं होती, 4% इसमें गवर्नमेंट पे करा,
1: जी
0: 5% कस्टमर ना पे करना।
1: ठीक,
0: यानी कि गवर्नमेंट का ये जो बंदो अपने बिजनेस स्टार्ट करा लोगों को इसका कोआ मतलब इतना पैसा नहीं होता कि वो इंटरेस्ट पे करा को,
1: ठीक
0: उस वजह से 4% गवर्नमेंट करा, 5% इसमें टोटल है।
1: जी
0: यानी कुल मिला के समझो कि इसमें 5% इंटरेस्ट है, 5%
1: जी
0: टोटल। तो बाकी रह गया इसमें हम अगर गल करा किना किना चीज़ों पर अप्लाई कर सका, कोई भी यूनिक आइडिया था रहा हुआ
1: जी
0: जुड़ा आइडिया मतलब बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करें इसमें यूनिक की। जन तो मैं मुद्रा के बारे में दस्यो कि उसमें बुटीक है या बाकी कोई गवर्नमेंट शॉप है ये वगैरह, इसमें ऐसा कख नहीं। इसमें थारा माइंड में कोई आइडिया आवा लगो बिजनेस को और तो मैं लगा कि इस बिजनेस हम करूँ,
1: जी
0: तो हम उस आइडिया ना CSE ऑफिस वाला ना दसें का, वो
1: जी
0: ऑनलाइन अप्लाई करें का। फिर उससे तो चला SBDU डिपार्टमेंट ना,
1: जी
0: वो इसने चेक करा, फिर DLIC कमेटी को चला, वो आइडिया ना वेरीफाई करा कि
1: जी
0: क्या ये आइडिया इंप्लीमेंट हुआ को असल आइडिया बिजनेस आइडिया। उसमें फिर कितना लोन तो मैं लिखे हुआ DLIC कमेटी पास करा, इसमें पहला 14 से 20 दिन लगे था, हूँ ज़्यादा लगे जरी 35 से 35 दिन भी लग सकें।
1: जी
0: तो सीधो बैंक में आ जा, बैंक का तुम ना कॉल करें, नॉर्मल डॉक्यूमेंट उन्होंने देना, कोई ग्रंटर इसमें आई नहीं,
1: जी
0: तो तुम ये लोन ले सकें।
1: और अगर लोन लेना है किसी ने तो सबसे पहला स्टेप उसने क्या करना है, पहले CSE जाना है।
0: जी बिल्कुल, सबसे पहले उसने किसी अपना CSE सेंटर पर जाना है, वो तो
1: जी
0: उसने आधार पैन कार्ड डोमेसाइल का एक फोटो, बस
1: जी
0: नॉर्मल डॉक्यूमेंट 4 लगे।
1: ठीक
0: तो उसके बाद जिस टाइम लोन बैंक में पहुंचा उस टाइम उसने लगे लाइसेंस लगा,
1: जी
0: मतलब उस चीज़ को जिस यूनिट पर कड़े लगा हुआ,
1: जी
0: तो बाकी उद्यम रजिस्ट्रेशन लगा, फोटो फोटो लगा शॉप को,
1: जी
0: तो बाकी एक उसने 10 दिन की ट्रेनिंग करनी पड़ा,
1: जी
0: उसने कहे सब्सिडी की ट्रेनिंग।
1: ठीक,
0: तो इसमें सब्सिडी को सबसे असल वजह है
1: के सब्सिडी है इसके बीच
0: जनाब, इसमें सब्सिडी अवरत ना है 1,30,000 रुपये।
1: जी
0: तो हूँ मुझे ना इस स्कीम के बारे में थोड़ी जो कन्फ्यूजन है कि इसमें कितनों ले सकें जनाब, इसमें हम 10 लाख तक ले सकें।
1: जी
0: हाँ 10 लाख तक हम ले सकें, लेकिन सब्सिडी का मसला में अक्सर लोगों ने कन्फ्यूजन हुआ और मैं ये मुझ देखे हैं कि ये आके बार बार क्वेश्चन करें, सवाल करें कि सब्सिडी 1 लाख से ज़्यादा क्यों नहीं।
1: जी
0: इसमें अप टू रखे हुआ 4 लाख रुपया,
1: जी
0: यानी कि अगर मर्द का डाको 1 लाख में 25,000 सब्सिडी है, 2 लाख में होगी 50,000
1: पंजा हजार
0: सब्सिडी, 3 लाख में होगी 75, तो 4 में होगी बराबर
1: एक
0: एक
1: लाख
0: लाख उसके ऊपर तुम 5 लाख का डेंका वो 1 लाख सब्सिडी है, 8 का डेंका वो 1 लाख, 10 का डेंका वो 1 लाख सब्सिडी।
1: जी
0: नैनो में तुम 10 लाख तक कर सकें, उससे ज़्यादा तुम लोन नहीं कर
1: जी
0: सकता। सब्सिडी की शरफ इसे जरा 25% मर्द ना, तो 1 लाख से ज़्यादा मर्द नहीं ले सकता सब्सिडी इसमें।
1: जी
0: औरत जड़ी है उसमें उसने 1 लाख में 30,000 रुपये है,
1: जी
0: तो 2 लाख में कितना होगा जनाब, 60,
1: साठ
0: 4 में होगी 1,20,000 सब्सिडी
1: जी
0: इसमें। तो बाकी रहेगी इसमें सब्सिडी वैसे तो हमारा 10 दिन ट्रेनिंग किसी भी ITI थाड़ा नज़दीकी जो सेंटर है उसमें ज़रूरी करनी है।
1: जी
0: तो गवर्नमेंट ने इसमें हाल ही में उमर अब्दुल्ला ने भी इस स्कीम पर काफ़ी जोर देते हुआ कि इसमें इम्प्लीमेंट ग्राउंड लेवल पर करो।
1: जी
0: तो इसमें जुड़ी ट्रेनिंग है वो 10 दिन रहा की, वो ट्रेनिंग बड़ी मैंडेटरी है, उसके बाद ही तुम्हारा सब्सिडी छोड़ेंगे।
1: ठीक
0: जी हाँ, लेकिन इसमें एक चीज़ हूँ नौजवानों ने ऐड करना चाहूँ कि उन्होंने एक चीज़ की नॉलेज नहीं होती कि इसमें मार्जिन मनी अपनों भी इन्वेस्ट करना है।
1: जी
0: यानी कि उतना एक प्रोजेक्ट बना के रखूँ कि मैंने 2 लाख रुपये लोन कर रही है,
1: जी
0: 2 लाख में मेरा को अपना होना चाहिए 20,000 रुपये,
1: जी
0: 1 लाख में होना चाहिए 10,000, दो
1: दो
0: में
1: लाख
0: होना
1: में
0: चाहिए
1: बीस
0: बीस
1: हजार
0: हज़ार यानी कि वो मार्जिन मनी वो थारो पैसा है, गवर्नमेंट नहीं लेती, वो थारा अकाउंट में होना चाहिए।
1: जी
0: यानी कि 10% ओन इन्वेस्टमेंट इंग्लिश में इसने कहना,
1: जी जी
0: यानी कि 10,000 रुपये खुद की इन्वेस्टमेंट होनी
1: होनी
0: चाहिए।
1: चाहिए
0: गवर्नमेंट यो देखा कि स्कीम हम ग्राउंड लेवल पर अगर इम्प्लीमेंट करा
1: इस
0: तो
1: अपना
0: आपने
1: कुछ
0: कितना,
1: पैसा है कि नहीं,
0: बिल्कुल
1: उस
0: बिल्कुल
1: वास्ते 10,000 रुपये
0: आपने होना चाहिए,
1: आपने
0: एक
1: होना
0: लाख
1: चाहिए
0: में
1: 1 लाख वास्ते,
0: 2 लाख वास्ता 20,000
1: इसने बीस
0: होना
1: हजार रुपये पहले अपना अकाउंट के बीच जमा
0: जमा
1: करना
0: होना
1: रखना
0: चाहिए। फिर
1: चाहिए
0: उसके
1: ता चल
0: बाद
1: के उस वक्त। जी
0: बिल्कुल
1: जी

0: जी हाँ समीन, हम गजल सुन रहा था, आवाज थी अनिल कुमार की। ते तमाम दस्तो चलो कि आज का प्रोग्राम मा हम थारे ना गल कर रहे हैं बेरोजगारी का खात्मा ना लेके। फैल साहब, हमने इस गीत ते पहला मिशन युवा की गल की, ते इस ते बगैर और कीड़ी कीड़ी स्कीम है?
1: जी जी बिल्कुल, तुमने बड़ी असल गल की। दरअसल हूँ इसे टॉपिक की तरफ आऊँ तो कि हमने अपना नौजवान बाकी लोग भी याद किया तो जड़ी मारी सोसाइटी को मैन हिस्सों हैं,
0: जी
1: यानी कि मारी समाज को जुड़ो जरूरी हिस्सों अवरत, तो हम उन्होंने किस तरीका छोड़ सका।
0: जी
1: तो उनका बारे में दसूँ कि उनका बारे में गवर्नमेंट ने एक बहुत असल स्कीम कढ़ी है जिसमें सिर्फ और सिर्फ अवरत ही अप्लाई कर सकें, यानी कि
0: अच्छा
1: मर्द इसमें कोई अप्लाई नहीं कर
0: जी
1: सकते। इस स्कीम को नाम है जनाब तेजस्वानी स्कीम।
0: जी
1: ते स्कीम के बारे में दसण ते पहले कहूँ कि कोई भी मेरी माँ बहन सुनने लगी हुई जी एजुकेटेड हैं खुद भी जाके चेक कर सकें एलिजिबिलिटी स्कीम के बारे में। पोर्टल को नाम है जनाब JKGSS.GOV.in।
0: जी
1: इसमें चलें कि इसमें सारी स्कीम लिखने की, उसमें तेजस्वानी भी निकड़ा हुआ की।
0: जी
1: तेजस्वानी एक ऐसी स्कीम है जिसना जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट जो है JKEID जिसना के
0: जी
1: वो इसना डिपार्टमेंट फाइनेंस करा लगो। एज जड़ी है जनाब इसमें उम्र 18 साल से लेकर 35 साल की जितनी भी मेरी माँ बहन है वो अप्लाई कर सकें।
0: जी
1: तो इंटरेस्ट रेट जो है इसमें बिजनेस जो स्टार्टअप है एक्सपेंड है करना, अगर स्टार्टअप करना एक्सपेंड करना कोई भी उस वास्ते ये ले सकें लोन। इंटरेस्ट रेट 8 से लेकर 12% तक है।
0: ठीक
1: तो लोन अमाउंट इसमें जो है वो 50,000 से लेके 5 लाख तक ले सकें।
0: जी
1: तो जी सब्सिडी है, सब्सिडी की सबसे पहला इंपॉर्टेंट गल करें क्योंकि कोई भी सब्सिडी के बारे में ज़्यादा ही पूछें। तो सब्सिडी इसमें 30,000 रुपये 1 लाख पर हुआ,
0: ठीक
1: यानी कि मेरी माँ बहन कोई भी जी अप्लाई करें कि 1 लाख वास्ता 30,000 रुपये उसने माफ है,
0: सब्सिडी आवेगी
1: सब्सिडी है। तो 5 लाख तक यो लोन तुम ले सकें,
0: जी
1: 50,000 से लेके 5 लाख तक
0: ठीक
1: तेजस्वानी का जरिया। इसमें जी सब्सिडी है
0: जी
1: 1.5 लाख है।
0: अच्छा सब्सिडी 1.5 लाख
1: जी
0: आवेगी
1: जी जी जी
0: जी। तो इस वास्ते कैन अप्लाई करना है, के करना है, के प्रोसेस
1: जनाब
0: रहे?
1: इसका वास्ता प्रोसेस यू रहा कि तुम JKGSS जुड़े में तुमने स्टार्टिंग में क्यों जो पोर्टल है बिल्कुल फ्री पोर्टल है, कोई भी जाके लॉग इन कर सका अप्लाई कर सका इसमें, लेकिन
0: जी
1: नॉलेज होनी चाहिए। उससे
0: जी
1: बेहतर CAC सेंटर पर चलो वो भी अप्लाई कर सकें, अगर खुद है नॉलेज तो कर सकें। JKGSS पोर्टल जुड़ा उससे जाके ये अप्लाई करेंगी। तो टाइम इसमें लगा जनाब 3 दिन
0: जी
1: लगे, तकरीबन 3 से लेकर 60 दिन लगा इस लोन ना
0: जी जी
1: बैंक में पहुंचना, पूरी वेरिफिकेशन हुआ।
0: जी
1: 10 से लेकर 15 दिन की ट्रेनिंग हुआ JEDI में,
0: जी
1: ठीक है। ट्रेनिंग के बाद इन जो लोन है वो इनका डायरेक्ट अकाउंट में आ जा
0: जी
1: सेंक्शन होकर बैंक
0: जी
1: में,
0: जी
1: ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना या 2 महीना लगे इसमें, उससे ज़्यादा नहीं।
0: किसी खास काम वास्ते या मतलब ये स्कीम रखी हुई कि ना अपनी मर्जी से कोई भी

0: हम जिस तरह हमने मिशन युवा की गाल की कि तम कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर सके, और मिशन युवा के थ्रू तम ना लोन था वाको था। इसके बीच के इसी तरीके का ना है कि ना किसी
1: जी
0: मेन
1: जी जी
0: खास
1: बिल्कुल
0: चीज ने
1: बिल्कुल।
0: लिया
1: इसमें
0: गया।
1: ऐसी ऐसी यूनिट दसी हुई है जिड़ी मतलब हमारी जिड़ी माँ बहन है वो असल तरीका रन कर सकते
0: जी
1: जनू टेलरिंग है,
0: जी
1: बेकरी है,
0: जी
1: अच्छा हैंडीक्राफ्ट है,
0: जी
1: उसके अलावा डायरी फॉर्म है,
0: जी
1: कंप्यूटर सेंटर अगर कोई खोलना चाह उसका वास्ता भी दे, स्मॉल शॉप जो है ना निका दुकान कोई
0: जी जी जी
1: किराना का अगर वो भी है खोलें तो उसका वास्ता भी दे सकें।
0: जी
1: तो डॉक्यूमेंट इसमें जनाब लगे आधार, डोमेसाइल लगा, एजुकेशन सर्टिफिकेट लगा कि या कितनी पढ़ी हुई है,
0: जी
1: तो उसके अलावा मतलब फोटो लगा उसको, प्रोजेक्ट रिपोर्ट लगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट हुआ जनाब DPR, उसमें लिखे हुआ कि 1-5 लाख को लोन अगर लिया इसमें कितना किसमें इन्वेस्ट करना हुआ,
0: जी
1: तो उसने क्या प्रोजेक्ट रिपोर्ट,
0: जी
1: उसके अलावा डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट था, बैंक कॉपी,
0: तो इसके बीच भी तालीम की कोई मतलब हद रखी हुई
1: टेंथ
0: है,
1: पास होनी
0: टेंथ
1: चाहिए।
0: पास होनी जरूरी है।
1: जी जी जी
0: जी। हाँ तो फैज साहब, ए तम एक और वक्फ लिया का, ए तो थारी पसंद के पर हम कोई गीत खुद भी सुना का, अपना सामीन ने भी सुना का, के सुनना चाहे का।
1: जी इकबाल मलंगामी की आवाज़ कोई भी असल जगीत पेश कर।
2: तसीन सजना क्यों बेसारे हो तैं, कदे माही सलाम तै दे कल तो, ओ मुलाकात की खातर ये दीद तड़फें, कदे कोई पैगाम तै दे कल तो, ते आता जाता राया कैत, कदे अपनों सुनो कलाम तै दे कल तो, ओ मुदत गुजरी है राज जुदाइयां मां, कदे वसल को जाम तै दे कल तो।

0: 头。我打翻江南美丽的拉蒂的哈特，卡拉杰蒂的就打一牛老白头。मुला काते अनोई दुश्वार इतनी अपना रूप ना क्यों छुपा बैठो ओ खस्ता हाल है राज फेराक कैविच अपनी जिंदगी भी घुमा बैठो ते तेरा दीदार ना दीद तड़फें कदे मिल जा रहूं कुर्बान सदके आज तक दी तो ना पतो मिन्ना तड़फें जरमा मेरी आ जान सदके तगियो जद को कंड देखा सजना अपनों दितो ना कोई निशान सदके ओ गल चार ना कर के राज गयो रे ओ दिल मा सदो यार मान सदके सीन सजना क्यों बेसारे होते कदे माही सलाम ते दे कल तो
1: जी समी नाम मोहम्मद इकबाल मलगामी की आवाज मा गीत सुन रहा था। ते अज का प्रोग्राम मां हम गल कर रहे हैं गवर्नमेंट का तरफ ते मुख्तलिफ स्कीमा ना लेख है कि किस तरीके नाम इन स्कीमा ते फायदो जा सका। ते इन स्कीमा के ऊपर गल करने वास्ते अज मारे ना मारा स्टूडियो में मौजूद हैं तुफैल अहमद कसाना साहब। तुफैल साहब, जिस तरह हमने मिशन युवा की गल की, उसके बाद तमने तजस्वानी स्कीम जिहड़ी औरतों के बारे मखसूस रखी हुई है उसकी गल की, ते इसके अलावा और किड़ी स्कीम है जिड़ी खासकर मारा लोगों वास्ते फायदेमंद है?
2: जी जी, एक और स्कीम है जिसको नाम है PMEGP।
1: जी,
2: ते इसको फुल फॉर्म हुआ जनाब प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम।
1: जी,
2: बड़ी अच्छी स्कीम है। डिपार्टमेंट ऑफ खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज जिड़ी है KVIC डिपार्टमेंट इसना स्पॉन्स कर लगी अंडर MSME का।
1: ठीक,
2: ते इसमें मर्द भी अब अप्लाई कर सकें ता बेटकी भी अप्लाई कर सकें।
1: जी,

0: 18+ होनी चाहिए एज, तो
1: जी
0: 8th पास इसमें ज़रूरी है।
1: जी
0: इसमें दो तरीका का लोन था, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वास्ता अलग लोन था वा, सर्विसेज वास्ता अलग था वा।
1: जी
0: और मैन्युफैक्चरिंग के वा जनाब एक ऐसा यूनिट जिसमें तुम अपना कोई प्रोडक्ट बनाएं,
1: ठीक
0: सर्विसेज वो यूनिट हुआ जिसमें तुम लोगों ना सर्विसेज प्रोवाइड करें, कोई चीज़ बनाता नहीं।
1: जी
0: तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है इसमें 50 लाख तक, और जो सर्विस है सर्विस यूनिट है इसमें 20 लाख तक दें इसमें लोन।
1: जी
0: तो इसमें सब्सिडी की वजह से मुझे ज़्यादा लोग अप्लाई करें, ये बड़ी मशहूर है, इस वजह से मैं इस स्कीम ना तुम दसन के बारे में सोचियो।
1: जी
0: इसमें अर्बन एरिया में अलग सब्सिडी रहा, तो रूरल एरिया में अलग रहा, यानी कि
1: जी
0: ग्राम में अलग
1: शहर में
0: शहर में
1: अलग
0: अलग। शहर में इसकी जी सब्सिडी की शरह फीसद है वो 15% है। तो ST की जी वुमेन है या SC की वुमेन है शहर में, उन्होंने 25% है।
1: जी
0: लेकिन अगर गल करें ग्राया की, तो जनरल ने जोड़ा 25% है, तो SC तो ST ने जी 35% है,
1: जी
0: यानी कि 1 लाख में 35,000 रुपये सब्सिडी है।
1: इस स्कीम के थ्रू कड़ा कड़ा यूनिट आदमी खोल सके।
0: पहला यूनिट पर गल करें तो पहले तो मैं दस चुनू, इसमें इंटरेस्ट रेट 8 से लेकर 12% है।
1: जी
0: तो अगर तुम 5 लाख रुपये लोन लें का सब्सिडी बढ़ती चला कि जिन 1 लाख में 35,000 है, 2 लाख में हो गए कितना 70, इस
1: ₹70,000
0: तरीके ना इसमें अप टू नहीं, जिन मिशन युवा में 4 लाख ते
1: ठीक
0: चार लाख
1: ठीक
0: में 1 लाख सब्सिडी या 1 लाख से ज़्यादा नहीं, इसमें वो मसलो
1: नहीं
0: इसमें सब्सिडी बढ़ती चला।
1: ठीक
0: तो बाकी रह गया जनाब मोहतरम, इसमें यूनिट तम ज़्यादातर तम यो टेलरिंग पर भी थावा, शाला पर भी थावा, अगर कोई बंदो शाला को काम करना चाह।
1: जी
0: बाकी और भी ऐसा यूनिट है जिन
1: जी
0: हमें प्रोजेक्ट रिपोर्ट सही हुआ तो तम इसमें भी अप्लाई कर सकें।
1: जी
0: इसमें ट्रेनिंग हुआ जनाब, ऑनलाइन ट्रेनिंग हुआ जिसना EDP ट्रेनिंग के, उसके बाद 1 से लेकर 2 महीने के अंदर यो लोन बैंक में पहुँचा हुआ
1: जी डॉक्यूमेंट के लगे क्या इस वास्ते।
0: जनाब। इसका वास्ता डॉक्यूमेंट लगे, आधार, डोमेसाइल लगा, प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो DPR हुआ वो लगा, सर्टिफिकेट लगा, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट ना पढ़े लिखे
1: जी जी
0: कितना है, उसके बाद फोटो लगा, अच्छा बैंक डिटेल यानी बैंक की कॉपी वगैरह,
1: जी
0: ये भी हम ऑनलाइन अप्लाई कर सकें।
1: तो इस हर एक फायदा चाह सके कि
0: जी
1: इसके
0: जी
1: बीच
0: जी
1: भी
0: जी
1: तालीम को कोई
0: ना
1: मतलब
0: ना
1: दस्या
0: इसमें
1: हुआ।
0: 8th पास है, लेकिन हूँ इन्होंने 8th पास के अलावा भी इसमें लोग अप्लाई कर सकें।
1: जी तो फैल साहब एक मेन स्कीम जुड़ी है कैसी सी, हम देखा कि हर एक इसकी कार्ड चला है, हर एक इसके वास्ते अप्लाई करने की कोशिश करा है, और ज़्यादातर लोग जुड़ा है ना उन्होंने कैसी सी ले रखी हुई है, हम इसके बारे भी गल करा का, लेकिन इतने अपना समीन वास्ते इस स्कीम पर गल करूँ तो पहला पेश कर दिया जगजीत सिंह जिदवी की आवाज़ के बीच यू खूबसूरत जो गीत।

खारा बेरा कदे कदे खुशियों की पलरात गुजारी हो सवेरा कदे कदे हो सवेरा कदे कदे इस जामा भी लगे हुए था खारा बेरा कदे कदे खुशियों की पलरात गुजारी हो सवेरा कदे कदे हो सवेरा।

0: जी हाँ सामी, नाम जगजीत सिंह जिरवी ने सुन रहा था। तो फैल साहब, जिस तरह इस गीत से पहले हमने गाल छेड़ी थी कि कैसी सी लोन जुड़ो है, हर एक आदमी ने कैसी सी लोन लेकर रखे हुआ है, के फायदा है कैसी सी लोन को और है के यू।
1: जनाब, केसीसी लोन को सबसे पहला दसवां फुल फॉर्म हुआ किसान क्रेडिट कार्ड।
0: जी
1: ये केसीसी लोन दो तरह का लोन है। एक
0: जी
1: केसीसी हुआ जनाब जुड़ो माल मवेशी पर मिला,
0: ठीक
1: एक केसीसी लोन हुआ जुड़ो जमीन पर मिला। पहला
0: ठीक
1: गल करा हम माल की, इसमें एक बैंक जीडी है वो अपना अलग एक गांव पर पैसा दिया, दूजी बैंक उसकी रेट अलग दे दिया।
0: ठीक
1: जन अगर मेरा दो गांव है, मेरा
0: जी
1: केसीसी लोन अप्लाई करना, तो अगर हूँ जम्मू कश्मीर बैंक से अप्लाई करूँ को
0: ठीक,
1: वो मैंने
0: एक
1: एक
0: गांव
1: गांव
0: को
1: को
0: 60,000
1: 60,000 दे।
0: रुपये दे जी
1: जी इसी तरीका से अगर हूँ करूँ गल ग्रामीण बैंक की,
0: जी
1: वो 1,06,000 रुपये एक गांव पर दे।
0: जी
1: अगर गल करा स्टेट बैंक की, तब वह एक गांव पर 82,000 रुपये
0: जी
1: यू केसीसी लोन दे।
0: ठीक
1: सबसे बेहतरीन लोन है इस वास्ते हूँ कहूँ लोगों की, इसमें इंटरेस्ट रेट जो है 4% है,
0: ठीक
1: लेकिन अगर तुम मतलब जुड़ो उसको इंटरेस्ट वगैरह वक्त पर ना पड़े वो 7% तक चला, या
0: ठीक
1: तो हमने इसमें
0: को रीपेमेंट का मसला क्या है,
1: हाँ
0: किस हिसाब ने
1: रीपेमेंट को
0: इसकी
1: इसको
0: किस्त
1: कोई
0: कहनी रहा
1: मसला।
0: है, क्या
1: जी
0: चीज़
1: जी
0: है।
1: जी रीपेमेंट दरअसल नाम ही तो के पता चला कि किसान क्रेडिट कार्ड है,
0: ठीक
1: तो थारा वास्ता एक क्रेडिट कार्ड है, तो हमने
0: ठीक
1: इसकी रीपेमेंट नहीं करनी। दो
0: हाँ
1: मिनट वास्ता मैं आज 1,00,000 रुपये लोन ले लियो
0: ठीक,
1: और मैं ना यो 1,00,000 रुपये जुड़ा है यो
0: गवर्नमेंट ने वापस करना
1: वापस
0: है
1: करना है, लेकिन मैं 12 महीने में वापस ना कियो,
0: ठीक
1: मेरा कोई मजबूरी थी, मैं एक किस्त भी ना पारी।
0: ठीक
1: 12 महीने में जिस डेट पर मैं ये लोन लिया
0: लियो
1: उस
0: है
1: डेट में मैंने ये रिन्यू करना है दूजा साल वास्ते।
0: ठीक
1: और तुम पूछें का फिर फायदों की आया बैंक को, बैंक को यू फायदा आयो कि 4% का हिसाब थे, अगर बैंक ना 6,000 रुपये इंटरेस्ट चढ़े हुए हो,
0: ठीक
1: बैंक उस टाइम तुमने कहा कि भाई 6,000 रुपये भरो इसको रिन्यू करो,
0: ठीक
1: तुमने 6,000 रुपये भरना है, थारो जुड़ो लोन है 1,06,000 वो जित को है
0: उते ही है,
1: उत्ते है, वो काटनी हो से बैंक न के था गियो,
0: छः
1: इंटरेस्ट
0: हजार
1: था
0: रुपये अपना
1: गियो,
0: इंटरेस्ट था गया
1: थारो लोन जीते उत्ते है।
0: ठीक।
1: और तो हमने एक और स्कीम
0: और
1: सोची,
0: अगर किसी को 6,000 रुपये भी नहीं उस टाइम बनता है, उसने कोई नुकसान हुआ इससे।
1: उसना नुकसान हुआ मुझे ज्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि उसना इंटरेस्ट ही है तो फिर 7% लग जाएगा,
0: 7%
1: पहला
0: लग
1: चार ही
0: जाएगा
1: परसेंट है,
0: ठीक
1: फिर अगर उसने उस वक्त पर ना भरे हो तो फिर उसना किसी भी सूरत में उस मतलब रिन्यू की जी डेट हुआ
0: जी
1: उसके बाद उसने मतलब अपना उस डेट पर अपना इंटरेस्ट भरना ही करना है।
0: ठीक हो गया यह चीज़। अब उसने और वापस करना है
1: वापस अगर करना जनाब, उस वापस करने में उसने क्या करना, अगर 2 मिनट वास्ता कोई बंदो इस जुड़ो का मेरा को 1 रुपये भी नहीं, 1 महीने में उसने 500 पर हो,
0: जी
1: दूजा मतलब ईएमआई पर,
0: ठीक
1: दूजा महीना में 10,000, तीजा
0: ठीक
1: महीना में 20,000,
0: ठीक
1: यानी करता करता करता करता रिन्यू की डेट आई ना 1 साल की,
0: ठीक
1: उसमें जिस टाइम बैंक ने देखे हो तो उसको 50,000 रुपये बने हुए थे टोटल,
0: जी
1: 50,000 बीचों बैंक अपनों 6,000 रुपये या 4,000 रुपये।

0: इंटरेस्ट सारा
1: काट
0: कुछ
1: लिया
0: है,
1: कि
0: कट लिया कि बाकी जो बचे है वो
1: जी
0: लोन में काट हो जाओ।
1: जी
0: यानी कि 1,06,000 में लियो है, उस बीचू 50,000 में रीपेमेंट किया था, ये 50,000 बीचू 6 काट लियो बैंक ने, असल में कितना बचो 44,
1: 44,000
0: 1,00,000 बीचू 44 काट करो, वो जितना रह गया दूजा साल पर चले
1: उस
0: जाओ।
1: कैप पर फिर लग जाएगा,
0: हाँ
1: उस अमाउंट कैप पर फिर इंटरेस्ट
0: इंटरेस्ट
1: लगेगा।
0: वो दूजा साल पर चले
1: ठीक है,
0: जाता।
1: इस वास्ते हमने किस तरीके ना अप्लाई करना है और करंट रेस में लगे इसके के एलिजिबिलिटी है, के
0: जी जी
1: डॉक्यूमेंट
0: जी
1: देना
0: जी
1: है, इसके बारे में
0: इसमें
1: दसो।
0: ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना जनाब, इसमें सबसे पहले तुमने क्या करना, तुमने अपना एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट से राब्तो करना है,
1: ठीक
0: तो वो जो डॉक्टर है वो थारा डेरा आवा को,
1: जी
0: गाय ना देखा को,
1: जी
0: उसका कन्ना में टैग मारा को, फिर वो टैग ना ऑनलाइन करा को,
1: ठीक
0: यानी कि थारा नाम पर चढ़ा को
1: जी
0: गाना। तो उसके बाद तुमने केसीसी फॉर्म किसी भी सीएससी सेंटर से लेना है,
1: जी
0: फिलअप करना है, बैंक कॉपी, पैन कार्ड ते आधार, सिर्फ 3 डॉक्यूमेंट लगे,
1: जी
0: इससे ज़्यादा कोई डॉक्यूमेंट इसमें नहीं लगता, पैन कार्ड, बैंक कॉपी, आधार कार्ड,
1: आधार कार्ड
0: ते वो फॉर्म केसीसी फॉर्म
1: जी
0: वो लिख के तमना एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में पार छोड़ना,
1: जी
0: वो लीड बैंक ना चला को, लीड बैंक उसने फाइनेंस करके सेंक्शन करके पैसों बैंक ना चला छोड़ा,
1: जी
0: फिर बैंक तमना दे छोड़ा कि वेरिफिकेशन करा कि डेरा आके गाय का फोटो वगैरह तमना पहला गाय का नाच आके अप्लाई करता टाइम रखना है,
1: जी
0: टैग का भी फोटो, नाड़ खाड़ का भी फोटो।
1: एक तो गया मतलब हम गया का पर कैसे सी लोन ले सका, फिर हमारी जमीन जड़ी है ना उसके पर भी कैसे सी लोन जुड़े वो
0: जी
1: लियो
0: जी जी
1: जाए,
0: जमीन
1: किस
0: पर
1: तरीका
0: ले सकें
1: अपना।
0: जनाब मोहतरम, जमीन ना हम दो हिस्सों में कैटेगराइज करें, एक हुआ जनाब एग्रीकल्चर लैंड,
1: जी
0: एक हुआ हॉर्टिकल्चर लैंड।
1: जी
0: एग्रीकल्चर लैंड वो लैंड हुआ जिसमें नॉर्मल मकई वगैरह हुआ,
1: जी
0: हॉर्टिकल्चर वो हुआ जिसमें मतलब हम बाग वगैरह फसल शसल फ्रूट वगैरह हम
1: जी
0: उगाऊँ। तो इसमें जनाब अगर गल करा एग्रीकल्चर लैंड की, एक कनाल को 20,000 रुपये हुआ। जी
1: एग्रीकल्चर
0: जी
1: जी
0: जी
1: जी
0: अगर 5 कनाल हैं तो 1,00,000 रुपये,
1: ठीक
0: अगर गल करा हॉर्टिकल्चर की तो 50,000 रुपये एक कनाल को है,
1: जी
0: तो 4 कनालों को होगा कितना जनाब, 2,00,000 रुपये,
1: जी
0: 5 को होगा 2,50,000 रुपये।
1: इस वास्ते कैन अप्लाई करना है
0: इसका वास्ता भी सेम प्रोसेस है,
1: जी
0: लेकिन इसका वास्ता क्या करना, इसका वास्ता तमना पहला रेवेन्यू डिपार्टमेंट यानी कि पटवारी तहसीलदार से अपनी ज़मीन वगैरह जो है उसका कागज़ लेना है,
1: जी जी
0: फिर उन्होंने मार्क करवाना है,
1: जी
0: फिर तमना हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में लेना है
1: जी
0: अगर थारी ज़मीन हॉर्टिकल्चर है,
1: हॉर्टिकल्चर
0: अगर एग्रीकल्चर है फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में लेना है,
1: ठीक
0: फिर उसते मार्क करके तमना लीड बैंक में वो छोड़ देंगे,
1: जी
0: फिर लीड बैंक ते लोन आवास से दो वापस थारा उस बैंक में जिस बैंक ते तुमने अप्लाई किया जिसमें थारो अकाउंट
1: इसने
0: है।
1: भी हर एक बैंक इशू करा कि ना खाली जेके
0: जी जी
1: बैंक ही
0: इसमें
1: करा।
0: हर एक बैंक करा, इसमें हर एक बैंक
1: जी जी
0: करा,
1: इसके बीच इंटरेस्ट के रह के हिसाब ना इसको
0: इसमें भी इंटरेस्ट सेम रहा 4 से लेके 7%,
1: जी
0: 4 से लेके 7 ताँ का कि 4 नॉर्मल है, अगर
1: जी
0: ना पढ़े तो
1: फिर
0: 7 तक
1: साथ
0: जंप
1: है
0: कर जा।
1: जी जी जी
0: लेकिन इसमें मैन जो है इसमें एक प्रोसेस है क्या वो तो मैं समझा छोड़ू कि इसमें अगर तुम 3,00,000 रुपये लोन लेंगे,
1: ठीक
0: पहला साल 3,00,000 को 70%, 60 से लेके 70%,
1: जी
0: यानी कि 60 से लेके 70% पहला साल छोड़ेंगे,
1: ठीक
0: अदो
1: हाँ
0: दूजा साल फिर अदो छोड़ेंगे।
1: जी
0: हम तुम पूछेंगे कि फिर दूजा साल अदो क्यों छोड़ेंगे, क्योंकि यो केसीसी जो जमीन को है इसमें गवर्नमेंट यो का पहला साल अदो छोड़ेंगे ताकि यो अपना बाग ना दीवार बंदी करा,
1: जी जी
0: जेड़ा नवा नवा और लाना है दरख्त वो लावा,
1: जी
0: दूजा साल फर्टिलाइजर वास्ता दे अंका दो, यानी
1: जी
0: कि
1: दो
0: एक
1: किस्त में देती जाएगी
0: हाँ
1: ये।
0: पंजा किस्तों में चला
1: अच्छा
0: गया,
1: पंजा किस्त में
0: पंजा
1: देती
0: किस्तों में
1: जाएगी,
0: भी चला, त्रो किस्तों में भी चला, डिपेंड करा थारो लोन को अमाउंट कितना,
1: अमाउंट कितना, अमाउंट के
0: अगर
1: हिसाब पे
0: तमने
1: ना
0: 3,00,000 लियो 1,80,000 रुपये पहला साल आवा को,
1: जी
0: दूजा साल इसमें 30,000 रुपये,
1: जी
0: तीजा साल 40,000 रुपये, 5 सालों तक करके ये किस्तों में छोड़े
1: जी जी
0: ताकि किसान किस्तों में लेके अपना
1: जी
0: बाग ना तामीर कर सका असल
1: जी
0: तरीका।
1: जी फैल साहब तब हमारा स्टेडियम आया और गवर्नमेंट की कुछ स्कीम ने लेकर तमने हमारा सामीन तक जानकारी पहुँचाई, और वक्त हमारे को आज का प्रोग्राम काट बचे हुआ है जिसकी वजह से हम और स्कीमा के बारे थारे ना गल नहीं कर सकता।
0: जी,
1: इंशाल्लाह अगे फिर कितने मौका मिले तो तम ना हम जरूर एक बार फिर दावते हैं का। बहरहाल तब हमारा स्टेडियम आया, तमने बहुत अच्छी जानकारी हमारा सामीन तक पहुँचाई, थारा बहुत बहुत शुक्रिया।
0: जी शुक्रिया।
1: जी सामीन, इसके नाल ही हमारा आज का गोजरी प्रोग्राम का वक्त मुके लगो। प्रोग्राम का प्रोड्यूसर वसीम फारूक वानी ते अपना मेज़बान शौकत अमन बोक।

0: सुनिन, अभी आप समाप्त कर रहे थे आज का गोजरी प्रोग्राम। प्रोग्राम आपकी खिदमत में पेश कर रहे थे शौकत बौकड़ा। हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं, मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समीन, शाम के 5:50 होने वाले हैं, आइए गोजरी में खबरें सुनते हैं।
1: आदाब, यो आकाशवाणी श्रीनगर है, शाम का 5:55 ओयाई खबर नामो लेके आम हाजिर। पहला खास खास खबरों की सुर्खी। अनंतनाग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्यादत में मनुष्यात मुकाले पद यात्रा को इनकाद। जम्मू कश्मीर का सारा जिला में नशा मुक्त अभियान के तहत इंतजामिया और पुलिस की कार्रवाई जारी। सरकार नौजवानों की राहत रसानी वास्ते वादा बंद, नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी ते सविंदु अधिकारी ने मकरीबी बंगाल में बीजेपी सरकार का पहला वजीर आला की हैसियत नाल लियो हलफ। उन तफसील का नाल खबर सुनो। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग जिला ना मनुष्यात तो पाक करन वास्ते समाज का सारा तबका तो तावन तलब की है। हमारा अनंतनाग का नुमाइंदा तसदुक रशीद ने खबर दी है कि एलजी ने आज अनंतनाग में 22 डिग्री कॉलेज तो मनुष्यात मकाल पद यात्रा ना चंडी 10 के रवाना की हो, जिसमें काफी तादाद में तुलबा ताजरा और समाज का मुख्तलिफ तबका तो ताल्लुक रखने आला लोगों ने शिरकत की। मनोज सिन्हा ने खिताब करता हुआ क्योंकि मनुष्यात को नासूर समाज न खोखलो कर रहा और इस न खत्म करनो वक्त की अहम जरूरत है।
2: मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ, ये लड़ाई सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की नहीं, ये लड़ाई आपकी, ये लड़ाई मेरी, ये लड़ाई हम सबकी है। ये दिमाग नहीं जागेंगे तो आने वाली नस्लें शायद हमें माफ नहीं करेंगी। आइए हम अनंतनाग की जमीन से सब मिलकर एक वादा करते हैं कि हम अपने गाँव अपने मोहल्ले में किसी भी ड्रग पेडलर को पनपने नहीं देंगे। हम ड्रग के शिकार नौजवानों को रिहेबिलिटेट करने में पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेंगे। मेरा इस बात में दृढ़ विश्वास है कि जब आवाम किसी उद्देश्य के साथ खड़ा होता है तब उसकी ताकत दुगनी हो जाती है। जब पुलिस का डंडा, प्रशासन का कानून और आवाम की ताकत एक साथ मिलती है तो परिणाम ज्यादा प्रभावकारी होते हैं।
1: जम्मू कश्मीर ने मनुष्यात की बिदत पाक करन वास्ते 100 तैन पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मी तेजी नाल जारी है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा को सुनियो।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: नौजवानों ने इस बुरी आदतों दूर रखने वास्ते दरकार इकदाम के बारे में एक कलमकार और फिल्मसाज अली इमरान ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के नाल गल करता हूं। क्यों,
3: मेरा तो सिंपल सा पैगाम है कि मंशियात हमारी जड़ों को खोखला कर देती है। पूरे जम्मू कश्मीर का यूथ इससे खत्म हो जाएगा, हमारा फ्यूचर बिल्कुल अंधेरे में चला जाएगा। इसलिए मेरी मौतमाना अपील है सारे यूथ से कि वो ड्रग से दूर रहे। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं चाहता हूँ कि वो और इस पे तेजी लाए ताकि ये बिद्दत हमारे जम्मू कश्मीर से पूरी तरह खत्म हो जाए।
1: मनुष्यात के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखता हुआ पुलिस ने जम्मू सूबा का उधमपुर जिला में मजालटा का मुकाम पर एक तलाशी कार्रवाई के दौरान बोहरी कदल श्रीनगर का रहने आला मोहम्मद मोहसिन और राजौरी कदल श्रीनगर का रहने आला मोहम्मद राकिब ना नशीली एशिया समेत गिरफ्तार कियो। रियासी पुलिस ने अजय सिंह और जमात अली नामी दो ड्रग स्मगलर ना गिरफ्तार कियो। कठुआ में मस्किन नामी मनुष्यात फरोश ना हिरासत में ले लियो। इस दौरान डोडा

0: इससे यूथ से लेकर बुजुर्ग तक लोग वाबस्ता है।
1: प्रोग्राम का मकसद का 12वां फोरम का जनरल सेक्रेटरी गुलशन बद्रनी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर न दस्यो।
2: इस प्लेटफॉर्म पे फनून लतीफा से वाबस्ता मुख्तलिफ लोग, जिसमें मुसव्विर भी, संतराज भी, मौसीकार और खुसूसी तौर कलमकार, शोरा, अदबा इस प्लेटफॉर्म पे जमा हुए। और जमा करने का मकसद ये है कि इसमें नवनिहाल शोरा भी शामिल हो जाएंगे और बुजुर्ग शोरा भी, जिनसे हम सीखते हैं, और सिखाने वाले भी और सीखने वाले भी एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा होके अपने मामलात, अपने तकलीकात को शेयर करते हैं और देखते हैं कि मौजूदा ट्रेंड क्या है। इससे तहरीक भी मिल जाती है उनको, सीखने का मौका भी मिल जाता है सबों को, और एक वलवला, एक तहरीक, एक जोश पैदा हो जाता है उनमें। इस तरह ये जो फनून लतीफा से वाबस्ता लोग, उनकी रेस्पिरेशन बढ़ जाती है और वो आगे बढ़ जाते हैं।
1: तो इसके नाल ही यो खबरनामो मोक्यो। मारो खबरों को अगलो, मारो का अगलो खबरनामो शाम 6:05 पर आकाशवाणी तो कश्मीरी में नशर वागो। दियो इजाजत।

0: ये जो फनून लतीफा से वाबस्ता लोग उनकी रेस्पिरेशन बढ़ जाती है और वो आगे बढ़ जाते हैं।
1: तो इसके नाल ही यो खबरनामो मुक्यो। मारो खबरों को अगलो मारो का अगलो खबरनामो शाम 6:05 पर आकाशवाणी तो कश्मीरी में नशर वागो। दियो इजाजत, अल्लाह हाफिज़।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं। राज्य में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में ऐतिहासिक जीत दर्ज करते हुए तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया है। कोलकाता की ब्रिगेड परेड ग्राउंड में राज्यपाल आरएन रवि ने श्री शुभेंदु अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सहित देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, खुदीराम टुडू और निशीत प्रामाणिक ने मंत्री के रूप में शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी के आदर्शों पर आधारित राजनीतिक दल को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। श्री अधिकारी ने कहा कि गुरुदेव की जयंती के शुभ अवसर पर पार्टी ने शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया।
1: आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है देश के लिए, बंगाल के लिए। इसलिए प्रधानमंत्री का इच्छा था नया सरकार रविंद्र जयंती का दिन अपना कार्यकाल शुरू करे। इसलिए हम लोग प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में गोवि गुरु को प्रणाम करते हुए आज संविधान को मानते हुए ओथ टेकिंग किया।
0: आज गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की 165वीं जयंती है। इस अवसर पर शांति निकेतन, विश्व भारती विश्वविद्यालय और बांग्लादेश सहित दुनिया भर में सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पोचिशे बोईशाख के अवसर पर गुरुदेव को श्रद्धांजलि अर्पित की। त्रिपुरा में भी गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर की जयंती सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाई गई। तमिलनाडु में बहुमत हासिल नहीं कर पाने के कारण नई सरकार के गठन में और देरी हो रही है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एमए बेबी ने कहा कि राज्यपाल का ये कर्तव्य है कि सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्यपाल केंद्र के इशारों पर काम कर रही हैं। केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा। पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना में लगभग 1,535 करोड़ रुपए की रेलवे अवसंरचना परियोजनाओं का लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे, जिनमें 118 किलोमीटर लंबी काजीपेट विजयवाड़ा मल्टी ट्रैकिंग परियोजना और काजीपेट रेल अंडर रेल बाईपास का उद्घाटन शामिल है। श्री मोदी कल शाम सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पीएमजीएसवाई की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रजत जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान पीएमजीवाई के चौथे चरण का भी शुभारंभ

0: आरंभ किया जाएगा। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवाई ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम अठ मीटर तो एफ एम अख त्रेशारिया पांच मेगाहर्ट्ज़ पे समय शाम 6 बजे तो 5 मिनट सप्ताह।

0: आकाशवाणी श्रीनगर। अपनी घड़िया मिलाइए, शेरबीन टाइम शाम के 7 बजे।
1: प्रोग्राम शेरबीन आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन कर रहे हैं खैबर सीमेंट। मजबूती और पायदारी की जमानत खैबर सीमेंट। अपनी तामीरात दिल से बनाइए।
0: शेरबीन के समीन को अशफाक लोन का सलाम पहुंचे। आज के खास मौजूदात हैं, 100 रोजा नशा मुक्त मुहिम अनंतनाग पहुंच गई, लेफ्टिनेंट गवर्नर ने समाज के हर तबके से तआवुन की अपील की, बड़गाम कस्बे में पीडीपी की रैली, पीडीपी सदर ने सरकार को बनाया हदफ तनकीद, डोडा जिले में स्वच्छ भारत अभियान नाकामियों का शिकार, और जम्मू कश्मीर के लिए वाजे सनती पॉलिसी का मुतालबा, तिजारती और सनती सेक्टर का। मौजूद की तफसील जरा देर बाद।
2: मोहब्बत वही जो दिल से हो, बात वही जो दिल से कही जाए, दोस्त वही पक्का जो दिल से साथ निभाए, रिश्ता वही बेजोड़ जो दिल से जोड़ा जाए। दिल से ही तो होते हैं इरादे चट्टान से, दिल से ही तो बनते हैं घर खाली मकान से। इसलिए खाइबर सीमेंट का जर्रा जर्रा दिल से बना है। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ।
3: सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों ना बढ़ा लूँ।
4: तो रोका किसने है, हाँ?
3: रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं।
4: मुझसे।
3: तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर।
4: आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है।
3: पर उससे मेरा क्या फायदा?
4: देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ।
3: पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं?
4: बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो,
5: 9018074333।
6: 9018074333।
7: आज आई मेन मेडिकल रिपोर्ट तो मेरे शरीर से विटामिन ई तो विटामिन बी कमी द्रामस।
8: तो क्या शक्ने फोर्टिफाइड दूध तो फोर्टिफाइड तेलों का इस्तेमाल करान?
7: मगर ये फोर्टिफाइड आसान क्या छो?
8: फोर्टिफाइड दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में त्रावने यवा, विटामिन ए छो साने इम्यूनिटी बढ़ावान तो विटामिन डी छो अड़जी मजबूत करान, दूध तो तेल छो बराबर मकदारस में।
7: मगर यह है आज सठा द्रो?
8: हाँ ना ना, सुई कम मत मज मुशक ते सुई छो बेहतर पोषण दिवान।
9: पनुन तो पन्ने आयाली जिंदगी बनाई सेहत मंत प्लस एफक निशान वोल फोर्टिफाइड फूड पान नयो बाजरस मज दस्तिया फोर्टिफाइड वसाइलन हिं जानकारी खतर करियो www.ffrc.fssai.gov.in पर टाइप।
10: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन J&K।
11: बस एक बार, सिर्फ एक बार, और हर बार लगता है क्या ही तो हो जाएगा, सेफ है यार। लेकिन ड्रग्स सिर्फ एक बार का मजा नहीं देता, धीरे धीरे सेहत, दोस्ती, सपने और जिंदगी पर असर डालता है। किडनी और लिवर खराब होने लगते हैं, बेचैनी और तन्हाई बढ़ने लगती है, दिल तेज धड़कने लगता है और सोच धुंधली पड़ती है और रिश्तों में दूरी आने लगती है।
12: पर क्या कर सकते हैं?
11: गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर लेकर आए हैं नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान। बस अभी टेलीमानस हेल्पलाइन 14416 पर कॉल करो, यहाँ सुनते हैं बिना जज किए, समझते हैं और मदद भी करते हैं। अगर कोई और भी इस दौर से गुजर रहा है तो समय रहते रिपोर्ट करने से एक जिंदगी बच सकती है।
13: आओ चले और एक नया रास्ता चुने, जिंदगी की असली पहचान बचाए और बनाए नशा मुक्त जम्मू एंड कश्मीर। से नो टू ड्रग्स, यस टू लाइफ। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर।
14: अरे माँ देखो एक्सीडेंट, रुकना पड़ेगा, मैं मदद करके आता हूँ।
15: रहने दे बेटा, इतनी झंझट में क्यों फंसना? पुलिस केस हो गया तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाने पड़ेंगे।
14: नहीं माँ, अब ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट की पीएम राहत स्कीम आ गई है, ये गोल्डन आवर है माँ, अभी मदद मिल जाएगी तो इसकी जान बच जाएगी।
15: पर बेटा हॉस्पिटल जाते ही वो एडवांस पैसे मांगेंगे, कहाँ से आएंगे इतने पैसे?
14: माँ इसमें कैशलेस ट्रीटमेंट मिलता है, 1.5 लाख तक का इलाज और 7 दिन का खर्चा सरकार देगी, 1 रुपया एडवांस नहीं देना पड़ेगा।
15: और वो पुलिस, वो तो तुझे तंग करेंगे ना कि कैसे हुआ, कहाँ से लाया।
14: माँ अब सख्त रूल्स हैं, नो हरासमेंट, मदद करने वाले को राहवीर माना जाता है, मुजरिम नहीं, पुलिस परेशान नहीं कर सकती।
15: सच में? फिर तो बेटा देरी मत कर, जल्दी जा।
14: हाँ माँ, आप बस 112 डायल करके एम्बुलेंस बुला लो, पेपर वर्क अब सिस्टम हैंडल करेगा, हमें बस इंसानियत दिखानी।

0: है।
1: शुक्र है, अब डर या पैसे की वजह से किसी की जान नहीं जाएगी।
0: वही तो माँ, पीएम राहत, इलाज पहले पैसे बाद में, 112 डायल करें जिंदगी बचाएं।
2: इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
3: शर्वीन, आप आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवा के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। समय रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजसुब्रमण्यम को मुल्क का नया चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस और वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन को नया नेवल चीफ मुकर्रर किया गया है। वजीर के लेफ्टिनेंट जनरल राजसुब्रमण्यम जनरल अनिल चौहान की जगह लेंगे, जिनकी मुद्दत मुलाजमत 30 मई को मुकम्मल हो रही है, जबकि वाइस एडमिरल स्वामीनाथन एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी की जगह बहरिया के सरबराह की जिम्मेदारियां संभालेंगे, जो 31 मई को रिटायर हो रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रमण्यम फौजी उमूर महकमे के सेक्रेटरी के तौर पर भी अपनी खिदमत अंजाम देंगे। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मनुष्यात की वबा सिर्फ एक समाजी बुराई नहीं बल्कि दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से जुड़ा एक खतरनाक नेटवर्क है, जिसके खात्मे के लिए समाज के हर तबके को मुतहिद होकर खामोशी तोड़ना होगी। उन्होंने कहा कि मनुष्यात और दहशतगर्दी एक ही सिक्के के दो रुख हैं और दोनों के खिलाफ इज्तमाई जंग नागुजीर है। वजीर के एल जी मौसूफ ने आज अनंतनाग में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत मुनक्किद पद यात्रा के सिलसिले में एक तकरीब से खिताब किया। उन्होंने अवाम बिलखसूस नौजवानों, खवातीन, असातिजा, खिलाड़ियों और मजहबी रहनुमाओं से अपील की कि वो मनुष्यात के खिलाफ जारी इस मुहिम को एक अवामी तहरीक की शक्ल दें। एक रिपोर्ट के साथ अनंतनाग से एस तारिक।
4: दो रोजा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत आज जिला अनंतनाग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्यादत में एक अजीम शान और तारीखी पद यात्रा का इनेकाद किया गया, जिसमें हजारों अफराद ने शिरकत करके मनुष्यात के खिलाफ मुतहिद होने का अजम दोहराया। इस सिलसिले में जिला इंतजामिया, जम्मू कश्मीर पुलिस, सिक्योरिटी एजेंसियों और मुतलिका महकमों की जानिब से मुकम्मल और जामे इंतजाम किए गए थे, जबकि मार्च के पेश नजर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम भी अमल में लाए गए थे। तफसीलात के मुताबिक पद यात्रा और मरकजी तकरीब का आगाज सुबह के वक्त शहीद जमायू गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बॉयज हनबल अंतनाग से हुआ, जहाँ मुनाकदा रिकॉर्ड तोड़ तकरीब में मुख्तलिफ तबके हाई फिक्र से ताल्लुक रखने वाले हजारों अफराद ने शिरकत की। नशा मुखालिफ बेदारी मुहिम के तहत निकाली गई इस पद यात्रा में मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा, नौजवानों, समाजी तंजीमों, ताजिर अंजुमनों, सरकारी मुलाजमीन, मजहबी इदारों, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स और मुख्तलिफ सियासी जमातों के नुमाइंदों ने भरपूर शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क्यादत में निकाली गई इस पद यात्रा में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग, डीआईजी साउथ कश्मीर, एसएसपी अनंतनाग समेत मुख्तलिफ मेंबरान मुकन्निना और एरा अफसर भी शरीक थे। इस मौके पर खिताब करते हुए लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मंशियात के खिलाफ सख्त पैगाम देते हुए कहा कि वो इन माओं के दर्द को बखूबी महसूस करते हैं, जिन्होंने मंशियात की लानत के बायस अपने बच्चों की जिंदगियां तबाह होते देखी है, जबकि कई खानदान ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने रक्त जिगर हमेशा के लिए खो दिए। उन्होंने कहा कि खौफ, समाजी दबाव और बदनामी के डर से मुतासर खानदान खामोशी थे, तहम हुकूमत ने इस मुहिम के जरिए इनकी खामोशी तोड़ने और समाज को बेदार करने की संजीदा कोशिश की है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि अवाम, खसूस नौजवानों के वालाना शिरकत इस बात का वाजह सबूत है कि लोग जम्मू कश्मीर को मंशियात से पाक बनाने के लिए संजीदा और पुरअज़म है। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की जानिब से शुरू की गई नशा मुक्त भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर में 100 रोजा नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान का आगाज किया गया, ताकि नौजवान नस्ल को मंशियात की वबा से महफूज रखा जा सके और एक सेहतमंद, बावेकार और खुशहाल मुआशरा तश्कील दिया जा सके। उन्होंने मजीद कहा है कि अगर सिर्फ 100 दिनों में मुकम्मल तौर पर मंशियात से पाक मुआशरा कायम करना आसान नहीं, तमाम इस मुहिम के जरिए इस लानत के खात्मे की जानिब एक मजबूत और मौतर पेशरफ्त जरूर मुमकिन है। एल जी मसरूफ ने मंशियात के खिलाफ जारी बेदारी मुहिम और पुलिस की कार्रवाई को सराहते हुए कहा कि जम्मू कश्मीर पुलिस मंशियात फरोशों और इस नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई अंजाम दे रही है, ताकि इस नासूर को जड़ से खत्म किया जा सके।

0: इस मसले पर हम उसी की वजह से अनेक नौजवान बच्चे बच्चियां अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाए और आज भी उनके माँ बाप के दिल में इस बात का गहरा दर्द लगता है कि मैं उनसे मिलता हूँ। वो दर्द मैंने स्वयं अनेक माताओं और नौजवानों की आंखों में देखा है, महसूस किया। 29 दिन पहले आवाम ने जम्मू के एमए स्टेडियम में उस खामोशी को तोड़ने का एक अभियान शुरू किया और आज ये धीरे धीरे कैसे जन आंदोलन का स्वरूप होता जा रहा है, जिसमें पहली बार हर नागरिक दल की चुनौती का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल रूप से तैयार हुआ। उन्हें जम्मू कश्मीर ने एक संकल्प दिया था कि ड्रग एडिक्शन के खिलाफ अंतिम प्रहार करना होगा। 3 मई को श्रीनगर में बड़ी संख्या में आए हुए नागरिकों ने एक स्वर में हलफ उठाया था कि पूरे जम्मू कश्मीर से ड्रग को पूरी तरह समाप्त करके ही हम चैन से बैठेंगे। आज मैं अनंतनाग में उस माँ के बारे में आपसे बात करने आया हूँ जिसका बेटा ड्रग का शिकार हो गया। आज मैं आपको उस पिता की याद दिलाना चाहता हूँ जो अपनी संतान के अधूरे ख्वाबों को अपने कंधों पर ढो रहा। आज मैं उस टीचर का दुख बांटने आया हूँ जिसके खिलाफ एक होनहार विद्यार्थी ड्रग का शिकार हो गया। यही वो सच है जिसके बारे में हमें आपस में भी खुलकर बात करनी चाहिए और उसका मुकाबला करके कहेंगे कि ड्रग की वजह से हमारी आंखों के सामने छीना जा रहा है, इसे जड़ से समाप्त करने के लिए भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2020 में नशा मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की थी। उसके पश्चात जम्मू कश्मीर में भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जब हमने अपने साथियों के साथ बैठकर 100 दिन का अभियान तय किया, मैं जानता हूं कि 100 दिन में नशा पूरी तरह समाप्त नहीं होगा, लेकिन एक निर्णायक प्रहार नशे के खिलाफ करने की कोशिश है और अगर कुछ जिंदगियों को हम बचा सके तो मैं समझता हूँ ये बड़ी भारी उपलब्धि होगी।
1: तकलीफ में शरीक नौजवान समाजी कारकुनों और दीगर सरकार ने भी हुकूमत के इस इकदाम को सराहते हुए कहा कि ये मुहिम नई नस्ल को तबाही से बचाने, नौजवानों को मजबूत सरगर्मियों की जानिब राग़िब करने और समाज को मंशियात से पाक बनाने में अहम किरदार अदा करेगी। सरकार ने मुतालबा किया है कि ये मुहिम उस वक्त तक जारी रखी जाए जब तक माशरे से मंशियात का मुकम्मल खात्मा मुमकिन न हो जाए।
2: नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत अनंतनाग में पद यात्रा का इनकाद, इस तारीख की रिपोर्ट आपने सुनी। इधर त्राल से शबीर भट्ट की इतला है कि नशा मुक्त अभियान के सिलसिले में आज इंतजामिया की तरफ से डाड़सरा त्राल में एक मेगा रैली का एहतमाम किया गया जिसमें मेंबर असेंबली त्राल रफीक अहमद नायक, एडीसी त्राल साजिद याहिया नकाश, औकाफ अराकीन, सेवक फोरम और आम लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर इंसदाद मनशियात मुहिम के हवाले से हल्फ उठाया गया। इसी तरह नूर पब्लिक स्कूल नूरपुरा में भी नशा मुक्त अभियान के सिलसिले में एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया जिसमें साबिक डीडीसी मेंबर त्राल डॉ. हरबख्श सिंह ने शमूलियत की। उन्होंने इस मौके पर शराब की फरोख्त पर भी पाबंदी की वकालत की। वरिष्ठ नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम के तहत आज सिविल सोसाइटी पट्टन के एहतमाम से हायर सेकेंडरी स्कूल पट्टन में एक तकरीब का इनेकाद किया गया जिसमें सिविल और पुलिस इंतजामिया के अलावा तलबा व तालिबात, दानिश्वरों और मकामी जी हिस अफराद ने शिरकत की। सिविल सोसाइटी पट्टन के चेयरमैन सलीम फारूक वानी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया जबकि सहाफी राही निसार ने निजामत के फराइज अंजाम दिए। इस मौके पर इदारे शरई शरईया पट्टन के मुफ्ती तारिक रहमानी और हाजी गुलजार अहमद के अलावा इंतजामिया की तरफ से SDM पट्टन डॉ. गुलजार अहमद, तहसीलदार पट्टन डॉ. हारून, BDO पट्टन गाजी अब्दुल्ला, प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल पट्टन फयाज फहीम और SHO पट्टन मुदसर अहमद ने भी खिताब किया। इधर आज PDP की सदर और साबिक वज़ीर-आला महबूबा मुफ्ती ने एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए नशा मुक्त जम्मू कश्मीर मुहिम को रूबामर लाने के वतीरे पर अपना एतराज जताते हुए कहा कि मुहिम में जिंदगी के मुख्तलिफ शुबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों को शामिल करना ना इंसाफी है। उनके बकौल वादी कश्मीर में नशे का रुझान 2019 के बाद से खासा बढ़ गया है। PDP सदर ने अपनी तकरीर में सरकार की रिजर्वेशन पॉलिसी को भी हदफ तनकीद बनाया। वाज़ेह है कि PDP की रैली आज बड़गाम कस्बे में मुनाकिद हुई।
3: अनंत नागस नशा मुक्त अभियान मगर तमाम मुलाजमन सुख मिलन आज डायरेक्शन दिला सुबह 6:30 बजे के फलन जाएगा यथ मज वस्तुराज लड़की सुबह 6:30 तुम्हें बात हो। मैं गवर्नर साहब से कहना चाहती हूँ नशा मुक्त अभियान आप कर रहे हैं।

0: हर घर की आवाज शहर भी नब आकाशवाणी श्रीनगर से मीडियम वेव और एफएम के अलावा आकाशवाणी कुपवाड़ा और भद्रवाह के साथ साथ डीटीएच और आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर सुन रहे हैं। मरकजी वजारत सकाफत के इश्तराक से गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर ने बदरन मागाम में आज से तीन रोजा अदबी और सकाफती कॉन्फ्रेंस जश्न समनबल का इनेकाद किया। कॉन्फ्रेंस की इफ्तिताही तकरीब में चेयरपर्सन जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड डॉ सैयद दरख्शां अंदराबी ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। तकरीब की सदारत मारूफ अदीब शायर और नसर निगार प्रोफेसर गुलशन मजीद ने की, जबकि साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल दूरदर्शन डॉ रफीक मसूदी मेहमान जीविकार की हैसियत से मौजूद थे। तकरीब में मारूफ ब्रॉडकास्टर और शायर डॉ सतीश विमल ने कलीदी खुतबा पेश किया, जबकि फोरम के जनरल सेक्रेटरी गुलशन बदरनी और सदर सैयद बशीर कौसर ने कॉन्फ्रेंस के अगराज व मकासिद और असरी अदबी मंजरनामे पर रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस के हाशिए पर मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉ दरख्शां अंदराबी ने सकाफती सरगर्मियों की अहमियत उजागर करते हुए इनसे नौजवान नस्ल को ज्यादा से ज्यादा वाबस्ता करने पर जोर दिया। इलावाजी उन्होंने मगरबी बंगाल की हालिया सियासी सूरत हाल पर तबसरा करते हुए कहा कि हिजब इख्तलाफ जहां इलेक्शन जीतती है वहां की बात नहीं करती, अलबत्ता हार जाए तो एतराजात करती है।
1: कल्चरल फोरम का प्रोग्राम यहां गुलशन बदरनी साहब ने यहां पे किया है, इसमें तमाम अदीब शौरा जो जम्मू कश्मीर से हैं वो यहाँ पे इकट्ठे हुए। ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोग्राम है और उनके टाउन से ये मुनक्कद किया जा रहा है और ये प्रोग्राम अशद जरूरत है अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए। आलमी सतह तक ये कश्मीरी जुबान बोली जाती है और हमें उम्मीद है जो यहाँ से वाबस्ता जो अदीब है, स्कॉलर्स हैं, अब क्रिटिक्स जो हैं यहाँ पर, ये आलमी सतह तक पहुंचे हैं और यहाँ सारे पद्मश्री वगैरह ये कश्मीरी जुबान में दिए हैं। गुलशन कल्चरल फोरम एक ऐसा इदारा है जिससे यूथ से लेकर बुजुर्ग तक लोग वाबस्ता है। कोशिश है कि हम ये सारा काम जो वक्फ बोर्ड कर रहा है वो आगे मजीद बढ़े और इसमें ज्यादा हम तरक्की करें।
2: बंगाल के हवाले से वोट चोरी के इल्जाम लगाई जा रही है टीएमसी के
1: अंदर। देखिए, केरला में रिजल्ट आ गया, तमिलनाडु में रिजल्ट आ गया, वहाँ क्यों नहीं चोरी के इल्जाम लगे? क्योंकि वहाँ दूसरी पार्टियों ने जीता, यहाँ बीजेपी ने जीता, तो इसलिए चोरी का इल्जाम है। हम चाहते हैं कि जो वहाँ पे लोगों ने 15 साल इस्तेसाल सहा है उसका जो जवाब आज मिला, फुल बहुमत से वहां बीजेपी आई है, वहां डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन और प्रोस्पेक्टिव मोदी जी के नेतृत्व में होगी और वहां के लोगों ने यही देखा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरह से पूरे मुल्क को आबाद किया और अब वेस्ट बंगाल भी डेवलपमेंट की तरफ बढ़ेगा।
0: ये थी जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सैयद दरख्शां अंदराबी, जिन्होंने आज जश्न समनबल में मेहमान खसूसी की हैसियत से शिरकत की। इधर आज सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल बारामुल्ला में यौम महजूर के सिलसिले में एक अदबी तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें तलबा और असातिज़ा ने शायरी कश्मीर महजूर की जिंदगी और अदबी खिदमात पर रोशनी डाली। तकरीब के दौरान महजूर के मशहूर गीत और नज़में पेश की गईं। इस मौके पर माहिर तालीम नज़ीर इब्न शहबाज बतौर मेहमान खसूसी, जबकि शायर और कलमकार सागर नज़ीर बतौर मेहमान ज़िविकार शरीक हुए। सागर नज़ीर को कश्मीरी जबान और अदब, जबकि नज़ीर इब्न शहबाज को तालीमी मैदान में नुमाया खिदमात के सिले में अवार्ड से नवाजा गया। तकरीब की सदारत स्कूल के प्रिंसिपल सुरेश ब्रिटो ने की। मजलिस शाहबान खुईहोम के सदर और अदब व सकाफत कश्मीर के चेयरमैन मोहम्मद मुनव्वर परवाना के बिरादर असगर अब्दुल मजीद वानी साकिन मुनवराबाद गुंड कैसर बांडीपुरा आज इंतकाल कर गए। मरहूम के इंतकाल पर मुख्तलिफ समाजी अदबी शख्सियात ने रंज का इजहार करते हुए सोगवारा से ताजियत की है। मरहूम का जहारुम 12 मई मंगलवार को उनके आबाई गांव में अंजाम दिया जाएगा। इधर दूरदर्शन के साबिक एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉ रफीक मसूदी के चचा और नामवर दानिश्वर सैफी सोपोरी के बिरादर गुलाम हसन मसूदी का इंतकाल हुआ है। मुमताज राइटर्स फोरम कलंतरा पाइन, रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन के सदर साहिल डार और मुख्तलिफ समाजी अदबी हलकों ने उनके इंतकाल पर गहरे रंज का इजहार करते हुए सोगवार खानदान से ताजियत की है। समन चंद्रगीर हाजिन सोनावारी में कल दरिया जेहलम में तीन नौजवानों के डूब जाने के वाकये पर पूरे इलाके में सफे मातम बिछ गई है। जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले सैकड़ों लोगों की तादाद आज और कल जांबाग हुए नौजवानों के लवाहकीन की ढारस बंधाने के लिए उनके घर पहुंची। इसी दौरान आज एमएलए सोनावारी, एडवोकेट हिलाल अकबर लोन, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के लीडर इम्तियाज परे, एसएसपी बांडीपुरा एजाज अहमद जरगर, सामाजिक कारकुन शेख कवामुद्दीन शिलवती और एसडीएम सुंबल शेख मुर्तजा ने आज फौत हुए नौजवानों के लवाहकीन के घर जाकर उनकी ताजियत पुरसी की। اوڑی سے ظفر اقبال نے خبر دی ہے کہ علاقے کے نورکھا گاؤں میں محکمہ وائلڈ لائف نے آج ایک سیاہ ریچھ کو پکڑ لیا۔

0: पैसे बाद में 112 डायल करें, जिंदगी बचाएं। इश्यूज इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय ऑफिस ऑफ द ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू एंड कश्मीर।
1: आदाब, यह आकाशवाणी श्रीनगर शाम के 7:30 खबरनाम हूँ मीर तारिक गोड़ हेडलाइन पे अख नजर। अनंत नाग लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सदारत मंशियात मुखलिफ पदयात्रा मुनद। जम्मू कश्मीर कैन सारे जिलन मज नशा मुक्त अभियान तहत इंतजामिया तो पुलिस की कार्रवाई जारी। सरकार नौजवानों राहत वातन बाप पादस पे डट नई वजीर अला सुरेंद्र कुमार चौधरी। तो सुविंदु अधिकारियों तुल मगरबी बंगाल में बीजेपी सरकार किस गिकस वजीर अला सिंद हैसियत हल। पेश खबर तफसील। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा अनंत नाग जिले मनशियात निश पाक कर बाप समाज कन सारे तबकन अथवास तलब कर्मुत। वसीलों मुताबिक कर तमो आज अनंत नाग 22 डिग्री कॉलेज पे मनशियात मुखालिफ पदयात्रा झंडे हवि रवान यथम काफी तदाद में तलब इलमों ताजरो तो समाज कन मुख्तलि तबकन सल्लुक थन वालों लोको शिरकत कर। मनोज सिन्हा वोन खताब करान मनशियात नासूर समाज खोखुर करान अमुक चार कर वक्त अहम जरूरत। जम्मू कश्मीर मनशियात चलानस नश पाक कर बाप हतन दोन पे मुश्तम नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान तहत सरगर्मी वसान जारी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सुन पैगाम।
2: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। एनडीपीएस एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
1: नौजवान अमे बदात नश दूर थान बाप दरकार इकदाम मुतलिक वोन एक कलमकार तो फिल्म साज अली इमरान आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सत कान।
3: मेन मैसेज यी कि ड्रग्स कुन मसल हल आसान कह बल्कि अम सब बड़ी मसल उजागर गलिए अपील यूथन कि तम ग अम ड्रग्स नश दूर रोज बे वगर कह अत जाल मसोमुत तमिस पज ड्रग डिडिक्शन सेंटर गाकि सह कर सो वापस। हुकूमत तो पुलिस अत पे कर आजकल तो बहुत यहां कि तम कर तेजी पे कारकरदगी माकि यह गूर पे खत्म।
1: कश्मीर सूब कैन अनंत नाग तो बडगाम जिलन में कोर पुलिसन मनशियात मुखलिफ कार्रवाइयों दौरान बंग तो खशखाश काश्त तबाह। ऊंधपुर पुलिस के अहतमाम आये पुलवाम जिल के खरीव इलाक में मनशियात मुखलिफ रैली कड़ सोपोर के शराकोर वागुर इलाक में आये सिविल सोसाइटी हिंद इश्तराक मनशियात मुखलिफ रैली कड़ पुलिसन कर अनंत नाग गुलाम नबी रैना बडगाम नजीर अहमद गनाई तो हिंदवारे साहिल मंजूर डाव नए ड्रग स्मगलर गिरफ्तार। नायब वजीर अला सुरेंद्र कुमार चौधरी वोनमुत उमर अब्दुल्ला सरबराही वाजन सरकार यूटी हिंदन पॉलिटेक्निक कॉलेजन तो आई टी आई इदारन मज तिथ कोर्स मुतारिफ करने बापत काम करान यम सीध नौजवान रोजगार हासिल करित हकन। तिमो कोर राजे सबक सरकारन नौजवान मुश्किलातन मज मुब्तला करमित आज वोन तिमो श्रीनगर पॉलिटेक्निक कॉलेज गोगजबाग जनान पॉलिटेक्निक कॉलेज बेमन तो आई टी आई बेमन किस दौरस दौरान सरकार लूकन खास पे नौजवान राहत रसानी बापत काम करान। सेहत तो तबी तलीम हिज वजी सकीना इतमन तुल आज कुलगाम जिलस में सहती शोपचन वादियान सहूलियत अंदाज। तिमो कोर पंचन पथरी मज नवे तमीर कर आमते पैसेंजर शड अलव अख व्यू पॉइंट लूकन हंद नाव वक्फ अत मौक पे वो तमो सरकार जम्मू कश्मीर मज नवन वतल वन सयती जायन तरक्की दिन किस वादस पे डटित। गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर के अहतमाम सपद आज बडगाम जिल किस बदरन मागाम इलाक में समन बल नव त्रेन दोहन अदबी मल शुरू। मरकजी सरकार कल्चर वजार सिंध माली अथवास मुनद सपद मे अम मौल दस तुल जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरखशान द्राबी मौल इब्तदाई रस्म सदारत दिस नवर अदीब प्रोफेसर गुलशन मजीदन अंजाम ये जन जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेज सबक सेक्रेटरी डॉक्टर रफीक मसूदी खास मेहमान सिंद हैसियत मौजूद फोरमिक जनरल सेक्रेटरी गुलशन बदरनियन कौर मेहमानन हुंद इस्तकबाल ये जन नावर कलमकार तो ब्रॉडकास्टर डॉक्टर सतीश मिमलन कलीदी खुदब पेश कौर तकरीब मज आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर डायरेक्टर तो सरबरा तारिक रथर तौजूद पन्नस खताबस मोन डॉक्टर सईद दरखशा अंदराबी जमे कस्म तकरीबों सूच आम लूकन अंदर पन्नस तहजीबस तो तमदनस मतलब बेदारी पद सपदान आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के सरबरा तारिक रथर सत कर वो तमो
4: ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोग्राम है उनके टाउन से ये मुलाकात किया जा रहा है और ये प्रोग्राम अशद जरूरत है अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए। आलमी सतह तक ये कश्मीरी जुबान बोली जाती है और हमें उम्मीद है जो यहाँ से वाबस्ता जो अदीब है स्कॉलर्स हैं क्रिटिक्स जो हैं यहाँ पर ये आलमी सतह तक पहुंच

0: आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरनामा लेकर मैं संजीव कुमार। पहले अहम खबरों की सुर्खियां। अनंतनाग में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में मनशियात मुखालिफ पदयात्रा का इनेकाद। जम्मू कश्मीर के सभी अजला में नशा मुक्त अभियान के तहत इंतजामिया और पुलिस की कार्रवाइयां जारी। सरकार नौजवानों की राहत रसानी के लिए वादाबंद, नायब वजीर अला सुरेंद्र चौधरी। और सुवेंदो अधिकारी ने मगरबी बंगाल में बीजेपी सरकार के पहले वजीर अला की हैसियत से लिया हल्फ। अब पेश है खबरों की तफसील। आगाज में नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान और इससे ताल्लुक से पुलिस कार्रवाइयों पर मुश्तमिल खबरें। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अनंतनाग जिले के को मंशियात से पाक करने के लिए समाज के सभी तबकों का ताउन तलब किया है। हमारे अनंतनाग के नुमाइंदे तसदुक रशीद ने खबर दी है कि एलजी ने आज अनंतनाग में बॉयज डिग्री कॉलेज से मंशियात मुखालिफ पदयात्रा को झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसमें काफी तादाद में तलबा, ताजरों और समाज के मुख्तलिफ तबका हाई फिक्र से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने शिरकत की। मनोज सिन्हा ने खिताब करते हुए कहा कि मंशियात का नासूर समाज को खोखला कर रहा है और इसका कलाकमा करना वक्त की अहम जरूरत है।
1: मैं इस बात को दोहराना चाहता हूँ, ये लड़ाई सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की नहीं, ये लड़ाई आपकी, ये लड़ाई मेरी, ये लड़ाई हम सबकी है। यदि हम आज नहीं जागेंगे तो आने वाली नस्लें शायद हमें माफ नहीं करेंगी। आइए हम अनंतनाग की जमीन से सब मिलकर एक वादा करते हैं कि हम अपने गांव, अपने मोहल्ले में किसी भी ड्रग पेडलर को पनपने नहीं देंगे। हम ड्रग के शिकार नौजवानों को रिहेबिलिटेट करने में पूरी संवेदनशीलता के साथ काम करेंगे। मेरा इस बात में दृढ़ विश्वास है कि जब आवाम किसी उद्देश्य के साथ खड़ा होता है तब उसकी ताकत दुगनी हो जाती है। जब पुलिस का डंडा, प्रशासन का कानून और आवाम की ताकत एक साथ मिलती है तो परिणाम ज्यादा प्रभावकारी होते हैं।
0: जम्मू कश्मीर को मनुष्यात की बिदत से पाक करने के लिए 100 दिनों पर मुश्तमिल नशा मुक्त जम्मू कश्मीर अभियान के तहत सरगर्मियां शदमत से जारी हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का पैगाम।
1: ड्रग स्मगलिंग से जुड़े तस्कर का पासपोर्ट, उसका ड्राइविंग लाइसेंस, कार्ड आधार नंबर, उसके आर्म्स लाइसेंस, सब कुछ निरस्त कर दिया जाएगा और अगर फरार होगा तो लुकआउट सर्कुलर जारी किया जाएगा। NDPS एक्ट के तहत उसकी चल अचल संपत्ति भी अटैच की जाएगी, बैंक अकाउंट फ्रीज किया जाएगा और उसके खिलाफ फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी प्रारंभ किया जाएगा।
0: नौजवानों को इस बुरी आदत से दूर रखने के लिए दरकार इकदाम के बारे में एक कलमकार और फिल्म साज अली इमरान ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के साथ बात करते हुए कहा।
2: मेरा तो सिंपल सा पैगाम है कि मंशियात हमारी जड़ों को खोखला कर देती है। पूरे जम्मू कश्मीर का यूथ इससे खत्म हो जाएगा, हमारा फ्यूचर बिल्कुल अंधेरे में चला जाएगा। इसलिए मेरी मौदमाना अपील है सारे यूथ से कि वो ड्रग से दूर रहे। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ एडमिनिस्ट्रेशन का, पुलिस का, कि वो बहुत अच्छा काम कर रही है और मैं चाहता हूँ कि वो और इस पे तेजी लाए ताकि ये बिद्दत हमारे जम्मू कश्मीर से पूरी तरह खत्म हो जाए।
0: मनुष्यात के खिलाफ अपनी कार्रवाई जारी रखते हुए पुलिस ने जम्मू सूबे के उधमपुर जिले में मजालटा के मकाम पर एक तलाशी कार्रवाई के दौरान बोहरी कदल श्रीनगर के रहने वाले मोहम्मद मोहसिन और राजौरी कदल श्रीनगर के रहने वाले मोहम्मद राकिब को नशीली अशिया समेत गिरफ्तार किया। रियासी पुलिस ने अजय सिंह और जमात अली नामी दो ड्रग स्मगलरों की गिरफ्तारी अमल में लाई। कठवा में मुस्किन नामी मंशियात फरोश को हिरासत में ले लिया गया। इस दौरान डोडा, उधमपुर और दीगर अजला में पुलिस के एहतमाम से मंशियात मुखालिफ बेदारी प्रोग्राम मुनाकिद हुए। कश्मीर सूबे के अनंतनाग और बड़गाम अजला में पुलिस ने मंशियात मुखालिफ कार्रवाइयों के दौरान भंग और खशखाश की काश्त को तबाह किया। अवंतीपोरा पुलिस के एहतमाम से पुलवामा जिले के ख्रव इलाके में मंशियात मुखालिफ रैली निकाली गई। सोपोर के श्राकवारा वागुरा इलाके में भी सिविल सोसाइटी के इश्तराक से मंशियात मुखालिफ रैली निकाली गई। पुलिस ने अनंतनाग में गुलाम नबी रैना, बड़गाम में नजीर अहमद गनाई और हंदवाड़ा में साहिल मंजूर डार नामी ड्रग स्मगलरों को गिरफ्तार किया। नायब वजीर अला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने कहा है कि उमर अब्दुल्ला की सरबराही वाली सरकार यूटी के पॉलिटेक्निक कॉलेजों और ITI इदारों में ऐसे कोर्सेज मुतारिफ करने के लिए काम कर रही है जिससे नौजवान रोजगार हासिल कर सकें। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि साबिक सरकार ने नौजवानों को मुश्किलात में मुब्तला किया। आज श्रीनगर में पॉलिटेक्निक कॉलेज गोगजीबाग, जनाना पॉलिटेक्निक कॉलेज बेमना और ITI बेमना के दौरे के दौरान उन्होंने कहा कि सरकार लोगों, खसूसन नौजवानों की राहत रसानी के लिए काम कर रही है।
3: 11-12 साल

0: शर्मा साहब आपकी और पीडीपी की हुकूमत रही और उसमें आपकी जो सरकार भी रही, तो आपने जम्मू कश्मीर के लोगों को बेरोजगारी उनके हाथ में थमा के दे दी है। उन बेरोजगारों पे आपको बात नहीं करते आप। जम्मू कश्मीर के लोगों के जो बेसिक जरूरतें हैं हॉस्पिटल के अंदर, सिर्फ उनको एक ही मकसद है कि सरकार गिरानी है, सरकार गिरानी है। हमें लोगों ने चुन के भेजा है। कायद और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला साहब की, हमारे जो पॉलिटेक्निक्स और आईटीआईज हैं इनमें अच्छे सब्जेक्ट लाए जाएं, अच्छे कोर्सेज लाए जाएं, जिससे बच्चों की अच्छी पढ़ाई हो और ये बच्चे अपना रोजगार ढूंढ सकें।
1: सेहत और तिबी तालीम की वजीर सकीना एतू ने आज कुलगाम जिले में सियाहती शोबे की कई सहूलियात का इफ्तिताह किया। उन्होंने पांचन पथरी में नए तामीरशुदा पैसेंजर शेड के अलावा एक व्यू पॉइंट को भी आवाम के नाम वक्त किया। इस मौके पर इज्तिमा से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार जम्मू कश्मीर में नई उभरते हुए सियाहती मकामात को तरक्की देने की वादाबंद है और इस सिलसिले में मकामी और दीगर सयाहों के लिए जदीद सहूलियात को यकीनी बनाया जा रहा है। गुलशन कल्चरल फोरम कश्मीर के एहतमाम से आज बड़गाम जिले के बदरन मागाम में समनबल नामी तीन रोजा अदबी मेले का आगाज हुआ। कल्चर की मरकजी वजारत के माली इश्तराक से मुनाकिद हुए इस मेले का इफ्तिताह जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर सईद दरखशां अंद्राबी ने किया। मेले की इब्तदाई रस्म की सदारत नामवर अदीब प्रोफेसर गुलशन मजीद ने की। जम्मू कश्मीर एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लैंग्वेजेस के साबिक सेक्रेटरी डॉक्टर रफीक मासूदी मेहमान एजाजी की हैसियत से इस मौके पर मौजूद थे। फोरम के जनरल सेक्रेटरी गुलशन बदरनी ने मेहमानों का इस्तकबाल किया, जबकि मारूफ कलमकार और ब्रॉडकास्टर डॉक्टर सतीश विमल ने कलीदी खुतबा पेश किया। तकरीब में आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के डायरेक्टर और सरबराह तारिक राथिर भी मौजूद थे। अपने खिताब में डॉक्टर सईद दरखशांद्राबी ने कहा कि इस तरह की तकरीबात से आम लोगों में अपने तहजीब और तमदन के बारे में बेदारी पैदा होती है। आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर के सरबराह तारिक राथिर के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा,
2: ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर का प्रोग्राम है, उनके टाउन से ये मुनाकिद किया जा रहा है और ये प्रोग्राम अशद जरूरत है अपनी लैंग्वेज को बचाने के लिए। आलमी सतह तक ये कश्मीरी जुबान बोली जाती है और हमें उम्मीद है जो यहाँ से वाबस्ता जो अदीब है, स्कॉलर्स है, क्रिटिक्स जो हैं यहाँ पर, ये आलमी सतह तक पहुंचे हैं और यहाँ सारे पद्मश्री वगैरह ये कश्मीरी जुबान ने दिए हैं। और गुलशन कल्चरल फोरम एक ऐसा इदारा है जिससे यूथ से लेकर बुजुर्ग तक लोग वाबस्ता है।
1: मुख्तसर कहानियों और मजमून नवीसी पर मुश्तमिल प्रोग्राम की दूसरी नशस्त की सदारत मारूफ ड्रामा नवीस और ब्रॉडकास्टर निसार नसीम ने की। इस नशस्त में कई मुक्तदिर अदीबों और कलमकारों ने शिरकत की। प्रोग्राम के अगराज मकासिद के बारे में फोरम के जनरल सेक्रेटरी गुलशन बदरनी ने आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर को बताया।
3: इस प्लेटफॉर्म पे फनून लतीफा से वाबस्ता मुख्तलिफ लोग, जिसमें मुसव्विर भी, संतराज भी, मौसीकार और खुसूसी तौर कलमकार शोरा अदबा इस प्लेटफॉर्म पे जमा हुए। और जमा करने का मकसद ये है कि इसमें नवनिहाल शोरा भी शामिल हो जाएंगे और बुजुर्ग शोरा भी, जिनसे हम सीखते हैं और सिखाने वाले भी और सीखने वाले भी एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा होके अपने मामलात, अपने तकलीकात को शेयर करते हैं और देखते हैं कि मौजूदा ट्रेंड क्या है। इससे तहरीक भी मिल जाती है, उनको सीखने का मौका भी मिल जाता है सबों को, और एक वलवला, एक तहरीक, एक जोश पैदा हो जाता है उनमें। इस तरह ये जो फनून लतीफा से वाबस्ता लोग, उनकी इंस्पिरेशन बढ़ जाती है और वो आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह ये सकाफती और तमद्दुनी और अदबी मीरास जो हमारी है ये आगे बढ़ जाती है और ये जिंदा जावेद हो जाती है। ये है इसका मकसद, इसको आगे ले जाने के लिए जो हमारी कोशिश मकसद ही होता है इसके पीछे।
1: तकरीब के दौरान कल्चरल एक्टिविस्ट जीआर हसरत गढ़ा को साल 2024 और हकानी मेमोरियल ट्रस्ट के साबिक सरबरा मास्टर गुलाम मोहम्मद डार को साल 2025 के लिए गुलशन कल्चरल फोरम अवार्ड से नवाजा गया। इस मौके पर फोरम का फरियाद नामी रिसाला भी जारी किया गया। फोरम के सदर सैयद बशीर कौसर ने शुक्रिया की तहरीक पेश की। बारामूला के सेंट जोसेफ हायर सेकेंडरी स्कूल में आज यौम महजूर की मुनासिबत से एक तकरीब मुनक्द हुई। इस मौके पर स्कूली बच्चों और असातिज़ा ने शायरी कश्मीर पीरजादा गुलाम अहमद महजूर की जिंदगी और उनके अदबी कारनामों पर रोशनी डाली। इस मौके पर शायरी कश्मीर के लिखे कुछ गीत भी पेश किए गए। ये खबरें आप आकाशवाणी श्रीनगर से सुन रहे हैं। खबरें आप आकाशवाणी के मोबाइल एप्लीकेशन न्यूज ऑन एआईआर और डीटीएच पर भी समाप्त कर सकते हैं। डायरेक्टर जनरल पुलिस नलिन प्रभात ने आज फौज की 15वीं कोर के जीओसी आईजीपी कश्मीर और विक्टर फोर्स के जीओसी के साथ एक मीटिंग में जनूबी कश्मीर में इंसदादी दहशतगर्दी ऑपरेशन का जायजा लिया। कश्मीर जोन पुलिस ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि मीटिंग में पुलिस और राष्ट्रीय राइफल्स के दीगर आला अफसरान भी मौजूद थे। जम्मू कश्मीर के सभी डिग्री कॉलेजों में 4 साल अंडर ग्रेजुएट और 5 साल

0: हुई है। वहीद पर्रा ने दावा किया है कि डीपीआर को हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को सौंपे जाने के बावजूद भी इसको प्लान में से निकाल दिया गया है। उन्होंने वजीर आला उमर अब्दुल्ला से इस मामले की जानिब तवज्जो देने की अपील की है, जो पुलवामा के आवाम के लिए राहत का जरिया बन सकता है। जम्मू रेंज के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस भीम सैन तूती ने पुलिस अफसरों की एक मीटिंग में खित्ते की मजमूई सलामती सूरत हाल का जायजा लिया। आईजीपी ने अमन अमान को बरकरार रखने और सरहदी इलाकों में चौकसी बढ़ाने के लिए सिक्योरिटी एजेंसियों और फोर्सेज के माबेन करीबी तालमेल की जरूरत पर जोर दिया। दूरदर्शन केंद्र श्रीनगर के साबिक डायरेक्टर डॉक्टर रफीक मसूदी के चाचा गुलाम हसन मसूदी इंतकाल कर गए हैं। उनके इंतकाल पर रेडियो लिसनर्स एसोसिएशन और दीगर कई तंजीमों ने अफसोस का इजहार करते हुए डॉक्टर रफीक मसूदी के साथ हमदर्दी जाहिर की है। आज गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की 165वीं जन्म जयंती है। इस सिलसिले में मुल्क भर में कई प्रोग्राम मुनक्कद हुए। नायब सदर जमहूरिया सीपी राधाकृष्णन, वजीर आजम नरेंद्र मोदी, वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर दाखिला अमित शाह ने इस मौके पर रविंद्रनाथ टैगोर की अदबी और सामाजिक खिदमत को याद करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी जन्म जयंती पर खराज अकीदत अदा किया है। एक पैगाम में एलजी ने उन्हें एक अजीम दानिश्वर, शायर और मुफक्किर करार दिया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल तेलंगाना का दौरा करेंगे। अपने दौरे के दौरान वो रियासत में 15 अरब 35 करोड़ रुपए मालियत के कलीदी रेलवे प्रोजेक्टों का इब्तिदा करके उन्हें कौम के नाम वक्फ करेंगे। नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी NALSA के एहतमाम से आज पूरे मुल्क में रवां साल की दूसरी कौमी लोक अदालतों का एहतमाम हुआ। जम्मू कश्मीर में भी यूटी के चीफ जस्टिस जस्टिस अरुण पल्ली की निगरानी में लोक अदालतें मुनाक़िद हुईं। जिला कोर्ट कॉम्प्लेक्स श्रीनगर में जेएंड के लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के एहतमाम से मुनाक़िदा लोक अदालत का इफ्तिताह अथॉरिटी के सरपरस्त आला जस्टिस संजीव कुमार ने किया। और अब मौसम से मुतालिक जानकारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान मौसम आमतौर पर खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 31.7 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 12.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जे हरारत 35.1 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जे हरारत 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:34 और ग्रोब आफ्ताब शाम 7:22 पर होगा। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ। खबरों का अगला बुलेटिन कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। हमें दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।
1: सामिन आदाब। आज का तबसरा लेकर मैं गुलजार अमीन। हमारे मुल्क में सबसे अहम इदारा हमारा पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट में जिस सियासी पार्टी की अक्सरियत होती है उसी की ही हुकूमत होती है। इस तरह से हुकूमत यानी गवर्नेंस की जिम्मेदारी इसी सियासी पार्टी की होती है। मगर हमारे इस पार्लियामेंट में एक और निज़ाम है जिसके ज़रिए पार्लियामेंट बराह रास्त अपने मेंबरान से अवामी मसाइल, उनके लिए शुरू की गई स्कीमों, उनके समाजी और माशी हालात के बारे में आगाही हासिल करती है। और ये निज़ाम पार्लियामानी कमेटियों का है। ये कमेटियां हमारे मुल्क में जमहूरी तर्ज हुकूमत को मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। ये कमेटियां मिनी पार्लियामेंट के तौर पर काम करती हैं और कानून साजी, मालियाती और इंतजामी अमूर की तफसीली जांच में मदद करती हैं। गवर्नर्स के बारे में फीडबैक हासिल करने, नीज किसी खत्ते और अवामन्नास की राय हासिल करने के लिए इन कमेटियों के मेंबरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हैं। माली उमूर से मुतल्लिक कमेटी ने हाल ही में जम्मू कश्मीर का दौरा किया। अपने दौरे के दौरान इस कमेटी ने यहाँ की माली और माशी मसाइल का जायजा लिया। वजीर अला उमर अब्दुल्ला ने गुलमर्ग में कमेटी मेंबरान से सियाहत, तवानाई और इलाकाई तरक्याती तरजीहात पर गुफ्तगू की। तवानाई शोबे के लिए इन मेंबरान ने बुनियादी ढांचे की मजबूती और जम्मू कश्मीर में काबिल तजदीद तवानाई में मुमकिन तरक्की के बारे में बातचीत की। और अवामी नुमाइंदों के साथ अपने इजलास में इस कमेटी ने माशी तरक्की को और ज्यादा मुस्तहकम करने, दही राबता कनेक्टिविटी और हार्टिकल्चर और ज़राअत में मजीद इमदाद फराहम करने पर गौर खोज किया। इस तरह से कमेटी मेंबरान ने बराह रास्त जम्मू कश्मीर के मुआशी मसाइल के बारे में जानकारी हासिल की। इससे कबल घरेलू उमूर से मुतल्लिक पार्लियामानी कमेटी और कानून इंसाफ से मुतल्लिक पार्लियामानी कमेटी ने भी जम्मू कश्मीर का दौरा किया और सरकारी व अवामी वफूद से बातचीत की और फीडबैक हासिल किया। उम्मीद की जा सकती है कि माली उमूर से मुतल्लिक ये कमेटी जम्मू कश्मीर की माली जरूरियात को मुल्क के बड़े ऐवान तक पहुंचाएगी ताकि दीगर मसाइल के अजाले के साथ साथ अवामी फलाह व बहबूद से जुड़े मसाइल भी हल हो सकें। तबसरा खत्म हुआ।

ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। आप इस वक्त समाप्त कर रहे हैं प्रोग्राम वादी की आवाज़, और वादी की आवाज़ के आज के शुमारे में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के पसंद किए हुए नगमे। दोस्तों, आप पेश है फिल्म गीत से नगमा, आवाज़ है लता मंगेशकर की, और सुनना चाहते हैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से मुकेश गोस्वामी, मधु गोस्वामी, आशी शिवानिया और अनुराधा गोस्वामी, पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार दिवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग टेलर, पूनाराम देवगन और कृष्णा देवगन। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से ये मेल हमें मौसूल हुआ है स्वरण सिंह गिल की जानिब से। आपके साथ हैं दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज सिंह, संजय डिंगिया, नमन डिंगिया और अपार डिंगिया। आपने हमें मेल भेजा है बागपत उत्तर प्रदेश से। दत्रेंगी बाटापारा छत्तीसगढ़ से हिरामन वर्मा, पारस मणि वर्मा, पुष्पेंद्र वर्मा और अनोखे लाल वर्मा ने मेल भेजा है। बुल्ढाना वारशिंग महाराष्ट्र से अमोल मालकर ने मेल भेजा है। आपके साथ हैं शोभताई मनकार, दीपाली और शिलोक कुमार। इस्लामपुरा महाराष्ट्र से सहदेव दामोदर, शशिकला दामोदर, साधना, सुमेघ और केथल हरियाणा से ये मेल आया है जयवीर सिंह ठाकुर और अनिल शर्मा की जानिब से। पेश है आप सभी दोस्तों की फरमाइश पर फिल्म गीत से नगमा, लता मंगेशकर की आवाज़ में।

बनीपटी मधुबनी बिहार से ईमेल हमें मौसूल हुआ है अरविंद कुमार, गुड़िया कुमारी, बाविया कुमारी, निवेश कुमार और नियति कुमारी की जानिब से। आपने मुकेश की आवाज़ में नगमा सुनना चाहा है, फिल्म का नाम है कन्हैया। इसी नगमे को आप सब दोस्त भी सुनना चाहते हैं। आप हैं नागपुर महाराष्ट्र से विट्ठल जाधव, अनुसुईया जाधव और पावन राजे, रिंगनी छत्तीसगढ़ से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, परमवीर हाउस आदर्श नगर बठिंडा पंजाब से अशोक ग्रोवर, परवीन ग्रोवर, पवनीत और विक्रमजीत, नागचुन रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफार, अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर और राजेंद्र खत्री, बाटापारा छत्तीसगढ़ से सोहन जोशी जी और पायल जोशी जी, शाहजी बोड़खे ने मेल भेजा है हिंगोली महाराष्ट्र से। आपके साथ हैं श्रीमती नंदा बोड़खे, हनुमान, उत्तम जामदाड़े, सुरफा कंगन से लतीफ अहमद रैना, खालिदा जी, रऊफ शेख, साहिल तनवीर और जान मोहम्मद ऋषि और पनियारी सोनावारी से। ये पोस्ट कार्ड हमें मौसूल हुआ है मोहम्मद अशरफ डार, जान मोहम्मद डार, मंजूर अहमद डार और गुलाम अहमद मटानी की जानिब से। सुनिए अपनी पसंद पर फिल्म कन्हैया से नगमा मुकेश की आवाज़ में।

0: कल रात की तौबा।
1: जी दोस्तों, प्रोग्राम के नाम अगली और आखिरी फरमाइश आप सभी दोस्तों की पसंद पर। आप हैं गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से, बबलेश पवार, डैनी पवार और मनीष पवार, पटेल नगर मलोट पंजाब से डॉक्टर रमेश कुमार, गीता रानी, गगनदीप, बेबी आरिजू और गुड्डू, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र चींपा, कपिल चींपा और पूजा परिहार, आर्यानगर कोहका बिल्लई से उत्तम सिंह जंदेल, मोरस जंदेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष और नंदनी, दमदा ग्राम सुखरी कला से अमित शकुन।

अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह और राजेंद्र जी शाह, आप सभी दोस्त सुनना चाहते हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज़ में नगमा। फिल्म का नाम है प्यार किए जा, सुनिए अपनी पसंद।

0: इसके साथ ही अब आज के प्रोग्राम का जो वक्त है वो मुकम्मल हुआ चाहता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।
1: वादी की आवाज, पाकिस्तान और पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में सुनने वालों के लिए ये प्रोग्राम हर रोज हमारे वक्त के मुताबिक 8 बजे और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 7:30 बजे शाम नश होता है।

0: हमारी आवाज अब तक आकाशवाणी श्रीनगर से पहुंच रही है मीडियम वेव 268.1 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समीन, रात के 8:30 हुए हैं। अब पेश है जिलानामा। आज का जिलानामा जिला गांधरबल से मुतालिक है।
1: डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर मुख्तलिफ अजला में जारी तरक्याती मनसूबों से मुतलिक जामिया रिपोर्ट्स पर मबनी आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर की पेशकश। डिस्ट्रिक्ट न्यूज लेटर।
2: जिलानामा का ताजा शुमारा लेकर आपका मेजबान शेख तजम्मुल हाजिर है। आज के जिलानामा में हम वस्ती कश्मीर के गांधरबल जिले में महकमे समाजी बहबूद के तवस्सुत से चलाई जा रही स्कीमों के बारे में बात करेंगे और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एजाज़ अख्तर और आबिदा अख्तर। समीन, जम्मू कश्मीर में महकमे समाजी बहबूद के जिम्मे समाज के उन तबकों की फलाह बहबूद है जो किसी भी एतबार से कस्म पुरसी की जिंदगी गुजार रहे हों या जिनकी कुछ ऐसी जरूरियात हों जो वो अपने बलबोते पर पूरा करने से कासिर हों। मिसाल के तौर पर उम्र रसीदा मर्द खवातीन और बेवाओं को माहाना मुशाहरा देना, जिस्मानी तौर खास अफराद को मसनूई आजा जिनमें टांगें बाजों और दीगर आलात फराहम करना शामिल है, इस महकमे के जिम्मा है। जिला गांधरबल में समाजी बहबूद के कामकाज और इस महकमे के तवस्सुत से चलाई जा रही स्कीमों के बारे में जब हमारे नुमाइंदे साबिर अयूब ने महकमे के जिला अफसर बराई गांधरबल बशीर अहमद मलिक से इस्तफसार किया तो उन्होंने तफसीलात फराहम करते हुए कहा,
3: महकमे समाजी बहबूद या सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट वल्नरेबल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी जिनमें एल्डरली पीपल, वुमेन इन डिस्ट्रेस, PWDs या persons with disabilities या children in conflict with law, children in need of care and protection के लिए मुख्तलिफ वेलफेयर स्कीमें चलाते हैं, जिनमें सबसे पहले हमारी जो स्कीम है इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम ISSS जिसको हम कहते हैं, इसमें हम बेनिफिशरीज को फाइनेंशियल असिस्टेंस देते हैं एट द रेट ऑफ 1250 रुपीज पर मंथ या एट द रेट ऑफ 1500 रुपीज पर मंथ या 2000 रुपए के हिसाब से डिपेंडिंग अपॉन द एज ऑफ द बेनिफिशरी। एक और जो हमारा फाइनेंशियल असिस्टेंस का प्रोग्राम है दैट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम या जिसको हम NSAP कहते हैं, इसमें भी हम इसी रेट के हिसाब से कैटेगरीज बनाई गई है 1250, 1500 और 2000 के हिसाब से हम लोगों को पैसे देते हैं विच आर एलिजिबल फॉर दीज स्कीम्स। इसमें कुछ एज क्राइटेरियाज भी है और इसमें कुछ इनकम बार है या राशन कार्ड स्टेटस उनका क्या होना चाहिए उसी के हिसाब से हम ये पैसे इनको DBT मोड डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर बैंक एंड से उनको दिए जाते हैं। इसके अलावा महकमे सोशल वेलफेयर जो डिसेबल्ड लोग हैं जिनकी अपर लिम्ब्स ठीक है, डिसेबिलिटी लोअर लिम्ब्स में है, तो उनके लिए हम उनकी मोबिलिटी के लिए रेट्रोफिटेड ट्राइसाइकल्स देते हैं जिसको हम स्कूटी यूजुअली कहते हैं। उसके लिए भी एक ऑनलाइन पोर्टल है जहां वो अप्लाई करते हैं और अकॉर्डिंगली उनके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके उनके फेवर में केसेस सेंक्शन किए जाते हैं। तो पिछले साल से हमने एक और पर्सन विद डिसेबिलिटीज के लिए एक और स्कीम जो हाई एंड व्हील चेयर्स है उनके लिए भी एप्लीकेशंस वो जनसुगम पे अवेलेबल है। अगर कोई भी PWD वो हासिल करना चाहता है तो वो भी ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर सबमिटिंग द रिक्विजेट डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा मिशन मोड में हमारी दो मिशन चल रहे हैं जिसको हम मिशन वत्सल्य या मिशन शक्ति कहते हैं, एक और मिशन है मिशन शक्ति जिसको हम कहते हैं। मिशन वत्सल्य जिसको प्रीवियसली हम इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम कहते हैं, ये दो किस्म के बच्चों के साथ डील करता है, चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ, चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। तो उनके लिए डिफरेंट होम्स भी बनाए गए हैं जिसमें हर एक डिस्ट्रिक्ट में तकरीबन एक ऑर्फनेज या एक होम या चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बच्चों के लिए हैं जिसको हम परीक्षा कहते हैं और एक होम लड़कों के लिए हैं जिसको हम पलाश कहते हैं। यह हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, ये रेजिडेंशियल होम है जहां बच्चों को मुख्तलिफ सहूलियात अवेलेबल कराई जाती है, जहां उनकी पढ़ाई

0: का खास ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा उनके बाकी जो रोजमर्रा के मामूलात हैं वो भी देखे जाते हैं। इसके अलावा जो चिल्ड्रन इन कॉन्फ्लिक्ट विद लॉ है उनके लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड है जो उनके केसेस देखता है, और डिपेंडिंग अपॉन द नीड अगर उन बच्चों को जरूरत पड़ती है तो उनको ऑब्जर्वेशन होम के लिए भेजा जाता है। एक और स्कीम जो मिशन वत्सालय में है, दैट इज फाइनेंशियल असिस्टेंस फॉर द चिल्ड्रन इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन। उनके लिए मंथली असिस्टेंस 4,000 रुपीज देते हैं, तो उसके लिए डिफरेंट कैटेगरीज है। यूजली उसमें ऐसे बच्चे होते हैं जिनके या तो पेरेंट्स नहीं होते हैं, या जिनके अगर फादर की डेथ हुई है और बच्चा एक्सटेंडेड फैमिली में रहता है, या बच्चे डिसेबल्ड है, मुख्तलिफ कैटेगरियां हैं। तो वो देख के उनके लिए हम स्पॉन्सरशिप सेंक्शन करा लेते हैं। ये था मिशन वत्सल्य। इसके अलावा मिशन वत्सल्य में हमारी 24/7 एक हेल्पलाइन है जिसका नंबर है 1098, जो बच्चों को अगर कहीं मुश्किल हालात में बच्चे होंगे तो इस नंबर पर, ये टोल फ्री नंबर है, इस नंबर पर वो कॉल कर सकते हैं ताकि उनको जल्द से जल्दी असिस्टेंस प्रोवाइड की जा सकती है। इसके अलावा हमारा एक और मिशन है, मिशन शक्ति, विच इज फॉर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन। इसमें भी हमारे मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स हैं। सबसे जो इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है वो हर एक डिस्ट्रिक्ट में है, दैट्स वन स्टॉप सेंटर।
1: और अब माइक एजाजा अख्तर के हवाले।
2: शुक्रिया तजमुल। सामईन, महकमे समाजी बहबूद जम्मू कश्मीर के हर जिले में वन स्टॉप सेंटर्स चला रहा है जहां पर खवातीन के लिए तरह तरह की खिदमात दस्तियाब हैं। इसके अलावा ये वन स्टॉप सेंटर्स खवातीन के मसाइल को लेकर हर जिले, खासतौर से जिले के दूर दराज इलाकों में बेदारी प्रोग्राम का इनेकाद भी अमल में ला रहे हैं। ये मराकज तशद्दुद और इस्तेसाल की शिकार खवातीन को कानूनी मदद फराहम करने के साथ साथ उनकी रिहैबिलिटेशन या बाजाबादकारी के ताल्लुक से भी सरगर्मियां अंजाम देते हैं। इस ताल्लुक से गांधरबल जिले में महकमे के जरिए चलाए जा रहे वन स्टॉप सेंटर की मुंतजिमा एडवोकेट शगुफ्ता मलिक से जब हमने इस मरकज के कामकाज के ताल्लुक से इस्तफसार किया तो उन्होंने तफसीलात इन अल्फाज में फराहम की।
3: मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने सोचा कि जो भी हमारी घरेलू तशद्दुद की शिकार औरतें होती हैं वो एक ही छत के नीचे बहुत सारी सर्विसेज कैसे पालें। दे स्टार्टेड एस्टैब्लिशिंग वन स्टॉप सेंटर्स इंडिया के हर एक डिस्ट्रिक्ट में कायम किया कि एक जो औरत है उसको दर दर की ठोकरें ना खानी पड़े। पहली जो हम इनमें सर्विसेज देते हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में इसको डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर देखता है, इट इज वन ऑफ द विंग्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर। तो उसमें एक जो औरत होती है किसी भी तशद्दुद का शिकार, हम खाली घरेलू तशद्दुद की बात नहीं करेंगे, चाहे अभी हैरेसमेंट होती है, अब्यूज होता है, या रेप केसेस होते हैं जहाँ पे विक्टिम्स जो है जो कोर्ट ट्रायल्स फेस ना करना चाहे, तो वो भी हमारे पास आ सकती है। पहली जो फैसिलिटी हम प्रोवाइड करते हैं दैट इज मेडिकल फैसिलिटेशन। मेडिकल फैसिलिटेशन में क्या होता है कि कभी कभार कोई औरत ऐसी हालत में आती है उसको हैंडल करना बहुत मुश्किल होता है। हमारे पास वहाँ पे बाजाबता एक मेडिकल पर्सनल रहता है जो इसको एकम्पनी करता है अस्पताल की तरफ, और जो भी वहां पे उसकी जरूरियात होती हैं वो पूरी की जाती हैं। जिस किस्म की भी इसको हेल्थ केयर की जरूरत होती है, किसी भी किस्म की जरूरत होती है महकमे सेहत से, तो उसको मिल जाती है। और दूसरा है साइकोसोशल काउंसलिंग। देखिए, हमारे पास ऐसी औरतें भी होती हैं जिनके बहुत सारे मसले मसाइल बिकॉज ऑफ दीज साइकोलॉजिकल इश्यूज होते हैं, इट्स मेंटल वायलेंस जो कि फिजिकल नहीं होता, और लेडीज बहुत कमजोर होती है उस हिसाब से, तो बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। बाज़ाब्ता हमारे इन ऑफिसेज पे एक काउंसलर भी होता है जो ये काउंसलिंग इन ऐसी लेडीज, इट्स नॉट ओनली लेडीज की उनको काउंसलिंग की जरूरत होती है, कभी कभार ऐसा भी होता है जिसकी तरफ से इस पे तशद्दुद होता है जो सेकंड पार्टी होती है, तो उनको भी हम बाज़ाब्ता अपने ऑफिस से बुला के मैटर को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर। और तीसरा रहता है हमारा लीगल एड। ऐसी लेडी होती है जो कोर्ट जाना चाहती है बट ड्यू टू द लैक ऑफ मनी वो कोर्ट ट्रायल नहीं कर पाती है, तो हमारे पास वहां पे एक लॉयर भी रहता है, हमें कोऑर्डिनेशन रहता डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज के साथ जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट उनको एक लॉयर प्रोवाइड करता है। देयर कम्स वन शेल्टर फैसिलिटेशन। शेल्टर फैसिलिटेशन में क्या होता है कि कभी ऐसी लेडी होती है, ऐसे ऐसी कोई उसकी प्लेस होती है, चाहे हम मायका कहे, चाहे हम ससुराल कहे, चाहे हम अपना घर कहे, क्योंकि हम तो डील करते हैं 18+ लड़कियों के साथ, तो कभी अपना घर भी उसको एक कैद खाना लगता है, खुद सेफ नहीं करती फील वहां पे, वो हमारे पास आ सकती है। हम उसको शेल्टर भी प्रोवाइड करते हैं फॉर 15 डेज, या शी कैन स्टे देयर फॉर वट एवर टाइम शी वॉन्ट्स टू। और बाकी रहती है पुलिस फैसिलिटेशन। कभी मतलब किसी को पुलिस के पास कंप्लेंट करनी होती है या पुलिस की ताउन की जरूरत होती है बहुत सारे मैटर्स में, तो इस लेडी को हम वो फैसिलिटी भी प्रोवाइड करते हैं। और एक और फैसिलिटी है हमारे पास, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग. एक लड़की जिसका फॉर एग्जाम्पल कोर्ट ट्रायल चल रहा होता है, शी डजंट वॉन्ट

0: टू गो टू कोर्ट और फेस डायरेक्टली द कोर्ट ट्रायल्स. वो हमारे पास आ सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी रहती है, शी कैन लीड द केस या अटेंड द केस वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑल्सो. मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि हम इन एरियाज में जाके जहां से हमें लगे कि हमारे पास ज्यादा केसेस आ रहे हैं, हम बहुत कोशिश करते हैं कि हम उन एरियाज में पहुंचे, उनको अवेयर करें. या हमारे पास 181 भी है, वुमेन हेल्पलाइन, जो लड़की नहीं आ पाती है घर से बाहर सोसाइटी के डर से या किसी और डर की वजह से, वो जस्ट 181 पे कॉल कर सकती है और 181 तो हर जगह जगह पहुंच जाते हैं. मोस्टली हम प्रेफर करते हैं कि हम वहां उन इलाकों में जाएं जहां पे ऐसी लेडीज हैं, जहां से ये लेडीज बेचारी तशद्दुद का शिकार होती हैं, अवेयर करें लेडीज को. हम एटलीस्ट एक हफ्ते में 2 या 3 अवेयरनेस कैंप्स करते हैं हर जगह जाके, ताकि ये लेडीज इनको लगे कि देयर इज एन इंस्टीट्यूशन जो है उनके सपोर्ट के लिए. हम मेडिकल फैसिलिटेशन प्रोवाइड करते हैं. जैसे कि मैं आपको बताऊंगी, हमारे पास मेडिकल हेल्प के इस टाइम 5 केसेस हैं जहां पे लेडीज आई हमारे पास के मैडम जी, हमारे जो हस्बैंड्स हैं या मेरा फादर है वो हमारी केयर नहीं करता है, मुझे ऐसे ऐसे ऐसे ऐसे हेल्थ इश्यूज हैं, दे डोंट टेक केयर ऑफ अस. तो मेडिकल फैसिलिटेशन हम प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि वो भी तो एक काइंड ऑफ हैरेसमेंट ही है. मेरे पास राइट टू हेल्दी लाइफ है, नोबडी हैज एनी राइट टू वायलेट दैट. तो मेडिकल फैसिलिटेशन हम बाजाबता हम वो केसेस भी लेते हैं और उनको बाजाबता मेडिकल हेल्प हम प्रोवाइड करते हैं.
1: इससे कबल के हम प्रोग्राम का इदारिया पेश करें, आइए सुनते हैं हमारे गांदरबल के नुमाइंदे साबिर अयूब की ये रिपोर्ट.
2: जिला गांदरबल में महकमे समाजी बहबूद यानी सोशल वेलफेयर की जानिब से मुख्तलिफ फराइज स्कीमों के जरिए माशरे के कमजोर और पसमानदा तबकात को सहारा फराहम करने की कोशिश जारी है. इन स्कीमों का मकसद न सिर्फ माली इमदाद फराहम करना है बल्कि खवातीन, बुजुर्गों, बच्चों और माजूर अफराद को बा इख्तियार बनाना भी है. महकमे की नुमाया स्कीमों में नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम शामिल है, जिसके तहत 60 साल से जायद उम्र के अफराद को माहाना माली मदद फराहम की जाती है. इसी तरह नेशनल वीडो पेंशन स्कीम बेवा खवातीन के लिए एक अहम सहारा साबित हो रही है, जबकि नेशनल डिसएबिलिटी पेंशन स्कीम माजूर अफराद की बुनियादी जरूरियात पूरी करने में मददगार है. खवातीन की भला बहबूद के लिए मिशन शक्ति के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिनमें खवातीन को कानूनी मदद, काउंसलिंग और हुनरमंदी की तरबियत फराहम की जाती है. जिले में कायम वन स्टॉप सेंटर्स घरेलू तशद्दुद से मुतासिर खवातीन के लिए फौरी मदद का जरिया बन रहे हैं. बच्चों की निगहदाश्त के हवाले से इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ICDS एक अहम स्कीम है, जिसके तहत आंगनवाड़ी मराकज के जरिए बच्चों को गजाइत, इफ्ताही तालीम और सेहत की सहूलियात फराहम की जाती है. इसके अलावा पोषण अभियान के जरिए गजाई किल्लत के खात्मे पर भी जोर दिया जा रहा है. मुकामी लोगों के मुताबिक अगरचे इन स्कीमों से काफी हद तक फायदा पहुंचा है, ताहम बैज इलाकों में बेदारी की कमी और कागजी कार्रवाई की पेचीदगी अब भी चैलेंज बनी हुई है. माहरीन का कहना है कि आवामी आगाही मुहिमात और आसान तरीका कार के जरिए इन स्कीमों के फायदे को मजीद वसत दिया जा सकता है. न्यूज लेटर के लिए गांदरबल से मैं साबिर अयूब.
3: और अब पेश है प्रोग्राम का इदारिया, पेश कर रही हैं आबिदा अख्तर.
4: शुक्रिया तजम्मुल. समीन, इस बात में कोई शक व शुबा नहीं कि समाजी बहबूद महकमा हमारी हुकूमत के ज़ेर दस्त चलने वाला एक ऐसा महकमा है जो समाज के उस तबके की फलाह बहबूद का जिम्मा उठाए हुए हैं जिनको वाकईतन तरह तरह के हुकूमती इमदाद की जरूरत होती है. कहीं किसी उम्र रसीदा शख्स को अपने छोटे मोटे अखराजात पूरा करने के लिए ओल्ड एज पेंशन दी जाती है, तो कहीं बेवा खवातीन की जिंदगी में आसानियाँ पैदा करने की गर्ज से उन्हें माली मदद फराहम की जाती है. बेघर अफराद के लिए शेल्टर होम्स की फराहमी, गरीब कुंबों से ताल्लुक रखने वाली लड़कियों को शादी के वक्त मैरिज असिस्टेंस के नाम पर नकद इमदाद, ऐसे कुछ दीगर फलाही काम हैं जो समाजी बहबूद महकमा गुज़श्ता कई दहाइयों से सर अंजाम देता आ रहा है. अब हाल ही में वन स्टॉप मराकज का क्याम अमल में लाकर महकमा ने खवातीन के ऐसे मसाइल की तरफ तवज्जो देना शुरू कर दिया है जिन मसाइल का पहले कहीं जिक्र तक नहीं होता था, और इन मसाइल की शिकार खवातीन एब्यूज और इस्तेसाल का बोझ अपने सीने में लिए ही पैवंद खा की जाती थी. जरूरत इस बात की है कि ये वन स्टॉप मराकज खवातीन की बहबूद के ताल्लुक से चलाए जा रहे प्रोग्रामों का दायरा वसी करते हुए हर जिले के दूर दराज इलाकों में जाकर खवातीन में बेदारी पैदा करें, ताकि इन खवातीन को इंसाफ भी फराहम हो और उन्हें इस्तेसाल से भी नजात मिल सके.

0: इसके साथ ही जिलानामा का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर हुआ। निगरान आला तारिक राथर, तरतीब व तहजीब अशफाक अहमद शाह, रिकॉर्डिंग व एडिटिंग नसीर अहमद लोन, तहरीर शेख तजम्मुल, पेशकश रीजनल न्यूज यूनिट आकाशवाणी श्रीनगर।
1: समय शुभ खबर की पेशकश जिलानामा आप सुन रहे थे। आज का जिलानामा जिले गांदरबल से मुतालिक था।

0: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समीन रात के 8:45 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी में खबरें सुनते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं आकर्षिता सिंह। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने MIRV प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल RN रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 मंत्रिमंडल मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रमाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की तुरंत बाद ही शुभेंदु अधिकारी प्रशासनिक काम में जुट गए। ब्रिगेड में शपथ ग्रहण समारोह के बाद वो जोरासा को ठाकुरबाड़ी गए और गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके बाद मैदान में PWD की टेंट में राज्य पुलिस और प्रशासन की शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक की। बाद में शाम को भवानीपुर में श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निवास पर जाकर राज्य के पहले BJP मुख्यमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। पूरी मंत्रिमंडल का गठन अभी पूरा नहीं हुआ है, लेकिन इसके बावजूद मुख्यमंत्री ने अगले सोमवार 9 में प्रशासनिक कामकाज की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाया है। कलकत्ता से आकाशवाणी के लिए अभिरूप भट्टाचार्य।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने श्री अधिकारी को आगामी कार्यकाल की सफलता के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। श्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि मंत्री के रूप में ये सभी पश्चिम बंगाल के विकास पथ को और मजबूत करेंगे। तमिलनाडु में तमिलगम वेत्री कड़गम TVK के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अल्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया है कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। एक रिपोर्ट।
3: हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों में TVK 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट

0: अपडेट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवीके नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: केरलम में भी नई सरकार के गठन को लेकर चर्चाएं हो रही हैं। यूडीएफ की प्रमुख पार्टी कांग्रेस कल तक नेता की घोषणा कर सकती है। कांग्रेस सूत्रों ने बताया है कि विधायक दल के नेता के बारे में राज्य में पार्टी पर्यवेक्षकों की रिपोर्ट के आधार पर राष्ट्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा। वहीं असम में भाजपा के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है। शपथ ग्रहण समारोह मंगलवार को होगा, पार्टी विधायक दल की बैठक कल होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में लगभग 9,400 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक गलियारे पर गुडे बेलूर से महबूब नगर तक राष्ट्रीय राजमार्ग 167 के 4 लेन के निर्माण की आधारशिला रखेंगे। इसकी कुल लागत 3,175 करोड़ रुपए से अधिक है। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्र पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: सोमनाथ महादेव मंदिर में आज आस्था और भक्तिमय वातावरण छाया हुआ है। मंदिर में आज से ही 3 दिवसीय होमात्मक महारुद्र यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें से लगभग 1,25,000 आहुतियां अर्पित की जा रही है। यह महायज्ञ वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में शांति और मानव कल्याण के लिए आयोजित किया जा रहा है। अमृत पर्व का मुख्य आकर्षण 11 मई को होगा, जब मंदिर के शिखर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 11 पवित्र तीर्थों के जल से कुंभाभिषेक किया जाएगा। इस ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने के लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं का सैलाब सोमनाथ उमड़ पड़ा है। गुजरात के उप मुख्यमंत्री हर्ष संघवी ने आज सोमनाथ में उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और सोमनाथ अमृत पर्व के आयोजन की समीक्षा की। अपर्णा खुंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना PMGSY की 25वीं वर्षगांठ पर कल मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के भैरुंदा में रज जयंती समारोह का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान करेंगे। इस दौरान PMGSY के चौथे चरण का भी शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में श्री चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव को राज्य में 973 सड़कों के लिए वित्तीय आवंटन और स्वीकृति पत्र सौंपेंगे। समारोह में श्री चौहान वित्त वर्ष 2026-27 के लिए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 18,907 करोड़ रुपए के आवंटन की घोषणा भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA सरकार द्वारा 11 वर्ष पहले शुरू की गई प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी प्रमुख सामाजिक सुरक्षा और पेंशन योजनाओं से हुए लाभों का उल्लेख किया।

0: प्रधानमंत्री ने कहा कि ये योजनाएं देश के लोगों के लिए गरिमा, आश्वासन और वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री इंट्री व्हीकल एमआईआरवी प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। एमआईआरवी ऐसी तकनीक है जिससे एक ही मिसाइल कई लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस मिसाइल का परीक्षण कई पेलोड के साथ किया गया, जिसका निशाना हिंद महासागर के भौगोलिक क्षेत्र में फैले विभिन्न लक्ष्यों पर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्नि मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ, सेना और उद्योग जगत की सराहना की है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी समूह की कंपनियों के खिलाफ दर्ज 3 मामलों के सिलसिले में मुंबई के 17 स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया है। सीबीआई ने बताया है कि ये तलाशी अभियान कंपनियों के निदेशकों के आवासीय परिसरों के साथ साथ उन मध्यस्थ कंपनियों के कार्यालयों में भी चलाए जा रहे हैं, जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक निधि के गबन के लिए किया गया था। सरकार ने राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा कर दी है। देश भर से चुनी गई 42 पंचायतों को ये पुरस्कार दिए जाएंगे। पंचायती राज मंत्रालय ने बताया है कि पुरस्कार वितरण समारोह 3 जून को नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। मंत्रालय के अनुसार कर्नाटक ने सबसे अधिक पुरस्कार प्राप्त किए हैं, जहां 6 पंचायतों को चुना गया है। इसके बाद आंध्र प्रदेश और ओडिशा का स्थान रहा, जहां प्रत्येक को 5-5 पुरस्कार मिले हैं। कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण एपीईडीए ने आज असम के बक्सा जिले से अमेरिका को 20 मीट्रिक टन शहद की पहली खेप का निर्यात किया। एपीईडीए के प्रसंस्करण संयंत्र में परीक्षण और प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराने सहित बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग से ये निर्यात संभव हुआ। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। ये आकाशवाणी है। अमेरिका ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया में चल रहे क्षेत्रीय संघर्ष को समाप्त करने के उद्देश्य से एक प्रस्तावित 14 सूत्रीय रूपरेखा पर ईरान की आधिकारिक प्रतिक्रिया का इंतजार कर रहा है। एक रिपोर्ट।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया कि तेहरान की प्रतिक्रिया वार्ता के अगले चरण को निर्धारित कर सकती है। वहीं ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराग़ची ने हालिया अमेरिकी सैन्य कार्रवाइयों की आलोचना करते हुए अमेरिका पर तनाव बढ़ाकर कूटनीतिक प्रयासों को कमजोर करने का आरोप लगाया। ये ताजा घटनाक्रम हॉर्मुज जलडमरू मध्य और उसके आसपास की घटनाओं के बाद सामने आए हैं, जिनमें ईरानी और अमेरिका सेनाओं के बीच नौसैनिक मुठभेड़ की खबरें शामिल हैं। अमेरिका के अधिकारियों ने ईरान के ड्रोन कार्यक्रम से जुड़े नेटवर्क को निशाना बनाते हुए नए प्रतिबंधों की भी पुष्टि की है। हालांकि तनाव के बावजूद न तो अमेरिका और न ही ईरान ने औपचारिक रूप से युद्ध विराम के टूटने की घोषणा की है। इस बीच इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्ला के बुनियादी ढांचे को नष्ट करने के लिए अपने अभियान तेज कर दिए हैं। समाचार कक्ष से विशेष शुक्ला।
0: चीन की शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डैम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेंगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। वहीं आईपीएल क्रिकेट में जयपुर में राजस्थान रॉयल्स और गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात ने 17वें ओवर में 3 विकेट पर 186 रन बना लिए हैं। राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया। राजस्थान अंक तालिका में चौथे जबकि गुजरात 5वें स्थान पर है। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। बिहार में आज तेज हवाएं चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2-3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। ओडिशा, रायलसीमा, तेलंगाना

0: दक्षिणांत्र कर्नाटक में कल तक बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। शुभेंदु अधिकारी ने पश्चिम बंगाल में भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। 5 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और वाम दलों के समर्थन से सरकार बनाने का दावा पेश किया। कल मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। भारत ने एमआईआरवी प्रणाली से लैस अग्नि मिसाइल के उन्नत संस्करण का सफल परीक्षण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब सरकार में मंत्री संजीव अरोड़ा को धन शोधन मामले में गिरफ्तार किया। और साहिल जाधव ने तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में पुरुषों के व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: یہ آکاشوانی سری نگر میڈیم ویو زہت اٹھ اشاریہ اٹھ اخ میٹر تو ایف ایم اخت ترے اشاریہ پانچ میگا ہٹسن پہ سمین رات سن نو بجے ولو کیشر بات بوزو دسلابس مز بوزو کلام اسماعیل آشنا فنکار چھ برہان احمد شیخ

0: हैं, जबकि तृणमूल कांग्रेस को 80 सीटें मिली। तृणमूल कांग्रेस रियासत में पिछले 15 साल से इकतदार में थी। इधर मगरबी बंगाल कानून साज असम्बली के नए मुंतखब अरकान विधानसभा में 13 मई को हलफ लेंगे। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: मगरबी बंगाल के वजीर आला की हैसियत से हलफ लेने के बाद शुभेंदु अधिकारी ने मैदान में पीडब्ल्यू टेंट में चीफ सेक्रेटरी, दाखिला सेक्रेटरी और रियासत के दीगर ओहदेदारान के साथ मीटिंग की। इस दौरान रियासती हुकूमत के सेक्रेटेरिएट की जगह फिर बदलने के लिए कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग में तजदीद का काम जारी है, जिसे इस विरासती मकाम से 2011 में ममता बनर्जी के इकतदार में आने के बाद न बनना मुंतकिल कर दिया गया था। बीजेपी की नई हुकूमत राइटर्स बिल्डिंग से काम करेगी, जो एक विरासती मकाम है। एक अहम वाक़े के तहत आज SIR के लिए मगरबी बंगाल के खसूसी मुशाहिद रिटायर्ड IAS अफसर सुब्राता गुप्ता को मगरबी बंगाल के वजीर आला का मुशीर और 2017 बैच के IAS अफसर शांतनु बाला को उनका पर्सनल सेक्रेटरी मुकर्रर किया गया है। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए अर्जुमंद अली खान।
0: तमिलनाडु में तमिल गायत्री कड़गम टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने आज चेन्नई में लोक भवन में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर से मुलाकात की और 120 सरकारी असेंबली की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारे नामानिगार ने बताया कि रियासत के गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लिकर कल सुबह 10 बजे चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में जोसेफ विजय और उनकी काबीना को हलफ दिलाएंगे। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: टीवी के पार्टी के लीडर जोसेफ विजय ने सरकार बनाने के लिए आज फिर गवर्नर से मुलाकात की। नतीजे आने के बाद पिछले 6 दिन में वो चौथी मर्तबा अक्सरियत हासिल होने के मामले पर गवर्नर से मिलने गए। गवर्नर मौसूफ ने इससे पहले उनसे मुलाकात का प्रोग्राम मंसूख कर दिया था क्योंकि उन्हें केरलम जाना था, लेकिन बाद में उन्होंने टीवी के पार्टी के लीडर को फिर मुझसे मुलाकात के लिए मदऊ किया। अब पार्टी को मजमूई तौर पर 120 सरकारी असेंबली की हिमायत हासिल है। DMK पार्टी से इत्तेहाद से अलीहदा होकर कांग्रेस ने टीवी के पार्टी की हिमायत करने का ऐलान किया है। चेन्नई से जुआई की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद आजम खान।
0: हालिया असेंबली इंतखाबात में TVK पार्टी 108 सीटें जीतकर वाहिद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी, जबकि सरकार बनाने के लिए 234 रुकनी तमिलनाडु असेंबली में अक्सरियत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। पार्टी ने कहा है कि VCK और IUML दोनों ही पार्टियों ने सरकार की तश्कील के लिए अपनी गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया है। जोसेफ विजय दो असेंबली हलकों से चुनाव जीते थे, इसलिए उन्हें एक सीट छोड़नी होगी। इस तरह TVK पार्टी के अरकान की तादाद 107 रह जाएगी। हिमायत करने वाली पार्टियों के अरकान असेंबली की मजमुई तादाद 13 हो गई है। इनमें कांग्रेस के 5 अरकान जबकि CPI, CPIM, VCK और IUML के दो दो अरकान असेंबली शामिल हैं। भारत ने ओडिशा में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जजीरे से MIRV निज़ाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दिफा ने कहा कि कई तरह के पेलोड्स के साथ इस मिसाइल का तजुर्बा किया गया। इसमें बहर हिंद के खित्ते में एक वसी जोग्राफियाई इलाके में फैले हुए मुख्तलिफ अहदाफ को निशाना बनाया गया। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने MIRV सलाहियत वाले अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश पर दिफाई तहकीक और तरक्की की तंजीम DRDO, भारतीय फौज और सनद की सताइश की। जनाब सिंह ने कहा कि इससे बढ़ते हुए खतरात के खिलाफ मुल्क की दिफाई तैयारी में नुमाया इजाफा होगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना का दौरा करेंगे। सुबह तकरीबन 11 बजे वजीर आजम बेंगलुरु में द आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं सालगिरह तकरीबात में शिरकत करेंगे। इसके बाद वजीर आजम मोदी हैदराबाद जाएंगे, जहां वो तेलंगाना में तकरीबन 9400 करोड़ रुपए मालियत के मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखेंगे और इफ्तिताह करेंगे। वजीर आजम मोदी गुजरात का भी दो रोजा दौरा करेंगे, जो कल से ही शुरू होगा। पीर के रोज वजीर आजम मोदी सोमनाथ मंदिर के अहिया की 75वीं सालगिरह के मौके पर सोमनाथ अमृत महोत्सव में शिरकत करेंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 11 साल पहले NDA सरकार की जानिब से शुरू की गई समाजी सिक्योरिटी और पेंशन की अहम स्कीमों के असरात को उजागर किया है। इनमें PM जीवन ज्योति बीमा योजना, PM सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना शामिल है। जनाब मोदी ने कहा कि इन इकदामात से मुल्क के अवाम के लिए अजमत, वक़ार, यकीन दहानी और माली सिक्योरिटी को यकीनी बनाने के सरकार के अहद की अक्कासी होती है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर

वजीर आजम ने कहा कि पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा योजना से सबसे निचली सतह पर लोगों की जिंदगी पर मुस्बत असर पड़ा है और समाजी सिक्योरिटी का फ्रेमवर्क मजबूत हुआ है। हुकूमत ने कौमी पंचायत अवार्ड्स 2025 के फातिहीन का ऐलान कर दिया है और इस एजाज के लिए मुल्क भर से 42 पंचायतों को मुंतखब किया गया है। पंचायती राज की वजारत ने मुत्तला किया है कि अवार्ड पेश किए जाने की तकरीब आइंदा माह की 3 तारीख को नई दिल्ली में होगी। वजारत के मुताबिक कर्नाटक को सबसे ज्यादा अवार्ड्स मिले हैं और उसकी 6 पंचायतों को मुंतखब किया गया है, जिसके बाद आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की 5-5 पंचायतें चुनी गई हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने हैम्पटन स्काई रियलिटी लिमिटेड से वापस्ता मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। इससे कबल ईडी ने इस केस के सिलसिले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 मकामात पर छापे मारने की कार्रवाई अंजाम दी थी। काले धन को जायज शक्ल देने की रोकथाम के 2002 के एक्ट की फौजदारी दफात के तहत ये कार्रवाई की गई है। एजेंसी ने बताया कि इस केस का ताल्लुक 100 करोड़ रुपए से ज्यादा मालियत के मोबाइल फोन की फर्जी जीएसटी खरीद के जरिए मुबैना तौर पर बड़े पैमाने की मनी लॉन्ड्रिंग और दुबई से नाजायज रकूमात की भारत मुंतकली से है। मरकजी जांच ब्यूरो सीबीआई ने रिलायंस एडीए ग्रुप की कंपनियों के खिलाफ दर्ज किए गए 3 केसों के सिलसिले में मुंबई में 17 मकामात पर तलाश की कार्रवाई अंजाम दी। सीबीआई के मुताबिक तलाशी की यह कार्रवाई इन कंपनियों के डायरेक्टरों के रिहायशी ठिकानों के साथ साथ उन जैली कंपनियों के दफातर में की गई जिनके खातों का इस्तेमाल बैंक फंड्स को मुंतकिल करने के लिए किया गया था। एजेंसी ने कहा कि इस कार्रवाई के नतीजे में काबिल एतराज दस्तावेजात कब्जे में ली गई हैं। सीबीआई ने कहा कि गुज़श्ता कुछ महीनों के दौरान सरकारी मिल्कियत के मुख्तलिफ बैंकों और एलआईसी की जानिब से दर्ज कराई गई शिकायतों की बुनियाद पर अनिल अंबानी की सरबराही वाले रिलायंस ग्रुप के खिलाफ 7 केस दर्ज किए गए। हजारों करोड़ रुपए की मुबैना धोखाधही के सिलसिले में ये शिकायतें दर्ज कराई गई थीं। मणिपुर में कामजोंग जिले के नामली से जिस खातून को कुकी नेशनल आर्मी बर्मा और विलेज वॉलेंटियर्स ईस्टर्न जोन की जानिब से जुमेरात को अगवा किया गया था, उसे आसाम राइफल्स की मरबूत कोशिशों के सबब आज जेडचुरु गांव से रिहा कर दिया गया। नीम फौजी दस्ते ने खुफिया और दीगर एजेंसियों के साथ तालमेल में अगवाशुदा खातून के बचाव की कोशिश की और इस खातून को जेडचुरु गांव के नजदीक सुपुर्द कर दिया गया। दिफा के वजीर ममलिकत संजय सेठ ने आज नई दिल्ली में AIOS मुसल्ला अफवाज से मुतालिक ऑफ्थेल्मोलॉजी अपडेट 2026 का इफ्तिताह किया। इस 2 रोज़ा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आंखों के अमराज की कुल हिंद अंजुमन के साथ इश्तराक में नई दिल्ली के आर्मी हॉस्पिटल के महकमाए अमराज चश्म की जानिब से किया जा रहा है। इसमें भारत और बैरून मुल्क से फौज के आंखों के अमराज के माहरीन और दीगर सिविलियन माहरीन आंखों के अमराज के सिलसिले में तहकीक, इख्तरा और तिब्बी महारत के सिलसिले में एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर यज्जा हो रहे हैं। अमरीका ने कहा है कि वो मुजवजा 14 निकाती फ्रेमवर्क पर ईरान के बाजाब्ता जवाब का इंतजार कर रहा है, जिसका मकसद इलाकाई महाजराई को फैलने से रोकना है। मगरबी एशिया के खत्ते में फौजी और सियासी कशीदगी का सिलसिला भी जारी है। अमरीका के वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा कि अमरीका सिफारतकारी में मसरूफ है और उधर सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह इशारा दिया है कि ईरान के जवाब से मुज़ाकरात के अगले मरहले का तायुन हो सकता है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास इराकची ने अमरीका की हालिया फौजी कार्रवाई पर नुक्ताचीनी की है और अमरीका पर इल्ज़ाम लगाया है कि वो कशीदगी बढ़ाकर सिफारती कोशिशों को कमज़ोर कर रहा है। आब नाए हुरमुज और उसके अतराफ ताज़ा वाकयात के पस मंज़र में ये बयानात सामने आए हैं, जिसमें ईरान और अमरीकी फोर्सेज के दरमियान मुबैना बहरी टकराव भी शामिल है। केरल में मौसम गर्मा की बारिश में तेजी आ गई है और भारतीय मौसमियात महकमे ने रियासत के मुख्तलिफ अजला में आइंदा 5 दिनों तक कहीं कहीं शदीद बारिश और तेज हवाएं चलने की पेशगोई की है। IMD ने आज 9 अजला में येलो अलर्ट जारी किया है और 7 अजला में कल भी अलर्ट नाफिज रहेगा। खराब मौसम के सबब केरलम में और लक्षद्वीप में माहीगीरों को समंदर में न जाने का मशवरा दिया गया है। ताहम कर्नाटक के साहिल के नजदीक माहीगीरी के सिलसिले में कोई पाबंदी नाफिज नहीं की गई है। 19

0: में मुंबई बैनुल अक्वामी फिल्म फेस्टिवल के लिए मंदूबीन के रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। ये फिल्म फेस्टिवल 15 से 21 जून तक मुंबई में होगा। जनूबी एशिया का ये अहम फेस्टिवल दस्तावेजी, मुख्तसर फिक्शन और एनिमेशन फिल्मों के लिए वक्फ है। इसके लिए मंदूबीन 500 रुपये की रजिस्ट्रेशन फीस अदा करके फेस्टिवल के पोर्टल के जरिए ऑनलाइन अपना इंदराज करा सकते हैं, जबकि तलबा को दस्तावेजात की तस्दीक के साथ इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं देना होगी। आज चेन्नई के शंघाई में तीरंदाजी आलमी कप 2026 के दूसरे मरहले के तहत मर्दों के इनफरादी कंपाउंड मुकाबले में साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता। महाराष्ट्र के 25 साल तीरंदाज ने डेनमार्क के सरकर्दा खिलाड़ी और कोच मार्टिन डेम्सबो को 144-147 के स्कोर से हराकर कांसे का तमगा जीता और भारत को जारी टूर्नामेंट में पहला तमगा दिलाया। गुजशत बरस भारत ने शंघाई में 5 कंपाउंड तमगे जीते थे। आईपीएल में आज जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान मैच जारी है। गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स की जीत के लिए 230 रन का निशाना दिया। गुजरात टाइटंस के लिए शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए, जबकि साई सुदर्शन ने 55 रन स्कोर किए। इससे कबल राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की कुश्ती फेडरेशन ने विनेश फोगाट को डिसिप्लिन की पाबंदी न करने और डोपिंग मुखालिफ जाब्तों की खिलाफवर्जी के इल्जाम के सिलसिले में आज वजह बताओ नोटिस जारी किया है। 15 सफहात पर मुश्तमिल नोटिस में WFI ने कहा कि विनेश इस साल जून तक घरेलू मुकाबलों में हिस्सा नहीं ले पाएंगी। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर सुन लीजिए। शोभेंदु अधिकारी ने मगरबी बंगाल के पहले बीजेपी वजीर आला की हैसियत से हलफ लिया। 5 अरकानी असम्बली ने भी काबीना वजीरा के तौर पर हलफ लिया। तमिलनाडु में टीवी के पार्टी के सरबराह जोसेफ विजय ने कांग्रेस, वीसी के, आईयूएमएल और बाएं बाजू की पार्टियों की हिमायत के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया है। वो कल वजीर आला के ओहदे का हलफ लेंगे। भारत ने MIRV निजाम के साथ जदीद तर्ज के अग्नि मिसाइल की कामयाब आजमाइश की है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दिन भर के दौरे में कई तरक्याती प्रोजेक्टों का आगाज करेंगे। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब काबीना के वजीर संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार कर लिया है। और तीरंदाजी में शंघाई में वर्ल्ड कप स्टेज 2 में मर्दों के इंफरादी कंपाउंड मुकाबले में भारत के साहिल जाधव ने कांसे का तमगा जीता है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडिया व्यू 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर।
2: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
1: ये आकाशवाणी श्रीनगर है। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समीन, रात के 9:30 हुए हैं। आइए प्रोग्राम सुनते हैं पेशरफ।

0: उम्र में, क्योंकि नॉर्मली हम देखते हैं कि हम हमारे नौजवान, चाहे हमारे रिश्तेदार, हमारी सोसाइटी के लोग, ज़्यादातर जो सपोज पेरेंट है वो तरगीब देता है अपने बच्चों को, हमें जॉब करनी है, या जो नौजवान हैं वो पढ़ाई कर मुकम्मल करके कहते हैं कि हमें जॉब चाहिए, लेकिन आपने जॉब नहीं चुनी। पहले अपने बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे आपने बीइंग इनोवेटर कैसे काम किया, कैसे ये आइडिया आया कि मुझे इनोवेटर बनना है, आपकी इब्तदाई तालीम कहाँ से शुरू हुई और कैसे आप फिर NIT में दाखिल हुए, कैसे आपने ये स्टार्ट किया ये प्रोसेस?
1: आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया है इस प्रोग्राम के लिए। एंड बचपन से ही मुझे इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट था, ठीक है। एंड उस इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद देन धीरे धीरे मुझे उड़ने वाली चीज़ों में इंटरेस्ट हुआ, कुछ भी चीज़ जो एयरक्राफ्ट हो, बर्ड्स हो, प्लेन्स हो, फिर धीरे धीरे ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स हो। बचपन से ही मुझे इन सब चीज़ों का शौक था। एंड बचपन में मेरा ये शौक था कि आई वॉन्टेड टू बी ए पायलट, मैं एक कमर्शियल पायलट बनना चाहता था। बट फिर उसके बाद मुझे ये समझ आया धीरे धीरे कि नहीं, मेरा ज़्यादा इंटरेस्ट उड़ाने से ज़्यादा बनाने की तरफ है। तो फिर मैंने अपने पेरेंट्स को 10th क्लास में बोला कि ऐसे ऐसे है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्ट है, छोटी छोटी गाड़ियाँ वगैरह जैसे बचपन में हम तोड़ते हैं, टॉयज़ तोड़ते हैं, उनसे कुछ बनाते हैं, तो ये सब चीज़ें मैं बचपन से करता आ रहा हूँ। फिर धीरे धीरे मेरे फादर को भी समझ आया कि इसका इंटरेस्ट इसमें है। एंड हमने कुछ DIY किट्स ऑनलाइन खरीदे एंड उनको बनाना शुरू किया। तो पहला ड्रोन मैंने बनाया एंड वो उड़ा नहीं, तो मुझे लगता है अराउंड 6-7 महीने, 7-8 महीने मुझे लग गए उसको पहली फ्लाइट लेने में।
0: जिस तरह वो कहेंगे ना राइट ब्रदर्स की तरह, जो
1: हाँ
0: पहला एक्सपेरिमेंट फेल हुआ
1: हाँ तो
0: जी।
1: 6-7 महीने से ज़्यादा मुझे लगता है उसमें लग गए हमें पहली फ्लाइट लेने में।
0: ये
1: बना
0: आप
1: तो वो था,
0: स्कूल के डेज भी आपने ये
1: ये
0: शुरू?
1: 10th क्लास की बात है,
0: राइट,
1: जब मैं
0: ओके,
1: 10th में था, मैं ग्रीन वैली एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में पढ़ता था। एक चीज़ हमारा वहाँ पे फ़ायदा था कि ग्रीन वैली में भी हमारी एक टिंकरिंग लैब थी, जो ATL लैब के नाम से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम की तरफ से खोली गई थी, हमारे स्कूल में थी वो, वन ऑफ द फर्स्ट टिंकरिंग लैब्स इन द कश्मीर, स्टेट ऑफ कश्मीर। तो उसमें भी हम काफ़ी सारा चीज़ें जो इलेक्ट्रॉनिक्स है वो सीखते थे। वहाँ पे हमारे टीचर्स थे, वो हमें अलग अलग कंपोनेंट्स सिखाते थे। तो पढ़ाई से हट के वो हमारा ऑन ग्राउंड फिजिकल वाली चीज़ होती थी, मतलब ऑन हैंड प्रैक्टिस, इन हैंड प्रैक्टिस, थ्योरी से बेहतर। तो उधर से भी हमने सीखा। तो ये जो पहला ड्रोन था ये उड़ा नहीं, सब कुछ चल रहा था, मोटर्स वगैरह सब चल रहे थे जैसे चलने चाहिए। ऑनलाइन यूट्यूब से देखा, कुछ दोस्तों को कांटेक्ट किया, दोस्तों को आइडिया नहीं था, वेबसाइट्स पे देखा, बहुत अलग अलग जगहों से देखा, बहुत लोगों को कांटेक्ट किया। एंड फिर फाइनली मुझे समझ आया कि उसमें वो है, एक हेक्साकॉप्टर था, उसमें 3 रोटर्स जो है वो क्लॉकवाइज होने चाहिए और 3 जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज होने चाहिए। मैंने क्या किया था, मैंने रैंडमली किया था, पता नहीं था मुझे, न्यूटन थर्ड लॉ का था वो इशू, वो पता नहीं था मुझे उस टाइम। तो धीरे धीरे ऐसे रिसर्च करते करते पता चला कि चल रहे हैं लेकिन उड़ नहीं रहा है, फ्लिप हो रहा है। तो स्लोली वो हुआ एंड इट टुक इट्स फर्स्ट फ्लाइट आफ्टर 6-7 मंथ्स।
0: ये तजुर्बा कहाँ किया आपने?
1: ये मैं घर पे कर रहा था उस टाइम पे,
0: राइट,
1: ये मैं घर पे कर रहा था उस टाइम पे। एंड साथ साथ में मेरे पढ़ाई भी चल रही थी, टीचर से भी कुछ डाउट्स पूछे जा रहे थे, बट वही अगेन उस टाइम पे एक्सपीरियंस नहीं था, किसी को पता नहीं थी, ये इंडस्ट्री नई नई थी, ड्रोन इंडस्ट्री में इंडिया में भी ज़्यादा कुछ हो नहीं रहा था। ये अराउंड 6 साल पुरानी बात है, 5 से 6 साल पुरानी बात है अराउंड। फिर स्लोली हमारा ये था कि अब हम एक कंपनी बनाएंगे जिसमें हम डिजास्टर मैनेजमेंट में हेल्प करेंगे वाया ड्रोन्स।
0: ये आपका इनफ्रादी आइडिया था या इसमें आपके कुछ दूसरे लोग भी शामिल थे?
1: इसमें इसमें मेनली मेरे फादर शामिल थे जिन्होंने ये आइडिया
0: उनका
1: दिया
0: कुछ
1: कि
0: अपना बैकग्राउंड है इंजीनियरिंग में?
1: उनका उनका बैकग्राउंड, उनका भी इंटरेस्ट सेम इंजीनियरिंग में ही है,
0: राइट,
1: लेकिन मुझे नहीं पता या फिर उनने कभी बताया नहीं, वो उनने कॉमर्स परस्यू किया अपनी लाइफ में एंड इज एन इंटरमीडिएट CA राइट नाउ। वो अपना इनकम टैक्स फाइलिंग, GST वगैरह का काम करते हैं, उनकी भी अपनी कंपनी है। लेकिन फिर वही है, उनका आइडिया था कि नहीं चलो इसको लीगलाइज करते हैं, क्योंकि ड्रोन्स है, अगर ड्रोन्स में इंटरेस्ट है और कश्मीर में आप काम कर रहे हो तो उसको लीगलाइज करना पड़ेगा, इसको एक प्रॉपर फॉर्मेट देना पड़ेगा। तो प्रॉपर फॉर्मेट ऐसे दिया कि हमने कंपनी रजिस्टर की, मैंने अपना DGCA लाइसेंस लिया, फ्लाइंग लाइसेंस जो हम कह सकते हैं उसको, इंडिया में अराउंड 2022 में वो लॉन्च हुआ था, 2021 में, तो वो लाइसेंस मैंने लिया अपना। तो मेरे पास अभी करंटली फ्लाइंग लाइसेंस है, तो आई कैन फ्लाई एनी ड्रोन इन ग्रीन जोन। तो उसके बाद हमने कंपनी रजिस्टर की एंड फिर हमारा बेसिक जो हमारा स्टार्टअप का आइडिया था विच वाज हेल्पिंग जो लोग हमारे डिजास्टर में फंस जाए उनको हेल्प करना।

0: फ्लड्स में फंस जाए, अर्थक्वेक में फंस जाए। तो उसमें हमारा बेसिक आइडिया ये था कि आप मान लीजिए कहीं पे फ्लड आया, एंड जैसे हमारा
1: 14 में
0: 2014 में फ्लड आया था, तो उस टाइम भी मुझे ये आइडिया आया था कि जैसे अभी हम हेलीकॉप्टर से रिलीफ सप्लाईज पहुँचाते,
1: राइट
0: मेडिसन
1: राइट
0: हो
1: इट्स
0: गया,
1: वेरी
0: फूड हो
1: इंटरेस्टिंग.
0: गया,
1: हाँ
0: लोगों को लोकेट करना हो गया, लोगों को रेस्क्यू करना हो गया, क्यों ना हम वो ड्रोन से करें? क्योंकि स्टेट के पास कितने हेलीकॉप्टर, कितने अफोर्ड कर सकते हैं, और ड्रोन्स कितने हम अफोर्ड कर सकते हैं? 4-5 लाख रुपए की चीज़ है, कहाँ करोड़ों का हेलीकॉप्टर। तो ड्रोन से वो चीज़ें ज़्यादा क्विकली और ज़्यादा एक्सेसिबल है, ज़्यादा हम क्वांटिटी में ड्रोन्स को प्रोक्योर करके ज़्यादा लोगों को बचा सकते हैं उसकी मदद से। तो वो हमारा एक आइडिया था। फिर धीरे धीरे हमने डिज़ास्टर मैनेजमेंट में, हमारे आमिर अली साहब थे उस टाइम डायरेक्टर, तो उनको हमने अप्रोच किया, उनके साथ डिस्कस किया, एंड फिर हमने उनने हमें एक मॉक ड्रिल पर बुला लिया। एंड मैं आपको ये बताना चाहूँगा, ये मतलब लाइफ में अप्स एंड डाउन्स जो होते हैं उस बारे में है। तो उनने हमें बुला लिया फाइनली कि भाई आ जाओ, कल है आपका, कल आपकी मॉक ड्रिल है, आप यहाँ पे डीसी साहब आएंगे, आप दिखाओ अपने ड्रोन से आप क्या कर सकते हो डिजास्टर मैनेजमेंट में। तो वो हमारा सबसे बड़ा मोमेंट था कि भाई अब ये देखेंगे, इनको पसंद आएगा तो ये दे विल परचेज। तो एक स्टार्टअप के लिए क्या रहता है, एक इनोवेटर के लिए क्या रहता है कि उसके आइडिया को अप्रिशिएट किया जाए, एंड पीपल शुड अप्रिशिएट, एंड फिर उसका सेल्स भी हो, तो तभी जाके वो एक्चुअल सक्सेस हो गए। तो नेक्स्ट डे हमारी फ़्लाइट थी दिल्ली की, विंटर्स में यूजुअली दिल्ली जाते हैं, तो हमने कैंसिल की फ़्लाइट एंड रुक गए। हम एनआईटी गए टेस्टिंग करने, एनआईटी के ग्राउंड में हमें परमिशन मिला था, हमारे सौद सर थे, डॉक्टर सौद परवेज़, वो हमारे इनक्यूबेशन सेंटर के हेड है। तो वहाँ पे फिर सौद सर ने हमें परमिशन वगैरह दिलाई, एंड हम फ्लाइट टेस्ट कर रहे थे। अब इसी फ्लाइट टेस्ट में क्या हुआ, ड्रोन क्रैश हो गया, हवा में पता नहीं क्या हुआ एंड ड्रोन क्रैश हो गया। एंड नेक्स्ट डे हमारा सबसे पहला वाला, जो हमारा पहला सबसे इवेंट था, सबसे पहला हम कह सकते हैं ब्रेक थ्रू हो सकता था, उस पे हमारा क्रैश हो गया, एंड वो
1: तो
0: बहुत
1: यू वर डिसअपॉइंटेड अ बिट.
0: बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड था।
1: ठीक.
0: फिर हमने जो डायरेक्टर आमिर अली साहब है उनको फ़ोन किया, ऐसा हुआ, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, आप जैसा है वैसा है, टूटा टूटा ले आओ, बट एटलीस्ट प्रेजेंट योर सेल्फ। तो फिर कहीं से कुछ करके हमने बाहर से एक ड्रोन रेंट कर लिया, एंड बस एक वीडियो फीड वगैरह उनको दिखाया और अपना टूटा ड्रोन दिखाया एंड अपनी कैपेबिलिटीज़ एक्सप्लेन की। तो डीसी साहब जो है उनने काफ़ी अप्रिशिएट किया, ऑल दो हम दिखा नहीं पाए कि हम कैसे रोप को उधर से इधर लेके जाएंगे, हम कैसे थोड़ा बहुत मेडिसिन को पेड़ के उस पार या एक गड्ढे के उस पार लेके जाएंगे डिजास्टर में। इट वॉज़ ए POC, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, तो वो हम दिखा नहीं पाए, बट स्टिल वो समझ गए कि हाँ पॉसिबल है। तो धीरे धीरे फिर हमारा NIT श्रीनगर में हम इनक्यूबेट हुए, एंड NIT श्रीनगर से भी हमें फंड्स वगैरह मिले एंड सपोर्ट मिला वहाँ से, एंड हमारे प्रोटोटाइप के लिए। फिर अभी करंटली हम हमारा अभी
1: नहीं,
0: मेनली
1: ये फिर NIT में दाखिला कैसे, जो जो इनक्यूबेशन सेंटर है NIT का,
0: तो
1: तो उन्होंने काफ़ी स्टार्टअप्स ने उनको उन्होंने जन्म दिया उस इनक्यूबेशन सेंटर ने. सो यू बिकेम अ पार्ट ऑफ इट.
0: हाँ, वी बिकेम ए पार्ट ऑफ इट, एंड हम वहाँ पे अभी तक, मतलब हमारा 4 साल हो गए वहाँ पे, वी आर इनक्यूबेटेड देयर,
1: वेरी गुड.
0: एंड उनकी तरफ से जो भी, मतलब NIT के अंदर प्रोफेसर से उनके पास जो नॉलेज है, जो NIT के अंदर मशीन्स है, वो सब वी आर एक्सेसिबल टू दैट, हमें हमारे हमको उसकी सबकी एक्सेस है, एंड हम उसको यूज़ कर सकते हैं टू आवर एडवांटेज। एंड वो सबसे बड़ी एक चीज़ है कि हाँ, मतलब आपको कोई प्रोटोटाइप बनाना है,
1: दैट मीन्स आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिल रहा है,
0: हाँ बहुत अच्छा सपोर्ट मिल
1: मतलब
0: रहा है,
1: उस
0: एंड
1: लेवल पे.
0: राइट
1: अच्छा, ये हर एक चीज़ में एक फाइनेंशियल पार्ट होता है. अगर ऐसे मामले हैं, आप नया कुछ कर रहे हैं, तो फाइनेंशियल पार्ट में किसका रोल रहा आपका, मतलब गवर्नमेंट का कुछ थोड़ा सा, या कॉलेज का, या सिर्फ आपकी अपनी फंडिंग थी?
0: इनिशियली हमारी अपनी फंडिंग थी, फैमिली फंडेड था, एंड फिर अभी जो है, अभी मतलब उसके बाद जब हम NIT में इनक्यूबेट हुए, तो NIT ने फंड किया हमें, हमारे पास एक प्रोजेक्ट था हाई एल्टीट्यूड ड्रोन के लिए, क्योंकि हमने कुछ डेमोज़ वगैरह दिए थे। हमारा क्या था, हमने मल्टीपल, क्योंकि हमारे पास शुरुआत में फंड्स नहीं थे, तो हमने मल्टीपल कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके डेमोज़ देना शुरू किया। नॉर्दर्न साइड में, लद्दाख साइड हो गया आपका, J&K में हो गया, जम्मू कश्मीर सब जगह पे, हिमाचल में हो गया। तो हमने मल्टीपल कंपनीज के साथ कोलैबोरेट करके डेमोज़ देना शुरू किए अलग अलग जगह पे। फिर अभी धीरे धीरे जब कुछ डेमोज सक्सेसफुल हुए, तो उसके बाद NIT में भी हमने एक प्रोजेक्ट ले लिया कि हमने एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की है, जब ये डेमोज़ दिए, हाई एल्टीट्यूड पे ड्रोन्स फ्लाई नहीं कर पा रहे हैं लद्दाख वाले एरिया में। तो हमने क्या किया, हमने एक हाई एल्टीट्यूड VTOL का डिज़ाइन इनोवेट किया है, एंड उसमें कुछ एयर हमारा जो एयर फ्रेम है उसमें कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स है जो कि हाई अल्टीट्यूड में फ्लाई कर सकते हैं. तो उसके लिए हमने अपना पेटेंट भी अभी फाइलिंग हमारा चल रहा है NIT के साथ में, एंड उसी प्रोजेक्ट पे हमें NIT श्रीनगर ने फंड किया. एंड

0: अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे है, वो प्रोटोटाइप हमारा, एंड सून वी विल बी टेस्टिंग इट।
1: अच्छा, ये जो आपने आपने फिर एक एक कंसेप्ट खड़ा किया स्काई रोबो के नाम से,
0: स्काई रोबो ड्रोन्स प्राइवेट लिमिटेड,
1: हाँ,
0: तो
1: वो है क्या?
0: वो हमारी कंपनी है जिसके अंदर हम डिफेंस एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को हम सप्लाई करते हैं ड्रोन्स फॉर देयर मल्टीपल पर्पजेस। कोई स्पेसिफिक पर्पजेस नहीं है, किसी का पर्पज सर्वेलेंस है, कोई कार्गो सर्वेलेंस है, इवन हमारा मेडिकल में भी है। तो स्काई रोबो ड्रोन्स एक कंपनी है जिसके अंदर हम अपना ड्रोन्स एंड अदर जो हमारे इनोवेटिव प्रोडक्ट्स है वो हम सेल करते हैं टू मेडिकल एंड डिफेंस।
1: अच्छा, वही है इम्पोर्टेंट चीज़, ये है कि जैसे 2014 में फ्लड आया, तो जो डिजास्टर रिलीफ है इसमें आपका क्या रोल हो सकता है या क्या रोल रहा है अभी तक? 2014 में फ्लड्स आए, उसके बाद मतलब जब खुदा न खासा अगर कल को जलजला आए या बाकी चीजें, व्हाट कैन बी योर रोल?
0: तो अभी हमारा रोल ये रह सकता है कि जैसे फॉर एग्जांपल खुदा न खासा कहीं
1: और
0: पे,
1: और ये कितना हेल्पफुल होगा, ये
0: हाँ,
1: बड़ा इंपॉर्टेंट है,
0: हाँ,
1: क्योंकि अगर खुदा न खासा कोई डिजास्टर होता है तो एक्सेसिबिलिटी खत्म हो जाती है, कम हो जाती है,
0: एग्जैक्टली।
1: तो हाउ कैन यूर आई मीन इक्विपमेंट हेल्प?
0: हाँ, तो यही
1: यही
0: यही हमारा आइडिया था जो आपने कहा एक्सेसिबिलिटी खत्म हो जाती है, यही हमारा आइडिया था कि बाई रोड तो एक्सेसिबिलिटी खत्म हो गई और बाई एयर आपके पास में क्या ऑप्शन है? हेलीकॉप्टर खाली ऑप्शन, तो हेलीकॉप्टर्स आर वेरी कॉस्टली और फिर उनको ऑपरेट करने का अलग कॉस्ट हो गया, फिर वो हर एक को रिलीफ नहीं पहुंचा सकता। तो अभी हमारी कैपेबिलिटी ये है कि अब खुदा ना खास्ता कहीं पे फ्लड आ गया तो हम एटलीस्ट मेडिसिन पहुंचा सकते हैं, मेडिसिन से पहले एटलीस्ट हम लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन दे सकते हैं डिजास्टर रेस्क्यू टीम को, उनको पूरे फ्लड एरिया में ढूंढने की जरूरत नहीं, हम उनको एग्जैक्ट पिन पॉइंट लोकेशन देंगे कि इस घर में यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, इस घर में यहाँ पे लोग फंसे हुए हैं, तो एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके उनको निकाल सकते हैं, पूरा उनको सर्च करने की जरूरत नहीं, उनको बस रेस्क्यू करना है। तो सर्च हमने कर लिया अपने ड्रोन से, विद इन हाफ एन आवर पूरा एरिया सर्च हो जाएगा। फिर उसके बाद में आपका सबसे इंपॉर्टेंट है, अब जब तक रेस्क्यू टीम आ रही है तब तक हम अपना मेडिसिन हो गया, मेडिसिन प्रोवाइड कर सकते हैं बाय ड्रोन। हमारे पास अलग अलग पेलोड के ड्रोन्स हैं, 1 kg से लेके 10 kg तक पेलोड है उनका, तो मेडिसिन कितना ही है, 1 kg का मेडिसिन है। फिर उसके बाद आप पानी दे सकते हो, आप अपना फूड एंड सप्लाई दे सकते हो, तो ये सारी चीज़ से वी कैन हेल्प पीपल।
1: एंड देयर इज अनदर पार्ट, सपोज एनिमल कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशन है, उसमें आप कैसे मदद कर सकते हो या आपने कोई काम किया?
0: हाँ, तो मैं आपको बताना चाहूँगा, वाइल्ड एनिमल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो J&K में और हिली एरियाज में, हिमाचल वगैरह साइड में भी काफ़ी एक मेजर प्रॉब्लम है। होता क्या है कि वाइल्ड एनिमल्स जो है वो शहरों में आ जाते हैं जंगलों से निकल के जब खाना वगैरह ख़त्म हो जाता है, तो उसमें काफ़ी सारे लोगों को खतरा भी रहता है। एंड इसमें भी हमने एक प्रोजेक्ट किया था NIT श्रीनगर के साथ में ही अगेन, और दाचीगम जो आपका नेशनल रिजर्व है उसके साथ में, तो हमने क्या किया था, जो वो डार्ट, वो ट्रैंकुलाइजर गन जो उनके पास रहता है, वो फिजिकली बंदा जाता है और एट अ डिस्टेंस ऑफ अराउंड 100 meters से उसको वो शूट करना होता है। अब जब हम वहाँ गए, मैं आपको एक हंसी की बात बताना चाहूँगा, जब हम दाचीगाम गए हमने वहाँ पे लोगों का मतलब इनपुट लिया जो ऑन ग्राउंड काम कर रहे, जो वो गन चला रहे ट्रैंकुलाइजर गन, बालू और लेपर्ड को जो ट्रैंकुलाइज कर रहे उस गन से, उसने मेरे को कहा कि हम 3 लोग थे जो कि काम कर रहे थे, अब मैं अकेला हूँ। तो मैंने कहा क्यों बोल रहे हैं कि 2 जख्मी हो गए बुरी तरीके से, अब वो काम नहीं कर सकते। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? तो उसने कहा कि 100 meters की डिस्टेंस से हम शूट करते हैं, अगर गलती से मिस हो गया, और इसमें इस गन में उतना प्रेशर रहता नहीं है, हो सकता है कभी कभी मिस हो सकता है या बालू हिल गया अपनी जगह से, तो मिस हो गया तो उसको पता है गन शॉट कहाँ से है एंड वो विद इन सेकेंड्स अटैक कर देता है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो कि रेस्क्यू करने जाते हैं लोग उनके लिए। तो उसमें फिर हमने एक आइडिया ये लिया था कि वाई नॉट यूज़ ए ड्रोन, एक ड्रोन पर हम वो ट्रैंकुलाइजर गन लगा दें एंड वो बालू को फॉलो करेगा एंड इंसान 1 kilometer दूर से बैठ के या किसी हाइट पे बैठ के बिल्डिंग में बैठ के उड़ा रहा है एंड उसको जाके वो शूट कर रहा है ट्रैंकुलाइजर गन से। तो ट्रैंकुलाइजर गन ही ड्रोन के ऊपर माउंटेड था, तो इससे 2 चीज़ें हो गई, एक तो क्विकली आप एनिमल को जाके ढूंढ के उसको ट्रैंकुलाइज कर सकते हो ताकि वो लोगों को कम से कम हर्ट करे, फिर जो बंदा ट्रैंकुलाइजर गन लेके जाता है उसकी जान जो खतरे में रहती है वो बच गई यहाँ पे, क्योंकि वो अब वो सेफ डिस्टेंस से फ्लाई कर सकता है, एक मान लो बंकर से फ्लाई कर सकता है वो, या एक हाई दो स्टोरी या 3 स्टोरी की बिल्डिंग पे बैठ के फ्लाई कर सकता है, तो वो चीज़ सेफ होगी। तो ये एक और प्रोजेक्ट था जो हमने किया है, तो मुझे लगता है ये काफ़ी काम करेगा इन फ्यूचर, अभी इस पर और भी काम चल रहा है इम्प्रूवमेंट्स में, तो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट में काफ़ी काम कर सकता है।
1: हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ, मतलब कैसी रिएक्शन थी जब आप इनक्यूबेशन सेंटर NIT गए, कि उन्होंने कैसे अप्रिशिएट किया कि ये नया एक कंसेप्ट है, एक नया आइडिया है, एक छोटा लड़का है, 16-17 साल का इसने ऐसा किया।

0: ये तो 5-6 साल से आप इसमें हो,
1: तो
0: तो हाउ वाज द रिएक्शन?
1: इनिशियली जो सारे के सारे प्रोफेसर्स थे, जो भी कमेटी
0: डिड दे
1: थी,
0: बिलीव यू? आप में यकीन था उनको?
1: जो सारी कमेटी थी, सिलेक्शन कमेटी जो पूरी की पूरी थी, उसमें सबसे सबका ये सवाल था कि 12th के बाद आप इंजीनियरिंग क्यों नहीं करोगे? आपका अगर ऐसा प्लान है, ऐसा विजन है, वाई नॉट गो फॉर इंजीनियरिंग? सबका यही था. बट 1 साल 2 साल के बाद दे अंडरस्टूड कि नहीं, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, और जो अबान है वो अपने स्टार्टअप में क्या कर रहा है. इनिशियली तो काफ़ी रेजिस्टेंस मिली, बट अभी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिल रहा है. हाँ, रेजिस्ट आप नया आइडिया कोई लाओगे, इनोवेटिव आइडिया लाओगे, आप मान लीजिए जो ट्रेडिशनल चीज़ें हमारी इंडिया में या कश्मीर में चल रही है, उससे अगर आप हट के कुछ करोगे तो आपको रेजिस्टेंस मिलेगा 100%. बट अगर आपको यकीन है अपनी चीज़ पे, आपको भरोसा है कि नहीं हम कर लेंगे, जो हमने रास्ता लिया वो सही है, तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर यू विल बी अप्रिशिएटेड. तो रिएक्शन यही था कि स्टार्टिंग में भाई गो फॉर योर स्टडीज, कंप्लीट योर
0: आप
1: ग्रेजुएशन,
0: क्या करने
1: बीटेक
0: आए हो,
1: करो.
0: आप छोटे बच्चे हो,
1: हाँ,
0: ऐसा क्या होगा
1: तो
0: उनमें?
1: ऐसा. बट धीरे धीरे जब हमारा डिस्कशन हुआ, फिर जब प्रोजेक्ट्स हमने किए, तो वो समझ गए कि नहीं, इसको ये करना
0: अच्छा
1: चाहिए.
0: अमाल, इसमें अभी तक कितने चैलेंजेस आए आपको?
1: अभी
0: क्योंकि
1: तक
0: ये जो नए कॉन्सेप्ट होते हैं, इसमें टाइम लगता है, इट्स टाइम कंज्यूमिंग एंड ऑल दैट, और कभी कभी इंसान डिस्करेज भी होता है, चाहे कोई भी हो, कि मेरे जो रिजल्ट्स हैं वो सही नहीं आ रहे हैं,
1: हाँ,
0: 2 साल 3 साल। तो
1: सही.
0: चैलेंजेस क्या थे और आपने उन चैलेंज को कैसे उबूर किया, ओवरकम?
1: ऐसे कोई स्पेसिफिक चैलेंज नहीं है कि एक दो आए, इतने सारे चैलेंज है कि मतलब इंसान याद भी नहीं रख सकता. कुछ छोटे छोटे हैं, बड़े बड़े हैं, मल्टीपल चैलेंज है. टेक्निकल चैलेंज हो गए, फिर बिजनेस वाइज चैलेंज हो गए, ऑर्डर्स लाने में चैलेंज हो गए, फंडिंग वाइज चैलेंज हो गए. तो ये तो मतलब मल्टीपल आते रहते हैं लाइफ में, बट वही है कि सब चीज़ों का सोल्यूशन मिलता है पेशेंस एंड परसिस्टेंस के साथ में. कंटिन्यूसली आपको उसी चीज़ पे, अगर आप छोड़ रहे हो, आज आपको फेलियर मिला, आप बोल रहे हो कि अब मैं 4 साल से कर रहा हूँ, अभी भी सही नहीं हो रहा. से फॉर एग्जांपल अगर मैं टेक्निकल बोलूँ, तो अभी भी मेरा, मान लीजिए अगर मैंने एक नया ड्रोन बनाया, कुछ नया हम प्रोटोटाइप बना रहे, तो मैं ये बोलूँगा कि 4 साल से मैं कर रहा हूँ बट ये सही से फ्लाई नहीं कर रहा, तो छोड़ देते हैं. बट वो सही रास्ता नहीं है. अगर हम 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा लगाए, वो 4 साल की मेहनत हमारी उसमें शोकेस करेगी, फिर हाथ दिखाएगी कि नहीं मैं ये गलतियां कर रहा था एंड ये मैंने सही कर लिया, अब सही फ्लाई हो रहा है. तो पेशेंस मेन चीज़ है एंड परसिस्टेंस इज़ वेरी
0: अच्छा,
1: इंपॉर्टेंट.
0: व्हाट इज़ द रिएक्शन ऑफ से योर फ्रेंड सर्कल, जो सोसाइटी के दूसरे लोग हैं, जो इदारे हैं, उनका क्या रिएक्शन रहा है अभी तक आपके काम के बारे में या जो आपने अचीव किया है?
1: उनका रिएक्शन इज़ मिक्स्ड. ऐसा कुछ है नहीं किसी का सेम रिएक्शन नहीं है सबका. कुछ का रिएक्शन ये है कि मतलब उनको समझ नहीं आ रहा कुछ लोगों को कि अभी भी क्या
0: सही है,
1: चल
0: बिकॉज
1: रहा
0: इट इज़ अ नॉवल
1: है. एंड
0: ये
1: कुछ लोग समझ
0: प्रोजेक्ट।
1: रहे हैं एंड दे आर अप्रिशिएटिंग, कुछ लोग जो नहीं समझ रहे हैं उनका ये रिएक्शन है कि भाई क्या है, फ्यूचर है, कुछ चल रहा है, नहीं चल रहा है, एंड पढ़ाई नहीं की तो फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा? 12th के बाद अगर आपने नहीं किया है कंप्लीट ग्रेजुएशन, तो क्या फ्यूचर सिक्योर्ड है? बट जो लोग समझ रहे हैं उनको समझ आ रहा है कि अभी जो हमारा स्टडीज़ के बारे में बोलना चाहूँगा, अभी जो हमारा एजुकेशनल सिस्टम है थ्रू आउट इंडिया, उसका इंडस्ट्री के साथ रेलेवेंस बिल्कुल नहीं है आजकल. ठीक है, वो बहुत ऑब्सलीट और बहुत पुराना सिस्टम है जो कि हमारा एजुकेशन सिस्टम है. एंड जब भी कोई बंदा ग्रेजुएशन करके निकलता है, ठीक है, से M.Tech, B.Tech या कोई भी डिग्री, तो ऑन ग्राउंड जब वो किसी कंपनी में काम करता है या बिजनेस करता है, दैट इज़ टोटली डिफरेंट फ्रॉम जो उसको स्कूल में सिखाया गया होगा या कॉलेज में सिखाया गया होगा. तो यही मैंने रियलाइज़ किया था एंड दिस इज़ वाई आई ड्रॉप्ड ऑफ आउट ऑफ कॉलेज.
0: व्हाट नेक्स्ट? आपकी मतलब अगले 4 सालों में, 5 सालों में, अगर आप अपने आप को कहाँ देखते हो और इस प्रोजेक्ट को कहाँ देखते हो?
1: अगले 4-5 सालों
0: यू आर
1: में
0: स्टक टू इट नाउ, आप चाहते हैं कि मैंने एक परसू किया है, एक ड्रीम परसू किया है, आप इसको आगे ले जाना चाहते हो?
1: सही. तो अगले 4-5 सालों में मैं ये देख रहा हूँ कि एक बड़ी कंपनी हम फॉर्मेट करें जिसमें हमारे पास में मल्टीपल ऑर्डर्स हो एंड हमारे पास में
0: बहुत सारे लोग आपके
1: बहुत
0: साथ जुड़
1: सारे बहुत
0: जाएं।
1: सारे बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हो, जिनको मतलब विद इन कश्मीर हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें. एंड इस आइडिया को, जो कि आपका एजुकेशन सिस्टम है, उसको बदलने का, या फिर लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें कि
0: एग्जैक्टली हाँ,
1: ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट करें कि या तो सही कोर्स लो आप जो आपकी पढ़ाई में है, जो कि एक्चुअल आपको अब लाइफ में काम आएगा. कोई भी शॉर्ट कोर्सेज, जैसे अभी कोडिंग वगैरह के शॉर्ट कोर्सेज, उसमें कोई ग्रेजुएशन ऑनर्स B.Tech M.Tech करने की ज़रूरत नहीं है. उसमें कोई भी शॉर्ट कोर्स जो कि पर्टिकुलर गोल है आपका, वो अगर आप कर सकते हो विदाउट ग्रेजुएशन, तो उसमें आप बेहतर रहेगा, वो करिए. एंड यही एम है हमारा कि

0: ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मोटिवेट करें इस चीज़ के लिए.
1: अबान, आपको लगता है कि जो कन्वेंशनल कोर्सेज हम लेते थे, हमारे बच्चे, हमारे जूनियर्स जो लेते थे, सपोज नॉर्मली MSc, MA, बाकी चीज़ें जो कन्वेंशनल कोर्सेज, जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, वट एवर, तो ज़माना बदल गया है. यू एग्री?
0: काफ़ी लोगों को ये चीज़ बुरा लगेगा, खासकर जो लोग कर रहे हैं या मेरे फ्रेंड्स में से भी जो लोग कर रहे
1: हाँ.
0: हैं, ये सब उनको लगेगा कि हाँ हम तो सही कर रहे हैं या फिर रबान क्यों ऐसा बोल रहा है. बट यही सच्चाई है, और ये सच्चाई तब रियलाइज़ होगी जब आप जाके कहीं पे जॉब करोगे या आप कहीं पे जाके बिज़नेस स्टार्ट करोगे. तो ये आपको तब पता चलेगा कि अगर आपने खाली खाली लाइफ में, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हर कोई अपना जो डिग्री है वो छोड़ दे, ठीक है, हो सकता है कोई बंदा डिग्री के साथ साथ में अपना स्किल्स पे भी काम कर रहा हो तो उसको ये प्रॉब्लम नहीं आएगी. बट जो बंदा सिर्फ और सिर्फ अपनी डिग्री के बेसिस पे सोच रहा है कि मैं 4 साल डिग्री करने के बाद बाहर वेट कर रहे हैं, मेरा लोग जॉब के लिए मेरा ही वेट कर रहे हैं, मैं कब कंप्लीट करूं, तो वो सही चीज़ नहीं है. अगर आप अपने स्किल्स पे काम नहीं करेंगे तो कोई आपका वेट नहीं कर रहा है. वही है मेजर अनएम्प्लॉयमेंट का रीज़न, यही है इंडिया में, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं है करना क्या है, लोगों को पता ही नहीं कैसे जॉब करना है, कैसे क्या करना है. क्योंकि अब मुझे कैसे पता है, मैंने खुद 2 साल जॉब किया है, 4 कंपनीज मैंने 2 साल में बदली है, 6 6 महीने मैंने काम किया हर एक कंपनी में, एंड मैं समझा हूँ कि जॉब करने में क्या स्किल्स चाहिए. और मैंने जॉब जॉब किया था 12th के बाद ही,
1: जी
0: एंड मैं हायर्ड था एज ए सीनियर सिस्टम इंजीनियर फॉर इन माई फर्स्ट कंपनी, एंड जो मैंने अभी लेटेस्ट छोड़ी फिर तो वो था एज ए टीम लीड. तो वहाँ पे मेरे से ज़्यादा, मेरे अंडर जो काम कर रहे थे वो मेरे से ज़्यादा एजुकेटेड थे, एमटेक लोग थे, एरोस्पेस इंजीनियर्स थे.
1: बट यू वर देयर बॉस.
0: आई वॉज देयर बॉस. तो बट यही यही यही डिफरेंस है, यही डिफरेंस है विद रियल लाइफ स्किल्स एंड जो हमारा पुराना सिस्टम है एजुकेशन का उसमें.
1: यू वॉन्ट, आई मीन, ऐसी ये सिचुएशन चेंज हो जाए, एज ए यंग एंटरप्रेन्योर, एज ए यंग इनोवेटर, ये सिचुएशन चेंज होनी चाहिए.
0: ये सिचुएशन चेंज होनी चाहिए क्योंकि इम्पोर्टेंट है. कब तक हम लोग मतलब ऐसा अपने, मतलब मेरे हिसाब से तो हर किसी इंसान के 4 साल अगर ज़ाया हो रहे हैं उससे बेहतर है कि मैंने अगर 4 साल अपने बिजनेस में लगाए तो ठीक है, पिछले 2 साल से हम प्रॉफिटेबल हैं. अब 4 5 साल लगाने के बाद अब वहीं जाके जो बंदा अभी एमटेक बीटेक कर रहा है, अब उसने 4 साल उसमें लगाया, अब उसको और 4 साल या तो बिजनेस में लगाने हैं 4 5 साल, या फिर और
1: या
0: चार
1: फिर
0: पाँच
1: या
0: साल
1: पढ़ाई में लगाने हैं, PhD करना है या MPhil करना है, ऐसी
0: वो
1: चीज़ें.
0: करने के बाद भी उसको 4 5 साल. अब आप बोल रहे हैं कि पढ़ाई में वो 10 साल लगा रहा है, ठीक है, मैं तो 4 साल गिन रहा था, अब 10 साल वो पढ़ाई में लगा रहा है
1: जी
0: अपना PhD करने के बाद, अब उसके बाद और 4 साल उसको लगाने हैं जॉब में, जहाँ पे फिर वो इस लेवल पे पहुंचेगा कि वो अपना ठीक ठाक उसको सैलरी मिले, या बिजनेस में उसको अगेन 5 साल लगाने हैं जहाँ पे वो अपना प्रॉफिटेबल बना पाएगा कंपनी को. तो उससे अच्छा ये है कि अगर हमारे एजुकेशन सिस्टम में कुछ ऐसा हो कि 11th 12th में ही हमारे स्टूडेंट्स को स्किल्स सिखाई जाए एंड वो 11th 12th के बाद ही जॉब या तो बिजनेस करने के लायक हो जाए तो वो सबसे बेहतर रहेगा.
1: आपकी अब मिसाल देते होंगे, सपोज इनक्यूबेशन सेंटर वाले, कि बाकी बच्चों को भी कहते होंगे कि देखिए जी, अबान हबीब ने छोटी उम्र में ऐसा कारनामा अंजाम दिया, तो कैसा लगता है उस वक्त?
0: तो उस वक्त तो ऐसा लगता है कि हाँ मतलब गाइड करना चाहिए लोगों को. काफ़ी सारे लोग आते हैं हमारे पास कि गाइडेंस के लिए कि कैसे करें हम, अगर हम छोड़ दें घर वालों को कैसे समझाएं. तो उस टाइम पे हम गाइड करते हैं लोगों को, अच्छा भी लगता है कि ठीक है, मतलब जो रास्ता चूज़ किया था वो सक्सेसफुल रहा, लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं. तो बस यही मैं कहूँगा कि सब मतलब सोचे कि अगर आप कर रहे हैं अपना कोई भी डिग्री कर रहे हैं, साथ साथ में अपना स्किल्स पे भी काम करें.
1: इसके बगैर कोई आइडिया जो आप एक्सप्लोर करना चाहते हैं इन फ्यूचर,
0: इसके बगैर जैसे कि
1: जैसे कोई भी आइडिया, जैसे आपने ये एक रोबो वाला जो है,
0: हाँ
1: जो कि जो मैं पढ़ रहा था कि मतलब जो डिजास्टर रिलीफ में कितना काम आ सकता है, क्या आइडिया है, लाइफ सेविंग मेडिकल ट्रांसपोर्ट में कितना ये
0: हाँ
1: काम आ सकता है, इसके
0: हाँ
1: बगैर, इन
0: इसके
1: एडिशन टू
0: इसके इसके
1: दिस.
0: बगैर
1: हाँ
0: डिफेंस, डिफेंस में भी है काफ़ी पोटेंशियल है डिफेंस में भी, एंड थोड़ा बहुत काम हम भी कर रहे हैं, कुछ ड्रोन्स वगैरह सप्लाई कर रहे हैं. मेडिकल में काफ़ी, मतलब मेडिकल के बारे में हमने डिस्कस नहीं किया, उसमें हमने ये प्रोजेक्ट किया था कि हमारा हिमाचल प्रदेश में जैसे श्रीनगर जैसा टेरेन तो नहीं है, वहाँ ज़्यादा पहाड़ है, ठीक है, श्रीनगर तो हमारी वैली है, बट हिमाचल प्रदेश में पूरा का पूरा मतलब जो गांव विलेज सिटी सब कुछ पहाड़ों पे ही बेस्ड है, तो वहाँ पे अराउंड 150 किलोमीटर 100 किलोमीटर ट्रैवल करने में 6 से 7 घंटे का टाइम लगता है
1: जी
0: ड्यू टू हिल्स। वहाँ पे हमने क्या एक प्रोजेक्ट किया था, हम 100 ब्लड सैंपल्स लेके जाते थे गाँव वाले हॉस्पिटल से, एंड उसको हम ट्रांसपोर्ट करते थे

0: शहर के हॉस्पिटल में,
1: जी
0: फ्रॉम अर्बन टू रूरल, ठीक है। वो बाई रोड डिस्टेंस था, 7 घंटे का ट्रैवल टाइम था उसका, 150 किलोमीटर था वो अराउंड। जब हम रेकी करने जाते थे तो हम बस से या कैब से जाते थे, तो वही 6-7 घंटे लगते थे। एंड हम ये 100 ब्लड सैंपल्स जो है ड्रोन के थ्रू भेज रहे थे फिर,
1: हाँ
0: एंड ड्रोन में 45 मिनट्स का टाइम लग रहा था वो 100 सैंपल लेके जाने में हमें, जहाँ पे बाई रोड 7 घंटे लगते थे। मतलब अगर आज आपने 12 बजे के अराउंड
1: ये तो
0: टेस्ट
1: एक
0: सैंपल दिया गाँव में, तो आपका नेक्स्ट डे ही रिपोर्ट आएगा। मतलब अगर आपका इमरजेंसी है तो
1: यानी
0: आपका रिपोर्ट नहीं आएगा।
1: ये तो आप अब बहुत सा टाइम बचता
0: 45 मिनट्स, आपने अभी सैंपल दिया, 1 घंटे में आपका रिपोर्ट आ गया।
1: राइट
0: मतलब अगर आपकी इमरजेंसी है तो हम इमरजेंसी फ्लाइट निकालेंगे, मतलब अभी आपने सैंपल दिया, ऑपरेशन है किसी का उस हॉस्पिटल में, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं विद इन 45 मिनट्स।
1: वंडरफुल. अच्छा अब आखिरी मैसेज क्या होगी अपने जो हमारे सुनने वाले हैं, क्योंकि ये आपकी तशहीर का जरिया भी है कि आपने जो कारनामा अंजाम दिया है, वंडरफुल सक्सेस स्टोरी, क्या मैसेज रहेगी आखिर पर?
0: मेरा यही है कि लाइफ लोग लाइफ में अपनी रिस्क ले, ठीक है। सेफ खेलने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। हमारे पास जब तक हम यंग है तब तक हमारे पास एनर्जी है, हमारे पास टाइम है, हमारे पास फैमिली का प्रेशर नहीं है, मतलब हमारी शादी नहीं हुई है तो हमारे पास कमाने का प्रेशर नहीं है। तो हमारे पास, मतलब बुढ़े होके जो लोग बिजनेस करते हैं शादी करने के बाद, उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर रहता है। बट अभी हम यंग है, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो स्टार्ट डूइंग बिजनेस, स्टार्ट गेनिंग स्किल्स एंड रिस्क लेना स्टार्ट
1: थैंक यू
0: करें, कन्वेंशनल से
1: अबान,
0: बाहर निकले हम।
1: थैंक यू
0: थैंक यू सो
1: अबान,
0: मच।
1: आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा, और हमें उम्मीद है कि हमारे जो सामईन हैं, सुनने वाले हैं, उनको भी अच्छा लगेगा, और ख़ास तौर से जो नौजवान हैं जो ये प्रोग्राम सुनेंगे तो उनको भी एक इंस्पिरेशन मिलेगी कि आपने एट दिस एज 23 साल की उम्र में इतना जो आपने हासिल किया है कि उनके लिए भी एक मशाल राह साबित होगा. आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और सामीन इसी के साथ आज के प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त. इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज़.
2: सुमिना प्रोग्राम समाप्त कर रहे थे पेशरफ्त, मेहमान थे अबान हबीब मलिक, एंटरप्रेन्योर। मौजू था ड्रोन डेवलपमेंट इन कश्मीर। इनसे हम कलाम थे प्रोग्राम के मेज़बान सलीम कलो। हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं मीडियम में 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर।
3: कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर, आवाज जो आपके कारोबार को एक नई उड़ान दे। क्या आप चाहते हैं कि आपकी सोच, आपका कारोबार हर दिल में जगह बनाए? तो देर किस बात की, राबिता करें कमर्शियल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस श्रीनगर के साथ और अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
2: ये आकाशवाणी श्रीनगर मीडियम 68.8 मीटर तो FM 103.5 MHz पेट समय रात 10 बजे वाले बोझो प्रोग्राम तुहंज फरमाइश।

0: हम आकाशवाणी श्रीनगर से आपसे मुखातिब हैं। मीडियम वेव 268.81 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समय इन शब के 11 बजने वाले हैं। अब आकाशवाणी दिल्ली से हिंदी और अंग्रेजी में खबरें सुनते हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने आज मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। इनमें दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल, अशोक कीर्तनिया, निशीत प्रामाणिक और खुदीराम टुडू शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने पांचों मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारी संवाददाता ने बताया कि श्री विजय कल तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे।
2: हाल ही में हुए विधानसभा

चुनावों में टीवी के 108 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। 234 सदस्यों वाली तमिलनाडु विधानसभा में पार्टी को नई सरकार के गठन के लिए 118 सीट की आवश्यकता है। चेन्नई में आज संवाददाताओं से बातचीत में टीवी के नेता अधव अर्जुन ने बताया कि वीसीके और आईयूएमएल दोनों ने सरकार गठन के लिए उसे बिना शर्त समर्थन दिया है। दो विधानसभा क्षेत्रों से जीत हासिल करने वाले विजय को एक सीट खाली करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष।

0: करनी होगी, जिससे टीवीके की संख्या घटकर 107 रह जाएगी। हालांकि टीवीके पार्टी को कांग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, वीसीके और आईयूएमएल से कुल 13 विधायकों का समर्थन मिल चुका है। इनमें कांग्रेस के 5 और अन्य सहयोगी पार्टियों के 2-2 विधायक हैं। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद में विभिन्न विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री वारंगल में पीएम मित्रा पार्क का भी उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी हैदराबाद में अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। प्रधानमंत्री सिकंदराबाद के परेड ग्राउंड में एक जनसभा में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री कल ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। भारतीय तटरक्षक बल ICGS ने आज गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में नई पीढ़ी के अदम्य श्रेणी के फास्ट पेट्रोल वेसल श्रृंखला के नवीनतम पोत ICGC अचल को सेवा में शामिल किया। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये पोत तटीय और अपतटीय निगरानी, अवरोधन गतिविधि, खोज और बचाव, तस्करी रोधी अभियान और समुद्री प्रदूषण से निपटने के अभियान में सहयोग करेगा। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में साहिल जाधव ने पुरुषों की व्यक्तिगत कंपाउंड स्पर्धा में कांस्य पदक जीत लिया है। साहिल ने कांस्य पदक के लिए मुकाबले में डेनमार्क के मार्टिन डेम्सबो को हराया। भारतीय महिला रिकर्व टीम कल स्वर्ण पदक के लिए चीन का सामना करेगी, जबकि सिमरनजीत कौर अपना सेमीफाइनल मुकाबला खेलेंगी। भारत ने कल ओडिशा के डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप से मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेड री एंट्री व्हीकल MTRV प्रणाली से लैस उन्नत अग्नि मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Renuka. Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal today. Governor R.N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram today were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP ruled states, BJP President Nitin Naben and several other leaders of BJP attended the ceremony. The swearing-in ceremony was held on Pochishe Boishak, marking the 165th birth anniversary of poet Guru Rabindranath Tagore. The BJP registered a decisive victory in the recent state assembly elections, securing 207 seats in the 294-member house and ending the 15-year rule of the Trinamool Congress, which was reduced to 80 seats. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay today met Governor Rajendra Arlikar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is said to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu tomorrow. Tamilaga Vetri Karagam, TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 in the 234-member house required to form a new government government in the state by securing backing from Congress, left parties, Vidudalai Sirithagai Kachi, VCK, and the Indian Union Muslim League, IUML. Vijay, who won from two assembly constituencies, will have to vacate one seat, reducing TVK's strength to 107. The combined strength of the supporting parties, including Congress with five MLAs and CPI,

ये आकाशवाणी श्रीनगर है, मीडियम वेव 268.8 मीटर और FM 103.5 MHz पर। समीन शब के 11:10 हुए हैं। आज की मजलिस बर्खास्त करने से पहले कल यहाँ से नशर होने वाले प्रोग्रामों पर एक नज़र डालते हैं। समीन, आपको याद दिला दे, रात 9:30 पर पॉडकास्ट नशर होगा मारूफ बॉलीवुड एक्टर मीर सरवर के साथ। इनसे हम कलाम है तबरेज़ हुसैन मदनी। आपकी फरमाइशों से तरतीब दिया हुआ प्रोग्राम आपकी फरमाइश आप सुनेंगे शब 10 बजे। प्रोग्राम आपके लिए पेश कर रहे हैं जावेद अंद्राबी। सुबह 6:35 पर प्रोग्राम समाप्त करें सुबह का ही मॉर्निंग इन्फॉर्मेशन का शो प्याम सुबह ब्रॉडकास्ट होगा सुबह 7:10 पर। सुबह 8:15 पर प्रोग्राम समाप्त करें सैन तारीख।

वीरथाडन टांग, ये कश्मीरी ड्रामा आप सुनेंगे सुबह 11 बजे तहरीर से तरफी। 12:10 पर उर्दू गज़लें और 12:40 पर चंद कश्मीरी गज़लें आप सुनेंगे। मगरबी मौसीकी का प्रोग्राम संडे रिक्वेस्ट शो आप समाप्त करेंगे दिन के 1:10 पर नई मंजिलें। ये प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा दिन के 2:30। समय से पहले 3 बजे फौजी भाइयों के लिए प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा। पहाड़ी प्रोग्राम समाप्त करें 4 बजे। 4:30 पर पंजाबी प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होगा। शाम 5 बजे गोजरी प्रोग्राम नशर होता है। गरीबी भाई अपना प्रोग्राम समाप्त करते हैं शाम 6:05 पर। हालत हजरा का प्रोग्राम शहरबीन नशर होता है हर रोज शाम 7 बजे और रात 8 बजे प्रोग्राम समाप्त करें वादी की आवाज। तो समय ये थी तफसील कल हमारे यहाँ से नशर होने वाले प्रोग्रामों की। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में शब के 11:13 और 44 सेकंड हुए हैं। आज की मजलिस यही पे बर्खास्त करने की दीजिए इजाजत। सुबह मामूल के प्रोग्राम लेकर 6:28 पर इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए शब्बा खैर, जय हिंद।

लता मंगेशकर और मन्नत साहब की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में ये नगमा था फिल्म चोरी चोरी से, और ये फिल्म आई थी 1956 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की। और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल में गोल्डन एरा के उन बेहद खूबसूरत रोमांटिक और सदाबहार गीतों के साथ हम हाजिर हैं जो आपके दिल के बेहद करीब है। अगला नगमा इस महफिल में एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म, ये फिल्म आई थी 1957 में जिसका नाम था दो आंखें और 12 हाथ। यह फिल्म अपने आप में बेहद खूबसूरत फिल्म थी और इसके लिए इस फिल्म के लिए कई सारे अवार्ड भी मिले थे। वी शांताराम साहब के निर्देशन में, निर्माण और निर्देशन में बनी यह फिल्म जिसको लिखा था जीडी मेडुलकर ने, और इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में खुद वी शांताराम, संध्या, बाबूराव पेंडारकर और उल्हास के साथ बीएम व्यास वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था। इस फिल्म के गीतों को लिखा भरत व्यास ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा वसंत देसाई साहब ने। खास बात यह है कि इस फिल्म को 1957 में नेशनल फिल्म अवार्ड से नवाजा गया था। इतना ही नहीं, इस फिल्म को सिल्वर वियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइज ऑफ द जूरी के लिए बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अवार्ड से भी नवाजा गया वी शांताराम जी को। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा नगमा है लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज में, जिसे सुनकर आप बिल्कुल उसमें खो जाएंगे। ये गोल्डन एरा के वो हीरे हैं जिन्हें हम बार बार सुनना चाहते हैं, पसंद करते हैं और चाहते हैं कि ऐसे ही हम हमेशा सुनते रहें और ऐसे ही गुनगुनाते रहें। तो आइए आगे बढ़ते हैं और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल को आगे बढ़ाते हैं फिल्म दो आंखें और 12 हाथ के इसी नगमे के साथ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर एक छोटे से वक्फे के बाद एक बार फिर मैं फेरोज आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम गीत मेरे मन मीत में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 11:30 और 42 सेकेंड। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मन मीत की, गोल्डन एरा के वो नगमे जिन्हें हम बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं। ये वो नगमे हैं जो हमारे दिल के बेहद करीब है और ये वो नगमे हैं जो हमेशा हमारे साथ रहेंगे। ये उस दौर के नगमे हैं जो बहुत पीछे छूट गए लेकिन आज भी बसते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम एक बार फिर से उसी हकीकी दौर में चले गए हों। ऐसा ही एक नगमा, अगला नगमा आपके लिए हम लेकर आए हैं फिल्म हावड़ा ब्रिज से। ये फिल्म आई थी 1958 में। शक्ति सामंत साहब के निर्देशन में बनी यह फिल्म, जिसका निर्माण भी उन्होंने खुद किया था, इसमें मुख्य किरदार में थे अशोक कुमार साहब, मधुबाला, के एन सिंह, मदनपुरी, ओम प्रकाश, धूमल, सुंदर, कम्मो, ब्रह्मा भारद्वाज, चमनपुरी वगैरह। इस फिल्म के गीतों को लिखा हम सब के चहेते, हम सब के प्यारे कमर जलालाबादी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से संवारा ओपी नैयर साहब ने। इसी फिल्म का एक बहुत ही प्यारा गीत आशा भोसले जी और मोहम्मद रफी साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर

0: हो गई।
1: आशा भोसले और मोहम्मद रफी साहब की बेहद खूबसूरत आवाजों में नगमा फिल्म हावड़ा ब्रिज से। ये फिल्म आई थी 1958 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत है, इस्तकबाल है। और गोल्डन एरा के वो नगमे जो हम बार बार सुनना चाहते हैं, गुनगुनाना चाहते हैं, उन्हीं नगमों में अगला नगमा मैं आपके लिए लेकर आया हूँ।

एक और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही यादगार फिल्म और कई सारे पुरस्कारों से सम्मानित इस फिल्म को एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म जिसके निर्देशक थे शोमैन, हम सबके चहेते राज कपूर साहब। इसका निर्देशन किया था राधु कर्माकर ने और इस फिल्म का निर्माण किया था राज कपूर साहब ने। राज कपूर साहब ने ना सिर्फ निर्माण किया था बल्कि इसमें बहुत ही खूबसूरत अदाकारी भी की थी। और यह फिल्म आई थी 1960 में। इस फिल्म में मुख्य किरदार में थे राज कपूर साहब, पद्मिनी, प्राण, चंचल, ललिता पवार, राज मेहरा, नाना पालिस्कर, सुलोचना चटर्जी और विश्व मेहरा। इस फिल्म के गीतों को लिखा हजरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा शंकर जयकिशन साहब ने। हजरत जयपुरी साहब के साथ में शैलेंद्र साहब ने भी कुछ गीत को लिखा है इस फिल्म के। और खास बात यह है कि इस फिल्म ने राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और फिल्म फेयर पुरस्कारों में कई प्रतिष्ठित पुरस्कार जीते। 90वें फिल्म फेयर पुरस्कार समारोह में इस फिल्म ने 8 श्रेणियों में सबसे अधिक 4 पुरस्कार जीतकर अपनी अलग पहचान बनाई थी। और जो पुरस्कार इनको मिला था उनमें थे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार राज कपूर साहब को और सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का भी पुरस्कार राज कपूर साहब को ही मिला था। बेस्ट संपादन का पुरस्कार मिला था जीजी माइकर साहब को और सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन का पुरस्कार एमआर अचरेकर को मिला था। यह फिल्म बहुत ही खूबसूरत थी, अपने दौर की बहुत ही खूबसूरत फिल्मों में से एक थी और यह फिल्म थी जिस देश में गंगा बहती है। आइए इसी फिल्म का एक नगमा हम आपको सुनवाते हैं। आशा भोसले, महेंद्र कपूर, साहिर लुधियानवी, लता मंगेशकर जी और गीता दत्त, मुकेश, मन्ना डे साहब के साथ साथ महेंद्र कपूर की बहुत ही खूबसूरत आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

लता मंगेशकर जी, गीता दत्त, मुकेश मन्ना डे साहब और महेंद्र कपूर की आवाजों में नगमा था फिल्म जिस देश में गंगा बहती है, और ये फिल्म आई थी 1960 में। आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर। महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा गीत मेरे मनमीत की, और गीत मेरे मनमीत की इस महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका अपना दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलुस आदाब। एक बार फिर से आप तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल है गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में। आपको यह प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप हमें अपना फीडबैक हम तक पहुंचा सकते हैं, उसके लिए आप हमारा मेल आईडी नोट कर लें। हमारा मेल आईडी है fmgoldaidaily@gmail.com। मुझे आपके संदेशों का इंतजार रहेगा, आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा, और जब तक आपके पैगाम हम तक पहुंचेंगे, फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और गीत मेरे मनमीत की इस बेहद खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं गोल्डन एरा के उन बेहद खूबसूरत नगमों के साथ। और अगला नगमा एक और बहुत ही खूबसूरत फिल्म 1965 में आई गुमनाम से। राजा नवाते साहब के निर्देशन में बनी यह फिल्म बेहद खूबसूरत सस्पेंस थ्रिलर और रोमांस से भरी हुई यह फिल्म थी। इस फिल्म के का निर्माण किया था एनएन सिप्पी साहब ने, और इसमें मुख्य किरदार निभाने वालों में मनोज कुमार साहब, नंदा, प्राण, हेलेन, मदनपुरी, तरुण बोस, धूमिल, मनमोहन, लक्ष्मी छाया, हीरा लाल, और सबसे महत्वपूर्ण किरदार निभाने वाले महमूद साहब। अगला नगमा भी उन्हीं पर फिल्माया गया है, और इस फिल्म के गीतों को लिखा है शैलेंद्र साहब ने, और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। आइए सुनते हैं फिल्म गुमनाम का वही बेहद खूबसूरत नगमा। आवाज है मोहम्मद रफी साहब की, और साथ ही साथ महमूद साहब की।

0: जय हंगामा, कहाँ भाग रही तू मैं? काले से डर गए क्या?
1: हमें काले

मोहम्मद रफी साहब और महमूद साहब की आवाजों में नगमा था फिल्म गुमनाम से। ये फिल्म आई थी 1965 में। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर गीत मेरे मनमीत की इस दिलकश महफिल में अब आगे बढ़ते हैं एक और बहुत ही खूबसूरत नगमे के साथ। नगमा नहीं बल्कि एक बहुत ही खूबसूरत ये कव्वाली है। आवाजें हैं आशा भोसले, मुबारक बेगम, इन दोनों की आवाजें हैं और जिसे लिखा है हसरत जयपुरी साहब ने और बहुत ही खूबसूरत संगीत से सवारा है शंकर जयकिशन साहब ने। और ये कव्वाली है फिल्म आरजू से और ये फिल्म आई थी 1965 में। इस फिल्म में मुख्य किरदार निभाने वालों में राजेंद्र कुमार, साधना, फिरोज खान, महमूद, नाजिमा, नासिर हुसैन, अचला सचदेव, नाना पालिस्कर, ब्रह्मा भारद्वाज और धूमल वगैरह ने बहुत ही खूबसूरत अभिनय किया था और इन तमाम अभिनेताओं अभिनेत्रियों के अभिनय से यह फिल्म बहुत ही खूबसूरत बन गई थी। तो चलते चलते यह कव्वाली आपके लिए।

0: आशा भोसले और मुबारक बेगम की इसी आवाज के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत। सबसे कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद श्रेयसी रहेंगी आपके साथ लेकर अगला कार्यक्रम। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी हमारी मुलाकात ठीक 3:10 पर। तब तक के लिए नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नबन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धने खाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री

गढ़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोक भवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री रवि रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे।

0: जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला परसद बिसेसर के साथ त्रिनिदाद और टोबैगो के नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप का वो स्थान जहां गिरमिटिया भारतीय मजदूर सबसे पहले त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। डॉ जयशंकर ने नेल्सन द्वीप पर त्वरित प्रभाव परियोजना के लिए डॉ कमला परसद बिसेसर के साथ भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय सहायता से समर्थित ये परियोजना एक अमर यात्रा की साझा विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। 230 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए राजस्थान रॉयल्स 152 पर ही सिमट गई। राजस्थान रॉयल्स की तरफ से रविंद्र जडेजा ने सर्वाधिक 38 रन बनाए। पहले बल्लेबाजी करते हुए गुजरात टाइटंस ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 229 रन बनाए। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिम राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेणुका। Suvendu Adhikari took oath as the first BJP Chief Minister of West Bengal yesterday. Governor R. N. Ravi administered the oath of office and secrecy to Mr. Adhikari at a grand ceremony held at the Brigade Parade Grounds in Kolkata. Along with him, 5 other MLAs including Dilip Ghosh, Agnimitra Paul, Ashok Kirtanya, Nisit Pramanik and Shuddhiram Tudu were sworn in as cabinet ministers. Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, Defence Minister Rajnath Singh, Chief Ministers of various NDA and BJP-ruled states, BJP President Nitin Nabin and several others leaders of BJP attended the ceremony. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay yesterday met Governor Rajendra Arlekar at Lok Bhavan in Chennai and staked claim to form government with the support of 120 MLAs. Mr. Vijay is set to take oath as the Chief Minister of Tamil Nadu today. Tamilaga Vetri Karagam, TVK, which emerged as the single largest party with 108 seats in the recent assembly polls, achieved the majority mark of 118 seats in the 234-member house required to form a new government in the state by securing backing from Congress, left parties, Vidudalai Sirithagail Katchi, VCK and the Indian Union Muslim League, IUML. The top brass of the Congress party yesterday held a meeting in New Delhi to discuss government formation in Kerala. The meeting convened by Congress Chief Mallikarjun Kharge at his residence was attended by senior party leader Rahul Gandhi, party general secretary in charge of the state Deepa Dasmunshi, general secretary organization KC Venugopal and senior Kerala leader Ramesh Chennithala and VD Satheesan. The party said Congress Chief Mallikarjun Kharge and Rahul Gandhi will take the final decision on the new Kerala Chief Minister and the name will be announced very soon. Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. Mr. Modi will first travel to Karnataka to participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He will also inaugurate the newly constructed Dhyan Mandir at the Art of Living International Centre. Thereafter, Prime Minister Modi will travel to Telangana to lay the foundation stone and inaugurate multiple development projects worth around 9,400 crore rupees in Hyderabad. These projects collectively aim to strengthen connectivity, improve logistic efficiency, enhance safety and provide a better travel experience for people. Later in the day, Mr. Modi will reach Jamnagar on a 2-day visit to Gujarat. India has conducted a successful flight trial of an advanced

पानी पर लिखी कहानी। दोस्तों, आज इस कार्यक्रम में मैं जो कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ उसका नाम है कजली, और ये शानदार कहानी लिखी है इंदिरा डांगी ने। तो आइए सुनते हैं ये कहानी कजली।

47 डिग्री तापमानदार टीका टीक दोपहरिया है। गजली सिर पर सौदा किराने का झोला धरे बाजार से घर लौट रही है। मोटा की चक्की तिराहे से आगे जाती संकरी सड़क, उसके किनारे भीड़ जुटी है। होगा कोई खेल तमाशा, गजली को क्या, सूती धोती के छोर से मुंह पोंछती वो अपनी तेज चाल में है कि उस नवजात क्रंदन ने जैसे उसके पैरों में बेड़ियां डाल दी। अरे ये जन्म लिया बच्चा यहाँ कहाँ रोता है? उस स्वर के लवलेश मात्र ने सब कुछ विचलित कर दिया। मर्द मानुषों की भीड़ में धस कर गजली देखती है, ये क्या, सड़क किनारे गड्ढे के कूड़े में एक नवजात शिशु बिलख रहा है। गजली ने उस बार देखा, गंदगी, झाड़ झकूरों और तपते वीराने के पार दूर कुछ बसाहट दिखाई पड़ती है, लेकिन आसपास माँ तो क्या, मनुष्य भी कोई नहीं, बस आवारा जानवर इधर उधर को ही चले आते दिखते हैं। गड्ढे के इस पार तिराहे की भीड़ कुछ देर से जुटी लगती है। उसमें से ज्यादातर अपने फोन के कैमरे से फटाफट फोटो खींच रहे हैं, दो तीन लड़के वीडियो बना रहे हैं, कुछ आवाजें पुलिस को फोन करो पुलिस को फोन करो की भी है। कोई कह रहा है जरूर ये लड़की होगी, इसीलिए घूरे पे फेंक दी। क्या पता लड़की है कि लड़का, आजकल तो लड़कों को भी घूरों पर फेंकने की खबरें छपती है अखबारों में। भाई कोई लड़का कैसे फेंक सकता है, क्यों नहीं, कुछ भी हो सकता है। कजली भीड़ की अश्लील हंसी के परे देख रही है। उस ओर के आवारा जानवर बड़े गड्ढे के किनारे कूदने से पहले पीछे हटने की मुद्रा में आ चुके हैं। गड्ढे में नवजात के क्रंदन का स्वर मंद पड़ रहा है, उसके ऊपर चीटे रेंग रही हैं। इतने मर्द मानुषों की भीड़ के रहते अकेली चनी आगे कैसे बढ़े? और कजली तो 2 सीटर का 5 रुपया किराया बचाने के लिए सौदा किराने का झोला सर पर रख कर 2 किलोमीटर दूर से पैदल चली आ रही है। वो अपना सैकड़ों रुपयों का सामान किनारे छोड़कर भला गड्ढे में कैसे कूद जाए? आसमान के ठहरे रथ से सूर्य नारायण आग के बाण चला रहे हैं और भीड़ बातों के। कजली ने आधे चेहरे पर घूंघट निकाला और सिर पर 40 किलो वजनी झोला साधे गड्ढे में कूद गई। भीड़ में सन्नाटा छा गया। गड्ढे में कूदी कजली ने आधे पल में शिशु को उसकी चीटों भरे शॉल में से उठाकर खुद से चिपटा लिया। अरे ये देखो देखो जनी, जनी मानस में अगुवाई का ये हौसला, अरे कहीं इसी का तो नहीं, अस्पताल ले जाओ बच्चे को। पुलिस को किसी ने फोन किया था? अरे भाई पुलिस को तो 3 फोन कर चुके हैं, पुलिस के पास तो जीप ही नहीं है। अरे पुलिस क्या तुमसे पूछ बता कर आएगी? अरे वो तो अचानक आएंगे और 2-4 को पकड़ लेंगे कि तुम ही ने देखा होगा सब, आती होगी पुलिस तो। भीड़ अचानक छटने लगी, सब चेहरों पर एक साथ भय दिखा। पुलिस मामला हुआ तो गवाही के लिए वो गर्दन पकड़ेंगे। तिराहा 2 पल में सूना हो गया। बस इक्के दुक्के उत्साही लड़के ही वहां रह गए जो अपने अपने फोन के कैमरे से वीडियो उतारने में तलीन है। कजली ने नवजात की नग्न देह से चीटे खींचे। आहा कन्या रत्न, जगह जगह हो आए घावों से खून छल छला आया है। 5 घंटे की नवजात अग्नि सी धूप, अग्नि सी ही भूख से बिलबिलाकर अब वो मरना संसी उसकी बाहों में झूल रही है। हे भगवान, ऐसे स्वागत किया है इस संसार ने इस लड़की का। कजली ने सूती धोती के शीतल छोर तरे उस जीवित मांस पिंड को समेट लिया, सिर पर झोले का वजन साधा और गड्ढे से बाहर निकलने के लिए सोचती सी इधर उधर देखने लगी। उसके चेहरे पर मदद की दरकार देखकर इक्के दुक्के लोग जो वहां से हटने को ही थे तुरंत रफा दफा हो गए। कांटे झाड़ पत्थर गंदगी फांदती कजली फेरा देकर वापस तिराहे पर आ गई।

बिल्ली और किलोमीटर भर चलती है और घर पहुंचती है। सरकारी स्कूल नंबर एक के पीछे कुमारपुरा में किराए के ये दो कमरे, दो नन्हे बच्चे, 7 साल का कैलाश और 4 साल की सोन। दोनों बच्चे कब से राह तकते हैं माँ के लौटने की। मम्मी, झोले में क्या क्या लाई हो? ये कौन है? ये तुम्हारी बहन है। बहन, तो क्या नाम है इसका? नाम तुम ही रख दो ना।

कजली ने नवजात की देह साफ की, अब तक तो नाल भी नहीं कटी, और ये जख्म अस्पताल ले जाना होगा, पर उससे भी पहले उसे दूध पिलाना होगा। एक कप भर दूध है इस समय घर में, बच्चों के दूध पी चुकने के बाद ये कप भर दूध वो शाम तक बचा कर रखती है अपनी चाय के लिए। बच्चे के मुंह में आधा चम्मच भर दूध डाला तो उसे पीना भी ना आया। कजली की आंखें भर आई, अभागिन माँ ने पहला स्तनपान भी नहीं कराया इसे। मन इतना द्रवित हुआ कि वेग आत्मा की गहराई तक जा पहुंचा। ममता आंखों में आंसू बन झरझर झरती है, लेकिन स्तनों में ये कैसी झंझनाहट। सोन को माँ का दूध छोड़े साल हुआ, पर तब तक छाती में दूध नहीं उतरा। अब इसके लिए जीवन अमृत की बूंदे उतरेंगी भी या नहीं। उसने अपने आंचल को उड़ा दिया बच्ची को, और अगले पलों में एक मुस्कुराहट फैल गई उसके नम चेहरे पर। संसार में आने के पिछले 4-5 घंटों से कष्ट और घाव तो भरपूर मिल चुके नवजात को, लेकिन जीवन का रक्षक ये अमृत दूध अब मिला है।

कजली का दिमाग रफ्तार में है, जल्दी से घर के काम निपटाए, खाना पकाकर दोनों बच्चों को खिलाया और उन्हें साथ लिए दरवाजे पर ताला लगा अस्पताल जाने के लिए निकल पड़ी। शराबी पति देर रात तक लौटेगा, तब तक तो वो लौट ही आएगी। ना लौट सकी तो पड़ोसी को चाबी दिए जा रही है। नवजात को देखकर कुम्हारों के पुरा में भीड़ जुट गई। कन्या का जन्म व्यर्थ नहीं जाता, गर्भ में आती है तो जन्मती ही है और जन्मती है तो जी भी जाती है। अपना भाग्य अपने साथ लाई

0: अब तो जी गई ये भी। किसी ने एक सिक्का, किसी ने दो और किसी ने पांच का नोट रखकर नवजात कन्या के पांव छू लिए। सिविल अस्पताल की गजब अव्यवस्थाएं, कसैले जहर बुझे बर्ताव, गरीब से गरीब आदमी भी कलेजा थाम कर ही यहाँ इलाज के लिए आ पाता है। कम पढ़ी लिखी कजली लेकिन जानती है इस निर्मम तंत्र में जीवित कैसे बचे रहना है। मुख्य साहब के केबिन में अव्वल तो आम आदमी की सीधी पहुंच असंभव है। नवजात को पांव छुआई में जो सिक्के नोट मिले थे सब चपड़ासी की फैली हथेली पर रखने पड़े उसकी माँ यशोदा को। दिल भीतर ही भीतर कटकर रह गया, हालात जो न कराए। तीन बच्चों को लिए एक गवई माँ की ये जरूरत कि उसके एसी केबिन में घुस आई। मुख्य साहब घंटी बजाकर उसे बाहर पिकवाने ही वाले थे कि कजली ने नवजात बच्ची उनके पैरों में डाल दी। मशीनी लाल फीता शाह का पत्थर दिल अप्रत्याशित तौर पर धड़का। नवजात को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया। यो खबर तो अव्वल पुलिस को देनी ही थी लेकिन चूंकि मुख्य साहब को अपने साले की बेटी की सगाई के लिए अभी ही सपरिवार निकलना था तो पुलिस के लंबे पूछताछ शेड्यूल से बचा गया। नवजात का इलाज शुरू हो गया। दोनों बच्चों को घड़ी घड़ी भूख लगती है। हाथ पास का भोजन चुक गया तो कजली ने आधा किलो आटा खरीद लिया और मरीजों के परिजन जहाँ ईंटों के चूल्हे बनाए हाथों से रोटियां थोप थोप कर सेक रहे थे वहाँ चली आई। किसी के जलते चूल्हे पर वो भी रोटियां सेक आई। अब बच्चों को परोसे किसमें, अपना आंचल फैलाकर माँ ने तीन जगह रोटियां रख दी। बच्चे खाना खाने लगे। कजली ने रोटी का पहला कौर मुंह में डाला ही था कि उसकी पीठ पर अचानक इतनी तेज लात मारी गई कि वो मुंह के बल धूल में जा गिरी। भूखी माँ और भूखे बच्चों का सब भोजन मिट्टी हो गया। अच्छा जी, क्या मैं यहाँ मौजूद नहीं था? क्या तेरा पति नहीं था जो तू जहाँ चाहे मनमर्जी से कहीं भी आती जाती है? ये था उसका नशेड़ी पति मनसुख, पापड़ जैसा पतला, फेफड़ों में रोग का स्थायी मरीज और नशे में घुल घुल कर मिटने की कगार पर आ खड़ा हुआ। हमेशा की तरह नशे में धुत उसे ढूंढता हुआ यहाँ तक चला आया था। गालियां बकते हुए मनसुख ने अपनी टायर की चप्पल उतार कर उसके मुंह पर मारनी चाही कि धूल से उठती कजली ने उसे एक जोर का धक्का दिया। एकदम से वापस नहीं उठ सका, पड़ा पड़ा ही चिल्लाने लगा,
1: देखो भैया, सब लोग देखो, ये कैसी जनी है जो अपने आदमी पे हाथ उठाती है। ना जाने किसको उठाकर लाई है और मेरे सर पर रखती है। मैंने मना किया तो मुझे पीटती है।
0: बिसूरते मनसुख के इर्द गिर्द लोगों की भीड़ जमा उठी। बिना पूरी बात जाने लोग तरह तरह से उसकी पत्नी को लांछित करने लगे। कैलाश और सोन के हाथ थामे कजली माँ शिशु वार्ड में चली गई, उपचाररत अपनी तीसरी संतान के पास। सवेरे नवजात को अस्पताल से डिस्चार्ज मिला। घर आकर काम में जिन की तरह जुट गई कजली। घर बच्चों के काम पूरे हुए तो अगरबत्ती बनाने बैठ गई। नवजात को सोन ने नाम दिया है गंगा। एक बूढ़ी पड़ोसन नाम जानकर मुस्कुराई, फिर आने का मकसद बताया, ओ गंगा की मम्मी, तनिक एक कटोरी शक्कर हो तो उधार दे दो। किसी स्वर्ग से निकली गंगा किन्हीं शिव जटाओं में सहज समा गई। पर गंगा के भाग्य में हिमालय में टिके रहने का सौभाग्य कहाँ। संसार के बीहड़ों, राख आग अस्थियों की तरफ चले जाना उसका प्रारब्ध ठहरा।

तीनों बच्चे जबकि उनकी माँ की स्नेहा सिक्त छाव में हैं और कजली का परिश्रम भरा दिन निश्चिंतता से बीत रहा है, कुम्हारपुरा के इस किराए के घर में 1 किलोमीटर पीछे मोटा के चक्की तिराहे पर एक मोटरसाइकिल आकर रुकती है। एक सिपाही इधर उधर दुकानों पर पूछताछ कर रहा है। कल इधर से बार बार फोन कर रहे थे लोग, इधर कहीं गड्ढे में किसी ने बच्चा फेंका था क्या? गड्ढा तो यहां है, इसका मतलब है कि वारदात हुई है। बताओ तुम में से किस किस ने देखी वारदात, बताओ मुझे। जो दुकानदार सब विपरीतताओं में अपनी दुकान चलाना जानते थे वे अनिभिज्ञता जताकर इधर उधर हो गए, लेकिन एक दुकान का तरुण नौकर जो यथार्थ जीवन को कम जानता था उसने वो वीडियो दिखा दिया जिसमें एक स्त्री गड्ढे में कूदकर नवजात को चींटों भरी शॉल से निकालती है और अपने दामन में समेटकर अपनी राह चली जाती है। ठीक, सिपाही ने हथेली पर घिसी तंबाकू ठोक कर गाल में दबा दी। तुम्हारा ये मोबाइल जब्त किया जाता है, चलो थाने। सर सर सर, मुझे फोन कब वापस मिलेगा? नाबालिग लड़के के फोन नहीं जैसे प्राण खिंच गए। ना तो उसके तन पे ठीक कपड़े हैं, ना पैरों में साबुत जूते। ये महंगा फोन पिछले 6 महीने की इस नौकरी की पाई पाई जोड़कर खरीदा था। सिपाही लड़के को अपनी मोटरसाइकिल पर ले गया और थाने में सीधा थाना प्रभारी के सामने जा पहुंचा। थाना प्रभारी का दिमाग इस वक्त एकदम भन्नाया हुआ था। थाना प्रभारी साहब ने सिपाही के साथ उस गवाह लड़के को आते देखा तो रंगदारी में एक दूसरे मामले का मुलजिम समझकर उसे पुलिस के रोल में

0: पीटना शुरू कर दिया। सिपाही तरुण लड़के को बचाने की कोशिश करने लगा और उसके 8-10 बार दोहराने के बाद थाना प्रभारी के भन्नाए दिमाग तक ये बात पहुंची कि ये तो दूसरे मामले में संभावित गवाह है, एसपी साहब को किसी भी तरह खुश करना होगा। पलक झपकते ही रोजनामचे में एफआईआर दर्ज हो गई। अज्ञात महिला ने अज्ञात नवजात का अपहरण कर लिया। थोड़ी ही देर बाद पुलिस गवाह लड़के के साथ घटनास्थल का मुआयना करने लगी। गवाह लड़के ने मौका देखते ही दौड़ लगा दी। पुलिस को भागते लड़के के पीछे दौड़ने में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अरे गवाह भाग गया तो कोई बात नहीं, पुलिस वीडियो के सहारे पूछताछ करती घंटे भर में कुम्हारपुरा में कजली के घर तक जा पहुंची। मैंने तो उसकी जान बचाई है, मौके पर पुलिस पहुंचती ही नहीं थी तब, आप लोग आज पहुंचे। आज तक तो आवारा जानवर उसे हजम कर गए होते। अस्पताल में सब सच बताया था? बताओ। हाँ, देखिए अस्पताल के कागज। नहीं नहीं, मैंने उसे चुराया नहीं है। कहने से जीप में जाकर नहीं बैठी वो, पुलिस को मजबूरन उसके हाथ में हथकड़ी डालनी पड़ी। तीनों बिलखते बच्चों को भी जीप में पीछे धकेल दिया गया। कजली अपने आंसू पोंछती अपने दिल में अपनी मरहूम माँ से मुखातिब है। तुमने मुझे स्कूल कॉलेज जाने दिया होता तो आज मेरी ये गत न होती। अब दरोगा जी के सर का दर्द कुछ हल्का हुआ। थाने पहुंचने तक वो लगातार फोन करते रहे अपने मित्र संवाददाताओं को। थाने पहुंचिए तत्काल, हमने 1 घंटे मात्र में अपहरण का एक केस हल कर लिया है। प्रेस वार्ता हो गई। प्रेस वार्ता में कैमरों के फ्लैश चमके। हवालात में बंद महिला और 3 बच्चों की ओर उंगली उठाकर थाना प्रभारी साहब बता रहे हैं, मुलजिम ने कहीं से इस नवजात बच्ची का अपहरण किया है। मुलजिम के पास ये बच्चे बरामद हुए हैं जिन्हें वो अपना बता रही है। प्रेस वार्ता निपटाकर थाना प्रभारी तुरंत एसपी साहब के ऑफिस के लिए निकल गए। रात के नशे और एसपी साहब की फटकार सहित सिर का भयानक दर्द भी अब सब गायब हो चुका था। हवालात में नवजात के लगातार रोने से दीवान साहब तंग आ गए हैं। अरे भाई, कोई इस बच्ची को अस्पताल ले जाओ, गाड़ी नहीं है दीवान जी थाने में। क्यों, कहाँ गई दोनों गाड़ियाँ? एक तो दारोगा जी एसपी ऑफिस में ले गए हैं और दूसरी वो दारोगा जी की जो बिटिया है ना, उसको कोचिंग क्लास छोड़ने गई है। अच्छा, तो कोचिंग क्लास से लौटकर तो आएगी ना अभी? नहीं, वो फिर दारोगा जी की जो मिसेज है ना, उनको बाजार ले जाएगी।
1: हैं?
0: तो क्या अपहृत बच्ची मुलजिम के पास ही रहेगी? और जवाब में होना ये था कि बदबूदार, अंधेरी और दुर्गंध भरी हवालात की असहनीय गर्मी में अगले दिन तक माँ बच्चों को सड़ना था। लेकिन आईजी साहब के अचानक दौरे की खबर ने न सिर्फ थाने में सुव्यवस्था का हड़कंप मचा दिया, बल्कि बंदियों का भी हड़बड़ी के साथ इंतजाम होने लगा। थाने की जीप बाजार जाती थाना प्रभारी की मेम साहब को आधे रास्ते में सड़क पर उतारकर थाने की तरफ वापस दौड़ी। दारोगा जी हक बकाए थाने में लौट आए और कजली को तीनों बच्चों के साथ मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने भेज दिया। क्या तुमने बच्ची को चुराया है? मजिस्ट्रेट मैडम ने सीधा ही प्रश्न कर दिया कजली से। धड़कते दिल को काबू करती बड़े हौसले और संयम से कजली ने विस्तार पूर्वक सारा घटनाक्रम कह सुनाया। अस्पताल के कागज और जब्त वीडियो उसकी सच्चाई के सबूत थे। कजली को आरोप मुक्त करने और बच्ची को अनाथालय भेजने के फैसले के अंत में मजिस्ट्रेट प्रतिभा चौहान ने पुलिस के लिए फिर वही सलाह लिखनी चाही, पर कानून की विदुषी ने अफसोस भरी सांस लेते हुए अपनी कलम रोक ली। मैडम जी, ये बच्ची मुझे दे दीजिए, मेरे सिवाय कोई इसे माँ की तरह नहीं पाल सकता, आंचल पसार कर अनुनय किया कजली ने। मैजिस्ट्रेट मैडम आधे पल को अवाक रह गई, फिर संभली। औपचारिक आवाज में उसे बच्चा गोद लेने के कानून के बारे में बताया। कोर्ट के बाहर जाती कजली को दूर तक देखते उसके तरल हृदय में भीतर ही भीतर एक दुआ की, हे ईश्वर, इस बच्ची को बस ये माँ मिल जाए। अंधेरा ढलते कजली दोनों बच्चों को लेकर घर पहुंची। दरवाजा खुला है, नशे में धुत पति भीतर से उसका नाम ले लेकर गालियां दे रहा है। मोहल्ले के 2 एक निकम्मे उसके पास बैठे हैं, उसे शह दे रहे हैं। कजली का दिल एक

मुकर गया। छोड़ दे ये घर और आदमी, दिन रात के कलह से प्राण तो छूटे। दहलीज पर खड़ी वो ये सब सोच ही रही है कि दोनों बच्चे भागकर घर के भीतर पहुंच गए। पति के मित्र चुपचाप निकल गए। वो भीतर आई और रात का खाना बनाने में जुट गई। अगली सुबह सब घरेलू काम पूरे कर अगरबत्ती बनाने बैठी तो रत्ती भर दिल नहीं लगा उसका काम में। उसके सीने की नसों में कसक भरी सरसराहट होती है। बच्ची दूध के लिए तरस रही होगी। मम्मी, गंगा के अस्पताल में है? मम्मी, उसे घर कब लाएंगे हम? क्या आपने बहन को अस्पताल वालों को दे दिया? बच्चों के सवालों ने काम करते हाथों को रोक दिया। कजली निकल पड़ी थाने की ओर। दीवान साहब चौंकते हैं। गसब जनी, कल गिरफ्तार हुई थी, आज फिर आ गई थाने? कजली हाथ जोड़कर अनाथालय का पता पूछती है। शहर से 4 किलोमीटर बाहर इस तरफ सड़क के बाहर टेम्पो 2-सीटर नहीं जाते हैं। मोड़ से ही कच्ची सड़क पर पैदल चलती रही कजली। दूर से ही वो अपनी नवजात के बिलखने का सर पहचान जाती है। पैरों में जैसे पंख लग जाते हैं माँ के। कजली ने भागकर गंगा को पलने में से उठा लिया। बच्ची दूध पीते पीते सो गई। उसकी गीली लंगोटी और कथरी बदलकर वापस उसे पलने में लिटा दिया और कुछ देर यूं ही निहारती रही कजली। ओ मेरी बिटिया।

अब उसने चारों तरफ नजर डाली। बड़े कमरे में तीनों पल्लों में बच्चे लेटे हैं, जो शायद तीनों ही लड़कियां हैं। बाकी कमरे में खेलती, सोती या रोती एक से लेकर 5 साल तक की कुल 7 लड़कियां हैं। इसके अलावा उसमें 3 छोटे लड़के भी हैं, जिसमें से 2 दिव्यांग दिख रही हैं। कजली इस बड़े कमरे से निकलकर इधर उधर घूमकर किसी अधिकृत व्यक्ति को ढूंढने लगी कि जिससे बात की जा सके। अनाथालय की रसोई, बगीचे, बाथरूम, ऑफिस, सभी स्थलों पर 5 साल से ऊपर की उम्र की लड़कियां काम करती दिख रही हैं। कोई 6 बरस की बच्ची बगीचे के पौधों को पानी देती, तो कोई 7 बरस की बालिका सब्जी काट रही थी। कजली को कहीं कोई कर्मचारी नहीं दिखा। वो दफ्तर गई, जहां 5 साल की एक लड़की पोछा लगा रही थी। बिटिया, यहाँ बात किससे करनी है? ओ, मैडम जी तो घर में सो रही हैं। वो सामने ही उनका क्वार्टर है। 5 बरस की लड़की किसी पारंगत नौकरानी की तरह अपने काम में लगे लगे ही जवाब देती है। लाओ बिटिया, मैं तुम्हारी जगह पोछा लगाए देती हूँ। कजली ने उसके सर पर हाथ फेरा। बच्ची इस अप्रत्याशित बात से सिखाया काम भूल गई। आंखें बड़ी कर उसे

ताकती हुई बोली, मेरी अम्मा बहुत बुरी थी, उन्होंने मुझे मरने के लिए फेंक दिया, इसीलिए मुझे इतना काम करना पड़ता है। और सब दुत्कारते हैं, नहीं बिटिया, अम्मा बुरी नहीं होती, बुरे होते हैं कुछ लोग, कुछ रिवाज जो अम्मा से बच्चों को छीन लेते हैं। मैं मार डालूंगी उन सबको। वो बच्ची रोने लगी। तो पढ़ना, खूब खूब पढ़ना, तब जीत जाओगी गंदे लोगों से और गंदे रिवाजों से भी। हो सकता है तब तुम्हें तुम्हारी अम्मा भी मिल जाए। कजली ने प्यार से उसका गाल थपथपाया और आगे बढ़ गई। इंचार्ज मैडम के कमरे के बाहर खिड़की पर लगा इतना बड़ा कूलर चल रहा है जिसकी इतनी ऊंची आवाज है, या कि उसकी नींद इतनी गहरी है कि बड़े देर तक दरवाजा पीटने पर भी वो दरवाजा नहीं खुला। ऑफिस में इंतजार करने का मन बनाकर वो लौटने को हुई ही थी कि पीछे दरवाजा खुल गया। कौन हो तुम और पालन गृह के अंदर कैसे घुस आई? जी, एक बच्ची गोद लेना चाहती हूँ, दरख्वास्त ले लीजिए। ऐसे दरख्वास्त हम नहीं लेते, सब कुछ कंप्यूटर में होता है। जाओ जाओ, पहले ऑनलाइन फार्म भरो, बच्ची देखने फिर किसी दिन आना, कहकर उसने दरवाजा फिर बंद कर लिया। कुछ ही देर बाद पालिंगरे की बूढ़ी आया, हाथों में सब्जियों से भरे थैले लेकर आई। कजली ने दौड़कर मुख्य द्वार से ही उसके दोनों हाथों से दोनों थैले ले लिए और रसोई तक पहुँचा आई। ऑफिस में पंखे में सुस्ताते वृद्धा अब उसे एक राम कहानी सुना रही है। मैडम के अलावा यहाँ तीन लोग और थे, एक सहायक इंचार्ज, एक ऑफिस वाला और एक चपरासी। एक दिन सात आठ लड़कियां यहाँ से भाग निकली पीछे खेतों के रास्ते। उन लड़कियों की उम्र 10 से 15 के बीच में थी। वो सब पीछे के गांव पहुंची और गांव वालों से रो रोकर आप बीती सुनाने लगी। गांव वालों ने तुरंत पुलिस बुलाई। तब से पालन गृह के दो कर्मचारी जेल में है, एक फरार है। मामले में मैडम का भी नाम आया था, लेकिन मैडम की पहुंच बहुत ऊंची है। वो बीमारी का आड़ लेकर तुरंत गिरफ्तारी से तो बच गई, लेकिन अब उनका ट्रांसफर हो गया है। मैडम को तो बस अपना सामान बटोरना है यहाँ से, सो भी वो मुझसे ही करवाएंगी। अरे वो ठहरी थायराइड की बीमार, 18-18 घंटे बेहोश की तरह सोया करती है। हे भगवान, ऐसी भयंकर बीमार मैडम पालन गृह कैसे चलाती है? पिछले 3 सालों से तो उनका छोटा भाई ही सब काम देखता था, जिसे मैडम ने यहाँ का सहायक इंचार्ज बनवा दिया था। मैडम के रिश्तेदार बड़े ऊंचे अफसर हैं, हाँ, इसीलिए उनका भाई यहाँ कांड करता था और उसकी शिकायत भी न कर सकी बच्चियां। जब कभी भी निरीक्षण वाली टीम आती, लड़कियां जरूर अपनी बात कहती थीं, पर इस चार दीवारी से बाहर उनकी आवाज जाने नहीं दी मैडम के भाई ने। 3 सालों तक यहाँ की बच्चियां यह जुल्म सहती रही और तुम देखती रही अम्मा, कुछ कहती तो मैडम नौकरी से निकलवा देने की धमकी देती थी। मेरा बेटा निकम्मा है, 2 कौर रोटी के लिए मैंने अपना परलोक बिगाड़ लिया। वृद्धा अपनी चिमचिमाई पनीली आंखों को धोती के कोर से पोंछती है। अम्मा, मुझे बच्ची गोद लेनी है जो कल यहाँ आई है, दरखास्त कैसे लगती है? अरे भाई, वो तो अब कंप्यूटर के भीतर से लगती है। तुम ऐसा करो, बाजार चली जाओ, कंप्यूटर कर दुकान पे 50 रुपए दे देना, वो सब कागज पत्तर बनाकर कंप्यूटर में डाल देगा और तुम्हारे नाम की दरखास्त लग जाएगी। 50 रुपए? ओह, तो कल जाऊंगी बाजार। आने से पहले फिर कजली ने अपनी गंगा को दूध पिलाया, सीने से चिपटाया। नेह का कैसा नाता है जो आत्माओं की तार जोड़ता है। दो अपरिचिताएं नहीं, माँ बेटी का एक जोड़ा है।

ऑनलाइन आवेदन के बाद अगले 8 महीने तक कजली हर इतवार बच्चों के साथ गंगा से मिलने जाती रही। बच्चे हर स्कूली छुट्टी का अब अलग तरह से इंतजार करते। छोटी बहन से मिलने जाएंगे हम, कजली उल्टे फंदे सीधे फंदे के डिजाइन में जल्दी जल्दी स्वेटर बुन रही है। बच्चे दरी पर बैठे पढ़ रहे हैं, तभी कजली के सेल फोन की घंटी बजती है। अधिकृतों के समक्ष आवेदनों की सुनवाई हो रही है। वो अपने दोनों बच्चों के साथ लिए कमेटी के सामने प्रस्तुत है। तुम्हारा पति नहीं आया साथ में? उसकी सहमति नहीं है क्या? पहले से ही तुम्हारे 2 बच्चे हैं, फिर तुम्हें एक और बच्चा गोद लेने की जरूरत है ही क्यों? अगरबत्तियां बनाने बेचने का मामूली काम करती हो। अच्छा, तो इसमें 2 बच्चों के साथ इस बच्ची को भी अच्छी शिक्षा, अच्छा खाना कपड़ा मुहैया करवा पाओगी, इसकी क्या गारंटी है भला? इन सब प्रश्नों का कजली ने एक ही उत्तर दिया है, मैं माँ हूं गंगा की। कमेटी के समक्ष पूरी कहानी है, गंगा के चींटों भरे शॉल से लेकर बुने जा रहे नर्म स्वेटर तक। और कमेटी ने निर्णय सुनाया है। ऑटो में जब कजली तीनों बच्चों के साथ घर के बाहर उतरी तो कुम्हारपुरा में रौनक लग गई। सब नन्नी बच्ची को देखने उमड़ पड़े हैं। कैलाश छोटी गदबद बहन को गोद में उठाकर घुमाने की कोशिश कर रहा है। सोन ने पूछा, मम्मी गंगा बड़ी होकर क्या बनेगी? रसोई करती कजली के हाथ कुछ पल को रुक गए। सोन के प्रश्न की प्रतिध्वनियां उसके भीतर लगातार गूंज रही थी। उसने जैसे खुद से एक वादा किया, मैं अपनी माँ को नहीं दोहराऊंगी, और सधे शब्दों में कहा, जो बनना चाहेगी वो बने।

भयानक तपती रसोई में जैसे अनायास ही एक ठंडक खुल गई थी। कजली के रुके हाथ फिर से चल पड़े थे और सोन उसका चेहरा दमक उठा।

अभी आप सुन रहे थे ये कहानी जिसका नाम था कजली। इसे आपके लिए लिखा था इंदिरा दांगी ने। पानी पर लिखी कहानी। इस कार्यक्रम से अब रश्मि कुकरेती को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही दो दिन के दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नवन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के

सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती है। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के छिपॉक

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। कार्यक्रम गीत सुहाने लेकर संग हूं मैं श्रेयसी, और शुरुआत करते हैं हम अपना आज का ये कार्यक्रम इस नगमे के साथ।

आशा भोसले और रफी साहब की आवाज में फागुन फिल्म का ये बेहतरीन गीत दोस्तों आपने सुना। कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने, जहां हम पुराने और बेहद ही बेहतरीन गीत आपके साथ साझा करते हैं, हम और आप साथ में मिलकर सुनते हैं और उसे यूं ही एंजॉय करते हैं। तो आइए अब रुख करते हैं अपने अगले गीत की तरफ। फिल्म 9 2 11 का ये नगमा किशोर कुमार की आवाज में।

दोस्तों, जब हम रेडियो पर जुड़ते हैं तो बेहतरीन नगमों के लिए जुड़ते हैं, और क्यों ना हो, आखिर कुछ ऐसे हमारे जज्बात हैं, ऐसे हमारे हालात

कि उन्हें शब्दों की जरूरत पड़ती है और वो सारे शब्द हमें मिलते हैं हमारे हिंदी बॉलीवुड गीतों से। जी हाँ, बेहतरीन नगमे, बेहतरीन गाने और हमारे दिल का हाल। तो आइए अब बढ़ चलें अगले गीत पर।

दिल का तो आलम कुछ ऐसा ही हो जाता है दोस्तों, जब कोई बड़ी बड़ी आंखियां दिखाएं तो बस दिल तो चूहा बन के कहीं दुबक ही जाता है। खैर, इस तरह की नोकझोंक अटकेलियां तो हर तरह के रिश्तों में लगी रहती है, लेकिन जब दिल का मामला होता है तो इन अटकेलियों का एक अलग ही रस होता है। अभी जो गीत आपने सुना, फिल्म मिस्टर एंड मिसेस 55 से लिया हमने आवाजें गीता दत्त और रफी साहब की। बढ़ते हैं अब अगले गीत की तरफ। गीता दत्त की ही आवाज में अगला ये नगमा फिल्म भाई भाई से।

आ फिल्म से ये नगमा आपने सुना दोस्तों, आवाज लता मंगेशकर की थी। अगला जो गीत आपके सामने पेश कर रही हूँ लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में है, फिल्म श्री 420 का। आइए सुनते हैं ये नगमा।

मधुमती फिल्म का ये नगमा दोस्तों आपने सुना लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, बोल सजाए सलील चौधरी के, बोल सजाए शैलेंद्र के और म्यूजिक दिया सलील चौधरी ने। दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है गीत सुहाने संग हूं मैं श्रेयसी, और हम खास कुछ ऐसे पुराने क्लासिकल गीत आपके लिए लेकर आए हैं जो हमेशा हमेशा सुहाने रहते हैं, हमारे दिलों में तरोताजा रहते हैं। बढ़ते हैं अब अपने इस अगले नगमे की तरफ। फिल्म नया दौर का ये झूमता हुआ गाना रफी साहब और आशा भोसले की आवाज में, जिसके बोल सजाए हैं साहिर लुधियानवी ने और संगीत दिया है ओपी नैयर साहब ने। आइए सुनिए ये नगमा और झूम जाएं इसके साथ।

और यूं ही दोस्तों किस तरह हमारे गीतों का सिलसिला चलता रहता है, हमारा साथ यूं ही बना रहता है और एक से एक बेहतरीन गीतें, एक से एक बेहतरीन गाने हमारे दिलो दिमाग में बस यूं ही झूमते रहते हैं। आइए बढ़ते हैं इस अगले गीत की तरफ। फिल्म पेइंग गेस्ट का ये नगमा किशोर कुमार की आवाज में बोल सजाए मजरू सुल्तानपुरी ने और म्यूजिक एस डी बर्मन साहब का।

पेइंग गेस्ट के इस बेहतरीन गीत के बाद दोस्तों अब एक और प्यारा सा नगमा मेरे जहन में आ रहा है फिल्म काला पानी का। आशा भोसले और रफी साहब की आवाज में ये गीत आपके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगी, लेकिन हाँ साथ ही साथ आपको ये भी बता दूं कि कार्यक्रम गीत सुहाने अब इस गीत के बाद ही चल जाएगा विराम पर, लेकिन गीतों का सिलसिला जारी रहेगा FM गोल्ड चैनल पर, क्योंकि इसके बाद अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार, और समाचारों के पार अगला कार्यक्रम लेकर मैं श्रेयसी आपसे फिर जुड़ जाऊंगी। तो चलते चलते ये एक नगमा आपकी नजर।

0: छोड़ो,
1: देखो दिल न तोड़ो,
0: और छोड़ो हाथ छोड़ो,
1: छोड़ दिया तो हाथ मलोगे समझे,
0: अज समझे।

0: अच्छे हम अकेले
1: जालिम साथ ले ले।
0: अरे अच्छे हम अकेले
1: चार कदम भी चल न सकोगे समझे।
0: हाँ समझे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आर एन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने और उनकी आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नवन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु में तमिलग्म वेत्री कड़गम टीवीके के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड से जुड़े एक कथित धन शोधन मामले में पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को गिरफ्तार किया है। इससे पहले ईडी ने इस मामले में दिल्ली, गुरुग्राम और चंडीगढ़ में 5 स्थानों पर छापेमारी की थी। ये कार्रवाई धन शोधन रोकथाम अधिनियम पीएमएलए 2002 की आपराधिक धाराओं के अंतर्गत की गई है। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला परसद बिसेसर के साथ ट्रिनिडाड और टोबैगो के नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप का वो स्थान है जहां गिरमिटिया भारतीय

मजदूर सबसे पहले ट्रिनिडाड और टोबैगो पहुंचे थे। डॉक्टर जयशंकर ने नेल्सन द्वीप पर त्वरित प्रभाव परियोजना के लिए डॉक्टर कमला परसद बिसेसर के साथ भाग लिया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारतीय सहायता संघ समर्थित ये परियोजना एक अमर यात्रा की साझा विरासत को संरक्षित और प्रदर्शित करेगी। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई

सिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी के 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल। घड़ी में ठीक 2:11 और सेकेंड्स की सुइयां बढ़ती चल रही हैं और ये समय है कार्यक्रम रात सुरमई का। संघ हूं मैं श्रेयसी और आइए इस रात की चांदनी बिखेरे और गीतों की श्रृंखला बढ़ाते चलें। शुरुआत करते हैं इस गीत से, फिल्म आनंद से लिया ये नगमा हमने मुकेश की आवाज में।

आनंद फिल्म का ये नगमा आपने सुना दोस्तों। ये गीत ही कुछ ऐसा है, ये फिल्म ही कुछ ऐसी थी जो हमेशा अपने दर्द को मुस्कुराहटों में छुपाने की दर्द या जज्बात को बयां करती थी। यूं तो ऐ जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत हैं, यूं तो ऐ जिंदगी तेरे सफर से शिकायतें बहुत हैं, मगर दर्द जब दर्ज कराने गए तो देखा वहां कतारें बहुत हैं।

मुकद्दर का सिकंदर फिल्म का ये नगमा किशोर कुमार की आवाज में आपने सुना दोस्तों। म्यूजिक दिया कल्याण जी आनंद जी ने और बोल हैं अनजान के। अगला नगमा जो आपके सामने पेश कर रही हूँ फिल्म गोलमाल का है, किशोर कुमार की ही आवाजें हैं और बोल सजाए हैं गुलजार ने। आइए सुनते हैं ये नगमा।

कभी लोग पास होकर भी अजनबी लगते हैं, कभी लोग पास होकर भी अजनबी लगते हैं, और कभी अजनबी भी अपने से करीब लगते हैं। जिंदगी की यही सबसे अजीब सच्चाई है, रिश्ते खून से नहीं, एहसास से जुड़ते हैं।

मुकेश और कंचन की आवाज में फिल्म धर्मात्मा का ये नगमा आपने सुना, बोल सजा इंदीवर ने और म्यूजिक कल्याण जी आनंद जी का। बढ़ते हैं अपने इस अगले गीत की तरफ। फिल्म कभी कभी का वो बेहतरीन नगमा जो हर किसी की जबान पे हमेशा रहता है। जी हाँ, आवाजें लता मंगेशकर और मुकेश की, बोल हैं खयाम साहब के।

अनामिका फिल्म का ये नगमा आपने सुना दोस्तों, आवाज लता मंगेशकर की, बोल सजाए मजरूह सुल्तान पुरी ने और संगीत दिया आरडी बर्मन साहब ने। आरडी बर्मन साहब का ही एक और सजाया संगीत फिल्म कटी पतंग से ये नगमा आपके साथ साझा कर रही हूं। बोल सजाए हैं आनंद बख्शी साहब ने और आवाज है किशोर कुमार की। आइए सुनते हैं ये गीत।

गलतियां भी होंगी और गलत समझा भी जाएगा, गलतियां भी होंगी और गलत समझा भी जाएगा, ये जिंदगी है जनाब, यहां तारीफ भी होगी और कोसा भी जाएगा।

0: वेस्ट साइड टू। ए, क्या गा रहा है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के? अच्छा।

फिल्म द ग्रेट गैम्बल से आशा भोसले की आवाज में ये बेहतरीन नगमा आपने सुना। बोल सजाए आनंद बख्शी ने और संगीत आरडी बर्मन साहब का। अगला गाना जो पेश कर रही हूं फिल्म मिस्टर नटवरलाल का, आइए सुनते हैं ये गीत।

दोस्तों कार्यक्रम चल रहा है रात सुरमई और संग हूँ मैं श्रेयसी। एफएम गोल्ड पर गीतों का सिलसिला यूं ही हमेशा जारी रहेगा, लेकिन वक्त रहते कदर कर लें अपनी हर उस एहसास का, बाद में होने वाले को पछतावा ना झेलना पड़े। तो इसलिए गीतों का सिलसिला जारी रहे, शब्द भी अगर आपको ना मिले तो बॉलीवुड की ओर रुख करें और एक से एक बेहतरीन नगमे अपनी एहसासों में पिरोएं और उसे जरूर बयां करें। इसी के साथ अब मैं श्रेयसी यहाँ लेती हूँ आपसे इजाजत, जल्द मिलने के वादे के साथ। लेकिन एफएम गोल्ड पर गीतों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। कुछ ही देर में अब आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और उसके बाद कार्यक्रम हमराही लेकर फिरोज आलम होंगे आपके साथ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री बनने पर शुभेंदु अधिकारी को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि श्री अधिकारी ने जनता से गहराई से जुड़े रहने की और उनके आकांक्षाओं को करीब से समझने वाले नेता के रूप में अपनी पहचान बनाई है। प्रधानमंत्री ने 5 मंत्रियों को भी शपथ लेने पर बधाई दी। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी 11 मई को नबन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रामास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु में तलिलग्म वेत्री कड़गम टीवी के प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने प्रधानमंत्री कमला परसद बिसेसर के साथ त्रिनिदाद और टोबैगो के नेल्सन द्वीप का दौरा किया। नेल्सन द्वीप का वो स्थान है जहां गिरमिटिया भारतीय मजदूर सबसे पहले त्रिनिदाद और टोबैगो पहुंचे थे। डॉ जयशंकर ने नेल्सन द्वीप पर त्वरित प्रभाव परियोजना के लिए डॉ कमला परसद बिसेसर के साथ भाग लिया। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news red.

बशीर बद्र साहब कहते हैं कि तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा, तुम मुझे छोड़ के जाओगे तो मर जाऊंगा, यूं करो जाने से पहले मुझे पागल कर दो। जब प्यार होता है, मोहब्बत होती है, तो फिर ऐसे ही जज्बात उभर कर सामने आते हैं। और प्यार और मोहब्बत ही ऐसी चीज है जो हर इंसान की जिंदगी में कभी न कभी कोई न कोई ऐसा शख्स जरूर आता है जो आपको सचमुच पागल सा बना देता है, पागल सा कर देता है, और यही मोहब्बत की पहली निशानी होती है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 3:12 और 5 सेकंड, और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम हमराही का। और हमराही की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं, यानी आपका दोस्त फेरोज। तो आप तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, पुरखलूस आदाब। रात के इस वक्त में आप किसी सफर पे हैं, या कुछ काम कर रहे हैं, या आप अपनी पढ़ाई में मशगूल हैं, इन सब के बावजूद संगीत, म्यूजिक, मौसीकी एक ऐसा साथी होता है जो हर वक्त आपको सुकून पहुंचाता है और उस दुनिया में लेकर जाता है जहां पर सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। और जब तमाम परेशानियां दूर हो जाती हैं तो फिर आप प्यार और मोहब्बत की बातें करते हैं, बिल्कुल इस नगमे की तरह।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल सजी है आपकी अपनी पसंदीदा हमराही की, और हमराही की इस महफिल में मैं हूं आपका हमराही फिरोज। और ये सफर बेहद खूबसूरत, बहुत ही प्यारा है। हम एक ही राह के मुसाफिर हैं, हम एक ही मंजिल के मुसाफिर हैं, एक ही राह पर चल रहे हैं। जिंदगी हम तमाम लोगों की बिल्कुल एक जैसी है। किसी की जिंदगी में हमें लगता है कि बहुत सारी खुशियां हैं, लेकिन किसी की जिंदगी में बहुत सारी दुश्वारियां भी हैं। पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर इंसान की जिंदगी इन तमाम मरहलों से गुजर कर आगे बढ़ती है। कुछ परेशानियां, कुछ मुश्किलात, कुछ आसानियां और कुछ खुशियां। इन तमाम चीजों से मिलकर ही ये जिंदगी आगे बढ़ती है। और जब तक ये तमाम चीजें हमारी जिंदगी में ना हो, तो फिर जिंदगी की खुशियों का और जिंदगी की तकलीफों का हमें अनुभव ही ना होगा। ऐसे ही ये जिंदगी आगे बढ़ती है और हम सब मिलकर जिंदगी को इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। कुछ पाने की ललक, कुछ हासिल करने की तमन्ना, और उन तमन्नाओं में एक हम सफर की बात, प्यार मोहब्बत। जब तक हमारी जिंदगी में प्यार ना हो, तो ये जिंदगी अधूरी सी लगती है। ऐसा ही एक बहुत ही खूबसूरत नगमा है, हम आपके लिए लेकर आए हैं। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब की आवाज़ों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अभी आपने ये नगमा सुना था। और अगला नगमा किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज़ों में आपके लिए।

मैं न भूलूंगा। फिल्म रोटी कपड़ा और मकान से आवाजें थी लता जी और मुकेश साहब की। अगर सुनी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमराही की इस दिलकश महफिल में, हमराही की वो महफिल जो आपका हम सफर बनकर आपके साथ चलता है, आपका हमराही बनकर आपका हमराह यानी आपके सफर को आसान बना देता है। अगर आप भी इस वक्त किसी सफर पे हैं, कहीं जा रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं, या आप अपनी पढ़ाई लिखाई में मशगूल हैं, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी नज़र में कोई ऐसा है जो आपको चाहता है, या आप उसे चाहते हैं, या आप उन सब उनके दिल के करीब हैं, तो बस उन्हें याद कीजिए और इन नगमों को सुनिए। फिर देखिए कितना खूबसूरत, कितना सुकून आपको मिलेगा। ये नगमे हमेशा हमारे दिल की गहराई में उतर जाते हैं और हमें ले जाते हैं किसी और दुनिया में। शायद उसे ख्यालों की दुनिया भी कह सकते हैं, या अपने गुजरे वक्त को भी आप याद कर सकते हैं, और याद करके आप उसी दौर में वापस जा सकते हैं जब वक्त बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन था और आपका महबूब आपके साथ था। अब जब वो आपके पास नहीं है, आपसे दूर है, तो आप उसे किस तरीके से याद कर रहे हैं, यही बताता है अगला ये नगमा। फिल्म आपकी कसम से किशोर कुमार साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर हमराही की इस दिलकश महफिल में करवटें बदलते रहे सारी रात हम।

हमें और जीने की चाहत न होती अगर तुम न होते। फिल्म अगर तुम न होते से नगमा तालता जी की आवाज में, आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर। जोश मलिहाबादी कहते हैं कि दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब याद किसी की आती है और जब किसी की याद में आप मुब्तला होते हैं तो फिर ऐसे अल्फाज आपकी जबान से निकलना लाजमी है। दिल की चोटों ने कभी चैन से रहने न दिया, जब चली सर्द हवा मैंने तुझे याद किया। और ये यादें हमेशा के लिए हम सबके दिलों में कहीं ना कहीं बसी होती है, क्योंकि ये वो यादें होती हैं जो हम सबके दिल के बेहद करीब होती हैं। और ऐसे ही यादों के साथ हम जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं, रुकते नहीं हैं, बस बढ़ते जाते हैं, बिल्कुल हमराही के इस सफर की तरह। और हमराही में अगला नगमा कुछ ऐसा ही, संगम फिल्म से मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज में, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर।

ओ मेरे सनम, दो जिस्म मगर एक जान हैं हम। संगम फिल्म का ये नगमा मुकेश साहब और लता जी की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर हमराही की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में आप और हम मिलकर चल रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत सफर पर। तो ये सफर कैसा लग रहा है, ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, आप हमें जरूर बताइएगा। उसके लिए आपको हमें मेल करना होगा और मेल करने के लिए हमारा ईमेल आईडी जरूर नोट कर लें। हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com, fmgoldairdaily@gmail.com। हमें आपके पैगामात का इंतजार रहेगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और हमराही के इस बहुत ही खूबसूरत सफर को आगे बढ़ाते हैं एक और बहुत ही प्यारे नगमे के साथ। और ये नगमा है फिल्म आंधी से, लता जी की और किशोर कुमार साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर आपके लिए ये नगमा खास तौर से।

तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। आंधी फिल्म का यह नगमा था, आवाज़ें थी लता मंगेशकर जी और किशोर कुमार साहब की। इसी के साथ मुझे यानी फेरोज को अब दीजिए इजाजत हमराही से। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार, और समाचारों के बाद एक बार मैं फिर रहूंगा आपके साथ लेकर आपका अपना प्रोग्राम अरुणिमा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

परिवार के साथ मैं अपर्णा सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और तेलंगाना के दौरे पर रहेंगे। वे बेंगलुरु में आर्ट ऑफ लिविंग की 45वीं वर्षगांठ और इसके संस्थापक गुरुदेव श्री श्री रविशंकर के 70वें जन्मदिन समारोह में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग परिसर में नए ध्यान मंदिर और ध्यान कक्ष का उद्घाटन करेंगे। श्री मोदी आर्ट ऑफ लिविंग कार्यक्रम के लिए रवाना होने से पहले सभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही दो दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दूसरे दिन श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्धार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे और वे कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। इस बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कल नबन्ना में राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था की समीक्षा बैठक करेंगे। सभी जिला पुलिस अधीक्षकों, पुलिस आयुक्तों, वरिष्ठ रेलवे पुलिस अधिकारियों, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस उप महानिरीक्षक, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और विशेष पुलिस इकाइयों के प्रमुखों को बैठक में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया। पार्टी ने घोषणा की कि धनेखाली विधायक असीमा पात्रा और चौरंगी विधायक नैना बंदोपाध्याय विपक्ष की उपनेता होंगी। कोलकाता पोर्ट विधायक फिरहाद हकीम को विधानसभा का मुख्य सचेतक नियुक्त किया गया है। पार्टी ने कहा कि नवनियुक्त नेता बंगाल की जनता के हित में प्रतिबद्धता के साथ काम करेंगे। तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज चेन्नई पहुंचेंगे। विजय आज चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलेकर उन्हें पद की शपथ दिलाएंगे। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रंगास्वामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगास्वामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगास्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रंगास्वामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए खरीद संबंधी अनुपालन दिशा निर्देशों की नियमावली लागू करके केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत बाहरी स्रोत और संविदा कर्मचारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा कि इन सुधारों का उद्देश्य वेतन का समय पर भुगतान, सामाजिक सुरक्षा अंशदान का अनिवार्य भुगतान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानूनों के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन तंत्र सुनिश्चित करना है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चिपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना मुंबई इंडियंस से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। अगले 2 से 3 दिन के दौरान केरल, लक्षद्वीप, दक्षिण कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल में तेज बारिश का अनुमान है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर वक्त हो चुका है ठीक 4:11 और 8 सेकंड और ये वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा का और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं आपकी खिदमत में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। तो अब तमाम सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार पुरखलूस आदाब और आज के इस नई सुबह में आप सभी का स्वागत है इस्तकबाल है। कहते हैं कि वसीम बरेलवी साहब कहते हैं कि आते आते मेरा नाम सा रह गया, आते आते मेरा नाम सा रह गया, उसके होठों पे कुछ कांपता रह गया। जब कोई आपका अपना आपके साथ हो तो आपके दिल में बहुत सारी उमंगें जमा होती रहती है, बहुत सारी बातें हैं जो अंदर ही अंदर हिचकोले लिए घूमती रहती है, बहुत सारी बातें आपके दिल में फूलों की तरह खिलती रहती हैं और जब ऐसा होता है तो समझें कि आपका अपना आपके दिल के कितने करीब है और जब आपका अपना कोई आपका साथ दे रहा हो, आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा हो तो यकीन मानिए दिल की उमंगें तो जमा होंगी ही होंगी और फिर जिंदगी भी बेहद खूबसूरत होगी। तो चलिए ऐसे ही खूबसूरत नगमों के साथ हम आगे बढ़ते हैं अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में। आवाज है हेमंत कुमार साहब और गीता दत्त की फिल्म मुनीम जी से।

दिल की उमंगे हैं जवां, बेहद खूबसूरत है नगमा। मुनीम जी फिल्म से हेमंत कुमार साहब और गीता दत्त की बहुत ही प्यारी आवाजों में यकीनन ये दिल को सुकून पहुंचाने वाला थोड़ा मजाहिया टाइप का ये नगमा यकीनन कहीं न कहीं हमारे दिल में जो खामोशियां हैं, हमारे दिल में जो कुछ गुबार है, हमारे दिल में जो थोड़ी बहुत परेशानियां हैं उसको दूर करता हुआ ये नगमा दिल की उमंगे हैं जवा बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरती के साथ गाया भी गया है। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर महफिल है अरुणिमा की, और अरुणिमा में हम आगे बढ़ेंगे एक और बहुत ही प्यारे नगमे के साथ, और नगमा है फिल्म प्यासा सावन से। लता मंगेशकर जी की बहुत ही प्यारी आवाज में तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है, यानी अगर जब आपके साथ कोई आपका अपना हो तो फिर आपको घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, बस आप उनके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ते रहें। अगर आप कहीं गिरते हैं, लड़खड़ाते हैं तो वो थाम लेगा, और अगर वो कहीं पे लड़खड़ाते हैं, गिरते हैं या राह भटकते हैं तो आप उसे थाम लेंगे। ऐसे ही जिंदगी आगे बढ़ती है, और जिंदगी कितनी खूबसूरत है जब आपका अपना कोई हम सफर हो, तब पता चलती है ये बात। फिलहाल आगे बढ़ते हैं इस बहुत ही प्यारे नगमे के साथ।

तेरा साथ है तो हमें क्या कमी है। फिल्म प्यासा सावन का यह नगमा लता जी की बहुत ही प्यारी आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर और महफिल सजी है आपकी अपनी अरुणिमा की। और अरुणिमा की इस बेहद खूबसूरत महफिल को लेकर हाजिर हूं मैं आपके अपने चैनल आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल पर। दोस्तों कहते हैं कि जिंदगी में मुश्किलात आए तो मायूस बिल्कुल भी मत होइए, क्योंकि हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है और वो रोशनी आपको एक नई मंजिल की तरफ लेकर जाती है। मुश्किलात आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उन परेशानियों से डटकर जो मुकाबला करके आगे बढ़ेगा वही जिंदगी में सच्चा कामयाब योद्धा होगा। और कहते हैं कि दो लफ्जों की है ये दिल की कहानी, मोहब्बत और मुस्कुराहट से भरी ये जिंदगानी। मोहब्बत और मुस्कुराहट के साथ अगर आप जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं तो फिर कामयाबी आपके कदमों में होती है। इसी नगमे के साथ, ऐसे ही नगमों के साथ हम आगे बढ़ेंगे द ग्रेट गैम्बलर फिल्म से आशा भोसले और अमिताभ बच्चन साहब की बहुत ही प्यारी आवाज में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज पर।

0: साई तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर एक छोटे से अंतराल के बाद एक बार फिर मैं फेरोज अब तमाम सुनने वालों का शानदार इस्तकबाल करता हूँ। स्वागत करता हूँ आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम अरुणिमा में। वक्त हो चुका है हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक ठीक 4:34:50। महफिल है अरुणिमा की और मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त फेरोज। तो चलिए इस सफर को यूं ही बरकरार रखते हुए आगे बढ़ते हैं और जिंदगी के सफर के साथ साथ इस सफर को भी यूं ही आगे बढ़ाते हैं एक और बहुत ही प्यारे नगमे के साथ, फिल्म सपनों का सौदागर से। आवाजें हैं मुकेश साहब और शारदा की।

तुम प्यार से देखो, हम प्यार से देखे, जीवन के सफर में बन जाए उजाला। ये नगमा था सपनों का सौदागर फिल्म से, आवाजें मुकेश साहब और शारदा की। आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा की ये महफिल। जावेद नसीमी कहते हैं कि एक चेहरा है जो आंखों में बसा रहता है, एक चेहरा है जो आंखों में बसा रहता है, एक तसव्वुर है जो तन्हा नहीं होने देता। यकीनन कोई एक चेहरा ऐसा होता है, कोई एक शख्स ऐसा होता है जो आपकी आंखों में बसा होता है, आपकी जिंदगी का हिस्सा होता है, और वो अगर साथ आपके चलता है तो फिर ये सफर भी बहुत ही आसान हो जाता है। और जब वो सफर आसान होता है तो वो और ज्यादा करीब आपके होता जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है जब वो बिल्कुल आपके अपने दिल में उतर जाता है, और वो कोई और नहीं होता, वो होता है जो आपको जानता है, आपको समझता है, आपके जज्बात की कदर करता है। वही वो शख्स होता है जो आपके दिल में उतर सकता है। और अगर ऐसा है तो फिर आप समझे कि आपकी जिंदगी बेहद खूबसूरत और कामयाब है। अगला नगमा कुछ ऐसा ही है, फिल्म वक्त से आशा भोसले और महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही प्यारी आवाज में, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा की इस बहुत ही प्यारी महफिल में।

हम जब सिमट के आपकी बाहों में आ गए। वक्त फिल्म का है नगमा, आशा भोसले जी और महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर अरुणिमा की इस बहुत ही खूबसूरत महफिल में। ये वो महफिल है जिसमें आप जिंदगी की बातें करते हैं, जिंदगी की बातें सुनते हैं और जिंदगी को खूबसूरती के साथ, पॉजिटिविटी के साथ कैसे आगे बढ़ाई जाए उसके बारे में बातें करते हैं। आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, हमारा यह सफर कैसा लग रहा है, हमें जरूर बताइएगा। और उसके लिए आपको हमारे ईमेल आईडी की जरूरत पड़ेगी, आप अपना फीडबैक इस पर भेज सकते हैं। और हमारा ईमेल आईडी है fmgoldairdaily@gmail.com, fmgoldairdaily@gmail.com। तो आप अपने पैगाम के जरिए हमसे जुड़े और हम आपके लिए जो बेहतरीन नगमे लेकर आए हैं, जो जिंदगी से जुड़े हुए हैं, वो तमाम नगमे हम आपके खिदमत में यूं ही पेश करते रहेंगे। अगला नगमा हमराज फिल्म का तुम अगर साथ देने का वादा करो, महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में ये नगमा आपके दिल को सुकून पहुंचाएगा। और अगर कोई है जिसका आप साथ देना चाहते हैं और कोई है जिसका आप साथ चाहते हैं, तो यकीन मानिए ये नगमा आपके लिए बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा और बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करेगा।

तुम अगर साथ देने का वादा करो। हमराज फिल्म का यह नगमा महेंद्र कपूर साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में। इस नगमे ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। अगर आपका हमराही, आपका हम कदम आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलता है तो जिंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है और कुछ पल जिंदगी में सुकून के भी चाहिए होते हैं। अगर वो सुकून आपके जिंदगी में है तो फिर दुनिया आपके कदमों में होगी। बिल्कुल इस बेहद खूबसूरत कलाम की तरफ। और यह गजल है फिल्म मौसम से, लता जी और भूपेंद्र साहब की बहुत ही प्यारी आवाजों में, आकाशवाणी दिल्ली के एफएम गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर। ये नज़्म बेहद प्यारी, बेहद खूबसूरत, जरूर पसंद आएगी आपको।

0: करेंगे। इस दौरान वे उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री हैदराबाद जाएंगे और विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ और शिलान्यास करेंगे। ये परियोजनाएं लगभग 9,400 करोड़ रुपए की हैं। श्री मोदी हैदराबाद पणजी आर्थिक कॉरिडोर में गुड्डेबेलूर से महबूब नगर तक 4 लेन में परिवर्तित हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 167 का शिलान्यास करेंगे। वे वारंगल में पीएम मित्र पार्क का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य देखभाल बुनियादी ढांचा के तहत महत्वपूर्ण सिंधु अस्पताल का भी लोकार्पण करेंगे। ये अस्पताल हैदराबाद में अत्याधुनिक मल्टी सुपर स्पेशलिटी कैंसर अस्पताल होगा। इसके बाद प्रधानमंत्री आज ही 2 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। दौरे के दौरान श्री मोदी सोमनाथ मंदिर के जीर्णोद्वार की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित सोमनाथ अमृत महोत्सव में भाग लेंगे और कई धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसके साथ ही राज्य में पहली बार भाजपा सरकार का गठन हुआ। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में श्री अधिकारी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। राज्यपाल ने मुख्यमंत्री के साथ 5 कैबिनेट मंत्रियों को भी शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और पार्टी के अन्य नेता उपस्थित थे। उधर तृणमूल कांग्रेस ने बालीगंज विधायक शोभन देव चट्टोपाध्याय को पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष का नेता नियुक्त किया है। तमिलनाडु में तमिलगा वित्री कड़गम टीवी के कई प्रमुख सी जोसेफ विजय ने कल लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर से मुलाकात की और 120 विधायकों के समर्थन के साथ सरकार बनाने का दावा पेश किया। हमारे संवाददाता ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि श्री विजय आज तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी आज चेन्नई पहुंचेंगे। कई वरिष्ठ राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल के नेता, फिल्मी हस्तियां और पार्टी कार्यकर्ताओं के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। केरलम में सरकार गठन पर विचार विमर्श के लिए कल नई दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर हुई बैठक में श्री राहुल गांधी, केरलम प्रभारी महासचिव दीपा दास मुंशी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और राज्य के वरिष्ठ नेता रमेश चिन्नीथला और वीडी सतीशन शामिल थे। पार्टी ने कहा है कि केरलम के नए मुख्यमंत्री का निर्णय पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी का होगा और जल्द ही नाम की घोषणा कर दी जाएगी। सरकारी अधिसूचना के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल एन रंगासामी को पुदुचेरी का मुख्यमंत्री नियुक्त किया। अधिसूचना में कहा गया है कि राष्ट्रपति एन रंगासामी को उनके शपथ ग्रहण की तिथि से पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त करती हैं। अधिसूचना के बाद उपराज्यपाल के कैलाश नाथन ने रंगासामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। रंगासामी 13 मई को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। केंद्र सरकार ने श्रम संहिता के लिए खरीद संबंधी अनुपालन दिशा निर्देशों की नियमावली लागू करके केंद्रीय मंत्रालयों, विभागों, स्वायत्त निकायों और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में कार्यरत बाहरी स्रोत और संविदा कर्मचारियों को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने कहा है कि इन सुधारों का उद्देश्य वेतन का समय पर भुगतान करना, सामाजिक सुरक्षा अंशदान का अनिवार्य भुगतान, ठेकेदारों और प्रमुख नियोक्ताओं की अधिक जवाबदेही और श्रम कानून के उल्लंघन के खिलाफ मजबूत प्रवर्तन तंत्र सुनिश्चित करना है। आईपीएल क्रिकेट में जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 77 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज चेन्नई के चेपॉक स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच दोपहर 3:30 बजे से खेला जाएगा। वहीं दूसरे मैच में रायपुर के शहीद वीर सिंह इंटरनेशनल स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरू का सामना मुंबई इंडियंस से होगा और ये मैच 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने गुजरात और पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर लू चलने की संभावना व्यक्त की है। इस बीच कोंकण और गोवा के कुछ स्थानों पर गर्म और उमस भरा मौसम रहने की उम्मीद है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय हरप्रीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will visit Karnataka and Telangana today. Mr. Modi will first travel to Karnataka to participate in the 45th anniversary celebrations of the Art of Living in Bengaluru. He will also inaugurate the newly

बेहतरी भी होती है, और ये भी कि हम जिंदगी में उन तमाम मुश्किलात से कैसे मुकाबला करते हुए आगे बढ़ें और अपनी मंजिल को तय करें। लेकिन हर सुबह जब हम जगते हैं, हर सुबह जब हम अपने बिस्तर से बाहर निकलते हैं, तो सबसे पहले हम ईश्वर का नाम लेते हैं, खुदा का नाम लेते हैं, और खुदा के नाम के साथ ही, ईश्वर के नाम के साथ ही हम हर नए दिन का आगाज करते हैं। तो हम भी आज उसी खुदा, उसी ईश्वर के नाम हम लेते हुए आगे बढ़ेंगे और अपने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। आज हम भी एक नई सुबह में कदम रख चुके हैं, तो आइए आज की सुबह का आगाज करते हैं। आकाशवाणी दिल्ली के FM गोल्ड चैनल 100.1 MHz पर भोर सुहानी में, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त फिरोज। तो आइए आज के इस सफर को हम यूं ही आगे बढ़ाते हैं, उस खुदा का नाम लेते हुए, उस ईश्वर का नाम लेते हुए जिसने हमें पैदा किया और हमें एक बेहतर इंसान बनाया। ये नगमा है फिल्म द बर्निंग ट्रेन से, आवाज है सुषमा श्रेष्ठ की।

आकाशवाणी दिल्ली का एफएम गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज़ पर वक्त हो चुका है ठीक 5:10 और यह वक्त है आपके अपने पसंदीदा प्रोग्राम भोर सुहानी का। भोर सुहानी की वो महफिल जिसमें जिंदगी से जुड़ी हुई बातें तो होती ही हैं, साथ ही साथ किस तरीके से हम जिंदगी को आगे बढ़ाएं उसकी

जी हाँ, तेरी है जमीन, तेरा आसमां, सब कुछ तुम्हारा दिया हुआ, ये जान, ये जिस्म और ये सेहत, ये तमाम चीजें तुम्हारी दी हुई है, यानी उस खुदा, उस ईश्वर की दी हुई है। वो चाहे तो हमें इससे भी बेहतर कर सकता है, वो चाहे तो हमें इससे भी बुरे हालात में रख सकता है, लेकिन हर हालात में वो हमारे लिए बेहतर सोचता है। वो सर्वश्रेष्ठ है और इंसान को भी ऐसा ही बनाया है। और इंसान के बारे में ये कहा जाता है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है, यानी दुनिया में जितनी भी जानदार चीजें हैं, जितने भी जीव जंतु है, उसमें सबसे बेहतर सिर्फ और सिर्फ इंसान को बनाया गया है। और तमाम चीजों पर, तमाम कुदरती चीजों पर एक इंसान ही है जो अपनी हुकूमत करता है। और इंसान बहुत ही बेहतर है, बहुत ही अच्छा है। अगर सही दिशा में चले, सही रास्ते पर चले, तो जिंदगी बेहद खूबसूरत है। और वही इंसान जब कोई गलत रास्ता इख्तियार कर ले, तो सबके लिए, पूरे समाज के साथ साथ पूरे देश, पूरे वतन, पूरे मुल्क के लिए कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित होता है। इसलिए हमेशा ये कोशिश करें कि एक अच्छे इंसान बनकर एक अच्छी जिंदगी बनाए और औरों को साथ लेकर आगे बढ़े। और कहते हैं कि हर नया दिन, हर नई सुबह एक नई शुरुआत लेकर आता है, एक नया पैगाम लेकर आता है, एक नई रोशनी के साथ आता है और जिंदगी में नए ख्वाब सजाने के लिए आता है। इसलिए हम भी कोशिश करें कि हर नए दिन में, एक नई सुबह में, एक नई सोच के साथ, नई उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ें और अपने कदम को आगे बढ़ाएं और हर सुबह को एक नई उम्मीद के साथ जीने की कोशिश करें इस नगमे की तरह। फिल्म याश का ये नगमा और आवाज है इस उदास की।